0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: आज का योगा टिप, भोजन में रंग बिरंगी सब्जियां और फल को शामिल करें, खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हरी साग सब्जियां बहुत ही कम खाते हैं। अलग अलग रंगों के फल और सब्जियां खाने से शरीर विभिन्न पोषक तत्व प्रदान करते हैं और साथ ही साथ में बच्चों को भी ये लगता है कि ये कलरफुल सब्जियां जो हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद है। तो कलरफुल सब्जियां बनाइए और खाइए। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम।
2: सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योग पाठशाला में नित सवेरे आप एक नए आसन, एक नए प्राणायाम को एक नए शब्द से जोड़कर कर रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है योगनी सबदा। 30 दिवसीय योग शिविर में जो कि आप हम सभी मिलकर के नए योग आसनों को कर रहे हैं, तो आइए आज हम एक नए आसन, एक प्राणायाम की ओर चलेंगे, एक नए शब्द के साथ में, जो है उत्कृष्ट उष्टासन। उष्टासन अपने में बहुत ही प्रारूप कह सकते हैं, बहुत ही साहसी कह सकते हैं, बहुत ही अपने में महत्वपूर्ण आसन है। लेकिन जब हम उसके आगे उत्कृष्ट लगा देते हैं, तो उसका मतलब है कि वह श्रेष्ठता में सबसे आगे और उत्तम, सबसे महत्वपूर्ण। तो आइए हम उत्कृष्ट के बारे में पहले जान लेते हैं कि उत्कृष्ट क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्कृष्ट का अर्थ क्या होता है। उत्कृष्ट का अर्थ होता है हम जिस भी एक बात को उच्चारण करते हैं, जिस बात को हम सोचते हैं, जिस काम को हम करते हैं, वह अपने आप में श्रेष्ठ हो, अच्छे से अच्छा और सर्वोत्तम माना गया हो। सर्वोत्तम का मतलब होता है ऊपर से उठाया हुआ, यानी कि एक महत्वपूर्ण भाग। तो आज उत्कृष्ट को हम उसके एक शब्द का अर्थ और कहते हैं, जो कि है उत्कृष्टता। उत्कृष्टता का किसी चीज में वास्तव में सर्वश्रेष्ठ होने का गुण ही प्राप्त करना उत्कृष्टता को दर्शाता है। वह इसलिए क्योंकि यदि कोई अपने में बहुत महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ है, तो उसे उत्कृष्टता की उपाधि से नवाजा जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई आसन प्राणायाम अपने आप में श्रेष्ठ, उत्तम और सबसे ऊपर की स्थिति से उठाया गया हो, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए अब हम करते हैं उत्कृष्ट उष्टासन। तो उष्टासन के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उष्टासन है क्या। उष्टासन के कई प्रकार हैं, कैसे करना चाहिए, कितनी सावधानियां होनी चाहिए और किस समय यह करना चाहिए। तो सबसे पहले उष्टासन के बारे में हम आपको बता दें। साधारणतः यह बोला गया है कि उष्टासन उष्ट आसन यानी कि ऊंट मुद्रा में आधुनिक योग से व्यायाम के रूप में घुटने के बल पर झुकने वाला आसन है। लेकिन यह मेन जो इसका काम होता है, यह रीढ़ की हड्डी को, पैर को, कंधों को सुव्यवस्थित करने का आसन है। उष्टासन जैसे कि नाम से ही विदित है, ऊंट का आसन, ऊंट का आकार, यानी कि ऊंट की तरीके से यह अपनी शरीर की गति को मोड़ करके और उसी की तरीके से यह रूप देने वाला आसन है। तो सबसे पहले हम उष्टासन करेंगे और किस प्रकार से करेंगे वह हम जान लेते हैं। उष्टासन करने का सबसे आसान सा तरीका यह है कि वज्रासन में बैठ जाएं, यानी कि हम किसी साफ सुथरी मैट पर या चटाई पर या चद्दर बिछा करके एक शांत वातावरण में बैठ जाएंगे। उत्कृष्ट उष्टासन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने आप में यह सर्वप्रथम और उत्तम माना गया है। यह उष्टासन बाजुओं को धड़ के साथ एक साथ घुटनों पर खड़े होने पर इतनी ऐसी क्रियाओं पर बताता है कि सारी शरीर की मांसपेशियों तक एक महत्वपूर्ण बल आता है। तो सबसे पहला जैसे बताया कि वज्रासन में बैठ जाएं, एक शांत चित्त वातावरण में अपने मन को, चित्त को एकाग्र करते हुए मुखमंडल पर एक प्यारी सी भीनी सी मुस्कान के साथ में आगे बढ़ते हैं। बाजुओं को धड़ के साथ रखकर घुटनों पर खड़े हो जाएं,
लेकिन अगर यह मुश्किल लगे तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं। अब पीछे की तरफ आपको झुक जाना है और दाएं हाथ से दाएं एड़ी को पकड़ने की कोशिश करें और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ें। आपका धड़ पीछे की ओर मुड़ा होना चाहिए, आंखें आकाश की तरफ सीधी। उष्टासन की यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है, यदि आप कर ले जाएं तो बहुत ही आसान है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, जैसे रीढ़ की हड्डी अगर नहीं मुड़ रही है तो भी उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उष्टासन कितनी बार करना चाहिए और सबसे पहले विधि। उष्टासन को करने के लिए कमर से पीछे की तरफ झुकना है और दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करनी है। गर्दन को पीछे की तरफ लें और फिर उसमें खिंचाव महसूस करें। इस मुद्रा में रहकर 5 से 6 बार श्वास आपको लेना है और आराम से सीधे होकर के श्वास को छोड़ देना है। उष्टासन से कौन सा रोग दूर होता है, आइए हम आपको बताते हैं। उष्टासन करने से जिन्होंने सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी में पस भर जाना, पानी भर जाना, घुटनों की दिक्कत, यह सारी परेशानी ठीक होती है। और उष्टासन करने से आपकी रुकी हुई लंबाई यानी कि हाइट भी बढ़ सकती है। थायराइड के लिए यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उष्टासन कितने मिनट तक करना चाहिए हम आपको बताते हैं। योग विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना 30 मिनट का योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आदर्श माना जाता है। आमतौर पर योग के अभ्यास के प्रकार और उस पर फोकस के आधार योग मुद्रा निर्भर करती है। कई योग के अभ्यास अलग अलग तरीके से बताते हैं, उष्टासन इस तरीके से करना चाहिए, उष्टासन के प्रकार ये हैं, लेकिन जिस पर हम आपको बता रहे हैं योगाभ्यास की अवधि आपको एक दिन में 30 मिनट तक ही करना है, क्योंकि उष्टासन अपने में एक महत्वपूर्ण आसन है लेकिन उतना ही कठिन भी है, तो इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में आप इसे थोड़ी ही देर करें। आइए अब हम आपको बताते हैं उष्टासन की लाभ और उष्टासन की सावधानियाँ। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि भारत ने प्राचीन काल से ही दुनिया को ज्ञान विज्ञान का तोहफा दिया है। योग भी दुनिया को स्वस्थ बनाने के लिए भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। भारत के योगियों में शरीर के हर एक अंग को स्वस्थ बनाने के लिए अलग अलग आसनों की जानकारी हम आपको देते आते हैं। हजारों सालों से आसन, प्राणायाम, मुद्राएं हमें स्वास्थ्य का तोहफा देते आ रहे हैं। ऐसे वक्त में हम रोज पहले से कहीं ज्यादा तनाव जो झेलते थे वह अब हम कम कर रहे हैं योग के माध्यम से। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं योगासन में जो कि है उष्टासन। उष्टासन में शरीर ऊंट की आकृति का बन जाता है और यह आसन को अंग्रेजी में कैमल पोज भी कहते हैं। जैसे ऊंट रेगिस्तान में मुश्किल हालातों में भी आसानी से रह सकता है, अगर इस आसान तरीके से इस आसन को अभ्यास को नियमित तौर पर किया जाए तो यह शरीर से हर शारीरिक और मानसिक परेशानी को दूर कर सकता है। लेकिन उष्टासन से पहले कुछ जरूरी महत्वपूर्ण सावधानियां हैं इस आसन को करने के लिए। उष्टासन में रीढ़ की हड्डी को मोड़ा जाता है। इस आसन का अभ्यास अन्य योगियों के अनुसार सुबह के वक्त किया जाता है। अगर किसी कारण से इस आसन का अभ्यास सुबह के वक्त न किया जा सके तो इसे शाम के वक्त भी किया जा सकता है। शाम को अभ्यास करने से ही यह समान लाभ देता है, लेकिन उष्टासन का अभ्यास से पहले हमेशा शौच कर लेना चाहिए। खाली पेट इस आसन का अभ्यास करने पर सर्वप्रथम इसके नतीजे आपको मिलते हैं। अगर आप शाम को ये आसन करने जा रहे हैं तो भोजन कम से कम 6 घंटे पहले आपको कर लेना है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप उष्टासन को करने के बाद में इसके फायदे। यह आसन पाचन सुधारने में मदद करता है, क्योंकि ये पेट के भीतर मौजूद सभी अंगों की हल्की सी मालिश करता है। उत्कृष्ट उष्टासन के अभ्यास से सीने और पेट के निचले हिस्से से अतिरिक्त चर्बी भी कम होती है। ये कमर और कंधों को मजबूत करता है।
ये कमर के निचले हिस्से में दर्द कम करने में मदद करता है। इस आसन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है। शरीर का पोस्चर सुधारने में भी आसन मदद करता है। अब हम जान लेते हैं यह आसन हमारे लिए क्या सावधानियां लेकर के आया है। सावधानियां तो हमने आपको बता ही दी और साथ ही साथ हमने इसका उपचार भी आपको बताया है। इसीलिए दोस्तों यह जो आसन है उष्टासन उत्कृष्ट उष्टासन क्यों बना यह मैंने आपको एक परिभाषित के रूप में किया। सभी लोगों से मेरी विनम्र विनती है कि इस आसन को बहुत अच्छे से आपको करना है। कोई भी प्राणायाम कोई भी आसन यदि हम पूर्ण रूप से लगन से करें तो उसका समुचित रूप में हमें लाभ मिल सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से हम अगर एक अच्छी नींद लेते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक लहर सी होती है अगले दिन अच्छा काम करने की। ठीक उसी तरीके से यदि हम योग अभ्यास से जुड़ेंगे तो हम स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और हम अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों को स्वस्थ रख पाने में कामयाब होंगे। इसलिए दोस्तों कल हम फिर मिलेंगे एक नए योग आसन के साथ, एक नए योग आसन के साथ जुड़े हुए नए शब्द के साथ। अभी हम सब मिलकर योग आसन तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन जरूर करेंगे यानी कि ध्यान योग। सभी से एक बार फिर से करें योग, रहें निरोग। आइए अब हम बताने जा रहे हैं आपको कपालभाति प्राणायाम के कुछ प्रमुख फायदे, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। तो सबसे पहले कपालभाति के शारीरिक लाभों की ओर चलते हैं। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, एलर्जी में ये लाभ देता है। रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करता है। मोटापा नियंत्रित करता है और पेट की चर्बी घटाने में भी यह सहायक सिद्ध होता है। लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने में यह बहुत ज्यादा मददगार रहता है। शारीरिक लाभों में बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसे हम शुद्ध प्राणायाम भी कहते हैं, यानी कि कपालभाति को हम एक और नाम से जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, शक्तिशाली श्वास क्रिया और शुद्ध प्राणायाम, कपालभाति मोमबत्ती आसन, ऐसे ही कपालभाति के बहुत ही नाम है, लेकिन फायदा एक। दूसरा लाभ की ओर चलते हैं जो कि हमारा है मानसिक लाभ। तनाव, चिंता, डिप्रेशन को कम करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग को ठंडक और शांति प्रदान करता है। मानसिक लाभ में यह आसन प्राणायाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य

से 15 मिनट तक यह आसन किया जा सकता है। तो आइए हमसे फिर मिलेंगे एक नए आसन के फायदे एक नए योग क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय गर्मियाँ प्रचंड रूप में आ गई हैं। कहा जाता है इस गर्मियों में हम अगर अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो अपने आप को किस तरीके से हम महफूज कर पाएंगे। साथ ही साथ ये भी मानना जरूरी है कि अगर हम इन गर्मियों में अपनी और अपने सभी की सुरक्षा करना भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। पानी का त्वचा के लिए कई तरह से उपयोग किया जाता है। नियमित रूप से पानी पीना त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आपकी स्किन के बारे में। हमारी त्वचा एक पतली सी झिल्ली की तरह होती है, जो कि जैसे कहते हैं ना कि अगर एक फूल को हम यूं ही तोड़ करके रख देते हैं तो वो अमूमन एक से दो दिन सही सलामत रहता है, लेकिन उसके बाद वो मुरझाने लगता है। उसकी पत्तियाँ अलग अलग होने लगती हैं, पत्तियों में सिलवट सी आने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि अंकुरित बीज भी बिना पानी के यूं ही खराब हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारी स्किन की जो पतली झिल्ली होती है वो भी पानी से निर्मित बनी होती है। पानी हमारी स्किन के लिए इतना उपयोगी होता है जैसे एक मछली जल में रहती है और अगर उसे बाहर निकाल दिया जाए तो वह मर जाती है। पानी हमारे शरीर के लिए ही नहीं जबकि हमारी स्किन के लिए हमारी कोशिकाओं के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक दिन पानी ना पिए और उसके बाद अगर हम पानी को उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी स्किन में एक कालापन सा आने लगा है, एक मुरझाहट सी आने लगी है। त्वचा में एक निखार जो हमारा एक दिन पहले बना होता है ठीक बिल्कुल वैसे ही जर से नीचे हो जाता है। उसका कारण आपको पता है? क्योंकि पानी हमारे लिए स्किन में हाइड्रेट का काम करता है। जैसे पौधों में पत्तियों में एक पानी की अगर हम छिनकार भी कर देते हैं तो फिर से वो जीवित हो उठते हैं, ठीक वैसे ही हमारी स्किन में पानी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। आपने कभी देखा है कि जब हम पानी से अपना मुंह धुलते हैं तो हमारा चेहरा पहले से खिल उठता है, ठीक वैसे ही एक अगर पौधे की हम जांच पर रख करें तो मैं आपको परीक्षण बताती हूँ। अगर आपने एक पौधा यानी कि एक फूल आप कहीं से लेकर के आए हैं और आपको चाहिए कि यह सुबह तक मुरझाए नहीं, आपने एक गिलास लिया जिसमें वो डंठल सहित उस गिलास में डाल के आपने रखा। बचपन में ये परीक्षण हम लोगों ने बहुत किया है लेकिन आज इस परीक्षण को हम अपनी त्वचा से तुलना करके बताते हैं। और दूसरे गिलास में सिर्फ और सिर्फ आपने वो फूल रख दिया है, सुबह उठते ही आपने यह परीक्षण देखा कि जिसमें जो डंडी पानी में पूरी रात थी वह ऊपर ही ऊपर उसका फूल खिला हुआ मिलता है, लेकिन जिस गिलास में पानी नहीं था वह फूल बिल्कुल मुरझाया हुआ रहता है। ठीक वैसे ही हमारी स्किन में यदि पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में नहीं होता है तो हमारी स्किन की सभी कोशिकाएं मृत होती जाती हैं। फिर हम उसके बाद जितनी भी कॉस्मेटिक की क्रीम लगा लें, महंगी महंगे फेशियल या कई चीजों का उपयोग क्यों ना कर लें, पानी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। आप सोच रहे होंगे कि आज योगिनी समता ने ये टॉपिक क्यों उठाया है, तो मैं आपको बता दूं कि अमूमन सभी को इसकी जरूरत पड़ती है। हम कहीं ना कहीं छुट्टियों में बाहर घूमने जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन के लिए मैं कहीं बाहर गई और पानी की कमी को महसूस किया। शाम होते होते मेरी स्किन पे वो कमी दिखने लगी। पानी, क्योंकि हम इधर उधर दौड़ धूप में घूमने फिरने में पानी की मात्रा हमने कम कर दी। शाम तक देखे तो हमारा चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। फिर हमने पानी पीना शुरू किया और उसके बाद में दूसरे दिन सुबह हमारा जैसा चेहरा था वैसा ही हो गया। फिर मैंने ये परीक्षण किया कि आपने देखा कि एक दिन आधे दिन यदि आपने पानी नहीं पिया है तो आपका चेहरा किस तरीके से मुरझा सकता है। चेहरे की कई कोशिकाएं होती हैं, कई नस नाड़ियां होती हैं, जिसमें हमें पानी को पहुंचाना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक वैसे ही सर्दियों में हम पानी की मात्रा को कम कर देते हैं। बहुत सारे लोगों की मात्रा वही बनी रहती है लेकिन काफी लोग सर्दियों में पानी कम पीते हैं, लेकिन

हम गर्मियों में पूर्ण रूप से मात्रा पानी की बना लें, तो हमें वही गर्मियों में पानी की मात्रा हमारे चेहरे के लिए, हमारी स्किन के लिए पर्याप्त हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने कंगारू और ऊंट के बारे में जानते होंगे, वह अपने अंदर पानी का एक स्टोर कर लेता है ताकि कई घंटों तक पैदल चलने तक उसे प्यास भी नहीं लगती है और वह पानी उसे थोड़ी थोड़ी देर में पर्याप्त होता रहता है। कंगारू के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि वह अपना बच्चा पेट के नीचे झिल्ली में हमेशा से बचाए रखता है, बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी, लेकिन वह बच्चा उसके पेट के निचले हिस्से में बिल्कुल महफूज रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमारी जो ये एक महफूज जगह है, उसे वहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। स्किन और पानी का भी कुछ ऐसा ही तालमेल है। यदि स्किन को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो पानी की प्रचुर मात्रा को हम अपने आप में बरकरार रख सकते हैं। तो आइए, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, जिससे त्वचा की लोच और चमक बढ़ती है। इसके अलावा पानी चेहरे पर होने वाले धब्बे, झुर्रियां, फाइन लाइंस को कम करने में मदद करता है। पानी पीने के लिए त्वचा के जो लाभ हैं, आइए हम उस पे भी बता देते हैं। हाइड्रेशन, सभी को पता है कि स्किन को हाइड्रेट करने के लिए गर्मियों में बहुत सारे ऐसे फल आते हैं जो हम खाते हैं और जिससे हमारी स्किन भी हाइड्रेट रहती है। कारण जानते हैं क्यों? बताती हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपने खीरा खाया, उसमें भी पानी की प्रचुर मात्रा होती है। खरबूजा खाया, उसमें भी पानी की प्रचुर मात्रा होती है। तरबूज को खाया, उसमें भी पानी की प्रचुर मात्रा होती है। साथ ही साथ यदि हम लीची का सेवन करते हैं, उसमें भी मिठास के साथ साथ पानी प्रचुर मात्रा में होता है। क्यों कहा जाता है कि गर्मियों में खीरे का सेवन ज्यादा करना चाहिए? क्योंकि जो लोग पानी को कम पीते हैं, यह पानी की कमी को पूरा कर देता है और हमारी त्वचा में फिर से वह निखार और एक नयापन सा दिखने लगता है, जिसे हम हाइड्रेट कहते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना त्वचा को हाइड्रेट रखता है, जिससे त्वचा में एक नमी बनी रहती है। लोच, पानी त्वचा की लोच को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे त्वचा जवान और तरोताजा दिखती है। पानी त्वचा को नमी प्रदान करके झुर्रियों और फाइन लाइंस को कम करता है, जिन्होंने पानी को अपने जीवन का एक आधार माना है। यानी कि एक दिन में, हम गर्मियों में तो ये नहीं कह सकते हैं कि 10-12 ग्लास से ज्यादा ही हो जाता है, पानी की मात्रा को बढ़ाते रहना चाहिए। पानी शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे चेहरे पर दाग धब्बों और पिंपल्स की संभावना कम हो जाती है। पानी पीने से त्वचा को अंदर से पोषण मिलता है, जिससे त्वचा में चमक आती है। पानी पीने में आपको कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर जिसको भी अपनी स्किन पर ग्लो चाहिए, एक पोषक तत्व का ग्लो, यानी अंदर से ग्लो, जिससे आपकी सही उम्र भी पता करने के लिए लोगों को ढूंढते रहना पड़ेगा, तो पानी की मात्रा को बढ़ा देना ही आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। पानी त्वचा में सूजन को कम करने में मदद करता है। पानी त्वचा की हीलिंग प्रक्रिया को तेज करता है, खासकर टैनिंग, सनबर्न के मामले में। बहुत सारी विमेंस को देखा होगा कि स्किन में सनबर्न हो जाता है, टैनिंग हो जाती है। ये उनमें अधिकतर ज्यादातर इसलिए पाई जाती है जो लोग पानी को कम मात्रा में लेते हैं। पोर्स, यानी कि पानी छिद्रों को छोटा करने में मदद करता है, जिससे वो बंद होने पर दाने निकलने की संभावना हो जाती है और जिससे पिंपल्स हो जाते हैं। तो पानी अगर हम प्रचुर मात्रा में लेंगे तो रोम छिद्रों को छोटा कर देता है, जिससे दाने कम निकलते हैं। पानी के अलावा त्वचा के लिए अन्य तरीकों से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चेहरे पर बर्फ का पानी। बर्फ के पानी से चेहरा धोने से त्वचा में चमक आती है और डार्क सर्कल्स कम होते हैं। चावल का पानी, जौ का पानी, धनिये और बीज का पानी, गुनगुना पानी। तो आपने इसी तरीके से सुना कि पानी हमारे चेहरे के कोशिकाओं के लिए ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए हमेशा से यह सलाह दी जाती है कि 8 से 10 ग्लास पानी पीना जरूरी होता है। हालांकि पानी की मात्रा
व्यक्ति की जरूरत और गतिविधि पर स्तर काम करता है। यदि कोई हार्ड वर्क पे है तो पानी 12-13 ग्लास 14 ग्लास भी हम पी सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन अधिक मात्रा में पानी पीने से शरीर को नुकसान भी हो सकता है। अमूमन एक महिला को गर्मियों में 13-14 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक वही पुरुषों में भी 15 के अंदर ही पुरुषों को ये पानी लेना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से पानी हमारी स्किन के लिए इतना ज्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ एक छोटा सा उपयोग बता रही हूँ, जो कि हम लोगों ने हमेशा से देखा है कि एज फैक्टर होने के कारण से फाइन लाइंस हो जाती हैं। हमारा चेहरा ग्लो तो करता है, लेकिन वो पिचक सा जाता है। जो गाल अगर भरे नहीं होते हैं तो वो भी दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। पानी की मात्रा के साथ साथ आज एक छोटा सा उपयोग जो हम सभी मिलकर के अगर करेंगे तो हमारी स्किन और हमारा फेस बहुत ही प्यारा सा लगने लगता है। पानी को हम मुंह में भर लेंगे, जैसे हम कुल्ला करते हैं, तो जितना भी पानी आप मुंह में भर सकते हैं पूरा मुंह में भरें और उसको मुंह में फुला करके रखें। यानी कि पानी को कुल्ला करके फेंकना नहीं है, पानी को मुंह में भर के रखना है और जितनी देर

अंधेरों से उजालों की ओर, भटकाव से सत्य की ओर और भ्रम से ज्ञान की ओर ले जाने वाली ये है पहली किरण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। और आज की इस पावन सुबह में हम बात करेंगे उस संत की जिसने शब्दों से नहीं बल्कि सच्चाई से दुनिया को आईना दिखाया, जिनकी वाणी में सरलता थी पर अर्थ गहरे, जिनके दोहों में जीवन का सार छुपा है। जी हाँ, आज की पहली किरण समर्पित है संत कबीरदास जी को। कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये कहते हैं कबीरदास जी। तो दोस्तों, आज की सुबह हम खुद से मिलने की कोशिश करेंगे, कबीर की नज़र से दुनिया को समझेंगे और अपने भीतर छुपे सत्य को पहचानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं, ये है आत्मा जो जगाने वाली है आपकी, हमारी, हम सबके भीतर की वो किरण जो कहलाती है पहली किरण।

संत कबीर दास जी का जन्म 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु मानी जाती है 1518 में, यानी कि 15वीं सदी के एक महान भारतीय कवि, रहस्यवादी और समाज सुधारक थे हमारे कबीर दास जी। इन्होंने निर्गुण राम की भक्ति पर जोर दिया और जाति भेद, अंधविश्वास व आडंबरों का कड़ा विरोध किया। उनकी रचनाएं साखी, सबद और रमैनी, जो कि एक पुस्तक का जब उसको रूप दिया गया और नाम रखा गया बीजक, मुख्य रूप से सधुक्कड़ी भाषा में है, जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा का हिस्सा है। इनके जन्म की बात की जाए तो माना जाता है 1398 में काशी के वाराणसी में इनका जन्म हुआ, लहरतारा तालाब के पास। जुलाहा दाम्पत्य नीरू और नीमा द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे और मगहर में 1518 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। और अगर इनके भाषा शैली की बात करें तो मुख्य रूप से इन्होंने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं के लिए, और साथ ही साथ अवधी, पंचमेल, खिचड़ी, बोलचाल की भाषा को इन्होंने अपनाया है। चलिए इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हीं के द्वारा रचित एक निर्गुण सुनते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण भोरे भोरे की सुबह की, और उसमें आज हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी की। तो इनकी अगर सिद्धांत और शिक्षाओं की बात करें तो ये निराकार ईश्वर को मानते थे, यानी निर्गुण भक्ति करते थे। कबीर ईश्वर को निर्गुण मानते थे जो हर कण में व्याप्त है, ना कि केवल मंदिर या मस्जिद में। और इसके साथ में उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और धर्म के नाम पर पाखंड का कड़ा विरोध किया। कबीर ने प्रेम, भाईचारे और सादगीपूर्ण जीवन पर जोर दिया। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया। कबीर जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं जिनके अलग अलग रूप हैं। अगर मैं ज्ञान की महत्ता की बात करूं तो इनकी एक रचना है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी सज्जन की जाति नहीं उसका ज्ञान देखना चाहिए, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इसी प्रकार इन्होंने जब प्रेम पर अपनी पंक्ति दी तो वो कुछ इस प्रकार थी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। किताबें पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बनता, जो प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ ले वही सच्चा ज्ञानी है। और सच में अगर आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में प्रेम है ना, तो उससे आप सब कुछ सरल बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ज्ञान इनकी पिटारी से ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कबीर दास जी की। तो कबीर दास जी ने ज्ञान प्रेम के अतिरिक्त और भी कई सारे विषयों पर अपनी बातें कही हैं। उनमें से एक और है, जी हाँ, हम सभी इंसान हैं ना, और इंसानों में सबसे बड़ी कमी पाई जाती है आचरण को लेके। तो आचरण के बारे में कबीर दास जी का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब मैंने दूसरों में बुराई खोजी तो कोई नहीं मिली, लेकिन जब मैं खुद के अंदर झांकने को चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं दिखा। और ये बिल्कुल सत्य है। कहते हैं ना कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उससे पहले चार उंगली हम पे खुद पे उठती है। तो बिल्कुल सही कहा हमारे कबीर दास जी ने। और किसी को कुछ भी कहने से पहले हमें खुद के अंदर झांक के जरूर देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने सादगी का महत्व बताया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं जिससे किसी का भला ना हो सके। बिल्कुल, अगर आप बड़े हैं और अगर आप बड़े बनते हैं तो सच में बड़ा वही होता है जिसका हृदय विशाल हो, जिसकी सोच विशाल हो, जो दूसरों का भला करना जानता हो। चलिए फिलहाल के लिए एक निर्गुण सुन लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कबीरदास जी की, और इनका कहना है कि धर्म हमें जोड़ने के लिए बना है, लेकिन जब वही धर्म हमें बांटने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम धर्म नहीं अहंकार निभा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तोहे। यानी अंत में सब एक ही मिट्टी में मिल जाना है, फिर ये ऊंचा नीचा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किस बात का, सोचने की बात है। तो आप सोचिए, तब तक हम सुन के आते हैं प्यारा सा निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आप शो सुन रहे हैं पहली किरण। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानसली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जी हाँ, आपके अपने भक्तिमय कार्यक्रम में, वो हैं कबीर दास जी। और कबीर दास जी की अगर मैं बात करूं तो उनके हर एक पहलू पे जिंदगी के बड़े ही चर्चे हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय और मुद्दा रहा है इनके जीवन का, वो थी इनकी मृत्यु। वो क्या थी, चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। और ये कहानी कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना पर आधारित कहानी है। जी हाँ दोस्तों, संत कबीर दास जी ने पूरी जिंदगी एक ही बात सिखाई, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। लेकिन जब उनके अपने जीवन का अंतिम समय आया तो वही समाज जिसे उन्होंने जोड़ा था दो हिस्सों में बट गया। कहानी कुछ यूं है कि जब कबीर जी ने अपने प्राण त्यागे तो हिंदू अनुयायी बोले, हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। और मुसलमान अनुयायी कहने लगे, नहीं, उन्हें दफनाया जाएगा इस्लामी तरीके से। बहस बढ़ने लगी, विवाद गहरा होने लगा। और वो संत जिसने जीवन भर भेद मिटाने की कोशिश की, उसके जाने के बाद भी भेद सामने खड़ा था। तभी एक चमत्कार हुआ। चमत्कार, वो चमत्कार आप विश्वास भी नहीं करेंगे। चलिए बताते हैं क्या हुआ। जब चादर हटाई गई तो वहाँ शरीर था ही नहीं, सिर्फ फूल का ढेर था। दोनों पक्ष शांत हो गए और समझ गए कि कबीर का अंतिम संदेश क्या था। फिर क्या हुआ, आधे फूल हिंदुओं ने लिए और आधे मुसलमान भाइयों ने, और दोनों ने अपने अपने तरीके से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, कबीर जी ने जाते जाते भी यही सिखाया कि हम चाहे किसी भी धर्म से जन्म लें, लेकिन अंत में हम सब एक ही सच्चाई के हिस्से हैं। वो शरीर नहीं, विचार बनकर जीना चाहते थे, और शायद इसलिए वो फूल बनकर खुशबू बन गए।

दोस्तों, कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोध में हमेशा आपको दिख जाएंगे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महान कवि थे। इनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ के भीतर पाई गईं। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक

राई की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों में उनका अनुसरण पाया जाता है। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें मस्त मौला कहा। क्षिति मोहन सेन जी ने कबीर साहिब द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ बताए हैं। पहला कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी साखियों के माध्यम से सुरता यानी आत्म को यानी आत्मा को और परमात्मा को समझाने का प्रयास किया है। कबीर बीजक, कबीर की वाणी का संग्रह। उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से सन 1464 में किया। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के 3 भाग हैं, जो कि है रमायणी यानी रामायण, चौपाई और दोहे का पद जो कि लिखित है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में, सबद ये गेय पद है जो कि ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में ही रचित है, साखी यानी साक्षी पद जो कि दोहों में रचित है और इसकी भाषा की अगर बात करें तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। इसके अतिरिक्त कबीर शब्दावली। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। अगला है कबीर दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहिब जी के दोहे सम्मिलित हैं। कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद व दोहे दोनों सम्मिलित हैं। कबीर सागर ये सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। दोस्तों, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखित किया गया यानी संग्रहित किया गया। उनके दो शिष्यों भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे शामिल हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। क्षिति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्र किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया और कबीर की वाणी को विश्व पटल पर ले गए। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे हैं। वाकई बहुत महान हस्ती थी कबीर साहब। आइए चलते हैं इन्हीं के एक और निर्गुण की ओर।

जी हाँ दोस्तों, कबीर साहिब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहिब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान हैं। इनका अंदाज और इस बात का अंदाज़ा अगर आपको लगाना है तो उनके दोहों से आपको साफ साफ लग सकता है। जैसे मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। और कई दफ़ा तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये ईश्वर के अवतार थे। आप इस बात का अनुमान इनकी मृत्यु की कहानी से बेशक लगा सकते हैं। अगर चमत्कार है नहीं, अगर वो ईश्वर थे नहीं, तो फिर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे? आपके समस्त विचारों में राम नाम यानी पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम देखा जाता है और इसकी महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। वे कहते हैं हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरि जननी मैं बालक तोरा, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहिब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना एक तारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वे आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहिब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव और संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहिब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहार, वाते तो चाकी भली पी सिखाए संसार, माया पापड़ी सब जग तो फांधे पड़िया गया कबीरा काटी। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो पापिनी माया फंदा लेकर बाजार में आ बैठी है ना, इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर उसे काटकर साफ बाहर निकल आए हैं। हरि भक्ति पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है, ऐसा इनका मानना है। चलिए फिर एक और निर्गुण की ओर आगे बढ़ते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं भोरी भोरी का भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, और अब बारी है उन प्रसिद्ध दोहों की जिससे चलते चलते हम कुछ ज्ञान लेके चलेंगे। वाकई बहुत कुछ है जो हम अपने जीवन में अगर कबीर दास जी के जीवन से उतार लें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और वाकई जीने लायक हो जाएगा। चलिए चलते हैं उन दोहों की ओर जो आज भी उतना ही जीवंत है जब ये लिखित हुआ था। कबीर हार चाम लहू न मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा शरीर हड्डी और मांस का बना नहीं है, जिसको मेरे द्वारा दिया गया सतनाम और सार नाम प्राप्त है वो मेरे इस भेद को जानता है। मैं ही सबका मोक्षदायक हूँ तथा मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण घर दिया न बाती। यदि एक मनुष्य अपने एक पुत्र से वंश की बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। जैसे लंका के राजा रावण के 1,00,000 पुत्र और 1,25,000 नाती थे, वर्तमान में उसके कुल वंश यानी उसके वंशजों की अगर बात करें तो उसमें कोई भी उसके घर में इस वक्त दीप जलाने के लिए भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से तू ये क्या मांगता है जो स्थाई है ही नहीं। है ना कितनी गहरी और सच्ची बात।

कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर कबीरदास जी अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो लेकर घूमते हैं पर उनके मन का भाव कभी नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेर कर कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ ताकि जीवन सरल हो सके। इसके अतिरिक्त मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डारी। परमा

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

गोवापस से आपका वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आज 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त आ गया है, यानी वो तारीख वो दिन जब हम कल की यादों में अभी कहीं ना कहीं खोए हुए हैं और थोड़ा सा सुरूर जो है वो हमारा कल का अभी भी चढ़ा हुआ है। खैर, ये तो चढ़ा रहना चाहिए क्योंकि भाई आपने कल लड्डू भी तो खाया होगा, राइट? तो चलिए, फिलहाल आज बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपके संडे स्पेशल शो में करनी है। सो ये बहुत अच्छा मौका है, और साथ ही उनके लिए जिनका कल छुट्टी थी और आज तो है ही,

0: भविष्य को देखकर तो व्यापार होता है, भविष्य को देखकर तो व्यापार होता है, प्रेम नहीं होता। भविष्य को देखकर तो व्यापार होता है, प्रेम नहीं होता है। ये पता है क्या है? ये है आज का थॉट ऑफ द डे।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई चलिए आपको लेके चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहना चाह रहा है। दरअसल आज का थॉट कह रहा है कि भविष्य को देखकर तो व्यापार होता है, प्रेम नहीं होता। ऐसा कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। ऐसा क्यों कह रहा है? हम तो अक्सर ये सोचते हैं कि भाई अगर आगे कुछ ना मिला तो फिर क्या होगा और इसका भविष्य क्या है। सबसे पहले तो हमसे ये पूछा जाता है हमारे आसपास के लोगों के जरिए कि इसका भविष्य क्या है, राइट? सो मुझे लगता है कि ये जो आज का थॉट ऑफ द डे है वो बहुत ही क्लीनली डिफाइन कर रहा है कि व्यापार में तो देखा जाता है कि भाई इसका भविष्य क्या है, ये मार्केट में कितना चलेगा, ये कितना ग्रो करेगा, ये कितना आपको बेनिफिट देगा, इसके अंदर कितने रिस्क हैं, कितने चैलेंजेस आने वाले हैं, ये सब कुछ। लेकिन जब बात प्रेम की आती है तो वहाँ पर कल नहीं देखा जाता, अभी और आज देखा जाता है, जो महसूस हो रहा होता है वो देखा जाता है। और यही कहना है आज के इस थॉट ऑफ द डे का। सो आज का थॉट ऑफ द डे हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि भविष्य को देखकर तो व्यापार होता है, प्रेम नहीं होता। सो भाई सीधी सी बात है कि प्रेम की जो बात है वो भविष्य पर टिकी नहीं है, वो आज में है और अभी में है। और जिंदगी कहाँ है? एब्सोल्युटली राइट, आज में है और अभी में है। सो इसीलिए कहते हैं कि जो प्रेम है ये जिंदगी को जिंदा दिली के साथ और जिंदा होने का एहसास कराता रहता है, इसीलिए इतना खास बन जाता है। सो कभी हम दिमाग लगा करके नहीं सोच सकते, कभी हम सोच के कि ऐसा रहेगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा रहेगा तो कैसा रहेगा। जब जिस पल जो चीज, जो शख्स, जो फीलिंग्स आ रही होती है वो नेचुरल होती है आपके लेकर, और आप उसको लेकर के नहीं सोच सकते, और जहां आपने दिमाग लगाना शुरू किया वो फीलिंग्स ही जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप सेंट्रिक हो चुके हैं उन रीजंस की तरफ, उन कारणों की तरफ जो नहीं के लिए कर रहे हैं या तो हाँ के लिए कर रहे हैं। और प्रेम ना हाँ के लिए है ना ना के लिए, वो तो बस अपने आप में है, यही फर्क है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो प्रेम होता है ये भविष्य को देखकर नहीं होता है। जिस पल आप देखिए निकलते हैं और अचानक से अच्छा सा मौसम देखते हैं कि बड़े अच्छे से बादल आ गए हैं, बदली हो गई है, हवाएं चल रही है, कितना एंजॉय करते हैं उस पल को, ऐसे जी लेते हैं जैसे कोई बचपन वापस आ गया, जैसे कितनी खुशी किसी ने दे दी हो। लेकिन जैसे ही उसी पल आप दिमाग लगाते हैं कि अरे हमें वहाँ तक जाना है या शायद इतनी देर तक नहीं होगा जब हमें निकलना होगा थोड़ा दूर के लिए, वैसे ही लगता अरे क्या ही बात होगी, अभी तो मौसम फिर चेंज ही हो जाएगा। सो वो मज़ा जो आ रहा था मौसम का फील करने में वो ख़त्म हो चुका होता है। तो इसलिए फीलिंग्स जो है स्पेशली प्रेम की, वो उसी क्षण है, उसी लम्हे में है, व्यापार की तरह नहीं हो सकता है कि भविष्य को देखकर तब तय किया जाए। चलिए संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे है और आपको बताना है कि इस थॉट को सुनने के बाद आपका क्या है मानना और आप इस थॉट से कितना मुतासर हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं अपने मॉर्निंग चौक आरजे अदनान को। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और ये सॉन्ग आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।

0: सुहान जी, और एक बार वापस से आपका इसी पल में, आज ही के वक्त, इसी शो में वेलकम करते हैं। मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite आरजे अदनान।

हाँ जी, तो सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है वो आशु जी का आ रहा है लखनऊ से। सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी। चमकती सुबह की प्यारी सी किरण हो, फूलों की खुशबू संग एक मधुर पवन हो, आपकी इस दुनिया में खुशियां ही खुशियां हो, आपका दिन शुभ और उज्जवल हो। क्या बात है, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग स्पेशल शो में। इसके बाद प्रीति जी हैं हमारी बहराइच से, लिखा है सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। साथ ही आपने थॉट को लेकर लिखा है कि ट्रुथफुल थॉट, प्रेम तो अनमोल होता है, प्रेम का कोई मोल नहीं, जो करे प्रेम का मोल वो इंसान कहलाने योग्य नहीं। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत खूब लिखा है आपने। पूर्णिमा लिखती हैं संडे वाला गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग टू यू, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप भी ज़रूर अच्छी होंगी और आपको भी संडे मुबारक। महेंद्र देवन है फ्रॉम राजस्थान, गुड मॉर्निंग अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू महेंद्र, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आशु जी हमारी लिखती हैं कि प्रेम सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा है, क्योंकि जहां विश्वास, सम्मान, समर्पण हो, वहीं सच्चा प्रेम जन्म लेता है। वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको थॉट पसंद आया। पूर्णिमा लिखती हैं हर एक पल वो दिल से महसूस हो जाए, समझ लो उसी पल आपको प्यार हो जाए। बहुत ही प्यारा थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और आपने लिखा है, थैंक यू सो मच आरजे अदनान सर हम सभी की मॉर्निंग को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। सॉन्ग्स बता रहे हैं संडे बहुत बहुत अच्छा होने वाला, ओ वाह क्या बात है। सो फिलहाल सॉन्ग्स ने इशारा कर दिया है कि संडे किस डायरेक्शन में जाने वाला है, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते भी ये थे कि भाई कहीं ना कहीं आप इस बात को महसूस करें कि आपका ये संडे स्पेशल आपको किधर ले जाने वाला है और क्या कुछ होने वाला है, ये आप ज़रूर इस बात से समझ लें। फिलहाल जाहिर सी बात है संडे की वाइब है वो तो मिलने ही वाली है, और आपसे बातचीत 10 से 11 गायका गोंडा विद आरजे अदनान में भी होने ही वाली है। सो ये सब कुछ तो चलने वाला है, तो क्यों ना भाई, क्यों ना ये दिन ख़ास बने और क्यों ना हम इन चीज़ों को एंजॉय कर लें, है ना। सो फिलहाल चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रहने वाला है और कई सारी बातें हैं जो आपसे हम करने वाले हैं आपके ही अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। सो अभी फ़िलहाल वक्त हो गया है आपको ले चलने का म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो आने के बाद अभी कई सारी बातें हैं जो आपसे कहनी है और बहुत कुछ है जो आपको बताना है, क्योंकि बिना बताए भाई हमको भी चैन है नाता नहीं है, सीधी सी बात है। सो फिलहाल लेकर चल रहे हैं आपको अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, और आपने ट्यून कर लिया है चूँकि गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

79 साल पहले आज ही के दिन, जस्ट एक दिन पहले 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। और आज 80 साल के बाद में भी ऐसी कई सारी कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, जिनका हम नाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं, उसके कई सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल भी करते हैं। सो क्या आपको पता है कि आज़ादी से पहले वो कौन कौन से इंडियन ब्रांड्स थे जो आज भी मार्केट में हैं और चल रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं हम यूज़ कर रहे हैं? जी हाँ, ऐसी कुछ कंपनीज़ जो आज़ादी से पहले से मौजूद हैं और आज उनको हम कहीं ना कहीं उनका कंजम्पशन कर रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं, और आज भी ये कंपनीज़ चल रही है और ये इंडियन कंपनीज़ है। जी हाँ, मेन चीज़ ये कि भाई ये इंडियन कंपनीज़ है, एक ऐसे ब्रांड जो भारतीय हैं और आज़ादी से पहले से ही मौजूद हैं, चूँकि आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को और ये ब्रांड्स इस डेट से पहले से ही मौजूद है। अगर आपको भी है कोई अंदाज़ा तो चलिए फटाफट से आप भी कमेंट करके बताइए कि आखिर कौन कौन से ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं जो आज भी हैं और आज़ादी से पहले से ही एस्टैब्लिश्ड हैं।

0: सो भाई देखिए, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं अभी भी जो आज़ादी से पहले से ही है, और ये ब्रांड्स आज भी मार्केट में है। सो कौन कौन से ब्रांड्स हैं आप ये नहीं जाना चाहेंगे? डेफिनेटली आप जाना चाहेंगे, और ऑफ कोर्स हम बताना चाहेंगे। सो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंडियन ब्रांड्स हैं जो 15 अगस्त 1947 से पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं और आज भी मौजूद हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.

हाँ जी, तो आज़ादी से पहले से मौजूद है, जिसमें है पहला नाम डाबर का। अब आप कहेंगे ओ माय गॉड, डाबर, जी हाँ, जिसका हो सकता हो आप पेस्ट यूज़ करते हो, जिसका हो सकता आप शहद यूज़ करते हो, या फिर कोई और प्रोडक्ट। दरअसल ये इस्टेब्लिश हुआ है 1884 में। अब ज़रा सोचिए कि आज़ादी से भी कितने साल पहले ये इस्टेब्लिश हुआ है, और आज है 2026, और कहाँ ये इस्टेब्लिश हुआ 1884 में, यानी 1884। सो डाबर काफ़ी पहले का है, और आज भी डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा नाम आता है गोदरेज का। अब आप कहेंगे ओ गोदरेज भी, जी हाँ, गोदरेज भी इसी फहरिस्त में शामिल है। दरअसल गोदरेज जब इस्टेब्लिश हुई तो वो ईयर था 1897। अब ज़रा सोचिए कि आज़ादी से कितना पुराना गोदरेज भी एग्जिस्ट कर रहा, और आज भी गोदरेज की अलमीरा हो या गोदरेज का हेयर कलर्स हो या और कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट, हम आज भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई एक नाम तो हम सभी को पता है, वो है टाटा ग्रुप। सो टाटा ग्रुप जो इस्टेब्लिश हुआ वो 1868 में हुआ, यानी 1868 में, और आज भी टाटा का नमक से लेकर के टाटा की बसेस और कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर में भी हम टाटा के कई सारे प्रोडक्ट्स को देखते हैं और कहीं ना कहीं उनका कंजम्पशन भी करते हैं। इसके बाद नाम आता है ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया भी आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, स्पेशली जो

कहीं ना कहीं बिस्किट खाए होंगे ब्रिटानिया का। यस ऑफ कोर्स, तो ये एस्टैब्लिश हुई थी 1892 में, यानी 1892 में, और आज भी ब्रिटानिया एक ऐसा ब्रांड है जिसके कई सारे बिस्किट्स और उसके टेस्ट्स का कोई जवाब नहीं है, राइट? पार्ले जी, जी फॉर जीनियस, यस ऑफ कोर्स। और ये एस्टैब्लिश हुई थी 1929 में, और आज भी पार्ले के कई सारे बिस्किट्स, कई सारी तरह की अलग अलग दाल मोठ और बहुत सारे फूड यानी ईडेबल आइटम्स हम लोग मार्केट में देखते हैं, और पार्ले के आज भी कई सारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। इसके अलावा अगला ब्रांड है, वो है अमूल, AMUL, अमूल, और ये इस्टेब्लिश हुआ जस्ट एक साल पहले 1946 में, यानी 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली उससे जस्ट एक साल पहले इस्टेब्लिश हुआ अमूल, और अमूल आज भी बहुत लोगों के घरों तक आज भी पहुंच बनाए हुए है। इसके अलावा नाम आता है बजाज का, ऑफ कोर्स जिन्होंने घूमा है चेतक से वो जानते हैं बजाज को। सो बजाज जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 1926 में हुई थी, यानी 1926 में बजाज कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, और आज भी बजाज की कई सारी गाड़ियां जो है वो लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसके अलावा नाम एक बहुत पुराना है, शायद आप सुनकर के चौंके, और वो है हल्दीराम्स। जी हाँ, हल्दीराम आज का नहीं है बल्कि 1937 का है, यानी 1937 का है, और आज भी आपको भुजिया खानी होती है तो आप सबसे पहले प्रेफर करते हैं हल्दीराम्स। सो हल्दीराम्स कोई आज का प्रोडक्ट नहीं है, कोई आज की चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी है। इसके अलावा एक नाम और आपको हैरान करने वाला है, वो है वाडीलाल। अब आप सोचेंगे अरे वाडीलाल तो बिल्कुल नया लगता है, लेकिन दरअसल मित्र ये 1907 में आया था, यानी 1907 में आया था। सो ये आज भी वाडीलाल आइसक्रीम जो है वो हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और वाडीलाल के कई और प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में मौजूद है। सो देखिए ना कितने सारे ब्रांड्स होंगे, चाहे वाडीलाल हो, हल्दीराम्स हो, बजाज हो, अमूल हो, पार्ले हो, ब्रिटानिया हो, टाटा हो, गोदरेज हो, डाबर हो, ये सारे भारतीय ब्रांड्स हैं और ये बहुत पहले से ही मौजूद हैं, यानी आज़ादी के काफ़ी साल पहले से ही इस्टेब्लिश्ड हैं, और आज भी 2026 में भी इनके कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इनका इस्तेमाल आम पब्लिक के ज़रिए काफ़ी हद तक किया जा रहा है, और काफ़ी घरों की, काफ़ी लोगों की पहली पसंद हैं ये ब्रांड्स अपने अपने सेक्टर्स में। सो आप किस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, या इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ आप करते हैं इनके प्रोडक्ट्स का? चलिए अगर आप समझते हैं, जानते हैं, तो आप बता भी सकते हैं। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग चौक RJ।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88 40 98 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: एक ऐसी कोई रोड हो जो कि इंडिया की हो और जहाँ पे आप चले तो ऐसा लगे कि धूप लग ही नहीं पा रही है, इतनी ज़्यादा छाव है, और किसी किसी रात में फूलों से पूरी भर जाए अगर रोड। ज़रा सोचिए जहाँ के घर देख करके आपको लगे कि वाह, ऐसा लग रहा है कि हम आउट ऑफ इंडिया हैं। एक ऐसी जगह जहाँ देख कर लगे भाई शहर हो तो ऐसा हो, कुछ इसी तरह बसाया जाए। ये सब कुछ देख करके आपको मुंबई की एक कॉलोनी है उसको लगने वाला है। अब आप सोचेंगे मुंबई में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पे इतनी हरियाली की बात कर रहे हैं, जबकि मुंबई में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के नाम पर रिहायशी इलाके हैं, पेड़ की तो जगह ही नहीं है कहाँ पे। है ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल है, और ऐसी ही कॉलोनी है और ये सबसे बड़ी कॉलोनी है। आखिर हम बात किस कॉलोनी की कर रहे हैं जो मुंबई में, चलिए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

So, देखिए सीधी सी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कॉलोनी है वो है पारसी कॉलोनी और मुंबई का सबसे हरा भरा इलाका है। जी हाँ, सो दादर पारसी कॉलोनी जो है वो हमें सिखाती है कि शहर कैसे बसाए जाने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब बहुत सारी फैसिलिटी होगी और क्या कुछ, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा विराम दिए इस सोचने को और सुनिए गौर से कि आखिर पारसी कॉलोनी जैसी ही कॉलोनी हम क्यों सोचेंगे बसाने का। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती है ये पारसी कॉलोनी और मुंबई का सबसे अगर कोई ग्रीन एरिया है तो वो यही है। सो दादर पारसी कॉलोनी एक 100 साल पुराना एक जो मैनेजमेंट था उसको दर्शाता है, यानी एक 100 साल पुरानी व्यवस्था है दादर पारसी कॉलोनी। सो ये दरअसल 1800 के दशक के आखिर में मुंबई के ब्यूबोनिक प्लेग फैला था, तो वहाँ पर शहर की तंग और कहीं ना कहीं भीड़ भरी गलियों में जहाँ ना पानी की निकासी थी, ना ही सीवेज था और ना ही धूप थी, वहाँ बीमारी सबसे तेज़ पनपी थी। फिर क्या था, शहर को चौड़ी सड़कों, हरे भरे पेड़ों और खुली रोशनी वाली बस्तियों की ज़रूरत थी। ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़िंदा रहने का सवाल था। और तभी एक इंजीनियर जिनका नाम था मंचरजी एडुजी जोशी ने लड़ करके 100 से ज़्यादा प्लॉट्स जो मध्यम वर्गीय पारसी हैं इनके लिए सेफ कराया था। हालांकि इनके नियम बहुत आसान थे लेकिन बहुत ज़रूरी थे। जैसे 2 मंजिल से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी, हर सड़क पर एक ही तरह के पेड़, जैसे जामे जमशेद रोड पर अशोक के पेड़ और फिरदौसी रोड पर महोगनी। सो मौसम के हिसाब से लगे इन्हीं पेड़ों की वजह से कभी पूरी सड़क जो है वो सुनहरी हो उठती है और कभी एक ही रात में फूलों से पूरी की पूरी रोड भर जाती है। आज यहाँ पर 10,000 पारसी रहते हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी पारसी बस्ती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हर चेहरा यहाँ जाना पहचाना है। यहाँ की इमारतें कहीं आर्ट डेको, कहीं नियो क्लासिकल, जो अपनी सॉसर शेप्ड बालकनी और मज़ेदार बोट्स के लिए मशहूर है, नो पार्किंग या नो कुरियर। इसके अलावा आपको बता दें कि फ्रेडी मार्क्यूरी जो कि प्रसिद्ध रॉक बैंड क्वीन के प्रमुख गायक हैं, इनका जन्म भी मुंबई के दादर पारसी कॉलोनी में ही हुआ था। सो ये सिर्फ विरासत नहीं है बल्कि एक तरह का हम कह सकते हैं कि अनुशासन है। अब यहाँ के लोग जो हैं वो BMC को फ़ोन कर देते हैं अगर एक पत्ता भी गलत जगह पर पड़ा मिले। ज़रा सोचिए, इसी इंडिया में, इसी मुंबई में ऐसी भी कॉलोनी है जहाँ एक पत्ता भी गलत पड़ा मिले तो BMC को सीधे कॉल कर देते हैं। और यही वजह है कि यहाँ की सड़कें अगर आप देखेंगे तो हमेशा चमकती रहती हैं। यहाँ का शहर शोर शराबा थोड़ा सा यहाँ गायब हो जाता है, वक्त धीमा पड़ जाता है और पेड़ जो है धूप को सुनहरी परतों में बांट देते हैं। यहाँ के कैफे अब भी साली चिकन, धार साग और चॉकलेट एक्लेयर परोसते हैं और सब कुछ यहीं के घरों में बना हुआ होता है। बात है 1920 के दशक की, जब मंचराजी जी की बसाई मुंबई की पहली और इकलौती मास्टर प्लान्ड कॉलोनी हमें आज भी सिखा रही है कि सस्टेनेबल लिविंग क्या होता है। और आज भी लोग नियम को मिलकर मानते हैं और एक भी पेड़ काटा नहीं जाता है, यानी इतनी पुरानी व्यवस्था है, इतना आगे आ गया है, लेकिन उनको पता है कि भाई क्या चीज़ों को फॉलो करना है और कैसे करना है। और ये कोई एक शख्स नहीं करता है बल्कि कलेक्टिवली लोग मिल करके करते हैं। सो ये दादर पारसी कॉलोनी जो है मुंबई में है और मुंबई का सबसे हरा भरा, सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड एरिया आपको लगने वाला है और आप जानने वाले हैं कि हाँ, 100 साल पहले जो एक व्यवस्था बसाई गई थी वो आज कितनी रिलेवेंट है और कितनी ज़्यादा अहम है। सो इस मुंबई की दादरी पारसी कॉलोनी के बारे में जान करके आपको कैसा लग रहा है, आप ज़रा अपना बताइए भाई। मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको लग कैसा रहा है मुंबई की इस स्पेशल वाली कॉलोनी के बारे में जानने के बाद। फटाफट से कमेंट करिए और बताइए चैट बॉक्स पर।

0: मैं हूँ साथ तेरे। और देखिए ना, साथ ऐसा कि भाई आपसे निभाने भी हम चले आते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको बता ही दिया जाए कि भाई वक्त हो रहा है इस थोड़ी सी देर में आपको ले चल करके लाइव कॉल इन शो का। सो ऑफ कोर्स जैसे ही टाइम होगा हम आपसे जुड़ जाएंगे। और चलिए फिलहाल आप एंजॉय करते रहिए अपना मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग गोंडा विद मॉर्निंग चौक आरजेएतना।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
0: हाँ जी, और देखिए ना, फिलहाल वक्त हो गया है आपसे बातचीत करने का। और बातचीत करते करते पहले बता दें कि आज है संडे स्पेशल और 10 से 11 गायका गोंडा विद आरजे अदनान, यानी आज आप हमसे बातचीत करने वाले हैं। अच्छा, कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल तो हमेशा हमारे जहन में रहते हैं और अभी भी कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि भाई कल आपने अपने गुड मॉर्निंग गोंडा में और ऑफकोर्स 89.6 FM के अदर शोज़ में भी कई सारे देशभक्ति वाले गाने सुने होंगे, लेकिन सवाल ये कि आपका ऑल टाइम फेवरेट देशभक्ति गाना आखिर कौन सा है जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी के लिए एक ऐसा गाना होता है, हो सकता हो लता जी की आवाज़ में, हो सकता हो रफ़ी साहब की आवाज़ में, हो सकता है अरिजीत की आवाज़ में, हो किसी की भी आवाज़ में हो सकता है, कोई भी गाना हो सकता है, ये आप ज़रूर बनाइएगा। एंड दूसरी बात ये बताइए, अगर अपने गोंडा की बात करें या आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ की ऐसी कौन सी छोटी सी प्रॉब्लम है जिसे अगर हम सब मिल करके ठीक कर दें तो क्या देश सच में आगे बढ़ेगा? अगर ऐसी है कोई प्रॉब्लम तो उस पर भी आप ज़रा प्रकाश डालिएगा। मुझे लगता है कहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल चलते हैं कॉलर की तरफ और देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कॉल पर कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो।
9: हेलो, संडे वाला गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं हमारे श्रोताओं को आप बता दें?
9: सर, पूर्णिमा बोल रहे हैं।
0: पूर्णिमा अभी दिन में कहाँ?
9: हाँ सर, पूर्णिमा बोल रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, आप पूर्णिमा बोल रही हो कि मुझे लगा पूर्णिमा हो गई, वही मैंने कहा इस वक्त
9: नहीं नहीं सर, पूर्णिमा आने वाली है।
0: अच्छा, पूर्णिमा आने वाली कहाँ? यहाँ पे
9: जी, रक्षाबंधन के टाइम पे।
0: अच्छा, रक्षाबंधन के टाइम पे, हमें लगा स्टूडियो आने वाली पूर्णिमा।
9: नहीं, स्टूडियो भी जल्द आ जाएंगे।
0: क्या हाल चाल है आपके?
9: बहुत अच्छे हैं आप बताए केम छो
0: मजा मछे सो मेरा सवाल बहुत ही सिंपल सा है पूर्णिमा, मुझे ये जानना है कि कल बहुत सारे देशभक्ति सॉन्ग आपने गुड मॉर्निंग गोंडा में भी सुने और बाकी शोज में भी सुने होंगे, बट हर किसी का कुछ ऑल टाइम फेवरेट वाला सॉन्ग रहता है, सो क्या है आपका ऑल टाइम देशभक्ति वाला सॉन्ग जिसे सुनते ही आपके अंदर जज्बा जाता है? ऑल टाइम देशभक्ति वाला।
9: ओके, सो जो एआर रहमान सर ने लिखा भी और कंपोज भी किया है कि भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है, ये वाला।
0: क्या बात है, क्या चॉइस है भाई, यार रहमान साहब का लिखा और कंपोस्ट किया हुआ भारत हमको जान से प्यारा, आपको बहुत पसंद आता है?
9: जी बेहद पसंद है, मैं हर इंडिपेंडेंस डे को मैं ये सॉन्ग जरूर सुनती हूँ। मुझे लगता है कि मैं जब तक ये सॉन्ग नहीं सुनती ना सर, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, इसलिए मैं इसको सुनती हूँ।
0: दैट्स वेरी ग्रेट कि यार रहमान साहब आपको फील करा ही देते। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि मोहल्ले की या हमारे इस गोंडा की ऐसी कौन सी समस्या है जिसे अगर हम सब लोग मिल करके सॉल्व करें और ठीक कर दें तो क्या देश सच में आगे बढ़ेगा?
9: बात तो सही है, बात बहुत अच्छी भी है। उसमें से सबसे पहला आता है पानी की निकासी।
0: ओके,
9: हाँ बिल्कुल। जो जैसे गोंडा में कई सारे एरियाज हैं जहाँ पे मैंने पानी को सही से जाते भी नहीं देखा, निकलते भी नहीं देखा, कहीं कीचड़ रहते हैं, कहीं कुछ रहता है। तो एक दो एग्जांपल मैं देना चाहूंगी।
0: बिल्कुल,
9: जैसे एम्स स्कूल के पास अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे बहुत सारी ढलान है, पर खट्टा टाइप का है, वहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है बरसात के टाइम पे।
0: ओके
9: जी, और एक लक्ष्मणपुरी कॉलोनी है, वहाँ पे भी आधे से ज्यादा, वहाँ पे मैंने देखा वायर ऐसे लटके हुए होते हैं, रिक्शा बेचारा जाता है तो वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके जाता है, कई बार तो रिक्शे वाले फंस भी जाते हैं उसके चक्कर में, आगे नहीं जा पाते हैं। तो मुझे भी काफी दिक्कत होती है जब मैं उस साइड जाती हूँ, और सबसे ज्यादा दिक्कत तो पानी की निकासी जो घरों में होती है, तो इधर उधर कहीं ऐसे वैसे करके मतलब किसी भी तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं, सही से पानी जाता नहीं है, तो उसकी समस्या। मुझे लगता है कि अगर साफ सफाई इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि सड़कें अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी, किसी को भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो बाइक हो, फोर व्हीलर हो, ऑटो रिक्शा हो, कोई भी हो।
0: बहुत बेहतरीन और बहुत वाजिब बात आपने कही है, जिस तरह से पानी की निकासी नहीं होती उससे एक प्रॉब्लम नहीं होती, उससे कई सारी बीमारियां बढ़ती है, प्लस एक्सीडेंट्स होने के खतरे हमेशा रहते हैं उस जगह पे।
9: जी, और उसमें से बहुत सारे कचड़े ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि बाहर तो जाने में दिक्कत होती है क्योंकि पानी निकल नहीं पाता, तो गेट से लिया, पॉलिथीन में पैक किया, सड़क पे फेंक दिया। अब वो जो पैदल आ जा रहा है वो तो किसी तरह से निकलने की कोशिश करता है, और वो कहीं ना कहीं, मैंने तो एक दो बार ऐसा देखा था कि केले के छिलके साइड में पड़े हुए हैं, बरसात का टाइम था, पानी भरा हुआ था और ट्रांसफार्मर था बीच में, तो वहां पे वायर लटकी हुई थी और केले का छिलका खड़ा हुआ था। मैं खुद अपनी बात बता, मैं जा रही थी, मैं मतलब गिरने से बची क्योंकि ऑटो से मुझे उतरना पड़ा। जी, तो ऐसी समस्या सबके साथ होती है मुझे लगता है, तो अगर ये दिक्कत खत्म हो जाएगी तो सड़कें अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, और किसी को भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो पैदल हो, चाहे वो किसी अपने साधन से हो, कोई भी व्यक्ति हो।
0: बहुत बहुत बेहतरीन बात आपने कही, एंड थैंक यू सो मच कि इतनी अहम बात आपने रखी कि अगर पानी की निकासी को बेहतर कर लिया जाए तो एक्सीडेंट्स को और बीमारियों को और जो होने वाली असुविधाएं हैं उससे बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच पूर्णिमा कि आपने कॉल किया, और आपका दिन बहुत अच्छा हो, और बहुत ही प्यारे सॉन्ग को आपने बताया कि वो आपको देशभक्ति सॉन्ग्स में से पसंद है।
9: और आपको भी इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, जो कि कल थी
0: आज दिया जा रहा है, बासी
9: आज भी अगर सेलिब्रेट करें तो आज भी है,
0: अगर सेलिब्रेट करें, अरे हम पूरे साल
9: जी बिल्कुल करें। अगर सेलिब्रेट करें तो अपने मन में ही, कोई जरूरी नहीं कि हम सॉन्ग लगा के या दिखा के सेलिब्रेट कर सकते हैं, नहीं, नहीं, नहीं। बेहतर तरीके से करके भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बेशक सही फरमाया आपने
9: जी, और आपने जो मॉर्निंग की शुरुआत की है ना, मेरे लिए तो बहुत ही बेहतरीन रही है। थैंक यू
0: सो मच जोय, थैंक यू पूर्णिमा। ओके, और ये थी पूर्णिमा जिन्होंने हमसे बातचीत किया है, और लगातार भाई कहीं ना कहीं ये बातें सच है कि हम अपने आसपास की ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं और हमेशा उसके बारे में सोचते हैं कि अगर इसको बेहतर कर दिया जाए तो क्या हाल होगा ना, कितना अलग होगा। इसी कड़ी में फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो।
4: हेलो सर, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अपना नाम हमारे लिसनर्स को बता दें आप।
4: सर मेरा नाम रीता पाठक है।
0: जी, और मेरा नाम आरजे अदनान है। कैसी हैं आप?
4: सर आपको कौन नहीं जानता है?
0: आप पड़ोसी हमारे जो बगल वाले के बगल वाले हैं वो नहीं जानते अफ्रीका वाले नहीं जानते, चाइना वाले नहीं जानते, नेपाल वाले नहीं जानते ऑलराइट आप अपना हालचाल बताएं, कैसी हैं आप?
4: बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
0: थैंक यू सो मच, और आपको भी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब जरा आप भी उस गाने के बारे में बताइए जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
4: मेरे वतन के लोगों,
0: ऐ मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर जी की आवाज में, राइट?
4: जी बिल्कुल।
0: क्या बात है,
4: ये गाना सुन लीजिए तो एक अजीब सा एक पूरा एक रोमांच और एक पूरी एक कहानी एक आंखों के सामने तैर जाती है।
0: एग्जैक्टली
4: कि हमको आजादी दिलाने में जिन आंदोलनकारियों ने, क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने, कवियों ने, लेखकों ने, जिनका योगदान रहा है हमें आजादी दिलाने में।
0: बिल्कुल सही आपने कहा कि मतलब ऐसा लगता है कि एक पूरी फिल्म चल गई जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह वो कुर्बानी दे रहे हैं,
4: और उस पे लता मंगेशकर जी की आवाज।
0: ऑफ कोर्स, सही बात है, इतने इमोशंस को लेकर के।
4: जी
0: बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उस वक्त के प्रधानमंत्री भी रो दिए थे आखिर, मतलब ये ऐसे कुछ इमोशंस होते हैं ना कि ऐसे सॉन्ग्स होते हैं, ऐसी आवाज होती है, ऐसा शख्स होता है, ऐसे जज्बात होते हैं कि वो ऑल टाइम फेवरेट हो जाते हैं हम सब लोगों के।
4: जी बिल्कुल।
0: आप आज ही नहीं, 15 अगस्त के दिन नहीं, आप कभी भी सुनिए, कभी भी सुनिए, और थोड़ा इत्मीनान से सुनिए तो डेफिनेटली आप उन चीजों को फील करते हैं।
4: जी
0: बेशक। अच्छा, अब आप बताइए कि भाई आपके मोहल्ले की क्या समस्या है जिसको अगर हम लोग ठीक कर दें मिल करके, और वो क्या आपको लगता है कि इससे फिर देश आगे बढ़ेगा?
4: सर करप्शन
0: मोहल्ले में,
4: करप्शन इज द मेन थिंग।
0: नहीं मोहल्ले की बात कर रहे हैं,
4: मोहल्ले में।
0: हाँ मोहल्ले में कौन करप्शन कर रहा है?
4: मोहल्ले में भी भ्रष्टाचारी फैला है भाई, अगल बगल साफ सफाई का थोड़ा सा नहीं रहता है। अगर मान लीजिए जो सफाई कर्मी है जो वो नहीं आते हैं हफ्ते में या वीकली या मंथ में दो बार आते हैं, तो कम से कम खुद में भी ये चाहिए कि कम से कम अगर हर व्यक्ति अपने ही घर के अगल बगल सामने साफ रखे तो पूरी एक गली साफ हो जाती है।
0: वाओ, बहुत अच्छी बात है आपने कही।
4: कूड़े वगैरह, भाई कूड़े का निस्तारण तो भाई सबसे बड़ी समस्या है। कूड़े भाई कहाँ कोई डाले, हम लोग बाहर डाल देते हैं पॉलिथीन में रख के, तो भी कूड़े वाला आता है, कभी ले गया तो कभी नहीं ले गया, तो कहीं ना कहीं तो उसको डालना ही है। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा सामाजिक जो समस्याएं हैं।
0: बहुत वाजिब बात कही आपने, क्लीननेस की एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में लगातार हम इस शो में भी बोलते रहते हैं। और हमारे
4: आप कहीं भी नजर आप घुमा लीजिए, चाहे गली मोहल्ले हो, सड़कें हो, मेन सड़कें हो, कहीं ना कहीं आपको कूड़े का जमावड़ा मिल ही जाएगा। जहाँ दो चार लोग कूड़ा डालने लगते हैं, सैकड़ों लोग वहीं लाके रखने लगते हैं, फिर वो एक पूरा एक वो बन जाता है, डंप एरिया बन जाता है फिर।
0: सही बात है। अच्छा एक चीज बस मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपको एक दिन के लिए देश का कोई एक छोटा सा नियम बदलना हो या रूल बनाना हो कोई नया, उसका आपको मौका दिया जाए, तो आप सबसे पहले क्या बदलाव करने वाली हैं? छोटा सा
4: शिक्षा के स्तर में बदलाव होना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, चाहे वो उसके ऊपर की चीजें हो।
0: एग्जैक्ट बात बता सकती है एग्जैक्ट क्या करना है?
4: शिक्षा के बदलाव का मतलब ये है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ ऐसे संस्कार भी दिए जाएं जो उनके उज्जवल भविष्य, केवल वो नौकरी ही ना करें अच्छी, जबकि उनके अंदर अच्छे संस्कार भी आएं।
0: मतलब एक अच्छा इंसान बनाने की आप ट्रेनिंग की बात?
4: बिल्कुल, एक अच्छा इंसान बने बच्चा बड़ा होके, उसके अंदर माँ बाप के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने जो भी अगल बगल वाले हैं, पड़ोसी हैं, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके प्रति भी उनके जहन में एक सद्भावना हो। क्योंकि आजकल के क्राइम जो हम लोग देख रहे हैं ना अपने ही घर में या अगल बगल, तो वो सब चीजें सुन के या देख के बिल्कुल मन बिल्कुल सिहर उठता है सर, और मतलब एक जो बिलीव होता है फिर किसी के ऊपर बिलीव करने का मन नहीं करता। अपने इतने आपसी रिश्तों में, अपने घनिष्ठ संबंधों में ऐसी ऐसी वारदातें, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं आजकल कि वो अब कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आप भी इसी सोसाइटी में हैं, हम लोग भी आए दिन न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे देखिए ऐसी ऐसी खबरें आती रहती हैं, तो सारे रिश्तों को तार तार कर रही हैं।
0: बेशक सही
4: है। हम एक ऐसा इंसान बनाए, एक ऐसा बच्चा तैयार करें, जो कि देखिए शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के भविष्य के लिए। एक शिक्षक उनको पढ़ाई के साथ साथ उनको और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता है जो उनको जीवन में काम आती है। भाई पढ़ाई तो एक तरह से हम नौकरी करने के लिए केवल नहीं करते हैं, उसके साथ साथ और भी कई चीजें, जीवन जीने के लिए भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आगे।
0: बेशक सही बात।
4: तो शिक्षा का, अगर शिक्षा के स्तर में शिक्षकों में भी ये बच्चों को सिखाने की एक ललक हो कि हमारा काम केवल कोर्स को पूरा कराना ही नहीं है, बच्चों के अंदर कुछ ऐसी इनबिल्ड करनी है चीजें जो बच्चों को आगे जाके उनके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो।
0: चलिए बहुत अच्छी बात कही है आपने, और मुझे भी लगता है कि हाँ, अगर शुरुआत से ऐसी चीज़ों के बारे में क्लासेस में इंटरवेंशन किए जाएं तो कहीं ना कहीं ज़रूर बच्चों में बदलाव आएगा, और यही बच्चे चूंकि भविष्य बनते हैं, इन्हीं का ज़माना होता है और इन्हीं की दुनिया होती है। बेशक। एंड थैंक यू सो मच वो सॉन्ग बताने के लिए, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में आए मेरे वतन के लोगों, थैंक यू सो मच।
4: थैंक यू, थैंक यू सो मच।
0: सो भाई, ये तो हमारी रीता पाठक जी रही हैं जिन्होंने हमसे बातचीत किया है। फिलहाल अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगली कॉल पर आखिर कौन आ रहा है, उनको क्या पसंद है, कौन सा सॉन्ग और क्या गुनगुनाना चाहेंगे वो। हाँ जी, हेलो।
10: हेलो। फूलों की खुशबू को चुराया नहीं जा सकता, फूलों की खुशबू को चुराया नहीं जा सकता, सूरज की किरणों को छुपाया नहीं जा सकता, तुझे मिला हो इतना प्यारा दोस्त, ऐसे दोस्तों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गुड मॉर्निंग सर।
0: अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और भैया, ये जो आपने बात किया है, ऐसा लहजा किसी और के जुबान पे लाया नहीं जा सकता। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
10: थैंक यू सर।
0: अपना नाम बता दी हमारे श्रोताओं को।
10: मैं आज एड्रेस भी बताऊंगी और नाम भी बताऊंगी।
0: अच्छा चलिए बताइए।
10: मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ ज्ञानस्थली स्टूडियो से।
0: ज्ञानस्थली स्टूडियो से, तो क्या हम बैठ के परसपुर से बात कर रहे हैं? बिल सर,
10: सर नहीं, आप भी स्टूडियो में हो, बस फर्क इतना है कि आप ड्यूटी रूम में और मैं बाहर घूम रही हूँ।
0: अच्छा, आप बाहर घूम रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप बाहर क्यों घूम रहे हैं?
10: अरे कॉल लगानी थी, बात करनी थी सर। मेरा एक सपना था कि जब मैं आऊँ स्टूडियो में ना, तो मैं संडे को आऊँ और कॉलिंग तो रहे और मैं यही से कॉल करूँ स्टूडियो के आस पास बैठे थे, कहीं बालकनी में कहीं भी हो के कॉल करूँ, बात करूँ।
0: अच्छा,
10: मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई।
0: अरे चलिए मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। तो अब फटाक से दो लाइन गाना भी सुना दिए अगर आप आई हैं।
10: ठीक है, सुना दे रहे।
0: हाँ
10: तेरा

0: वाह क्या बात है, दोबारा आप तिबारा चौबारा पचबारा छठबारा जितनी बार आना चाहते हैं उतनी बारह बारह आए।
1: जितनी बार आएंगे ना धरती पे जिस रूम में आएंगे पर रेडियो से जरूर जुड़े रहेंगे।
0: बेशक बेशक, वाह क्या बात है। अच्छा आप भी समस्या के बारे में जरा बता दीजिए कि आपके आसपास की कोई ऐसी समस्या जिसे मिलकर के अगर सही कर दिया जाए तो आपको लगता है कि देश सच में आगे बढ़ जाएगा।
1: समस्या
0: नहीं है,
1: समस्या तो सबसे बड़ी बात यही है तो लोग सभी लोग पॉजिटिव सोचते रहे तभी किस सोच को एकदम सकारात्मक कर दिया जाए बस देश आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि हम जब निगेटिव सोचेंगे ही नहीं तो हमारे व्यक्ति कुछ गलत होगा ही नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा और देश के हित में होगा।
0: अच्छा नेगेटिव ना सोचे पॉजिटिव सोचे, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, मतलब वो छोटी सी कोशिश क्या होगी? ये कोई पाउडर वाउडर घोल के रखा हुआ है क्या आपने?
1: घोल के तो नहीं रखा है।
0: अच्छा मुझे लगा कोई पाउडर लेके आप चल रहे हैं साथ में और घोल के दे देते हैं, ये लो इसको पियो पॉजिटिव हो जाओ।
1: मैं ना ऐसे समझाती हूँ सब लोग समझ जाते हैं।
0: अच्छा चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और अनु ने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि भाई लोगों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव थोड़ा ज्यादा हो चुकी है, उसको बदलने की जरूरत है। और आपने कहा कि भाई ऐसी अगर कोई बात है तो आपके कहने का सेंस है बातचीत किया जाए तो चीजें सही हो जाएंगी, राइट? आपकी पहल को सलाम। और आप यूं ही
1: काम करती रहिए। मैं कहीं भी रहती हूँ कहीं भी जाती हूँ अगर कोई कुछ बोल रहा है थोड़ा नेगेटिव बोल रहा है किस चीज दिखते में कोई भी टॉपिक हो तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता है, मैं बोलने लगती हूँ। मेरी सिस्टर उसको आगे निकालती है, चुप हो जाओ, फिर भी मैं नहीं रुकती, मैं बोलने लगती हूँ।
0: अरे हाँ मतलब कोई जानवर बोल रहा है तो क्या आप उसमें भी जाके उसको समझाने लग जाते हैं?
1: अगर वो झगड़ा करता है तो आपस में और खाना नहीं खाता तो फिर मैं समझा देती हूँ कि ऐसी झगड़ा नहीं करते और खाना भी खाते।
0: अच्छा जानवर भी नहीं खाता तो उसको भी आप कहते नहीं बच्चे खाना खा लेते समय से। चलिए तो बहुत अच्छी बात है और बड़ा अच्छा लगा जान करके कि आप पहल की शुरुआत कर चुकी हैं और आपके पहल के लिए बहुत सारी दुआएं आपको। थैंक यू सो मच अनु कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। और चलिए भाई फिलहाल चलते हैं अगली कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर आखिर हमारे साथ कौन मौजूद हैं।

0: जी अभी अभी ठीक है, आप उस स्पीकर से दूर रहिएगा जहाँ से आप रेडियो सुन रहे हैं, ठीक है? हम बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम बीप की लगातार आ रही है, आप थोड़ा सा दूर हट जाइए जिस भी स्पीकर के आसपास है।
1: अब आ रही है सर?
0: हाँ अभी आ रही है। कौन सा सॉन्ग आपको बहुत ज्यादा पसंद है जो पैट्रियोटिक सॉन्ग हो, देशभक्ति?
1: हर कदम अपना करेंगे वतन के लिए, दिल दिया है जान देंगे।
0: क्या बात है, तो इन दोनों में से कोई एक की कोई दो लाइन आप अगर सुनाना चाहें।
1: हेलो,
0: हाँ जी सुनाना चाहेंगी दो में से किसी एक की लाइन किसी एक गाने की? हाँ जी, थोड़ा सा दूर हट जाइए, अभी भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है लगातार आप स्पीकर के आसपास है। बहुत ही खूबसूरत गाना है, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, और इस सॉन्ग को आज भी बहुत मौक़ों पर गाया जाता है, सेलिब्रेट करने के लिए भी, प्रोग्राम्स के लिए भी, परफॉर्म करने के लिए भी, और आपकी ये जो चॉइस है निशा ये बहुत अच्छी है, एंड थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: सर मेरी आवाज़ आ रही है?
0: हाँ जी आ रही है। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं बीप कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप नेक्स्ट वीक आराम से प्लीज एक बार और कॉल करिएगा, ठीक है? आवाज ओके, ऑलराइट। सो चलिए फिलहाल हम अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, और लगातार हमारी बातचीत आप लोगों से जारी है, बातचीत करते जा रहे हैं, फिलहाल देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो,
2: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
2: सृष्टि।
0: आप थोड़ा सा आप भी स्पीकर से दूर, आज सब स्पीकर के पास ही एकदम चिपक के खड़े हुए हैं, मतलब सब चेक कर रहे हो कि आवाज आ रही है आपकी कि नहीं आ रही है। ऑलराइट, कैसी हैं आप? हेलो,
2: आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत मस्त, बहुत चंगा, अपना बताइए कैसी हैं आप? ओके, सो आप कौन सा सॉन्ग पसंद करती हैं जो पैट्रियोटिक सॉन्ग हो और आपको भी सुन करके काफी फील आता है? पैट्रियोटिक सॉन्ग की हम बात कर रहे हैं, देशभक्ति का ना? हाँ, वो जिसपे आप सुन करके ज्यादा फील कर पाती हैं और आपको लगता है हाँ इससे फिलहाल काफी ज्यादा फील करवाती हैं। आपकी वॉइस जो है ब्रेक हो रही है, आ नहीं पा रही प्रॉपर। अच्छा, तो सुनाना चाहेंगे आप उसकी दो लाइन? हाँ या नहीं? ओके, समस्या के बारे में बताइए, कौन सी समस्या है जो बहुत छोटी सी है आपके एरिया की लेकिन उसको सही किया जा सकता है तो आपको लगता है कि हाँ काफी असर पड़ेगा?
2: क्या हुआ सर?
0: आपके आसपास की कोई ऐसी समस्या जिसे मिलकर के कोई सही करे तो आपको लगता है काफी असर पड़ेगा?
2: मेरे मोहल्ले में जो पानी भर जाता है सब घर में, ये बहुत दिक्कत है।
0: आपके मोहल्ले में भी पानी की ही प्रॉब्लम है?
2: बारिश होती है तो मतलब और ऊपर बढ़ जाता है,
0: जिससे आने जाने में निकलने में और कई सारी बीमारियों का खतरा रहता है, राइट?
2: बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, नाली का पानी रहता है।
0: तो सही बात है, इन प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व किया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपकी जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए, एंड थैंक यू सो मच सृष्टि कॉल करने के लिए।
2: थैंक यू भाई।
0: थैंक यू। सो भाई ये तो थी सृष्टि जिन्होंने हमसे बातचीत किया, अब चलेंगे अगले कॉलर की तरफ, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा वाला म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के उस पार वापस से हाजिर हो रहे हैं आपके मॉर्निंग चौक आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली।

0: आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और लगातार देखिए ना, बातचीत का दौर जारी है और हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम पूछ रहे हैं उस सॉन्ग के बारे में जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसकी दो लाइन हम आपसे लगातार सुनने की गुजारिश भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि भाई कॉल पर इस वक्त आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो।
1: हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग।
0: जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर।
0: बहुत बढ़िया। अपना नाम हमारे श्रोताओं को आप बता दें।
1: सर जी, मैं आपको मिश्रा बोल रही
0: हूं। ओके, आपने हालचाल बता दिया, आप ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बातचीत में आपकी आवाज में कि कहीं तो नासाज है तबीयत। ऑलराइट, तो चलिए जल्दी से ठीक हो जाइए। और ये बताइए, कल 15 अगस्त था, आज 16 है, तो आज भी हम फील ले रहे हैं 15 वाला। और गुड मॉर्निंग गोंडा की तो ये खासियत ही है कि जो दिन नहीं भी होता उसको भी हम सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो पैट्रियोटिक है और आपको काफी ज्यादा पसंद आता है?
1: सर जी, पहला तो है वंदे मातरम।
0: अरे वाह,
1: बिल्कुल सर, बचपन से लेके आज तक उसको सुनते ही आए हैं सर। कहीं भी अगर होता है ये राष्ट्रगान तो खड़े हो जाते थे सब।
0: जी क्या बात है।
1: और दूसरा है ऐ मेरे वतन के लोग।
0: ऐ मेरे वतन के लोग, वाओ क्या बात है। दोनों ही ऐसी आपने सॉन्ग्स पैट्रियोटिक बताए जो बहुत ज्यादा सुने जाते हैं, तो हमें कौन सा दो लाइन आप सुनाने वाली हैं?
1: सर जी, ऐ मेरे वतन के लोग।
0: बहुत अच्छा, और हम रेडी
1: हैं।
0: बिल्कुल, प्लीज प्लीज सुनाइए।
1: कला साथ
0: नहीं देना, कोई नहीं, हम लोग साथ देंगे।
1: ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों,
0: क्या बात है, क्या बात है। आपने कहा आवाज साथ नहीं दे रही है, उसके बावजूद इतना बेहतरीन गाया आपने, बताइए।
1: सर अगर थोड़ा सा जोर लगाते तो सही में आवाज एकदम नहीं साथ देती।
0: ओ, ओके।
1: ये तो बहुत ऊंचा उठा है, सुर होना चाहिए इसका तो।
0: अब इतनी टेक्निकलिटीज का तो हमको नहीं अंदाजा, लेकिन ये पता है कि आपने गाया बहुत बेहतरीन है, दो लाइन बहुत अमदा है। अच्छा, आपको अगर मान लीजिए ऐसा मौका मिलता है कि आप कोई नियम बना सके या कुछ चीजें लागू कर सके, बहुत छोटी सी, तो पूरे देश में ऐसा क्या आप लागू करना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, साफ सफाई सर, स्वच्छता अभियान, स्वस्थ रहें, साफ सफाई रहे, आप स्वस्थ रहें, गाँव रहें, सुरक्षित रहें। सर हम जहाँ रहते हैं, मेरे सामने के 3 प्लॉट छूटे हुए हैं सर।
0: अच्छा
1: जी सर, जब तक वहाँ पे बाउंड्री नहीं हुई थी हमने सफाई करवाई सर, बाउंड्री हो गई, सब लोग आर्टिफिशियल बाउंड्री गिरवा देते हैं सर, उसमें पेड़ पौधे निकल जाते हैं इतने, इसमें इतने जहरीले जानवर आते हैं सर।
0: करेक्ट,
1: बिल्कुल सर। लेकिन चलिए सर, दो प्लॉट जो थे वो तो बन गए सर, तीसरा अच्छा। प्लॉट अब पड़ा है मेरे घर के सामने सर, हम सब इतना उसमें हम खड़े रहे सर, सब लोग लाते हैं गंदगी वहीं पे डालते हैं, और जिसका है वो फोन करके हमको कहते हैं जरा ध्यान रखिएगा। हम सर उनसे क्या कहें कि हम कहाँ तक ध्यान रखेंगे, जब देखते हैं सब अंदर रहते हैं तभी सब लाके डाल जाते हैं, अब किससे हम कहें कि भाई
0: सही बात है।
1: तो उसको समझाते हैं कि भैया इधर मत डालो, साफ सफाई रखो, जो भी है कूड़ा करकट अपने डस्टबिन में रखो, कूड़ा लाता है ले जाता है, क्यों घर के किसी के सामने इतनी गंदगी फैलाए।
0: मतलब ये जो बाहर फेंकने वाला आपने कहा है वो बहुत गड़बड़ चीज है।
1: जी सर,
0: मतलब वो आप अगर आपको मौका मिले बहुत सख्ती से आप ये कराएं कि कोई नहीं फेंक सकता है घर के बाहर।
1: बिल्कुल सर, एक आध दो बार सर जी तो एकदम अंदाज के रखे हुए थे कि इसी टाइम बंदा आएगा डालने।
0: अच्छा,
1: और कहा है भी सर,
0: सही किया,
1: लेकिन फिर सर फिर वो टाइमिंग चेंज कर देता है।
0: वही बात है ना कि आप हर वक्त तो नहीं बैठ सकते ना,
1: नहीं किसी सकते ना सर,
0: ये तो आदत की बात है,
1: या तो वो भी बाउंड्री अपनी खिंचा ले।
0: सही बात है,
1: लेकिन बाउंड्री खिंचाने का मतलब है सर उसमें पेड़ पौधे निकल आते हैं, फिर कौन सफाई कराए, कब से खुला है तो सफाई इंसान करा सकता है सर।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट
1: जी सर।
0: तो ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, और आपने कहा अगर आप होंगे तो आप इन चीजों को जरूर अप्लाई कराना चाहेंगे, बहुत ही बेहतरीन बात मुझे लगी।
1: बहुत ध्यान रखते हैं सर अपने अगल बगल जो साफ सफाई के मामले में।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, और आपकी हेल्थ जल्दी आप रिकवर करें ऐसी हम दुआ कर रहे हैं।
1: थैंक यू।
0: सो भाई ये तो थी हमारे साथ में आशु मिश्र जी, जिन्होंने हमसे बातचीत किया, और देखिए ना लगातार हमारी आपकी बातचीत जारी भी है, और इसी कड़ी में अब हम चलेंगे अगले कॉलर की तरफ, उनसे भी बात करने, और देखते हैं कि अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो,
2: क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुले भी तो मरती है अपने चमन के वास्ते।
0: क्या बात है,
2: स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों और श्रोताओं ज्ञान स्थली परिवार को विजय पांडे की जानिब से हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन करते हैं।
0: क्या बात है विजय पांडे जी, सबसे बढ़िया चीज तो ऐसा लगा कि हमारा खुद का कोई अभिनंदन कर रहा किसी और शो में।
2: जी मैं अपना परिचय दूं?
0: बिल्कुल दीजिए।
2: मैं विजय कुमार पांडे थाना पचपड़वा जनपद बलरामपुर से बोल रहा हूं। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप मेरे काल को तस्लीम किए।
0: अरे भाई हमें खुशनसीबी है कि आपने हमको कॉल किया।
2: जी स्वतंत्रता दिवस पर हम कुछ कहना चाहेंगे।
0: प्लीज कहिए।
2: स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उन वीर जवान शहीदों को मेरा सशस्त्र नमन, जिन्होंने अपने देशवासियों के लिए कुर्बानी दी। आज उन वीर शहीदों को याद करने का दिन है, उन्होंने जिन्होंने वतन को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर मौत को गले लगा ली। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हम सभी के दिलों में बसी रहेगी, और उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को बेहतरीन श्रद्धांजलि यही होगी कि देश की हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे और देश तरक्की की राह पर अग्रसर हो। अंत में दो लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। उन ऐसे अमर शहीदों का अब तक रेडी रहेगा ये भारत, युग युग तक नतमस्तक हो अस्क बहाएगा भारत।
0: वाह बिल्कुल सच्ची बात कही है आपने, ऐसे शहीदों के लिए तो हमेशा रेडी रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा जाने से पहले बस एक सवाल आपसे लास्ट, आपको क्यों लगता है कि इतना ज्यादा लोगों को मिलके रहने की जरूरत है, आपकी वजह से क्या ऐसा है, मतलब आपको क्यों ऐसा लगता है?
2: मुझे ऐसा लगता है कि देश आजाद हुआ, हम सभी जात सभी लोग मिलकर देश को आजाद कराने का संकल्प लिया, तभी हमारा देश आजाद हुआ, और हम सभी को आपस में एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, भाईचारे की एकता बरकरार रखनी चाहिए, जिससे बाकी दूसरे देश के लोग इस पर हावी न होने पाए।
0: क्या बात है, बहुत सटीक बात, बस मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि आपको ऐसा क्यों लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई और देश हावी ना होने पाए, और दूसरी बात है कि ये जब सब मिल करके ही करेंगे सारी चीज़ों को तो तरक्की बहुत करेंगे, जो हम हमेशा से चाहते हैं, और जिसके लिए हमारे ये फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी शहीदी दिया ये सोच करके कि आने वाली हमारी पीढ़ी इसको बहुत आगे ले जाएगी, और आज हम हैं, आज हम उसी जगह खड़े हैं जहाँ से हमको अब इसको आगे लेके जाना है। बहुत खूब कहा, और बड़ा अच्छा लगा आपको सुनकर के विजय पांडे जी फ्रॉम पचपिड़वा बलरामपुर उत्तर प्रदेश, थैंक यू सो मच कि आपने हमको कॉल किया।
2: जी जी
0: बहुत शुक्रिया आपका।
2: तो मैं अपने गाने के बोल बता दूं?
0: जी प्लीज आप बताइए, बल्कि हम तो कह रहे हैं दो लाइन सुना दीजिए आप।
2: गाने तो हम नहीं सुना पाएंगे, और मैं ये गाना आज सुनना चाहता हूँ, अय वतन हमको तेरी कसम।
0: अरे वाह।
2: और हमारी जो मुँह बोली बहन है
0: जी,
2: वो अन्नू पांडे के साथ सभी श्रोताओं के लिए ये गीत समर्पित रहेगा।
0: अरे वाह क्या बात है, अय वतन हमको तेरी कसम, क्या बात है, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए विजय पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: धन्यवाद।
0: सो देखिए ना कितनी खूबसूरत बातें हैं और हमारे दिल में है रहती है, हम अक्सर कहते हैं लेकिन बयां नहीं कर पाते, और कई बातें जो हैं वो हम उन तक पहुंचते भी हैं और कहते भी हैं और अपनी बातों को मुकम्मल भी करते हैं। फिलहाल इसी कड़ी में आइए हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर आखिर कौन है मौजूद और उनको क्या है कहना और उनका फेवरेट सॉन्ग पैट्रियोटिक सॉन्ग क्या है जिसको हम सुनने वाले हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सके क्योंकि सभी के दिल में देश को लेकर, अपने वतन को लेकर, अपने मुल्क को लेकर के बहुत फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसी कड़ी में देखते हैं कौन है अगली कॉल पर। हाँ जी हेलो,
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
3: संदीप बात कर रहे हैं सर, पटेल नगर गोंडा।
0: जी जी संदीप जी,
3: ठीक है सर?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
3: मैं ठीक है सर।
0: तो संदीप जी, कल 15 अगस्त था और आपने भी कई सारे सॉन्ग सुने होंगे, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है देशभक्ति गानों में?
3: ये जीत जहां की सीत सदा।
0: अरे वाह क्या बात है। अब पसंद तो भाई आपकी बड़ी अलग है संदीप जी, आप ही की तरह एकदम अलग है।
3: मतलब मैं ये कहना चाहूंगा सर, 15 अगस्त तो हम लोग देखे या 26 जनवरी तो हर दिन मनाना चाहिए, जानते क्यों सर?
0: जी बताइए।
3: इस वजह से कि जो बेजवान जो बॉर्डर पे हैं, हर जगह हम लोगों की सुरक्षा दे रहे हैं, तो हम लोग तो उनको हर दिन सलाम करें क्योंकि उन्हीं के वजह से आज हम लोग सुकून की नींद पा रहे हैं।
0: बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं है
3: कि नहीं सर?
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
3: तो मेरे हिसाब से हर दिन जो है इन लोगों को जो है दिल से दुआ देना चाहिए।
0: वाओ, हर दिन बिल्कुल, अरे बिल्कुल सही फरमाया आपने कि हर दिन हमको दुआएं देना है क्योंकि ये हर दिन हमारे लिए कर रहे हैं,
3: हर दिन कर रहे हैं,
0: ये सिर्फ 15 अगस्त तो 26 जनवरी को नहीं होता, ये रोज हो रहा है, हर लम्हा हो रहा है। सही बात है।
3: पहले जैसे कि हम लोग सर 2 अगरबत्ती सुबह जलाते हैं तो 2 अगर उनके लिए हम थोड़ा सा प्रार्थना कर सकते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहिए और हमारे लिए हमेशा ऐसे सुरक्षा देते रहे, प्रशासन को भी और जवान को भी, क्यों सर?
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने।
3: मेरे हिसाब से हर दिन इसको जो है 15 अगस्त के रूप में देखना चाहिए हर लोगों को।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कुछ सुनाना भी चाहेंगे आप?
3: अरे सर सुनाना तो नहीं, आपकी सुन रहे थे काफी देर से, बात करते हैं।
0: नहीं बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच कि आपने हमको कॉल किया और आपसे हमारी बात हो पाई। नमस्ते नमस्ते, बहुत प्यारे हैं भाई संदीप जी हमारे और देखिए कितने अच्छे से बातचीत हो जाती है हमारी आपकी। सो थैंक यू सो मच संदीप जी कॉल करने के लिए और 89.6 FM से जुड़ने के लिए। अब चूंकि अगले कॉल्स को हम लगातार लेते रहेंगे, कई सारी कॉल्स अभी भी आ रही है, आपका प्यार आ रहा है, आपके इमोशंस आ रहे हैं जिनको हम एक्सप्रेस भी करने को लगातार आपसे कहते रहते हैं, और इसी बीच में फिलहाल आइए एक और कॉलर को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कौन है, कहां से हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी हेलो।
4: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
4: तनु से बात कर रहे हो, महाराष्ट्र से।
0: महाराष्ट्र से बात कर रही है, अरे नमस्ते, क्या नाम है आपका?
4: तनुश्री।
0: तनुश्री, तनुश्री कैसी हैं आप?
4: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है। आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? राइट। वैसे काफी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। अरे वाह, तो भाई कहाँ कहाँ बात करते, किससे बात करते हिंदी में?
4: अरे सर बहुत बात करते, त्रिपुरा है, आसाम है, मध्य प्रदेश है, शिमला
0: है। अरे भैया पूरा देश जोड़ के रखा है आपने अपने पास में। हाँ
4: जी सर जी, इसलिए वो हिंदी में बात करते ना तो मुझे भी हिंदी उन्होंने सिखा दी है क्योंकि मुझे पहले कुछ भी हिंदी आती नहीं थी।
0: आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप पहले ये बताओ आप क्या कर रहे हो अभी? मतलब पढ़ाई में आप क्या कर रहे हैं?
4: सर पढ़ाई तो नहीं करती है, शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: ओह वाओ क्या बात है, शास्त्रीय संगीत, बड़ी अहम बात आपने कह दी।
4: जी।
0: तो थोड़ा सा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे ताकि वो भी जान जाए ये शास्त्रीय संगीत क्या है।
4: जी सर, इसमें होती है पहले तो बंदिश होती है, छोटा ख्याल मतलब बंदिश, फिर आलाप तान मतलब तबले पर ताल बिठाना, मतलब बहुत सर कुछ होता है। श्रोताओं को समझ आया ना है, मतलब मैं इसे बहुत राग सीखी हूँ कि जो श्रोता ने मतलब सुने होंगे या नहीं पता नहीं, पर मुझे लगता है मैं 18-19 तो राग सीखी होगी।
0: अरे वाह, बिल्कुल। तो जो आपने कहा छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, बंदिश, सुर, ताल, ये सब होते हैं, ये टेक्निक्स हैं, टेक्निकल्स हैं। लेकिन आपका अगर मैं जानना चाहूं कि राग कौन सा फेवरेट है तनुश्री का, तो कौन सा है?
4: सभी राग फेवरेट है क्योंकि तो मतलब अच्छे लगते हैं ना सभी, मतलब इस राग की बंदिश अच्छी लगती है, तो इस राग के जो राग गायन होता है वो अच्छा लगता है, मतलब जो रागों की संपूर्ण उसमें मतलब समय बताया जाता है, फिर उसका पकड़ वादी स्वदेश बताया जाता है, तो मतलब ऐसा नहीं कि एक राग नहीं अच्छा लगता, सभी राग मुझे अच्छे लगते हैं।
0: बहुत बढ़िया जवाब दिया है, बचा ले गए आप खुद को। अच्छा एक सवाल,
4: एक राग थोड़ी ना मुझे परीक्षा पर मतलब एग्जाम के लिए मुझे एक राग थोड़ी ना है, सभी राग है ना, तो एक राग मैं बोलूंगी तो बाकी के राग नाराज होंगे ना।
0: क्या बात है। अच्छा चलिए मैं एक गाना हल्का गुनगुना रहा हूँ, उसके राग को आपको पहचानना है, चलेगा? गाना बहुत बहुत ज्यादा सुना गया गाना है, मतलब बहुत आम सा गाना है, एक बार आप ट्राई तो करो, जस्ट वन ट्राई।
4: ओके।
0: तेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। चलिए बताइए किस राग पे?
4: सर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, भैरव किंवा भैरवी, दोनों में से कोई तो होगा शायद।
0: चलिए मैं तीन ऑप्शन दे रहा हूँ अभी, आप थोड़ा सा इजी और कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? राग भोपाली, राग शिवरंजनी और राग भैरवी।
4: भैरवी सर।
0: You are wrong. दरअसल ये राग शिवरंजनी का है।
4: नहीं सर, मैं क्या बोलते हैं अभी इसमें क्या बोलते हैं, आपने बंदिश गाई ना तो मैं बता सकती हूँ। पर जो म्यूजिक मतलब फिल्म के गाने होते ना अभी तक मैं उसमें गई नहीं, हाँ फिल्म के गाने में हारमोनियम पर सीखती हूँ, पर वो यूट्यूब पर क्या बोलते हैं उसका नोटेशन लेकर मैं यूट्यूब पर सीखती हूँ, पर अभी तक मैंने नहीं मतलब सीखा।
0: नहीं नहीं, देखिए मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं तनुश्री की, आप सीख रहे हैं, आप उसके मास्टर हैं, बस मैंने एक नॉर्मल सवाल किया था क्योंकि मुझे कभी किसी ने बताया था, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बता नहीं पाए, इसका मतलब ये है कि भाई ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आप जो सीख रहे हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाद में तो पता चलता ही रहता है। करेक्ट,
4: क्योंकि मेरे अभी तो तीसरे एग्जाम भी कंप्लीट नहीं हुए सर, तो मैं बता नहीं सकती, पर जितना मैंने सीखा है उतना तो रागों में से ही सीखा है ना।
0: तो चलिए अब एक गाना हमको तनुश्री सुनाएंगे जो हम सुनेंगे, अब कौन सा सुनाने वाली हैं आप, चलिए सुनाइए।
4: जी सर, पहले तो क्या बोलते कल तो कल 15 अगस्त था ना, तो उस के अवसर पर मैंने 2-3 दिनों से गाना बिठाया था, नन्ना मुन्ना राही हो।
0: अरे वाह क्या बात है, तो आप सुनाने वाले?
4: हारमोनियम भी मेरे सामने है, हारमोनियम पर सुनाने।
0: क्या बात है, हारमोनियम पर, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम ऐसा होता है कि लाइव कॉलिंग पे हम हारमोनियम को भी सुन पाए आपकी आवाज के साथ, प्लीज सुनाइए।
4: जी जी ओके।

0: माय गॉड, मतलब हम लोग सुनते के सुनते जा रहे हैं, मतलब आप सुनाते जा रहे हैं हम लोग, इतनी प्यारी वॉइस, ऐसा लगा कि कोई बच्चा सच में गा रहा है, अपनी दिल के जज्बात, देश को लेकर के, फीलिंग्स को लेकर के, लोगों से जुड़ाव को लेकर के, देश को आगे बढ़ाने को लेकर के हर बात इस गाने में कह रहा है, मतलब लिटरली एपिक मोमेंट। वाओ वाओ तनिषु,
1: मुझे भी बहुत पसंद है, और मेरे पापा पर, मेरे पापा, मुझे सभी लोग जो मेरे रेडियो पर है, सभी वो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारी आवाज मतलब एकदम छोटे बच्चों की जरा है, तो इसलिए गाना पापा बोलते हैं ना, और तुम्हारी आवाज से बोलते हैं ना बच्चे जैसे, तो ये गाना तुम्हारे लिए सूट करेगा।
0: अरे अब ये गाना हम लोगों को तनुश्री की आवाज में बहुत अच्छा लग रहा है, और हम सभी लोग आपके लिए तालियां बजाना चाहते है।
1: मतलब मुझे क्या बोलते, जब गाना में गा रही थी ना, तो मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं तो मतलब गलत हो गया तो मतलब क्या होता, क्योंकि सर मैंने कभी हारमोनियम अभी तक बजा कर नहीं दिखाया, तो मुझे बहुत मतलब क्या बोलते हैं,
0: वाओ क्या बात है। एक तो भाई आपकी आवाज इतनी मासूमियत भरी, दूसरी बात है कि इतना अच्छा प्ले करती हैं आप हारमोनियम, और आप कह रही थी देखिए सीख रहे हैं, अरे आपको बहुत कुछ पता है, आप कभी डाउट मत करिएगा अपने पे। और ये जो प्यारी सी आवाज है बच्चों वाली, ऐसे कई सारे सॉन्ग्स हैं जो बच्चों के इमोशंस को आप जाहिर कर सकते हैं अपनी आवाज से, इसको प्लीज करते रहिएगा, किसी भी हाल में सिंगिंग मत छोड़िएगा प्लीज।
1: नहीं सर, सिंगिंग ही अभी क्या सर बोलते हैं ना, सिंगिंग में ही मैं अभी करियर बनाना चाहती हूँ, कभी आपको मतलब क्या पता भगवान की दुआ से आकाशवाणी पर भगवान ने जोड़ दिया, तो क्या पता एक दिन सर ऐसा भी मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं आकाशवाणी को पर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी।
0: अरे बिल्कुल सुनाई पड़ेगी, आकाशवाणी पे तो जाएगी जाएगी, दूरदर्शन पे जाएगी, नेशनल मीडिया पे आएगी, लेकिन हम लोगों तक जो रेडियो ज्ञानस्थली पे आ गई है, उसी के वक्त के बाद से हम लोग आपके फैन बन चुके हैं, और देखिए कितनी तारीफें चैट पर लोगों ने आपके लिए लिखा है, जिस चैट से आप सुन रहे हैं एप्लीकेशन से। महेंद्र ने लिखा है, आवाज चांगली आहे मुगली चे। और बहुत खूब लिखा है लखनऊ से आशु जी ने, प्रीति जी ने बहराइच से लिखा है, तनुश्री वेरी ऑसम, कमल लैन जी ने गोंडा से लिखा है, वेरी नाइस बहुत खूब, और नव्या ने भी लिखा है सुपर।
1: सबको सर दिल से थैंक यू बोलते हैं, सबको दिल से थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने मुझे आपको कमेंट नहीं किया, ये मुझे बढ़ने का और एक मतलब आगे बढ़ने का और एक जरिया दिया, तो इन सभी को मैं थैंक यू बोलती हूँ।
0: मुझे लगता है इसको भी गा के बोल सकते थे आप।
1: अरे आपको पता है कि
0: So, सभी को थैंक्स दिल से बोला है भाई तनुश्री ने, सभी को थैंक्स दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, क्या बात है।
1: हाँ, कोई बात नहीं, मेरी कमी सर ने पूरी कर दी।
0: वाह, मजा आ गया। काफी अच्छी आवाज है, और प्लीज आप नेक्स्ट टाइम भी जुड़िएगा तनुश्री, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास टाइम होगा तो प्लीज आप जुड़िएगा, और आप जो गाती हैं, जो कुछ भी आपको सुनाना होता है, उसको आप संडे संडे 10 से 11 के बीच कॉल करके हम सभी लोगों को सुनाइएगा, हम सब लोग आपको सुनने के लिए तैयार है।
1: आपकी इतनी मुझे क्या बोलते हैं दादी मुझे है ना, तो अगले अगले रविवार का इंतजार मैं अभी से कर रही हूँ।
0: बिल्कुल, हम लोगों को भी नेक्स्ट रविवार का इंतजार अभी से। वाओ क्या बात है, एंड थैंक यू सो मच तनुश्री कॉल करने के लिए आपका।
1: ओके, बाय
0: बाय, बाय बाय, टेक केयर। सो भाई ये देखिए तनुश्री मुंबई से जुड़ी और इन्होंने सॉन्ग को सुनाया, थैंक यू सो मच। माजरत, माफ़ी उन लोगों के लिए जिनको अभी फ़िलहाल हम नहीं जोड़ पाए, चूँकि अब वक्त का इशारा तकाजा हो चला है, तो हम अब बढ़ रहे हैं आपसे विदा लेने की तरफ। लेकिन आज का ये शो कैसा रहा, आज का संडे स्पेशल आपको कैसा लगा, ये हमको आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और फिलहाल जाने से पहले, चूंकि कई सारे मैसेजेस हैं, उनको मैं पढ़ना चाहूँगा। कमल नैन जी, आपका भी गुड मॉर्निंग गोंडा में वेलकम है। महेंद्र जी ने भी अपनी पसंदीदा जो है वो देशभक्ति सॉन्ग के बारे में बताया, अब के बरस फिल्म क्रांति से है, और ये दो पंक्तियाँ आपको बहुत पसंद है। दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी, मुट्ठी में किस्मत है अपनी हमको मेहनत प्यारी, मिट्टी कीमत के जग में कोई रतन नहीं, जिल्लत की ज़िंदगी से बदतर कोई कफन नहीं। ये पंक्ति हमें कड़ी मेहनत और आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देती है। क्या बात है, थैंक यू सो मच महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ प्रीति जी ने लिखा है, कमल जी ने लिखा है, पूर्णिमा का है मैसेज है, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, जिन लोगों ने वक्त निकाल करके आप आए, चैट बॉक्स पे आपने लिखा, वो लोग जो फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, वो लोग जो रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, और वो लोग जो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुन रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9860 9761 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: घर नानी के घर जाएके,
1: नानी के घर, नानी के घर, नानी के घर जाएके,
0: हलवा पूरी मीठी चूरी और जलेबी खाएके, नानी नानी नानी नानी नानी के घर जाएके, नानी के घर जाएके, नानी नानी नानी नानी नानी के घर जाएके।
2: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। सुनिए सीएमओ गोंडा की अपील।
3: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिला। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: हां जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने संडे स्पेशल शो हम्टी डम्टी विद गीता दीदी में। और देखिए ना, हमारे साथ में मौजूद हैं इस प्रोग्राम की होस्ट और हम सब की दीदी।
6: देखिए, मैं तो सबकी दीदी हूँ और आपको बड़ी जलन होती है मुझसे।
5: जलन?
6: मैंने देखा है, हाँ, जब दूसरे बच्चे मुझे दीदी दीदी कह के प्यार करते हैं तो आपको हमने देखा कि कितना आप जलते हैं। क्यों इतनी जल से हमसे?
5: क्योंकि आपको दीदी बोल देते हैं, हमको दीदा दीदा नहीं बोलते, हमको सर सर बोल के निकल जाते हैं। सो गीता दीदी
6: जी,
5: आज कौन से कलर में आप आई? भाई, आपके कपड़ों का कलर तो हर संडे को डिस्कस होता है, आज किस कलर में आप आई है बताइए।
6: आपके कलर में तो रंगी हूँ।
5: आज ब्लू ब्लू मैच कर रहा है भाई, आज बिल्कुल। सो आज मुझे लगता है जो आसमान है वो जमीन पर आ गया।
6: बिल्कुल,
5: है ना?
6: ऐसे ही मौसम में तो इसी तरीके का है कि मतलब लाइट कपड़े पहनो, इतनी ज्यादा धूप हो रही है। और सबसे ज्यादा दुख मालूम मुझे किस बात का हो रहा है कि मेरे बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं।
5: वायरल फीवर,
6: वायरल चल रहा हुआ है, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब क्यों भगवान जी ऐसा करते हैं, इतनी सारी धूप निकाल देते हैं? जब धूप की जरूरत होती है तो धूप नहीं निकलती है, जब बारिश की जरूरत है तो बारिश नहीं हो रही है। मैं ये सोच के बहुत परेशान हो रही हूँ।
5: अब देखिए, ये तो बिल्कुल आप वाली बात हो गई।
6: क्यों?
5: जब हम सोचते हैं आप कहानी सुनाइए तो आप बातें करती हैं, जब सोचते हैं बातें करिए तो आप कहानी सुना देती। बिल्कुल, भगवान भी वैसे कर रहा है। ऑलराइट, सो दीदी मुझे आप ये बताइए, चूंकि संडे भी है और
6: अरे एक मिनट okay. मुझे कम से कम वेलकम तो कर लेने दीजिए, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं बैठे हुए हैं।
5: हाँ प्लीज।
6: तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? और मुझे तो होप है कि आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि मैं अच्छी हूँ।
5: वाह, आप अच्छी हैं तो सब अच्छे होंगे, ऐसा मानना भी अपने आप में। अभी वैसे भी अनु की कॉल आई थी, वो कहती हर चीज को हम पॉजिटिव कर देते हैं।
6: बिल्कुल, तो बिल्कुल करना भी चाहिए।
5: आप वाली बात होगी कि हाँ भाई, हम अच्छे हैं तो सभी अच्छे होंगे,
6: हम भले तो जग भला।
5: बेशक, सही बात है। नव्या का आया, गुड मॉर्निंग गीता दीदी, कैसी हो आप?
6: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी हूँ मैं, आप कैसी हैं?
5: बिल्कुल बता दें,
6: और बिल्कुल चैट बॉक्स पे आके बताइए कि आप कैसी हैं।
5: और हमसे भी गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग टू यू। सर दर्द की गोली मेरे पास है, किसी को चाहिए तो बता देना। अच्छा, आपकी है क्या सर दर्द की समस्या है क्या आपको?
6: नहीं, मैं तो सर दर्द ठीक कर देती हूँ, मेरे पास तो गोला है सर दर्द भगाने
5: गोला
6: का।
5: ये कौन सा गोला है?
6: देखिए, अभी बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अब कितने सारे आज आपने बताया नहीं कि मेहमान आए हुए, भूल जाते हैं, आपकी मेमोरी को क्या हो गया है?
5: गजनी।
6: आज हमारे स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान आए हैं हमसे और अदनान जी से मिलने के लिए और ढेर सारी बातें करने के लिए, और हमारा ये प्यारा सा स्टूडियो देखने के लिए।
5: बिल्कुल सही बात है, और एक नहीं दो नहीं तीन तीन मेहमान हैं, और सबसे बड़ी बात है देखिए, जब आपको कोई प्यार करे, आपको कोई मोहब्बत दे, बहुत सारा प्यार लुटाए, प्रेम करे, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब कोई आशीर्वाद देता रहता है कि आप हर पल खुश रहो, आगे बढ़ो, और वो खुद आपसे मिलने चला है, तो सोचिए कितनी खुशी की बात होती है।
6: तो यही तो ब्लेसिंग हम लोगों को जो है हंसमुख बनाए हुए, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और होप करते हैं आप भी हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, आपको भी इनकी ब्लेसिंग मिलती ही रहे।
5: बिल्कुल ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। इसे एक सवाल याद आया आपसे करना है।
6: ओहो, टाइम हो रहा है स्टोरी का।
5: नहीं नहीं, पहले सवाल उसके बाद कोई बात।
6: ओके,
5: हाँ, सवाल ये है कि सावन में झूला तो झूला ही जाता है।
6: बिल्कुल झूला जाता है।
5: कोई ऐसा झूला जिस पे आप बैठी हो, झूल रही हो और टूट के गिर गया?
6: ओ, क्या बात,
5: देखने से लगता है मुझे आपको कि पक्का ऐसा आपके साथ हुआ है।
6: एक बार नहीं, एक बार नहीं, कई बार झूला टूटा और हम धम से गिरे। बहुत मजा आता था, सब हंसते थे और मैं चिढ़ जाती थी कि देखो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, झूला टूट जाता है और काफी चोट भी लग जाती है।
5: चोट लग जाती है, लेकिन दीदी होता ही है ना, जैसे हम लोग गिरते हैं अगल बगल देखते कोई नहीं देखा, जल्दी से झाड़ के निकल जाते हैं।
6: और लेकिन ये झूले वाली जो मस्ती है ना, ये कभी जाती नहीं, फिर झूले को टांगने की कोशिश करते हैं और फिर झूलते हैं।
5: सही बात है, सही बात है। भाई आप भी झूला झूलते रहिए, फिलहाल दीदी आपको स्टोरी सुनाने वाली है। दीदी आज क्या स्टोरी बताइए?
6: आज बहुत अच्छी स्टोरी है, बस सस्पेंस है थोड़ा सा, कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि अपने को बहुत ज्यादा बुद्धिमान और चतुर समझती हैं, फिर उनको लास्ट में झेलना ही पड़ता है।
5: आप अपनी बात तो नहीं कर रहे?
6: नहीं,
5: ऑलराइट,
6: मैं ऐसी हूं क्या?
5: नहीं भाई, किसने कहा? चलिए तो भाई स्टोरी की तरफ चलते हैं। जोक सपाट, ये मजाक था, और दीदी बहुत अच्छी स्टोरी लाई हैं, और कहीं ना कहीं जिनके जहन में ये बातें रहती है, आज उनको ये बात समझ में आएगी कि कहानी से हमको क्या सीख मिलती है।
6: तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक बड़ा सा गांव था और उसमें एक कई महिलाएं रहती थी, लेकिन एक महिला ऐसी भी रहती थी, वह हर समय अपने आप को बहुत बुद्धिमान और चतुर बताया करती थी। उसे लगता था कि संसार में उससे ज्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं। घर के लोग उसे सलाह भी देते तो वह तुरंत कह देती, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, शांत रहना, मैं अपना भला बुरा खुद जानती हूँ। पड़ोसी भी उसे कई बार समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। है ना, ऐसे होते हैं ना हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग?
5: बिल्कुल।
6: तो कहावत भी है कि अपनी अकल और दूसरों का धन हमेशा ज़्यादा लगता है, अधिक अच्छा लगता है। यही हाल उस महिला का भी था, वह अपनी बुद्धि को सबसे श्रेष्ठ समझती थी, जबकि वास्तव में बहुत ही नासमझ थी। उसकी यही आदत धीरे धीरे उसके लिए मुसीबत का पहाड़ बनती जा रही थी। एक दिन वह जंगल की ओर लकड़ियां बीनने के लिए जा रही थी, रास्ते में उसकी नज़र एक चमचमाती हुई वस्तु पर पड़ी। उसने उसे उठाकर देखा, वो एक अनमोल हीरा था जो धूप की किरणों में अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। महिला ने इससे पहले कभी हीरा देखा ही नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, ये कितना सुंदर है, यदि देखने में इतना अच्छा है तो खाने में कैसा होगा, खाने में अवश्य ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। यदि वह किसी समझदार व्यक्ति से पूछ लेती तो उसे सच्चाई का पता चल जाता, लेकिन उसके घमंड ने उसे ऐसा करने ही नहीं दिया। उसने सोचा कि किसी से पूछना उसकी शान के खिलाफ होगा। वह हीरा घर ले आई। उस दिन उसने रात के भोजन के लिए एक साग बनाया। साग बनाते समय उसने बिना कुछ सोचे समझे वो हीरा उस हांडी में डाल दिया, और उसे पूरा विश्वास था कि हीरे का स्वाद पूरे साग में मिल जाएगा और आज का भोजन इतना स्वादिष्ट बनेगा कि खाने वाले इसकी प्रशंसा करते थकेंगे नहीं। शाम को पूरा परिवार भोजन के लिए बैठा। महिला ने बड़े गर्व से सबको वही साग परोसा। सभी ने साग खाया, लेकिन थोड़ी ही देर में सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को तेज दर्द हुआ तो किसी को उल्टियां होने लगीं, स्वयं महिला की भी हालत खराब हो गई। कुछ ही समय पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। महिला भी अपने घमंड और मूर्खता का शिकार होकर संसार से अलविदा कहकर चली गई। गाँव वालों को जब इस घटना का पता चला तो वे बेहद दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। सबको समझ में आ गया कि यह दुर्घटना किसी और कारण से नहीं।

0: केवल अपनी ही बुद्धि पर घमंड करता तो लोग उसे वही कहानी सुनाकर समझाने कि केवल स्वयं को सबसे चतुर समझ लेना बुद्धिमानी नहीं है। सच्ची बुद्धिमानी विनम्रता में सीखने की इच्छा और सही समय पर योग्य लोगों से सलाह लेने में होती है। तो समझ में आया, अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। स्वयं को सर्वज्ञ समझने के बजाय दूसरों की राय अवश्य सुननी चाहिए। यदि सलाह उचित लगे तो उसे अपनाने में संकोच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एड़ी उठाकर कोई ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि विनम्रता ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है, महान बनाती है। समझ में आया कि नहीं?
1: पूरा समझ में आया भाई। अब जब इंसान कोई ये लगने लगता है कि बस वो ही जानता है, वो खतरे की घंटी होती है।
0: जी बिल्कुल।
1: और जब आप सीखने की चाह रखते हैं कि हम इस बात को जाने कि ये क्या है और कैसे है, तो आप सीख रहे होते हैं।
0: जी
1: यही अंतर है।
0: तो भाई आगे के लिए, हाँ, महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को और ऐसे पुरुषों को भी, मैं महिलाओं की क्यों बात करूं, मैं तो सभी की बात करूंगी कि कभी भी अपनी बुद्धि पे घमंड नहीं करना चाहिए।
1: और ना ही अपनी बाइक पर।
0: सच में बहुत स्पीड से उड़ाते हैं लोग।
1: बिल्कुल। सो दीदी बहुत स्पीड से जा रही हैं और नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर आने वाली हैं इसी प्रोग्राम में, और आपको क्या करना है, बने रहना है।
0: बिल्कुल। और हमसे बातें करते रहना, यानी कि चैट बॉक्स में मैसेज करते रहना, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारे बच्चों का भी हौसला बढ़ता है, उनको अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना।
1: बिल्कुल। तो फिलहाल नाइस दीदी सुपर करके आ गया है कमेंट
0: जी।
1: तो हम सभी की सुपर दीदी ने सुपर स्टोरी सुना दिया। आई होप कि आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी।
0: तो कौन है ये?
1: नव्या।
0: ओके नव्या, थैंक यू सो मच।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।

0: जी हाँ बापू, सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का कहना है कि बच्चों से ज़्यादा सेहत की बातें मत करो। तो चलिए चलते हैं, हमारे नन्हे मुन्ने हमारे साथ हैं, यानी कि हम्टी डम्टी विद गीता दीदी प्रोग्राम में आज सारे बच्चे हमारे साथ। कैसे हो बच्चों?
1: गुड मॉर्निंग दीदी।
0: ओहो, बड़ा मतलब गर्म जोशी से वेलकम हुआ है। मैंने पूछा आप लोग अच्छे तो हो ना?
1: जी दीदी।
0: मालूम है मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है बच्चों, बहुत सारे बच्चे देखो बीमार पड़ रहे हैं ना। अभी हमारा जो समर ठंडी हवा का झोंका, वो भी गर्म हवा के झोंके में पड़ गया है और थोड़ा सा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हो गया। इसलिए मैं आप लोग को सतर्क करती हूँ कि आप लोग भी जो है प्रिकॉशन पूरा लीजिए और मम्मी पापा की बात मानिए, और ये मत कहिए बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है ना। तो भाई चलिए, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आ गए। हमारे साथ विराट हैं, हमारे साथ बलराज जी हैं, हमारे साथ देशराज जी हैं और हमारी छोटी सी सानिध्या हमारे साथ तो हमेशा ही रहती है। और आज सानिध्या बहुत क्यूट क्यूट सी लग रही है। सानिध्या बहुत प्यारी सी ड्रेस पहन रखी है आपने, कौन लाया था ये ड्रेस?
2: मम्मा
0: लाई थी, इतनी प्यारी सी ड्रेस लेके आई है मम्मा। तो आज क्या तैयारी है भाई बच्चों, क्या क्या सुनाने वाले हो तुम लोग? पहले तो मैं देशराज से पूछूंगी, आज देशराज क्या सुनाने वाले हो?
3: दीदी आज अटल बिहारी जी की पुण्यतिथि है। ओ, तो मैं उनकी
0: मैं तो भूल ही गई थी आज तो। हाँ, अटल बिहारी जी की पुण्यतिथि है। चलिए हम सब जो है उनको नमन करते हैं, उनको बहुत ही श्रद्धा से याद करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के सबसे प्यारे प्रधानमंत्री जी थे। तो चलिए सुन लेते हैं, पहले हम देशराज जी को ही मौका देते हैं, आज वो बड़ी प्यारी सी पोयम लेकर के आए हैं अटल जी के लिए।
3: हम एक हाथ में सृजन दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं। हम एक हाथ में सृजन दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्त ज्वाला में जलते हम अंधियारे में जलते हैं। आँखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। आँखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसमें हिम्मत हो।
0: बहुत प्यारी पोयम है भाई, बहुत प्यारी। और कितना बड़ा संदेश दे रही है उनकी ये पोयम कि हमको क्या है कि एक बड़ा सपना संजो करके चलना है, और वो सपना क्या देश हित में भी होना चाहिए। तो बहुत प्यारी सी ये पोयम है हमारे अटल बिहारी प्रधानमंत्री अटल बिहारी द्वारा रचित, ये कविता बहुत प्यारी है। और आप क्या सुनाएंगे विराट जी?
1: आज दीदी मैं पोयम लेके आया हूँ,
0: दो ठो पोयम।
1: हाँ।
0: ओहो, दो ठो पोयम लेके आया है। तो कल तो अभी क्या था, कल जो गुजर गया
2: दीदी, इंडिपेंडेंस डे।
0: ओहो, सानिध्या को सब मालूम है, लेकिन अभी हमको तो खुमारी चढ़ी हुई है, और ये खुमारी जो है हमेशा चढ़ी रहनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस कोई एक दिन का दिवस नहीं है, एक दिन की बात नहीं है, ये तो हमेशा चलते रहना चाहिए, है ना। हमारे दिलों में देश के प्रति प्रेम हमेशा जागृत रहना चाहिए।
3: जी दीदी,
1: जी दीदी,
0: है ना
1: दीदी।
0: ये नहीं एक दिन बस हमने झंडा फहरा दिया, हमने राष्ट्रगान गा लिया या हमने वंदे मातरम गा लिया, ये तो हर दिन हमारे दिलों में चलता रहना चाहिए, है ना बच्चों?
1: जी दीदी।
0: तो यही तो सच्चा सच्ची राष्ट्रभक्ति है। तो चलो चलते हैं अभी हम विराट की ओर, और विराट आज सुनाने वाले हो कविता?
1: जी दीदी, हमेशा कहानी सुनाते, तो आज सोचे कविता।
0: ओहो,
1: सबके लिए।
0: ओके, चलिए तो सुना दीजिए अपनी प्यारी सी कविता।
1: मैं ये जो कविता सुनाऊंगा, ये जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर है।
0: छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर है
1: जी।
0: तो चलिए, वो भी तो एक बहुत बड़े देशभक्त थे, उन्होंने अपने देश से बहुत प्यार किया, और उनके लिए वो जो मराठा थे और किसे लड़े थे?
1: मुगलों से
0: लड़ करके उन्होंने देश को बचाया था। तो चलिए सुना।
1: सिंहों की वो शान था, भारत का स्वाभिमान था। छत्रपति शिवाजी महाराज वीर बड़ा स्वाभिमान था। मुगलों को हराना सिखाया
0: मुगलों को हराया,
1: मुगलों को धूल चटाना सिखाया,
0: मुगलों को धूल चटाना सिखाया।
1: और जय भवानी का नारा गाकर दुश्मन को ललकारा था।
0: जय भवानी,
1: मातृभूमि की रक्षा में वो हंसकर जान वारता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर कविता है।
1: एक और है दीदी।
0: अच्छा, एक और है
1: जी दीदी,
0: चलिए सुनाइए जल्दी से।
1: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है।
0: बिल्कुल,
1: मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती।
0: बिल्कुल नहीं बेकार होती है,
1: कोशिश करने वालों की
0: कभी हार नहीं होती। तो ताली बजा दीजिए भाई इस बात पे। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमको क्या करना है? निरंतर कोशिश करना है। आज कम नंबर आए हैं, कल ज्यादा नंबर आएंगे, इसका प्रयास करते रहना चाहिए और अच्छे से मार्क्स लेके आना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि इस बार मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हम निराश होकर बैठ जाएं। हमेशा हमको प्रयत्न करते रहना चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत अच्छी प्यारी सी पोयम सुनाई है। और कल तो था हमारा प्यारा सा स्वतंत्रता दिवस, लेकिन हमारी जो छोटी सी सानिध्या है वो बहुत मतलब जो कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम आपने सुना होगा ना
1: जी दीदी,
0: हाँ, क्या किया था इन्होंने मालूम है बच्चों? अरे जल्दी ही अभी कारगिल, कारगिल का नाम सुना है कि नहीं? कारगिल फतह, कारगिल की जीत हुई थी ना
3: जी दीदी।
0: काफी ऊंचाई पे कारगिल एक ऐसी जगह है जहाँ पे चारों ओर जो माइनस डिग्री में टेम्परेचर होता है, और वहाँ पे हमारे जो शहीद थे वहाँ से उन्होंने ललकारा था दुश्मनों को और विजय भी हासिल की थी। उसमें से एक कैप्टन विक्रम बत्रा थे, उनकी जो है गाथा आज ये सुनाने वाले हैं। उन्होंने कहा था ये दिल मांगे मोर, यानी वो और भी बहुत कुछ करना चाहते थे। तो चलो हम सुनते हैं सानिध्या की जुबानी, और सानिध्या की तो भाषा बहुत प्यारी है और थोड़ी जी तोतली भी है। चलो अच्छा, आज कोशिश करना कि बहुत प्यार से सुनाना धीरे धीरे।
2: साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। दुश्मन ने कारगिल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया।
0: बिल्कुल कब्जा किया था।
2: उन चोटियों तो वापस लेने का कठिन दायित्व भारतीय सेना के वीर जवानों पर था। कैप्टन विक्रम बत्रा जम्मू कश्मीर की राइफल्स की 13वीं बटालियन में अधिकारी थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ाई दी और दुश्मन की मजबूत ठिकानों पर बहादुरी से हमला किया।
0: जी बिल्कुल,
2: कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5140 पर विजय प्राप्त कर तिरंगा फहराया। इस जीत के बाद उन्होंने रेडियो पर गर्व से कहा, यह दिल मांगे मोर।
0: हाँ, बिल्कुल कहा था उन्होंने कि इससे भी ज्यादा हम कर सकते हैं।
2: यह वाक्य पूरे देश में साहस और देशभक्ति का प्रतीत बन गया। कुछ दिनों बाद 0.4875 पर लड़ाई के दौरान उन्होंने अपनी घायल साथी अधिकारी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए वह वीर गति तो प्राप्त हुए।
0: जी बिल्कुल भाई।
2: लेकिन उन्होंने अपने साथियों और मातृभूमि की रक्षा का कर्तव्य अंत तक निभाया। उनके अदम्य साहस, नेतृत्व और सर्व सोच बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्रदान किया।
0: तो ये थे हमारे वीर विक्रम बत्रा, जो ऐसे बलिदानी थे कि अगर उनको और भी थोड़ा मौका मिल जाता, यानी कि वो जिंदगी की जंग हार गए थे अपने एक साथी को बचाने के लिए, अगर उनको थोड़ा सा और मौका मिलता, जिंदगी उनको और थोड़ा समय देती, तो वो और भी बहुत कुछ कर गुजरते देश के लिए। तो ये थे देश की रक्षा करने वाले वीर, कभी नहीं मरते, वो हर भारतीय के हृदय में अमर रहते हैं। कितनी अच्छी बात आज सानिध्या ने की, हमारा दिल तो जीता ही, साथ ही साथ जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी सानिध्या की बात को सुन करके प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। और आज सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि ये बच्चों का प्रोग्राम सुन करके लोग बच्चों को लेकर के हमारे पास आते हैं और उनका प्रोग्राम होता है। और इसी कड़ी में एक पेरेंट्स, प्यारे से पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो जो है हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं और हम उनका बहुत स्वागत करते हैं बच्चों, और चाहते हैं कि वो थोड़ा सा आ करके इस प्रोग्राम के बारे में बताएं ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सके, बच्चों को और भी सपोर्ट मिल सके। तो चलिए आज बातचीत करते हैं, हमारे बहुत प्यारे लिसनर्स हैं और हमेशा बच्चों की तारीफ करते हैं, खुद भी वो लगता है कि एक बच्चों की तरह ही है और हमारे बीच में आज बैठे हुए हैं। तो सर बताइए कि यह प्रोग्राम आपको कितना प्रेरित करा कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हमारे पास आने लगे।
4: सबसे पहले तो नमस्ते आपको और जी जी धन्यवाद मौका देने के लिए, साथ में जो भी श्रोता सुन रहे हैं जी, उन सबको नमस्ते और सभी बच्चों को प्यार।
0: अरे वाह, तो एक बार बच्चों एक बार फिर से ताली बजा दीजिए।
4: ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार है और बच्चों के लिए सीखने का अवसर प्रदान करता है, प्रेरणादायी है और इससे जो है बच्चों में व्यक्तित्व
0: विकास होता है। जी बिल्कुल, हमारे बच्चे आते भी हैं, हम कभी बच्चों से ये नहीं कहते कि बच्चों इस तरीके का प्रोग्राम लाना, लेकिन वो जब सुनते हैं इस प्रोग्राम को तो खुद ही प्रेरित हो जाते हैं और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम लेकर के वो हमारे बीच उपस्थित होते हैं।
4: गोंडा जैसे छोटे शहर में
0: जी,
4: ये निश्चित रूप से आप और आपकी टीम बहुत ही बधाई की पात्र है कि उन्होंने बच्चों को एक प्लेटफार्म दिया कि वो अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा का विकास कर सके
0: जी,
4: और समाज में प्रतिनिधित्व कर सके
0: जी,
4: और
0: बिल्कुल
4: आगे भी बच्चों को जो है प्रेरणा प्रदान कर सके कि हाँ कुछ स्वयं से जो है केवल स्कूली शिक्षा ही नहीं, स्वयं में भी कुछ शोध करके कुछ करके सीख करके आगे बढ़ना है।
0: तो हमारे बच्चे इतना प्यारा बोलते हैं और कोई इनकी ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस आकर के यूं ही बस दीदी से मिल करके इनको बहुत अच्छा लगता और ये सीख जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो काफ़ी समय से इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और उनकी जो प्रतिभा है उसको हम बहुत ज़्यादा सराहते हैं कि वो जिस स्कूल के बच्चे हैं जहाँ भी जाते हैं और बोलते हैं तो कहते हैं ये किसने आपको सिखाया है, यहाँ किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन वो खुद ही यहाँ से सीख करके जाते हैं और अच्छे अच्छे स्कूल्स में प्रोग्राम देने के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है। तो बस यही हम चाहते थे कि हमारे बच्चे जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं घरों में उनको एक स्टेज मिल सके, एक मौका मिल सके, एक प्लेटफॉर्म मिल सके और वो अपनी प्रतिभा को और भी ज़्यादा मुखरित कर सकें। जी आपका बहुत बहुत, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इस तरह हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की आपने।
4: एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी जी
4: बुलाने के लिए और सभी बच्चों को प्यार और सभी श्रोताओं को नमस्ते
0: जी। थैंक यू सर। तो अब भाई किसकी तरफ चले, हम चलते हैं बलराज की ओर। बलराज कहते ही ना मेरे अंदर जैसे बल का और शक्ति का संचार हो जाता, मैं ऐसे बड़े उससे नाम लेती हूँ कि मैं चलती हूँ अब बलराज की ओर। और बलराज आज क्या सुनाने वाले हैं?
5: दीदी मैं रामधारी सिंह दिनकर की शक्ति और क्षमा सुनाने वाला हूँ कविता।
0: रामधारी सिंह दिनकर की शक्ति और
5: क्षमा।
0: क्षमा, तो चलिए सुनते हैं हम बलराज जी से उनकी एक प्यारी सी कविता।
5: क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याध सुयोधन तुमसे कहो कहाँ का भारा। क्षमाशील हूँ रिप समझ तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही।
0: ओहो।
5: अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। तीन दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह दर त्राही त्राही करता आग से गिरा शरण में, चरण पूछता दास्ता ग्रहण की बंधा मूड़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता जिसके पीछे जब जगमग है।
0: वाह भाई वाह, बहुत सुंदर कविता है। देखिए हमें याद आ गया कि जो सुंदर कांड का पाठ है और उससे भी कुछ जो है पंक्तियां ली गई हैं कि वो उसको अभिमान था सागर को, लेकिन जब वो प्रभु श्री राम ने धनुष ताना तो वो अपना सारा अभिमान छोड़ करके और प्रभु की शरण में खड़ा हो गया। तो चलिए यही तो है महत्व के, एक थोड़ा सा विनय भी होना चाहिए मनुष्य के अंदर, और जब विनय काम नहीं आए तो वहाँ पे थोड़ा सा भय भी दिखाना चाहिए, यही पौरुष कहलाता है। तो हमारी अब फिर से तैयार हो गई हैं सानिध्या। सानिध्या अब की बार क्या सुनाने वाली हो?
2: दीदी कहानी।
0: कौन सी कहानी?
2: दीदी रानी लक्ष्मी बाई।
0: ओहो, रानी लक्ष्मी बाई की कहानी सुनाने वाली है हमारी छोटी सी सानिध्या। और चलो सुनते हैं इनकी रानी लक्ष्मी बाई की कहानी। रानी लक्ष्मी बाई की कहानी बच्चों सुनिए कि नहीं? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी संसद तावन में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह। हमने सुनी कहानी।

0: बाबू हो गया। वह लड़का डर गया और मदद के लिए पुकारने लगा। मनु ने बिना एक पल की देर किए अपने घोड़े तो तेजी से दौड़ाया। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से और साहस से उस बेताबू घोड़े को लौटा और अपने मित्र को सुरक्षित बचा लिया। यह देख सभी लोग मनु की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। तभी से सबको विश्वास हो गया कि यह नन्ही बच्ची आगे चलकर महान वीरांगना बनेगी।
1: जी बिल्कुल, देखिए छोटी सी मनु थी, तो मनु यही कानपुर में पली बढ़ी थी, अपने उत्तर प्रदेश में कानपुर में ही नाना जी थे उनके साथ, वो नाना की मुँह बोली बहन कहलाती थी, और वहीं उसने तीर तलवार घुड़सवारी सब कुछ सीखा था, है ना। और फिर छोटे पर ही उनका विवाह भी हो गया था, लेकिन उस समय अंग्रेजों का पीरियड था। तो ऐसे ही बहुत सारी उनके जीवन की घटनाएं हैं। और उनको मारा कैसे था बताएं, बहुत ज़्यादा वीरांगना तो थी ही, एक नाला आ गया था उनके सामने, बड़ा सा नाला था, तो उनका जो घोड़ा था वो पार नहीं कर पाया था, बस वहीं पर अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया था। हाँ, और उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। तो ऐसे ही बस वो बहुत ही साहसी थी, हमेशा सूझबूझ से काम लेती थी, और इस तरीके से वो बचपन से ही सीखा था उन्होंने सब कुछ। देश रक्षा की भावना भी बचपन से विकसित हुई, अंग्रेजों से लड़ने की। मालूम है उस समय जब इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था, उस समय लड़कियों के ऊपर बहुत पाबंदी रहती थी, वो लड़कियां घर से नहीं निकलती थी, लेकिन मनु जो थी उन्होंने जितनी भी उनकी सहेलियां थी या स्त्रियां थी उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि वो देश की रक्षा के लिए एकजुट हो जाएं। और मालूम है बहुत सारी उनकी सखियां जो थी वो रानी का वेश बना करके युद्ध भी किया करती थी, है ना। तो कोई पहचान नहीं पाता था किसमें से रानी कौन है और साधारण महिला कौन है। इस तरीके से उन्होंने अपने देश को बचाने में योगदान दिया था। तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम उनको भी याद करें, उनको भी नमन करें, उनको भी अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि दें। तो चलिए चलते हैं, हम बलराज हमसे कह रहे हैं कि अब मेरा भी नंबर आ रहा है, कुछ और लेकर के आए हैं बलराज। बलराज कुछ और लेके आए हैं आप?
2: जी दीदी।
1: अच्छा, तो सुना दीजिए
2: दीदी। आज रामकृष्ण परमहंस की
1: ओ, उनकी भी पुण्यतिथि है। अच्छा, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ साथ अब आज रामकृष्ण परमहंस जी की भी पुण्यतिथि है, ये बात तो हमें मालूम नहीं थी। सॉरी बच्चों, इतने सारे काम होते हैं और ये जो महत्वपूर्ण काम होते हैं पता नहीं क्यों हम उनको ही भूल जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है, कोई ना कोई इन बातों को याद रखता है। मुझे इसी बात की बेहद खुशी होती है कि मुझे याद रहे ना रहे, पर हमारे बच्चों को ये चीज़ें खूब याद रहती हैं, और वो पूरी तैयारी से आते हैं हमको सुनाने के लिए और हमको आगे बढ़ने में प्रेरित करने के लिए। तो चलो चलते हैं बलराज जी से और देखते हैं रामकृष्ण जन्म की पुण्यतिथि के अवसर पर क्या सुनाना चाहते हैं।
2: रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 में कामारपुकुर पश्चिम बंगाल में हुआ था।
1: बंगाली थे ये।
2: उनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में काली माता की पूजा करते थे। कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जी काली माता की भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि कभी कभी समाधि जैसी अवस्था में चले जाते थे।
1: और मैंने सुना है कि उनको साक्षात दर्शन भी दिया था काली माँ ने, मैंने ऐसा सुना है जी।
2: उनकी पत्नी का नाम शारदा देवी था, जिन्हें बाद में उनके अनुयायियों ने माँ शारदा का
1: दर्जा दिया
2: था।
1: हाँ।
2: उन्होंने गले के फेफड़े से, मतलब उनके प्रसिद्ध शिष्यों में से एक नरेंद्रनाथ दत्त थे, जिन्हें आप दुनिया
1: स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानती है जी।
2: वे गले में फेफड़े होने के गले के कैंसर से
1: फेफड़े का कैंसर था उनको
2: गले का
1: गले का
2: गले के कैंसर से
1: ग्रसित हो गए थे।

0: हो गए थे और वो कोलकाता में शरीर त्याग दिए थे।
1: लेकिन उन्होंने मतलब इतने बड़े भक्त थे कि सुनते कि उन्होंने अपनी जिह्वा भी उनको अर्पित कर दी थी, और उसके अलावा उनको काली माँ ने साक्षात आकर के दर्शन भी दिया था। तो ऐसे ऐसे भाई हमारे देश में संत पड़े हुए हैं जिनके बारे में क्या ही कहा जाए कि उन्होंने बहुत तपस्या की और हम सबको प्रेरित भी किया। उसी में थे राम क्या नाम है नरेंद्र, जिनका नाम आगे चलकर क्या था,
0: स्वामी
1: विवेकानंद, और उन्होंने अपने गुरु के नाम पर राम कृष्ण परमहंस आश्रम की स्थापना की। आज भी बहुत जगह राम कृष्ण परमहंस जी के आश्रम है, हमारे लखनऊ में भी तो है, एक हॉस्पिटल भी उनके नाम का बना हुआ है ना, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल। वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको हम देखते हैं कि वो जो संत के वेशभूषा में रहते हैं।
0: दीदी उनके शिष्यों ने रामकृष्ण मिशन भी चलाया था।
1: बिल्कुल वही कहा, और वहाँ पे निशुल्क इलाज भी होता है आज भी। तो चलिए ये तो बहुत अच्छी बातें हो गई हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने हमें बहुत ज़्यादा पुरानी बातें बताई और बताया कि हमारे देश में कैसे कैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है। तो इसी कड़ी में फिर हमारे साथ देशराज जी हैं। देशराज जी अब क्या बताएंगे आप?
2: दीदी आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, तो इस अवसर पर मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा।
1: तो चलिए सबसे पहले तो हम उनको नमन करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि, आज के दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था।
2: अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था
1: जी।
2: वे भारत के महान राजनेता, कवि और वक्ता थे
1: जी।
2: वे अपनी प्रभावशाली सरल व्यक्तित्व और राष्ट्र भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे
1: जी।
2: वे एक प्रसिद्ध कवि भी थे, उनकी कविताएं देशभक्ति और संघर्ष से परिपूर्ण थी। वे 3 बार पीएम बने, 1996 में थोड़े समय व 1998 व 1999 में पूर्ण कार्यकाल के लिए बने। उनके कार्यकाल में पोखरण में परमाणु बम परीक्षण हुआ। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने देश का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को बढ़ावा मिला। 27 मार्च 2015 को उनके उत्कृष्ट सार्वजनिक नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया
1: जी।
2: उनकी जयंती भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 16 अगस्त 2018 में हो गई।
1: ओ तो बच्चों एक बार ताली तो हो जानी चाहिए, एक बार प्यारी सी तालियां बजा दो। और इसी के साथ लेते हैं एक हम छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़े से थक गए हैं और हम इनको रिफ्रेशमेंट करा करके वापस फिर लाते हैं और फिर ऐसे आपका मनोरंजन करते हैं। तब तक के लिए
3: चकरक चीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचक चो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडुम चकडुम चिकिचक चो।

0: तो लीजिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी बच्चों को लेकर के अपनी टोली को लेकर के एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। अब हमारी छोटी सी सानिध्या का नंबर आ गया है और सानिध्या अभी आपके पास क्या बाकी रह गया है जो आप
1: अब कहानी
0: अभी कहानी बाकी है। ओह माय गॉड देखो तो कौन सी कहानी। ओहो महर्षि वाल्मीकि के जीवन पे कहानी लेकर के आई है आज हमारी सानिध्या। तो देर मत करो जल्दी से सुना दो क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं वाल्मीकि के बारे में हमारी सानिध्या बताने वाली है कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य।
1: बहुत समय पहले रत्नाकर नाम का एक डाकू
0: जंगल रत्नाकर नाम का एक डाकू रहता था जंगल में।
1: राहगीरों तो लूट कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था।
0: बिल्कुल।
1: एक दिन उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने पूछा जिस पाप के लिए तुम लूटो तो लूटते हो क्या तुम्हारा परिवार उस पाप के लिए भागीदार बनेगा। रत्नाकर ने घर जाकर अपने परिवार से ये प्रश्न पूछा। परिवार के सभी लोटों ने कहा हम तुम्हारा परिश्रम का फल तो स्वीकार करेंगे लेकिन तुम्हारे पाप का भागीदार नहीं बनेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: यह सुनकर रत्नाकर का हृदय बदल गया। वे वापस नारद जी के पास आए और उनसे जीवन से सही मार्ग पूछा। नारद जी ने भगवान का नाम स्मरण करने के लिए तो कठोर तपस्या
0: कि राम राम किया करो राम राम किया करो
1: तपस्या और निरंतर साधना से उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। समय के साथ वही रत्नाकर महान ऋषि वाल्मीकि बने। उन्होंने संसार का अमूल्य ग्रंथ रामायण की रचना कर देकर मानवता तो सत्य धर्म और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया।
0: जी बिल्कुल बहुत सही कहानी आपने बच्चों को सुनाई है सानिध्या। क्योंकि बस देखिए वो गलत काम तो करते थे क्योंकि वो लोगों को लूटते और लूट करके जाके अपने परिवार का भरण पोषण करते। तो नारद ने कहा कि बताइए आप इतना ये पाप कमा रहे हैं है ना और इस पाप का भागी आपका परिवार बनेगा। तो गए रत्नाकर पूछा जाके कि जो पाप हम कर रहे हैं।
1: नहीं, मैं तो आप पोएम सुना
0: दूं। हाँ आप अभी सुनाना तो पहले बात तो मेरी पूरी हो जाने दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तुम्हारे पाप के भागी क्यों बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे घर में तो कोई ये नहीं कह रहा कि हम पाप के भागी बनेंगे तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुमको मोक्ष का मार्ग अपनाना चाहिए यानी ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या करना चाहिए उन्होंने कहा बस केवल कुछ नहीं राम का नाम स्मरण करो। तो वो भूल गए आगे की कहानी तो मैं बता रही हूँ ना और राम राम की जगह वो मरा मरा कहने लगे। लेकिन उस मरा मरा शब्द में भी बहुत शक्ति थी है ना। धीरे धीरे करते उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्होंने सबसे बड़ा ग्रंथ यानी कि रामायण की रचना कर डाली और उसी रामायण के आधार पे फिर हमारे तुलसीदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था
2: रामचरितमानस
0: लिख डाली थी। तो ये थे हमारे महर्षि वाल्मीकि और उनके जीवन की गाथा। तो चलो अच्छा फिर से सुनाना चाहती हो कोई कविता है तुम्हारे पास।
1: जी दीदी।
0: अब थोड़ा सा रुक जाओ अभी और बच्चे हैं कल। अच्छा ये बताओ कि स्वतंत्रता दिवस था तो आप लोगों ने क्या क्या किया।
2: दीदी हम लोगों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और एंजॉय किया।
0: एंजॉय किया लड्डू मिले थे स्कूल में।
3: जी दीदी
0: हम लोग भी जब छोटे थे ना तो हम लोग को लड्डू का बहुत इंतजार रहता था और अब तो जो बहुत जगह बिस्किट दे देते हैं टॉफी देते हैं चॉकलेट देते हैं लेकिन उस समय हमारे लोगों के टाइम पे केवल लड्डू ही दिया जाता था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे लड्डू ही दिया जाता था और कितना लड्डू मिलता था 4 लड्डू और हम लोग बस ध्यान सारा लड्डू पे लगा के रखते थे कि अभी बस ख़त्म होगा जैसे ही सारा हो जाता था मतलब राष्ट्रगीत राष्ट्रगान सब हो जाता था उसके बाद बस प्रतीक्षा रहती थी जल्दी से ये पूरा हो हमको 4 लड्डू मिलते थे और वो लड्डू पा करके हम लोग इतना खुश होते थे। और खाते हुए मस्ती से घर आते थे। और समय मालूम है बच्चों क्या होता था, एक रैली टाइप की भी निकाली जाती थी जिसमें खूब सारे भारत माता की जय के नारे लगाए जाते थे और उसमें इतने प्यारे प्यारे गीत होते थे कि कुछ गीत तो मुझे अभी तक याद है बचपन के। कहो तो सुना दे।
3: जी दीदी।
0: तो एक गीत मुझे याद है जो हमारी एक टीचर जी थी वो बहुत गाती थी, गा करके हम लोग को सिखाया करती थी। दीदी हमें आजादी बिना खड़के बिना।

दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वह रे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वाह, कितना सुंदर ये गाना था, मुझे आज तक याद है। तो चलिए भाई, अभी तो बहुत लंबा समय है और हम बाद में फिर से बात करते हैं। और चलिए चलते हैं, हम फिर हमसे नाराज हो जाती है, देखिए कितना ऐसे मुंह बनाती है, दीदी हम आपसे बहुत नाराज हैं, आप मेरी कविता नहीं सुन रही, मैंने टोक दिया ना, देखिए फिर से मौका दिया है ना, तो चलो ताली बजा के स्वागत करो, जल्दी से ताली बजाएगी। तो चलो सुना दो तुम अपनी कविता।

0: निर्माण।
1: वाह भाई, सब बच्चों ताली बजा दो हसानिद्या के लिए, कितना प्यारा गाया इन्होंने, बहुत प्यारा भाई, वाह वाह, मजा आ गया सुन करके। और चलिए भाई, बाकी और सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ सक चुके हैं हमारे साथ। आज ठंडी हवा का झोंका, समर तो नहीं है, उसकी बार बार हमको याद आ रही, क्योंकि वो बीमार हो गया है, इस समय वायरल चल रहा है। हम बच्चों से बार बार कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस कड़ी धूप में ना निकलें, जितना हो सके पानी पीते रहें और बस अपने को बचाएं, प्रोटेक्ट करें, ताकि बीमारी हमसे दूर रहे। तो हमारे साथ हाजिर हैं हमारे नन्हे मुन्ने तो नहीं कहेंगे, अब ये बड़े हो गए हैं। तो अथर्व जी हमारे साथ हैं, सत्यम जी हमारे साथ हैं, श्लोक जी हमारे साथ हैं और यश राज सोनी भी हमारे साथ हैं। ये सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और चलिए चलते हैं हम किसकी तरफ चलें, चलिए देशराज की तरफ चलते हैं। और देशराज अभी कुछ और सुनाने वाले हैं।
2: जी दीदी,
1: क्या सुनाने वाले हैं?
2: आज मैं लियो टॉलस्टॉय की एक बहुत छोटी लेकिन गहरी कहानी सुनाऊंगा।
1: लियो टॉलस्टॉय की, ओके।
2: मनुष्य को कितनी जमीन चाहिए। एक किसान था पाहो, उसका मानना था कि अगर उसके पास बहुत जमीन हो जाए तो वह सुखी हो जाएगा। उसे एक जगह पता चली जहाँ कहा गया कि एक दिन में जितनी जमीन वह पैदल चलकर घेर ले उतनी उसकी हो जाएगी, बस शाम तक वापस उसी जगह पहुंचना होगा। पाहोम सुबह चल पड़ा, रास्ते में उसे लगा थोड़ी और जमीन ले लूं। वह आगे बढ़ता गया, फिर सोचने लगा इतनी अच्छी जमीन छोड़ना मूर्खता होगी, इसलिए और दूर निकल गया। जब सूरज ढलने लगा तो उसे याद आया कि वापस भी पहुंचना है। वह पूरी ताकत से दौड़ने लगा, शरीर जवाब दे रहा था लेकिन जमीन खोने का लालच उसे दौड़ता रहा। आखिरकार वह शुरुआती जगह पर पहुंच गया लेकिन वहीं गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। कहानी का सबसे मार्मिक अंत है, उसे अंततः जितनी जमीन मिली वह केवल 6 फीट थी उसकी कब्र के लिए। सीख, मनुष्य की जरूरत सीमित होती है लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं।
1: बिल्कुल, आज हम यही देख रहे हैं बच्चों कि हर व्यक्ति इतना लालची होता चला जा रहा है, उसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है जबकि उसको मालूम है कि साथ में कुछ नहीं जाना है। वो हाँ, खाली हाथ उसको वापस जाना है लेकिन फिर भी इसी के लिए, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, धन के लिए, पैसे के लिए वो लड़ाइयाँ करता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जितनी ज़रूरत है, जितनी नीड है, जिससे हमारा जीवन कायदे से चल सकता, अच्छे से चल सकता, हमको केवल उतनी ही लालसा रखनी चाहिए। तो देखिए हमारे छोटे बच्चे हैं तो ये कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं कि कहानी सुना के लियो टॉलस्टॉय की, कि हमको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं।
3: ये बहुत ही लंबी कहानी है, वैसे ही इसका समराइज्ड वर्जन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
4: हम लोगों ने 7th में पढ़ी थी और ये हम लोगों को बहुत अच्छी भी लगी थी।
1: जी जी, बहुत प्यारी कहानी है और इसमें बहुत गहरा संदेश भी छिपा हुआ है जिसको आदमी भूल जाता है, इसको भूलना।
3: और रशिया के एक बहुत ही फेमस ये राइटर रह चुके हैं, लियो निकोलायेविच टॉल्स्टॉय।
1: तो चलिए भाई, हमारे साथ बहुत सारे और दूसरे बड़े बच्चे, यानी हम सीनियर बच्चे उनको कहेंगे, जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ यशराज, आज यशराज काफ़ी बीमार हो गया था और काफ़ी समय के बाद हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो हम पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया था जो आप इतना ज़्यादा बीमार हो गए थे?
3: देखिए, जैसा कि हमारे इस पूरी दुनिया में चल ही रहा है, ये हम ह्यूमंस नहीं किया और इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहा है,
1: देखने
3: को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही मुझे भी थोड़ा सा उस पर, मतलब मुझे भी प्रभाव महसूस हुआ था। तो मैंने थोड़ा रेस्ट लेना इस दुनिया से अच्छा समझा था।
1: दुनिया से रेस्ट?
3: नहीं, ऐसी बात नहीं है।
1: हमको लाइफ में थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है।
3: इसमें थोड़ा सा वो अलग एसेंस था इस बात में।
1: चलिए आज क्या सुनाएंगे?
3: आज हम फिजिक्स की वैसी दुनिया में चलेंगे जो कि हमारे सपनों में, इमेजिनेशंस में होती हैं, लेकिन उसके कुछ चांसेस भी हैं एक्सिस्टेंस के।
1: जी,
3: द मल्टीवर्स के बारे में आपने सुना ही होगा। एक क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है हमेशा से फिजिक्स में, क्या हमारा यूनिवर्स ही अकेला है? नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एक ऐसा रेडियो प्रोग्राम जहां हम बात करने वाले हैं उन सवालों की जो हमारी इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को और चैलेंज कर देती हैं। आज का हमारा टॉपिक है द मल्टीवर्स थ्योरी। अब जरा एक बार इमेजिन कीजिए, हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसमें अरबों गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं और उन स्टार्स के आसपास काउंटलेस प्लैनेट्स हो सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल यह उठता है, क्या यह विशाल यूनिवर्स ही सब कुछ है या फिर हमारे यूनिवर्स के बाहर भी अनगिनत यूनिवर्सेस मौजूद
1: हैं? मुझे तो लगता है ऐसा है।
3: वही तो, आधे लोग को लगता है
4: तो ये एब्सोल्यूट इंफिनिटी यूनिवर्स है हमारा।
1: जी बिल्कुल, हमें तो लगता है कि ऐसी पता नहीं कितनी गैलेक्सी होंगी जो हम नहीं जानते हैं।
3: बट आप जरा एक बार ये सोचिए, हमारी जो ये धरती है, ये सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है वो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी क्लस्टर में झुकी है और लानिया का सुपर क्लस्टर में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, लानिया का सुपर क्लस्टर हमारे कॉस्मिक वेब में है, कॉस्मिक वेब एक यूनिवर्स में है। तो कोई ना कोई चीज, कोई दूसरे चीज में उससे जो बड़ी है उसमें है। अब ये बताइए यूनिवर्स किस में है, बस यहीं पे आ जाता है,
1: डाउट हो जाता है थोड़ा।
3: फिर वो जो मतलब एक इनफिनाइट स्पेस है, वो स्पेस भी कहाँ है, कहाँ है वो स्पेस?
1: वो पर्टिकुलर उसकी किसी स्पेस नहीं मालूम है,
3: उसकी कोई मतलब चीज होगी जिसके अंदर वो होगा।
1: जी बिल्कुल,
3: जब सारी चीजें, और अगर ऐसी बात है कि उसमें कोई चीज नहीं, वो खुद ही है, तब भी तो कोई जगह तो चाहिए, वो है कहाँ पर? इसीलिए यहीं से अराइज होती है द मल्टीवर्स थ्योरी। एक सोचिए ऐसी दुनिया जहाँ शायद ही किसी दूसरे यूनिवर्स पे अर्थ जैसी कोई प्लैनेट हो, जहाँ कोई दूसरा वर्जन ऑफ यू आप हो मौजूद हो और शायद वह वही सवाल पूछ रहा हो, क्या हमारे यूनिवर्स के बाहर भी कोई यूनिवर्स है। इसी फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी को समझने की कोशिश करती है द मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स आखिर है क्या? सबसे पहले ये समझते हैं कि मल्टीवर्स का मतलब क्या है। यूनिवर्स का अर्थ है हमारे लिए ऑब्जर्वेबल स्पेस टाइम मैटर एनर्जी स्पेस टाइम फैब्रिक, ये सब का विशाल एक कॉस्मिक सिस्टम। लेकिन मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट कहती है कि हमारा यूनिवर्स शायद अकेला यूनिवर्स नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स जो कि एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनके अलग अलग अपने फिजिक्स के लॉज हैं। लेकिन मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट कहती है हमारा यूनिवर्स शायद अकेला बिल्कुल भी नहीं है, इसके बजाय रियलिटी में मल्टीपल यूनिवर्स हो सकते हैं, शायद अनगिनत। इन अलग अलग यूनिवर्सेस को हम अक्सर पैरेलल यूनिवर्स या अल्टरनेट यूनिवर्सेस कहते हैं।
1: जी,
3: अब अगर मल्टीवर्स की थ्योरी हम समझें और उसमें मल्टीवर्स की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि इनफाइनाइट यूनिवर्स हो सकते हैं हमसे अलग, यानी इसका मतलब ये है कि एक छोटी सी पॉसिबिलिटी के लिए भी एक अलग यूनिवर्स होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ इस धरती, मेरा नाम है यशराज सोनी। अब मान लीजिए कोई दूसरा यूनिवर्स होगा, वहाँ पर मेरा नाम यशराज सोनी ना होकर कुछ एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी हम समझ
4: सकते हैं। पैरेलल यूनिवर्स,
3: मान लीजिए मेरा नाम कोई दूसरे यूनिवर्स में सिर्फ यश सोनी है, राज मेरे नाम में कभी लगा ही नहीं। तो उसके लिए भी एक अलग यूनिवर्स है, मतलब उस यूनिवर्स में सारी चीजें इस यूनिवर्स जैसे सेम है, बट एक चीज जो है वो है वो राज का डिफरेंस, वो मिडल नेम का डिफरेंस जो मेरे नाम का है, उसके लिए भी एक अलग यूनिवर्स है। और ऐसी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हर चीज के लिए है, तो यही होती है मल्टीवर्स थ्योरी। इस अलग अलग यूनिवर्स को हम अक्सर पैरेलल यूनिवर्स जैसा कि मैंने आपको बताया होते हैं, कहीं स्टार्स बनते ही ना हो, कहीं टाइम की नेचर अलग हो सकती है और थियोरेटिकली कहीं ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जहां हमारी रियलिटी से बिल्कुल अलग घटनाएं घट रही हों। लेकिन ध्यान रहे, मल्टीवर्स अभी भी एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फैक्ट नहीं है, ये एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस एंड थियोरेटिकली पॉसिबिलिटी है
1: जी,
3: जिसके अलग अलग मॉडल्स फिजिक्स में डिस्कस किए जाते हैं और हम इसे अभी तक प्रूफ इसलिए भी नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे यूनिवर्स के फिजिक्स के जो लॉज हैं वो अलग हैं और दूसरे यूनिवर्स के अगर कोई फिजिक्स के लॉज होंगे तो वो भी हमारे यूनिवर्स में होंगे, तभी तो हम उसको जान पा रहे हैं।
1: जी,
3: क्योंकि कोई चीज़ जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो हमारे दिमाग में। अब आप, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कोई भी एक अपना अपने आँखों को बंद आप कीजिए, आप लिसनर से सभी से कह रहा हूँ अपनी आँखों को बंद कीजिए और कोई नए कलर को सोचिए। आप कभी एक नए कलर को नहीं सोच सकते क्योंकि वो कोई ना कोई एक प्राइमरी सेकेंडरी या टेरिटरी कलर का कोई शेड होगा,
1: शेड होगा बिल्कुल,
3: क्योंकि आप उस कलर को सोच ही नहीं सकते। वैसी ही चीजें हैं,
1: एकदम सत्य।
3: फिजिक्स के लॉस को हम दूसरे यूनिवर्स के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, इसीलिए साइंस इसे प्रूव कर ही नहीं पा रहा है और शायद कभी ना कर पाए जब तक हम उसे देख ना पाए। वैसे हम अपने यूनिवर्स को भी पूरा नहीं दे सकते क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है वो ही उतना ही हम देख सकते हैं, क्योंकि लाइट, आप देखिए हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना था और उसने समय से लाइट जितना दूर तक पहुंची है, फिर जितना ट्रैवल करके हमारे तक आई है, उतना ही हम देख पाते हैं। मान लीजिए ल्यूटन जो स्टार है वो हमसे 12 लाइट ईयर दूर है, यानी अगर ल्यूटन ख़त्म हो गया तो उससे जो ट्रैवल होने वाली लाइट है वो हमसे 12 साल बाद हमें पहुंचेगी, तब हमें पता चलेगा कि ल्यूटन सही में ख़त्म हो गया। यानी कि आज मान लीजिए हमें पता चला है ल्यूटन खत्म, तो इसका मतलब यह है कि आज 2026 चल रहा है, यानी वो 2014 में ही खत्म हो चुका था, उसकी लाइट हम तक अब पहुंची।
1: बिल्कुल।
3: और इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि हम अपने यूनिवर्स को इतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये जो है यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि हम टाइम ट्रैवल, हम मतलब टाइम में पास्ट में जा सकते हैं, कोई बहुत दूर चीज़ है उसको भी हम, ल्यूटन को अगर हम अभी देख पा रहे हैं कोई टेलीस्कोप से, तो हम उसका पास्ट देख रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
3: टाइम ट्रैवल हम कर नहीं पा रहे, उसमें कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन कम से कम देख तो रहे हैं। वही एक बहुत ही बड़ी चीज़ है फिजिक्स की, और मल्टीवर्स इसी चीज़ को ब्रेक करता है।
1: चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। और इसी सफ़र में हमारे साथ अथर्व हैं, और अथर्व आज क्या सुनाने वाले हैं आप?
4: तो दीदी, आज का हम लोग मतलब जैसे आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़ा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। आज चलते हैं पॉलिटिक्स की दुनिया।
1: बच्चों को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए।
4: नहीं, नहीं, बच्चों को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे क्या है कि पॉलिटिक्स के बारे में जानना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, समझना
4: अभी से जान जाएंगे तो आगे चल के उनके लिए फायदा रहेगा।
3: आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो पॉलिटिक्स की दुनिया से भी आगे बढ़ के थे। उनके लिए पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज थी तो कि सिर्फ देश को चलाने का एक जरिया था, उनके लिए सबसे पहले था तो वो देश था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सत्ता तो खेल, सत्ता का जो खेल है वो तो चलता रहेगा, लेकिन ये देश और इसका लोकतंत्र ये हमेशा अमर रहना
1: चाहिए। अमर रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए, देश चलता रहना चाहिए।
4: बिल्कुल। तो आज एक क्वेश्चन से
1: मुझे तो बस तुम्हारी बातों से अंदाजा हो गया है कि आपने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री
3: अटल बिहारी
4: वाजपेयी जी के बारे में बात करने जा रहे हैं,
1: और इससे पहले भी बच्चों ने बहुत अच्छी बातें करी उनके बारे में, कविताएं सुनाई उनके बारे में भी।
4: और आज ही के दिन उनका निधन हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में आज उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे समय को देखते हुए। तो एक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं कि जैसे कोई ऐसा पॉलिटिशियन हो सकता है कि जिसकी पहचान सिर्फ उसके पार्टी से ही नहीं बल्कि उसकी आवाज या कविता से भी हो सकती है।
1: हाँ, उसके व्यक्तित्व से।
4: तो ये एक ऐसा नेता है जो पार्लियामेंट में विरोधियों से भी बहस करता है लेकिन साथ में अपनी पर्सनल रिस्पेक्ट भी बनाए रखता है। और ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जिसके समय में जब इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में अपनी पहचान मजबूत की थी, लेकिन वही नेता पाकिस्तान के साथ पीस की भी कोशिश कर रहा था।
1: बिल्कुल।
4: तो आप सभी जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, नाम तो सुना ही होगा। तो कहानी यही से शुरू नहीं होती है, बल्कि क्या था कि 25 दिसंबर 1924 जब उनका जन्म ग्वालियर में एक स्कूल टीचर के परिवार में हुआ था। अब आप सोचिए, मतलब एक विद्वान के घर में उनका जन्म हुआ था, जहाँ पर उनके परिवार जो उनका बिजनेस है वो एक तरह से टीचर के रूप में ही है। उनके टीचर पढ़ा लिखा करके अपना रोजगार चलाता है।
1: और बच्चों, एक मजेदार बात ये भी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उनके जो पॉलिटिकल जो करियर था उसकी शुरुआत हमारे पड़ोसी जो हमारा जनपद है अलग हो गया गोंडा से, बलरामपुर, वहीं से हुई थी।
4: जी, तो ये मतलब एक प्राउड करने वाली बात है। तो आगे जानते हैं।
1: और एक बहुत बात बता दें, क्योंकि मैंने सुन रखी है कि आपके गोंडा में जो पकड़िया मैदान है ना, प्रेम पकड़िया मैदान, बिनोद टाकीज के पास एक मैदान पड़ा हुआ, खाली प्रेस पड़ा हुआ है, वहां पर भी ये अपने जो भाषण दिया करते थे।
4: तो ये तो मतलब और ज्यादा प्राउड करने वाली बात है।
1: जी जी बिल्कुल।
4: तो आगे जानते हैं, उन्होंने जैसे फ्रीडम मूवमेंट जो 1942 में हुआ था और क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था उसमें भी वो ज्वाइन किए थे उसको, और फिर बाद में उन्होंने जर्नलिस्ट में, जैसे आप देखते हैं जो टीवी में न्यूज़ बताते हैं जर्नलिस्ट, उनके उसके रूप में उन्होंने काम किया था, लेकिन फिर 1951 में वो राजनीति की तरफ खींचे चले आए और उन्हें राजनीति कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगी।
3: देखिए, राजनीति कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजनीति में जब भ्रष्टाचार आ जाता है तब वो बुरी चीज बन जाती है।
1: तो इसी को तो हम लोग खत्म नहीं कर पा रहे।
4: उन्होंने 1977 में पार्लियामेंट में एक भाषण दिया था कि जब वो कहते थे कि जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी उनसे कहते थे कि मैं तुम्हें दिल्ली से एक रुपया भेजता हूँ, लेकिन जब वो दिल्ली से यहाँ तक आता तो वो 19 रुपया रह जाता है। तो उन्होंने कहा, राजीव गांधी ने, कि जब पैसा चलता है तो घिसता है। तो ये कहते हैं कि जैसे क्या है, इस दुनिया में मतलब इस भारत में भ्रष्टाचार आप कह सकती हैं अपनी चरम सीमा पर है। ये एक राष्ट्रीय,
1: ये एक जाता है वो हम तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा,
4: ये एक राष्ट्रीय रोग है कह सकती हैं, मतलब सोच सकती हैं भ्रष्टाचार इतना लोगों के अंदर फैल गया है,
1: चरम पे है।
4: तो बस यही है कि उन्होंने यही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करी थी। तो आगे जानते हैं, अब आया एक टर्निंग पॉइंट आता है 1980 का। 1980 में जब एक फेमस पार्टी जब बनी, आपको पता है उस पार्टी का नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और उन्होंने जब उस पार्टी का गठन हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके प्रमुख संस्थापक नेताओं में से रहे, मतलब सबसे जो मेन कह सकते हैं मिनिस्टर थे वो वही के थे। और आता है 1996 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन सिर्फ 13 दिनों के लिए बने थे,
1: 13 दिन की गवर्नमेंट थी उनकी।
4: अब सोचिए कोई नेता प्राइम मिनिस्टर बने, फिर बाद में वो दो हफ्ता भी ना ठीक से चल पाए, सिर्फ एक दिन रह गया था दो हफ्ता पूरा होने में, लेकिन फिर वो 13 दिन ही रह पाए। लेकिन फिर बाद में 1998 में वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद उन्होंने कोएलिशन पॉलिटिक्स के कॉम्प्लिकेटेड दौर में सरकार का नेतृत्व किया था, एक लीडरशिप उन्होंने निभाई थी। और उसी वर्ष इंडिया ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो सेकंड हुआ था वो उन्होंने किया था, और इससे इंडिया की जो कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी वो पूरे दुनिया के सामने निखर के आ गई थी।
3: देखिए एक बहुत ही एक अच्छी बात है, 1999 का कारगिल वॉर चल रहा था उस समय पर, और पाकिस्तान ने जो यूएस के उस समय के प्रेसिडेंट थे उनके पास एक कॉल किया था, और उन्होंने वो कहा था कि हम इंडिया पे न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो छोड़ने जा रहे हैं। फिर ये बात यूएस के प्रेसिडेंट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो उस समय के थे अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने बताई थी। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत अच्छा जवाब मुझे याद है, उन्होंने ये कहा था कि आई एम रेडी टू लूज द 1/3 पार्ट ऑफ इंडिया, बट आई वुड लाइक टू मेक यू अश्योर दैट पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू सी द टुमारोस सनराइज, उन्होंने ये कहा था।
1: बिल्कुल
3: मैं एक तिहाई भाग भारत का खोने को तैयार हूँ, लेकिन आपको ये आश्वासन देता हूँ कि पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा।
1: टिट फॉर टिट,
3: वो मिडनाइट कॉल था, लगभग 12 से 1 बजे के बीच में एक कॉल उनके पास आया था और उन्होंने ये आश्वासन दे दिया था।
4: और 16 अगस्त आज ही के दिन,
1: मतलब वो एक समय था ना तब से जो है पाकिस्तान थोड़ा उसके अंदर थोड़ा डर बैठ गया था,
3: और तभी से ये तो
4: लेकिन फिर आती है वो डेट जो पूरी दुनिया को, मतलब कह सकते हैं पूरे भारत को हिला के रख देती है, 16 अगस्त 2018 को उनका सिर्फ 93 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई थी, और वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं जो हम लोग अपने दिलों में रखते हैं।
3: एक और चीज़ कही जाती है कि 15 अगस्त का दिन था, उस समय इंडिपेंडेंस डे पूरा भारत मना रहा था, और जैसे ही वो 15 अगस्त का दिन बीता अगले ही दिन वो हमारे भारत का एक बहुत ही एक आन बान शान वो भी
1: तो देखिए समय, हाँ समय हो रहा है हमारे, हम विदा लेते हैं आपसे और मंच देते हैं हम ओपन माइक को, और आपसे कहते हैं कि अगले हफ्ते हम आपसे फिर रूबरू होंगे, और तब तक आप सुनते रहिए
4: रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
0: चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडुम चकडुम चिकिचकचो।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वही श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: आखिर की धड़कन। और आज का कार्यक्रम चल रहा है जी ओपन माइक, अपना टैलेंट अपना एफएम। और ये वो समय होता है जिस समय गोंडा की ही नहीं बल्कि गोंडा से बाहर की भी प्रतिभाएं आती हैं। तो आपका बहुत ही स्वागत है आप ही के कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। मैं हूं आप सभी के साथ आपका दोस्त मनु। और कुछ ही दिनों में हम ऐसा जुड़ने वाले हैं आपके फेवरेट वाले आरजे यानी आरजे
1: अदनान। जुड़ गए भाई, और क्यों नहीं जुड़े रहेंगे, जिस तरह जुड़ा हुआ है 15 से 16 अगस्त।
0: क्या बात है।
1: सो अभी दूसरा ही दिन है और कल की देशभक्ति थी, वो जो फीलिंग्स थी अभी बहुत ज्यादा ताजी ताजी है।
0: एकदम एकदम। तो किस तरीके से मनाया आपने सर? सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे।
1: देखिए, मेरा जो मनाना होता है वो हमेशा का ये है कि मॉर्निंग शो होने के नाते हम सभी के साथ मिलकर के हमेशा मनाते रहते हैं।
0: तो क्या बात है,
1: सबके साथ गया मिलकर के, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हम सब लोगों ने सुने और कुछ जुड़ी हुई बातें जो 15 अगस्त से थी वो सारी बातें हम लोगों ने की।
0: वास्तव में स्वतंत्रता दिवस का एक गजब का उत्साह देखने को मिलता है। और इस उत्साह में जब अपने भी शरीक हो जाते हैं तो ये उत्साह और बढ़ जाता है। जी हाँ, और हम सभी के साथ आपकी दीदी जी भी जुड़ चुकी हैं। जी हाँ, तो बहन जी प्रणाम आपको। दीदी प्रणाम।
2: हाँ, बहन जी बना दिया हमको।
0: मैं तो क्या बहन जी ना बनाए।
2: अरे दीदी हूँ मैं आपकी।
0: अच्छा ठीक है, तो दीदी है तो बहन जी है, मतलब रक्षाबंधन आने वाला है तो फीलिंग आ गई हमको।
2: बहन जी मालूम है कौन होती है?
0: अच्छा नहीं नहीं, मतलब बहन जी होती है। बहन जी कौन होती है? आप जो है वो किसी पार्टी की तरफ इशारा कर रही है,
2: ऐसा क्या
0: नहीं है।
2: तो ये हमारा प्यारा सा मंच है ओपन माइक, यहाँ मैं दीदी हूँ, मैं बहन जी नहीं हूँ।
0: अच्छा बिल्कुल, तो ठीक है, आज के बाद जो है वो आपको बहन जी कोई नहीं कहेगा सिवाय हमारे।
2: बिल्कुल।
0: तो कैसा रहा आपका कल का स्वाधीनता दिवस?
2: कल बहुत हमें मतलब प्राउड फील हुआ कि हम तो ये कहते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस एक दिन के लिए क्यों आता है। हम तो सोचते हैं कि हर दिन हर क्षण हमारा स्वतंत्रता दिवस ही है, और हर क्षण हमारे मन में जो है देश के प्रति जो भक्ति भाव है वो एकदम भरा हुआ होना चाहिए।
0: सही बात है, मतलब 365 दिन हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए, सिर्फ 15 अगस्त को।
2: एक दिन के लिए नहीं 15 अगस्त आता है हमारे जीवन में, तो हमेशा 15 अगस्त। हम तो अपने देश से बेहद प्रेम करने वाले लोग हैं।
0: बेहद प्रेम करने वाले लोग हैं, और हमारे साथ बहुत से लोग गौर भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, चलिए स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी। जी हाँ, आपका अपना नाम स्वयं बताइए तो अच्छा रहे।
3: सर मेरा नाम रीता पाठक है।
0: क्या बात है, और आप DMC के फर्स्ट बैच की बहुत ही प्यारी स्टूडेंट
3: हैं। DMC फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हूँ।
0: क्या बात है, हमारे साथ भाई एक होनहार युवक जुड़ा हुआ है।
2: ये है यशराज सोनी
0: जी, आपका स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो चलिए भाई, अभी कल हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया और उसकी खुशबू आज भी जो है वो कहीं ना कहीं वादियों में गूंज रही है। और अब जानते हैं अदनान सर से कि अदनान सर आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या जैसा कल महसूस कर रहे थे कुछ वैसा ही?
1: हाँ कह सकते हैं लमसम कुछ वैसा ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम हट ही नहीं पाए, वही बात चल रही है 15 अगस्त की।
0: हाँ मतलब, लेकिन तो, लड्डू कल मिला होगा? नहीं मिला।
1: नहीं, कल मिला था तो जल्दी जल्दी में हमने कहा थोड़ी देर बाद लेते हैं, वो अभी तक मिलवे नहीं किया।
0: मतलब लड्डू नहीं खाया आपने?
1: लड्डू हो गया
0: समझिए, मतलब स्वतंत्रता दिवस के दिन अगर लड्डू ना मिले तो बड़ा।
1: प्लीज रहने दी, इस पे मत बात करिए क्योंकि फिर मुझे अफसोस होता ही रहेगा, है ना, मूड पे फर्क आता है।
0: तो मतलब बाकी सबको मिला, आपको रीता जी मिला लड्डू?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपको मिला भाई साहब?
4: बिल्कुल
0: लड्डू मिला। आपने खाया दीदी?
2: बिल्कुल बिल्कुल, लड्डू कौन छोड़ता है?
0: मतलब हम
2: ये अदनान जैसे महान भाव जो लड्डू को छोड़ देते हैं।
0: मतलब हम चारों ने लड्डू खाए हैं, और हम और दीदी ने तो और भी वाले लड्डू खाए हैं। बाकी जो तीन है उन्होंने दूसरा वाला लड्डू अभी नहीं खाया है, और जल्दी ही खाएंगे, शीघ्र ही खाएंगे
2: जी। बिल्कुल।
0: तो सबसे पहले चलते हैं भाई रीता जी की ओर, क्या कुछ है आपके पास आज के लिए?
3: सर देखिए, अभी हमने कल ही स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो अभी पूरा, अभी तो दो चार दिन तो पूरा यही रहेगा।
0: हाँ।
3: और वो जो एक फीलिंग है स्वतंत्रता दिवस वाली
0: जी,
3: वो आज भी बरकरार है। तो मैं लता मंगेशकर जी का एक गाना गाना चाहूंगी,
0: अरे वाह,
3: मेरे वतन के लोगों।
1: क्या बात,
0: क्या बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत गीत चुना आपने।

0: वाह बहुत खूबसूरत,
1: क्या बात
2: है। मतलब वो इमोशन, वो बात। और ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें एक कहानी भी चल रही होती है और जज्बात भी कहे जा रहे होते हैं।
0: और मजे की बात तो ये है, ये सॉन्ग कभी पुराना नहीं हुआ। हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, गाते आ रहे हैं, पर आज भी लगता है जैसे जितनी बार सुनो ये नया ही है।
1: और मेरे पिताजी बताते हैं कि लता जी ने इसको गाया था पहली बार तो जवाहरलाल नेहरू फूट फूट कर रो पड़े थे। वो एहसास, और मुझे लगता है कि शायद किसी और गायिका ने इस गीत को छुआ तक नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके साथ न्याय सिर्फ और सिर्फ वही कर सकती हैं जिनको हम लता मंगेशकर जी कहते हैं। मतलब इतना पॉपुलर सॉन्ग लेकिन दूसरे किसी ने शायद रिमिक्स या टच करने की कोशिश नहीं करी।
2: बिल्कुल,
1: वास्तव में। और आपकी पंक्ति सुनी तो याद आ गया कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग लहू जिनका वतन के काम
0: आता है।
1: तो वास्तव में भाई वैसे लोग तो खुशनसीब होते ही हैं।
2: सही बात है। और फिलहाल इस संडे हम लोग खुशनसीब हैं, आपकी आवाज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है।
1: हाँ, बहुत बेहतर हो गई है।
2: गायकी पहले से ज़्यादा काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है,
3: कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई हो गया है यहाँ से जाने के बाद। वाकई में एक जो स्टेज फोबिया था वो बिल्कुल, मतलब कोई कुछ भी बिना किसी कागज के, अब मैं एक घंटे क्या दो घंटे भी बोल सकती हूँ किसी एक टॉपिक पे।
2: क्या बात है, लेकिन दो घंटे सुनेगा कौन आपको?
3: हमेशा मैं ऐसी बातें बोलूंगी
1: कि सब सुनेंगे। नहीं, कुछ
2: किडिंग
1: नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है।
2: सिस्टर के लिए दिक्कत नहीं हुई कि अब तो आप और ज्यादा सीख गई हैं, अब उनको और सुनने को पड़ेगा? अभी नहीं, तक वो बेचारी वैसे ही सुनती रही हूँ।
3: सबको सुनना पड़ता है मेरा घर में।
2: अपन बोलेगा तो सब सुनेगा।
3: मेरी चलती है मेरे घर में।
2: लो भाई,
1: लो भाई, आपकी चलती है कि महिला प्रधान
0: की बोलोगे कि बोलता है।
2: बिल्कुल। लेकिन लिटरली बहुत खूबसूरत चॉइस है आपकी सॉन्ग के लिए।
3: थैंक यू सो मच।
2: और एक बच्चा भी हमारे साथ बैठा है भाई, क्या महसूस कर रहे हैं आप?
4: बस इतना जान जाइए कि जो उत्साह हर साल रहता है उससे तो अब की बार कुछ ज्यादा ही था। सही
2: बात है।
4: ये स्कूल से आगे बढ़कर ही कुछ था, वो फीलिंग थी जो कि मैं ज्यादा यहाँ पे इस माइक से एक्सप्रेस नहीं करता,
2: नहीं हो पा सकता। बिल्कुल सही बात है।
4: अच्छा था वो।
2: अच्छा, तो कल कैसे सेलिब्रेट किया आपने, बताइए?
4: वैसे तो मैं स्कूल गया था और स्कूल में आप जानते होंगे एक बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम, मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था वो, जिसमें मैंने खुद से एक स्पीच ऐसी स्पीच बोली थी जो कि एक ऐसी आग लगाती है जो कि शायद वो माचिस की चिंगारी होती वो भी ना लगा पाए। वो आग सिर्फ ऐसी कविताओं से ही लग पाती है।
2: क्या बात है।
0: तो हम तो चाहेंगे कि वो कविता यहाँ पर भी सुनाइए ताकि हम सब के दिलों में वो आग लग जाए,
3: चिंगारी भड़क जाए,
0: चिंगारी भड़क
2: जाए। चलिए भाई, ये सुनाने जा रहे हैं हमको कल वाली कविता।
4: सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रो एक काव्यात्मक भाव में देना चाहूंगा।
2: अरे वाह।
4: सरहद के दुश्मनों को धूल चटाना मेरा काम है, सरहद के दुश्मनों को धूल चटाना मेरा काम है, मैं इस भारत का देशभक्त हूँ, वतन पे ये दिल कुर्बान है, मेरी रग रग में केवल और केवल बहता ये हिंदुस्तान है, मेरे भारत से जलने वालों को जलने दो, जलाना मेरा काम है, इस भारत में रहता हूँ, यशराज सोनी नाम है। आइए अपनी इस कविता को शुरू करता हूँ। मेहनत का सूखा पड़ गया मैं बरसात करने आया हूँ, मेहनत का सूखा पड़ गया मैं बरसात करने आया हूँ, आलस अधर्म और अश्लीलता पर घात करने आया हूँ, बदलाव की आशा में और इस कविता की भाषा में, ऐ मेरे देश के युवा मैं तुझसे बात करने आया हूँ, हे भारत के शेरो अब तुम जरा इस देश का ध्यान करो, चलो जीत लो दुनिया को रणचंडी का आह्वान करो, बहती नदियाँ की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो, वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो अंगार बनो, तुम प्यार बनो अंगार बनो, यलगार बनो ललकार बनो, हुंकार बनो टंकार बनो, फुंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो, जो यत फाड़ दे दुश्मन का वह राणा की तलवार बनो, इन आँखों में तूफान लिए कुछ करने का अरमान लिए, इन आंखों में तूफान लिए कुछ करने का अरमान लिए, मस्तक पर स्वाभिमान लिए, अधरों पर रण का ज्ञान लिए, तो मान बान और शान लिए, सम्मान मान और ज्ञान लिए, वरदान दान और जान लिए, निज प्राणों का बलिदान लिए, अब चलो समर में बढ़ जाओ तुम दिल में हिंदुस्तान लिए, एक नई कहानी लिख डालो, आंखों का पानी लिख डालो,
0: वाह,
4: एक नई

0: कहानी लिख डालो, आंखों का पानी लिख डालो, चूनर को धानी लिख डालो, मजदूर किसानी लिख डालो, झांसी की रानी लिख डालो, पन्ना बलिदानी लिख डालो, फौलाद जवानी लिख डालो, रणबीच रवानी लिख डालो, विपदा की छाती पर चढ़कर तुम आज भवानी लिख डालो, आज भवानी लिख डालो। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: क्या बात, क्या वास्तव में वो
2: कविता तो कविता होती है, मेन होता उसके पढ़ने का
1: अंदाज।
3: और नहीं, वास्तव में कविता जैसा कह रहे थे कि वो माचिस की तीली वो काम नहीं कर सकती है जो कविताएं कर सकती हैं, वास्तव में वैसे जोश एकदम से जो है अंदर।
0: और कल जब मैं पोडियम पर ये कविता कह रहा था तो मैंने जो वहाँ के मुख्य अतिथि थे और सभी जो वहाँ पे बैठे थे हमारे स्टूडेंट्स रिस्पेक्टेड टीचर्स, उनसे ये बात कही थी कि मैं 5 मिनट इस पोडियम पे हूँ और फिर आपके दिल में हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने दिल के दरवाजा मेरे लिए खोलेंगे या नहीं, लेकिन मुझे गीता का एक श्लोक याद है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरा काम है बस कर्म करना, फल की चिंता मुझे नहीं करनी है।
1: क्या बात,
2: कोई बात नहीं, यहाँ द्वार खुल चुके
4: हैं, यहाँ द्वार खुल चुके हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आपने उच्चारण और जो एक लय होती है कविता की,
2: बिल्कुल
4: जो इस बच्चे ने कहा, बहुत
2: बहुत उम्दा है। और यही माहौल था आज़ादी के वक्त जब ये लगा था कि हर इंसान हथियार क्यों नहीं उठा रहा है, तो लिखने वालों ने कलम उठाई थी और उठाने वालों ने फिर हथियार उठाया था।
1: सही बात,
2: तो कलम ने वो काम किया हुआ है आज़ादी के लिए।
4: मेरे पास इसी पे एक कविता है, कलम या की तलवार, ये मैं पढ़ना चाहूंगी।
2: प्लीज सुनाइए।
4: दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार।
2: दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार।
4: जी, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार। मन में ऊंचे भाव, मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार।
1: क्या बात,
4: अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम, कलम देश की बड़ी शक्ति है, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। उस समय के लेखकों ने जब ये स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, लोगों के मन में एक ऐसा भाव था कि हमको आज़ाद होना है, किसी तरह इन गुलामी की जंजीरों से हमें बाहर निकलना है। तो हमारे लेखकों का, हमारे कवियों का बहुत बड़ा योगदान था। ये ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसी ऐसी लाइन्स, ऐसे ऐसे कहानियां लिखते थे कि हर युवा में, हर एक बच्चे में, चाहे वो 15 साल का हो, 12 साल का हो, 20 साल का हो, एक जो व्यक्ति है 40, 45, 50, जिस भी उम्र का हो, एक ऐसी चिंगारी भड़क गई थी कि हम सभी को इस गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होना है। तो कवियों का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी स्वतंत्रता संग्राम में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने
3: भाई, कवियों के साथ साथ हम उन वीर बलिदानियों को क्यों भूले हैं, उनका भी तो योगदान है।
4: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उनको भूला नहीं गया है।
3: का काम तो हमारे कवि करते थे, लेकिन बाकी काम,
4: बिल्कुल बाकी काम हमारे आंदोलनकारियों का था, हमारे क्रांतिकारियों का था।
3: ऐसे ही एक गीत है जो बचपन से मुझे बहुत बेहद प्रिय था, और मैं चाहूंगी कि मनु जी,
1: जी जी
4: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
3: साथ दीजिएगा। अदनान जी,
2: जी जी
3: तैयार रहिएगा,
2: तैयार है हम जाने के लिए। अच्छा
3: बिल्कुल, तो ये है कि जब उन फांसी हुई थी, हमारे जो वीर जवान थे उस समय जब उनको ले जा रहे थे, तो उन्होंने ये गीत गाया था, मेरा रंग दे बसंती चोला।
2: वाह
1: क्या बात है,
3: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा

0: हम मरना 100 जन्मों के समान है।
1: एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है।
0: देख के वीरों

0: क्या बात है, ये तो कोरस हो गया
1: और अचानक अनएक्सपेक्टेडली कोरस हो गया।
2: ये कोई मतलब चुप नहीं रह सकता इस गाने को सुन कर के, और तुरंत जोश में भर जाएगा और जोश खरोश से गाएगा।
1: सही बात,
2: ऐसा भाव छिपा हुआ है इस गीत में
1: बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात बस थोड़ा सा अखरती हमेशा से, कि जब हम बात करते हैं सरदार भगत सिंह की, अशफाक उल्ला खां की, चंद्रशेखर आज़ाद की, गांधी जी की, तो एक ऐसी जमात, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जिसके बिना ये कुछ भी नहीं थे, और वो थी घर की महिलाएं।
2: बिल्कुल,
1: यूं तो सामने कुछ ही महिलाएं आ सकी, लेकिन घर अगर ना संभाला होता तो क्रांतिकारी क्रांति कैसे लाते। इस विषय में मुझे
2: याद आता है कि जब फांसी हुई भगत सिंह को, तो उनकी माँ ने मतलब जेल तक वो चली गई और वहाँ जाके वो मोटिवेट कर रही थी, मतलब उनको जरा सा भी ये नहीं था कि मेरा बच्चा है,
1: जवान
2: जवान बच्चा है जो अभी फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, वहाँ जाकर भी उन्होंने अपने बच्चे का हौसला बढ़ाया।
0: और वही एक तमन्ना,
2: हाँ, कई जितने भी बच्चे होते मैं इसी तरीके से उनको कुर्बान कर देती।
1: ये
2: जज्बा था हमारी देश की महिलाओं का,
1: और मुझे लगता है कि ये जज्बा जो है वो अभी और भी बात किया जाना इस पे बाकी है। लेकिन उससे पहले अब छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उस पार आते हैं, ये बात बहुत जरूरी है और ये हम करते रहेंगे। सुनते रहिए अपना 89.6 FM, और आज आप सुन रहे हैं संडे स्पेशल ओपन माइक, अपना टैलेंट
0: अपना FM।
3: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM, और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हाँ जी, तो एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन, खैर मकदम। कैसे हैं आप? से उम्मीद करता हूँ कि आप कार्यक्रम सुन रहे होंगे और निसंदेह इस छोटे से बच्चे ने अपने लिए हमारे दिल के दरवाजे खोल दिए हैं और हमने इनके लिए खोल दिए हैं। अब हम दोनों एक दूसरे के दिल में समा जाएंगे। कैसा रहेगा?
1: बहुत बहुत खूबसूरत हो।
2: हम आपके दिल में रहते हैं।
0: हम आपके दिल में रहते हैं और
3: किराया नहीं देते।
0: नहीं, बहुत अच्छा भाई। वास्तव में मतलब एक इंग्लिश में कहावत है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। इसको हिंदी में कहते हैं होनहार विद्वान के हो चीखने पात। तो ये बच्चा बता रहा है कि मतलब तरबियत अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं और कुछ मुस्तकबिल इंशाल्लाह बहुत शानदार होगा।
3: बेशक बेशक शानदार होगा। तो थोड़ा सा हम बात कर रहे थे उस वक्त की महिलाओं के बारे में, क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि फलाने ने इतना अचीवमेंट किया, ऐसा अचीव कर लिया, बट उसी घर में जो माँ होती है, जो घर को संभाल रही होती है, या वाइफ होती है, जब हस्बैंड कोई अचीवमेंट के लिए लगा होता है अपने वर्क में, तो घर भी तो कोई संभाल रहा होता है।
0: सही बात है।
3: बिना कोऑर्डिनेशन के तो नहीं हो सकता ना। अगर कोई तैयारी करने वाले बच्चे को खाना खुद से बनाना पड़े, पूरी झाड़ू पोछा बर्तन सब और मेहमानों को अटेंड, तो फिर वो पढ़ेगा कब?
0: सही बात।
3: सो ये एक आधा पार्ट हमेशा छूट जाता है। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी पार्ट है
0: और वो न्यू की ईट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। वास्तव में
3: बिल्कुल। तो ये घर की जो महिलाएं होती हैं, ये बिल्कुल इनके बिना तो मुमकिन नहीं होता है। वो चाहे माँ के रूप में हो, बहन के, पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, लेकिन रहती ज़रूर है।
0: नारी तेरे रूप ने कौ सब महान।
3: बेशक। सो
2: ये ऊपरी मन से कह रहे हैं आप? हृदय से?
0: नहीं, हम हृदय से बोल रहे हैं। ऊपरी मन से कभी कुछ कहा ही नहीं हमने आज तक।
3: लेकिन इनके हृदय में कोई हलचल नहीं हुई। कहते समय कोई हलचल नहीं
0: हुई। नहीं, वास्तव में मतलब नारी जो है वो पुरुष से ज्यादा है। मतलब नर नारी, ना भी खाली और रा भी खाली। तो जहाँ खाली है वहाँ नर, और ना पे या की मात्रा, रा परी की मात्रा।
3: बट एक एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है, ज्यादा कम कभी क्यों हम लोग कोट करते हैं? कौन ज्यादा है कौन कम, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है।
0: हाँ, ये बात तो। हाँ, दोनों का अपना अलग।
3: क्योंकि आप यहाँ बोल रहे हैं और बाहर आप किसी बेचारी छोटी छोटी लड़की को भी आप आंटी बोल के निकल जाएंगे परेशान करके, उसको गुस्सा लगेगा। तो ये दोगली पॉलिसी समझ में नहीं आती।
0: नहीं, छोटी बच्ची को
2: ये काम बाखूबी जो है मनु सर कर सकते हैं,
3: करते रहते हैं। तो हमारे पिछले कैंडिडेट जो हमारी बिटिया जो छोटी सी आती है, गाना गाती है,
0: शानवी है,
3: शानवी को भी इन्होंने दीदी बोल दिया था।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं भाई, शुरुआत अदनान जी ने महिला से की थी। तो थोड़ी सी चिड़ी थी, तो हमने कहा लाओ कुछ और चिढ़ाते
3: हैं। हाँ, ये होता है कि सीखने वाली चीजें होती है। जैसे फीमेल्स में हमेशा मैंने ये देखा है कि वैसे लोग कहते हैं बहुत सेंसिटिव होती है, रोने लग जाती है, लेकिन जब देखा है परिवार पे बड़ी परेशानी होती है, तो जिस तरह से डट कर खड़ी होती हैं, जब उस घर का आदमी भी हिम्मत हार जाता है,
0: सही बात है,
3: तब सामने आती कहती है कि हम नहीं कुछ होने देंगे, हम हैं, मतलब
2: बिल्कुल
3: हैं।
2: बिल्कुल, बस।
3: तो वो मैंने अपने घर से लेकर के कई घरों के एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं।
2: और सर, जब पुरुष टूटते हैं कहीं ना कहीं, चाहे घर हो चाहे बाहर, कहीं ना कहीं महिलाओं का सहारा लेते हैं, वो चाहे माँ के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे बेटी के रूप में।
3: बेशक।
2: उनका ही सहारा मिलता है उनको, और वो बहुत बड़ा साहस होता है।
0: पुरुष
2: के लिए जो उदाहरण है वो महारानी लक्ष्मीबाई जी का है। जी, हमारे जी, सामने।
3: बेशक।
2: गंगाधर राव जब चल बसे तो देखिए, एक छोटा सा पुत्र और पूरे देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी। और किस तरीके से वो लड़ाई के मैदान में उतर जाती थी और उसको अपने दामोदर को पीठ पर बांध करके और अंग्रेजों से तलवार लेकर के बराबर से लड़ाई करती थी। अपना घर बचाने के लिए नहीं, अपना देश बचाने के लिए।
1: पीठ पर अपने बेटे को बैठाया लेकिन कभी पीठ नहीं दिखाई।
2: अंग्रेजों ने 60,000 कीमत लगाई थी झांसी की। कल एक मेरे कॉलेज में बच्ची नाटक कर रही थी, तब हमको पता चला कि 60,000 केवल कीमत लगाई थी पूरी झांसी की। लेकिन उन्होंने ठीक मना कर दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दे सकती, इसके लिए मुझे चाहे खुद के साथ साथ अपने बच्चे को भी कुर्बान करना पड़े। वो अपने बच्चे को पीछे बांध के पीठ पर, नवजात शिशु ही था, बहुत बड़ा भी नहीं था,
0: था उनका।
2: हाँ हाँ, दत्तक पुत्र था, लेकिन मतलब बहुत छोटा था वो।
3: बेशक, सही बात है।
2: तो महिलाओं का योगदान हमारे समाज के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे देश के लिए बहुत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
0: नहीं होता भी है, और वो तो मैं अचानक याद भी आ गया मुझको कि आपने जब लक्ष्मीबाई की बात की तो इस दौर में उनको ना याद किया जाए या आज के टाइम ना याद किया जाए तो लगता है उनके साथ हल्की सी नाइंसाफी होगी।
4: एक छोटा सा गीत मुझे याद आ रहा है, मतलब पूरा तो नहीं, बस एक लाइन है। नारी जीवन झूले की तरह इस पार कभी उस पार कभी, नारी जीवन झूले की तरह इस पार

0: इस पार कभी उस पार कभी।
1: क्या बात है भाई, आपने नारी पर लक्ष्मी बाई जी पर बात कर डाली, तो मुझको एक चार पंक्तियां याद आ गई कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए
0: जी।
1: वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। शत्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके, शत्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। और वक्त आ पड़े तो शत्रुओं का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मी बाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। पहली बार अच्छा गौर कीजिएगा अदनान सर
2: जी,
1: अभी आप बात कर रहे थे तो अचानक मेरे जहन में एक प्रश्न आया कि जब कोई स्त्री लड़ती है तो कहता है एकदम मर्दों के तरीके से लड़ी, मतलब एक हिंदी साहित्य में एक ये
0: खूब लड़ी मर्दानी, वो तो
1: हम मर्दानी मतलब मर्दों की तरह लड़ने वाली, यानी लड़ने का काम सिर्फ मर्दों तक रखा गया हिंदी साहित्य में, स्त्रियों की तरीके से लड़ी ऐसा मतलब मैं कविता को पढ़ा तो भाव आया। तो हमने सर से पूछा, हमने कहा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो क्या सिर्फ पुरुष ही लड़ सकते हैं क्या?
0: चूंकि देखिए ये जो एक भाव है कि महिलाएं बहुत कोमल होती हैं, ईश्वर ने उनको बहुत कोमलता प्रदान की है, लेकिन उनके अंदर जो एक शक्ति दिया है उसका कोई तोड़ नहीं है, आज भी और पहले भी और आगे भी।
1: नहीं, हमने एक चीज सीखी कि
0: कोमलता के साथ साथ उनको ऐसी हार्डनेस दी है कि अब उसका कोई
3: परिस्थितियों में
0: किन्हीं भी परिस्थितियों में कितनी भी एडवर्स कंडीशन आ जाए, ये तो मैं खुद पर भी ये सोचती हूँ कि जो कंडीशंस मेरी लाइफ में अभी कुछ ही दिनों में गुजरे हैं, मेरे फादर ऑन बेड हो गए थे कुछ दिनों पहले, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था, मेरी मम्मा मेरे आंखों के सामने नहीं रही बस दो ही मिनट में, तो उस समय जैसे हम ढाल होकर खड़े हो गए पूरे फैमिली के लिए। मेरी बहन रो रही है मेरे सामने, वो थोड़ी सी दिल की बहुत कमज़ोर है, वो हॉस्पिटल कभी नहीं जाती, आज भी उसे कितनी भी दिक्कत वो जल्दी जाती नहीं है, वो कहती है कि मैं उन सब चीज़ों को देख नहीं पाऊँगी। मैं जान गई कि मेरी मम्मा नहीं है, अब उनको CPR भी मैंने दिया, हम जान गए वो नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहन को, क्योंकि उसका दिल बहुत कमज़ोर है, बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, हमने कहा मम्मा ठीक है तुम परेशान ना हो, अभी एम्बुलेंस आ रहा है, मम्मी ठीक हो जाएंगी, बेहोश हो गई हैं। तो उन सब समय में मैंने अपनी आँख में यहाँ से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक मेरी आँखों में एक बूंद आंसू नहीं, और मेरे पापा आउट ऑफ स्टेशन थे, वो पहुँचे रात में 8 बजे, उनको कुछ पता ही नहीं, वो जब गेट के सामने पहुँचे गली में तो उन्होंने देखा पूरा मजमा लगा है, पूरा विष्णुपुरी के सारे जितने भी लोग हैं, कौन हम लोग को जानता नहीं है, पाठक जी को पूरा मजमा लगा है, वो कहे भाई क्या हो गया इधर, उनको नहीं पता था कि मेरे ही घर ऐसी दुर्घटना घट गई। तो उस समय का जो एक हार्डनेस था वो मैं खुद में फील करती हूँ, ऐसी सभी महिलाएं हैं, केवल हम ही नहीं, हर घर की महिला जो एक बच्चे को जन्म दे सकती है अपने शरीर से,
2: बिल्कुल,
0: तो वो कुछ भी कर सकती है, उसके अंदर साहस की कमी बिल्कुल भी नहीं है, बस अपने ऊपर विश्वास रहे बस।
3: तो इसीलिए तो भाई हम जो हमारे देश की इतनी वीरांगनाएं हैं,
0: इसीलिए उनकी तुलना मर्दों, क्योंकि मर्दों को एक तरह से स्ट्रांग कहीं ना कहीं ईश्वर ने बनाया है, इसीलिए उनके ऊपर एक कंधे पे जिम्मेदारी दी जाती है परिवार की, और इम्पोर्टेंस किसी की कभी भी कम नहीं है, ना ही पुरुषों की ना ही महिलाओं की।
1: क्या बात,
0: क्योंकि आवश्यकता पर सभी की जरूरत लगती है।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने,
0: हर सुख दुख में कहीं ना कहीं एक मजबूत कंधे की भी जरूरत लगती है, वो एक पुरुष का कंधा हो सकता है, चाहे भाई का हो, पति का हो,
3: बस कर भाई पिता का हो, मुझे तो लाएगी क्या
0: नहीं मैम
1: नहीं नहीं नहीं, दोनों एक ही
2: सही बात है।
0: स्त्री की बात हुई तो मैंने कहा कि वो किसी भी तरह से कमजोर नहीं है,
2: बिल्कुल। और कहते भी है ना कि ये ऐसा माध्यम है जहां हम रियल इमोशंस साझा करते हैं
0: जी।
2: और हम तो कहते हैं कि जो रो दिया है इसका मतलब हम खुद की पीठ थपथपाते हैं कि उसको इतना हमने कंफर्ट फील कराया,
1: फील कराया,
2: ये बहुत अच्छी बात है। खैर काफ़ी सारी बातें हुई, मुझे लगता है अंत में अब जाने से पहले एक सॉन्ग सुना दिया जाए और उसके बाद फिर विदा ले लिया जाए
1: जी,
2: क्या कहते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: कौन सुनाएगा?
2: चलिए अब आप तो भाई आरजे मनु ही सुनाने वाले, सब सुना चुके हैं।
0: मुझे एक गाना बहुत पसंद है।
2: अरे तो प्लीज आप सुनाइए फिर।
0: अलीशा चिना जी का है, देखी है सारी दुनिया, ये सब लोग मिलके गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेड इन इंडिया, एक प्यारा।
2: बिल्कुल बिल्कुल प्लीज।

0: था है प्यार का सपना, दिल चाहे कोई अपना, मिल जाए घर एक साथिया, एक देसिया, मेड इन इंडिया, एक प्यारा सोनिया, बस दिल चाहिए बस मेड इन इंडिया।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई, नाइस, वाओ वाओ वाओ,
2: बहुत अच्छा। और
3: तो यही जज्बा होना चाहिए हम सब भारतीयों के दिलों में,
1: बिल्कुल।
3: और हाँ, भारत मतलब, के लिए
2: जो नहीं, और एक चीज और मैं जो कहता हूँ कि बच्चों को ये जरूर बताइए कि हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए इसलिए मनाते हैं, लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं और भी है कि हमको ये भी बताना चाहिए कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण हम गुलाम हुए। क्योंकि अगर वो कारण मौजूद रहे, अगर वो उपस्थित रहे, तो ईश्वर न करे, लेकिन हो सकता है हम पुनः उसी स्थिति में पहुंचे।
3: देखिए अभी
2: डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेजों ने अपनाई और उसको अपना करके उन्होंने हुकूमत जमाई, क्योंकि हम एकजुट नहीं थे, हम बटे हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा बटना था ये अंग्रेजों के लिए मतलब खाद का काम कर गया। तो कम से कम हम अपने बच्चों को कौमी एकजहती की बात सिखाएं, एकजुटता की बात सिखाएं, और सबसे बढ़कर ये बताएं कि इस दुनिया में अगर तुम इस देश में रहते हो तो सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए तुम्हारा देश है, तुम्हारे देश का संविधान है, बाकी सारी चीज़ें इससे इतर हैं, बाकी सारी चीज़ें इससे छोटी हैं। आज हमारा यूथ जो है, जो हमारी जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं एक अलग से डायरेक्शन में जाते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियन।
3: इतना कहिए कि विदेशी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं भटका रही हैं हमारे,
2: नहीं भटका रही हैं, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो ऐसा संदेश फैलाती है जिसको लेकर के मैं देखता हूँ कि लोग, तो भाई इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जैसा दूर रहिए, असली इतिहास को पढ़िए, असली किताबों को पढ़िए, ताकि आप जान पाएं कि वास्तव में किसका कितना योगदान रहा और किसने क्या कुछ किया।
1: बेशक, और फिलहाल इसी के साथ में अब हम विदा ले रहे हैं, और हम चाहेंगे कि अब जाते हुए ऑफ कोर्स कुछ कहना चाह रहे हैं आरजे मनु। अच्छा, तो आपका इशारा है कि भाई मैसेज पढ़ लिया जाए, चलिए बहुत अच्छी बात है। इशारों में आप बहुत कुछ कह जाते हो। सबसे गंदी आदत, जब कहा जाए तब नहीं गाते, जब नहीं कहा जाएगा तो जरूर गाएंगे।
2: आपने इशारा कह दिया, तुमने कहा भाई बोल दिया।
3: जब तक वो मैसेज पढ़ रहे हैं आप दो लाइनें गुनगुना दीजिए
2: एकदम। हम
1: वो मैसेज फिलहाल सविता शास्त्री जी का आया, आप सभी को दोपहर की राम राम आपको भी। और नव्या का है, आप मुझे थैंक यू मत बोला करिए दीदी, थैंक यू हम सबको बोलना चाहिए, आपकी वजह से हम लोग अच्छे अच्छे शिक्षा मिलती है, थैंक यू सो मच दीदी,
3: ओके
1: थैंक यू। एंड कमल नयन जी भी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है, वेलकम। इसके अलावा आप हमको सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो फिलहाल अब इजाजत दीजिए और वही बोलिए जो आप हर बार बोलते हैं।
2: आसमान वाले ने चाहा तो अगले रविवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में ठीक 1 बजे। तब तक सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।
1: ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना?
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
7: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
8: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
8: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: हाँ जी, अरे अरे अरे अरे अरे अरे भैया, खिड़की के बाहर देखो, क्या ही खूबसूरत और क्या ही जबरदस्त बारिश हो रही है। और ऑफ कोर्स आपकी घड़ी में वक्त हो चला है 2:08 बाद स्टूडियो क्लॉक दोपहर का। इतना जबरदस्त टाइम, हालांकि दोपहर आज महसूस नहीं हो रही है। घर से निकलने से पहले सोचा था काश काश बारिश हो जाए, और मेरी दुआ कबूल हो चुकी है। फिलहाल मेरी दुआ तो कबूल हो गई है, अब बारी है आपके दुआओं को कबूल करने की। बिकॉज वक्त हो चला है आपकी अपने आफ्टरनून शो इंडिया टॉप 20 का, जिसको लेकर आती हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजू नदी। मौजूद हूँ आप सभी के साथ मैं आपके अपने वाले स्टूडियो में। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और दोस्तों, आज का जो गुड आफ्टरनून वाला शो है ना, कि आफ्टरनून वाला शो है, वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसमें हम गाने एंजॉय करते हैं, बल्कि इसलिए और क्योंकि इसमें आपको याद आने वाले हैं अपने गुजरे हुए पल। हालांकि आप अपने गुजरे हुए पल याद करने के लिए 90s के, 80s के, 60s के गाने फरमाइश करते रहते हैं, लेकिन बॉस, आज वो वाली फरमाइश हम नहीं लाए हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं आपकी मेमोरीज, कुछ ऐसे खूबसूरत, कुछ ऐसे उम्दा, कुछ ऐसे बेहतरीन नगमे और गीत, जिनको सुनकर आपको भी याद आएगा कि अरे, ये तो हमने टीवी पर सुना था किसी वक्त में। फिलहाल अगर आप तैयार हो चुके हैं तो जरा अपनी कुर्सियों को पीछे कर दीजिए, टेबल से थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि मुझे पता है पहले गाने के साथ ही आपके हाथ और पांव दोनों ही अपने कंट्रोल में नहीं रहने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हमारी प्लेलिस्ट की तरफ, क्योंकि आप सुन रहे हैं टॉप 20 की सुपर डुपर हिट प्लेलिस्ट। 20 गाने बैक टू बैक, जिसके साथ होगी मेरी आवाज़ और आपके लिए बॉलीवुड की बहुत सारी बातें। तो आपने अपनी हाजिरी लगाइए चैट बॉक्स में, और ऑफ कोर्स आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर 20 की तरफ, और सचिन जिगर का सॉन्ग सुनते हैं हैप्पी एंडिंग से जी फाड़ के। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत गाना। पहला गाना एज यूजुअल हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, ताकि आपकी एनर्जी को हम पूरे शो के लिए बना सकें, आपके अंदर एनर्जी जगा सकें। तो एनर्जी के लिए तैयार रहिएगा, और ये एनर्जी के डोज के साथ हम मिलेंगे अगले गाने पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 FM presents इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 20।

0: फाड़ गया।
1: अंजी तो भैया दिव्या कुमार और शिफाली ने तो कह दिया है कि हिल के नाचो नाचो, और अगर आपने भी डांस वांस कर लिया है, आपके अंदर एनर्जी का डोज आ चुका है, तो मुबारक हो। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो इंटर टॉप 20 विद राजनीति, और ये है आपका अपना एफएम रेडियो 91.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हैप्पी यूनिक फिल्म से हमने आपके लिए बेहद स्पेशल सॉन्ग को डेडिकेट किया था। आशीष पंडित के लिखे हुए लिरिक्स हैं और आपको इसमें नजर आए थे आपके पसंदीदा गोविंद भाई साहब। आपको पता है गोविंदा के गानों में ना एक चीज बहुत खास होती है, वो ये होती है कि कहीं भी कैसे भी मूड में बैठे हो, अगर किसी को मूड सेट करना है, गोविंदा की प्लेलिस्ट लगा दो, इतना जबरदस्त माहौल बन जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई कुछ हुआ ही नहीं है, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, नक्को कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, वो है फुल ऑन मस्ती। और पहला ही गाना हमने मस्ती से शुरुआत कर दी है, तो क्या ख्याल है? चैट बॉक्स में चले, क्योंकि हमारे साथ चैट बॉक्स में दीपक जी जुड़ गए हैं हथियागढ़ गोंडा से और लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून श्रीमती मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करते हैं हम इंडिया टॉप 20 में। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, क्योंकि अगला सॉन्ग भी हाई बीट होने वाला है, और ये तो हमेशा से होता है कि दो से तीन हमारे सारे गाने एक से बढ़कर एक हाई बीट होते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा स्लो डाउन जाते हैं, बिकॉज जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे हम अपनी प्ले लिस्ट को ढालते हैं। और क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है, हालांकि अब बारिश हो रही तो सूरज नहीं दिख रहा, बट मुझे पता है सूरज तो है ना कहीं तो है, वो आपको दिख नहीं रहा तो बात अलग है। और इस तरोताज़ा वाले माहौल में आपके मूड को तरोताज़ा करने की जिम्मेदारी मैंने अपने इन छोटे छोटे से कंधों पर उठाई हुई है, तो आइए चलते हैं अगले सॉन्ग की तरफ और आप एंजॉय कीजिए। आजा सोनिए, कहाँ पे? डांस करने के लिए, डांस फ्लोर पे आजा सोनिए। फिलहाल के लिए सुनते रहिए इंटर टॉप 20, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए आप अपनी रेटिंग्स, अपने पसंदीदा गाने और ऑफकोर्स आपका अपना पसंदीदा सिंगर का नाम चैट बॉक्स में बताइए, साथ ही अपनी अटेंडेंस तो लगाइए जनाब। स्टे ट्यून्ड,
2: Radio Gana 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 19.

भैया हमसे ज्यादा तो सलमान खान ने आपको बुला लिया है, क्यों नहीं आ रही है? आना चाहिए ना, क्योंकि सलमान खान के दिन देर से चल रहे हैं। आज सोनिए दिल मांगता है दिल, दिल मांगता है दिल दार सोनिए आज सोनिए। और भैया ये गाना जो आप इंजॉय कर रहे थे ना, ये फिल्माया गया था आपके सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और राजपाल यादव के ऊपर अलका जी सोनू निगम की आवाज, साजिद वाजिद का म्यूजिक और जले शेरवानी के गाने थे, यानी कि बोल था। इतना खूबसूरत गाना सुनने के बाद किसके कदम रुकते हैं जगह पर, मेरे तो नहीं रुकते। और मुझे ये भी बताया कि मुझे डांस नहीं आता, फिर भी हम डांस कर लेते हैं, तो सोचिए आपका क्या होगा। वैसे डांस और झूमने में ना दो अंतर होते हैं, झूमना वो होता है जिस पे आपका कंट्रोल ना हो, डांस वो होता है जिस पे आपका कंट्रोल हो। और हम तो झूमने वाले लोगों में से हैं, यानी कि कोई भी गाना लगा देंगे तो उस पे बस झूम जाएंगे, क्रेजी क्रेजी ग्रूव ग्रूव। और ऑफकोर्स हमारे साथ दीपक जी लिख रहे हैं कि भैया यहाँ तो बहुत तेज़ धूप निकली है, तो ऐसा कीजिए आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए कुछ देर के लिए, गोंडा के अंदर शहर में आइए और देखिए बारिश रिमझिम रिमझिम गिर रही है। वैसे रिमझिम नहीं गिर रही, काफ़ी तेज़ गिर रही थी। एंड महेंद्र जी लिख रहे हैं शुभ दोपहरिया, 5G स्पीड आज होती मैम जी, क्या बात है भैया, मुझे 5G के टावर से जोड़ दिया गया फिलहाल, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड शुभ दोपहरिया, कैसे हैं आप? साथ ही कहा है आज तो आपकी बातों की स्पीड देखकर लग रहा है जैसे FM पर कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस दौड़ रही है, थोड़ा सा ब्रेक भी लगा लिया कीजिए मैम, वरना हम श्रोता को आपकी बातें पकड़ने के लिए कान 2x स्पीड पर सेट करने पड़ते हैं। वैसे आपकी इस हाई स्पीड बातें और एनर्जी की वजह से दोपहर का सारा आलस मिनटों में रफू चक्कर हो जाता है, ऐसे ही हंसते बोलते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपकी एनर्जी का जिम्मा जो हमने उठा रखा है, तो इसी के साथ अब क्या ख्याल है, अगले गाने की तरफ बढ़े बताइए। चलिए बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि हमको पता है जब तक आप चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, और आपके मैसेज आते आते हमारा 2-3 गाना तो हो ही जाएगा। तो फिलहाल आप अपने मैसेजेस करते रहिए और ऑफकोर्स अपनी अटेंडेंस लगाते रहिए। किस गाने में आपको सबसे ज्यादा आज मजा आने वाला है? हालांकि मुझे पता है कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आज आपको मजा आएगा, बट अगर कोई स्पेसिफिक सॉन्ग आपका बेहद पसंदीदा निकलता है तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, मुझे जरूर से बताइएगा कि ये वाला गाना आपको कुछ ज्यादा पसंद आया है। तो फिलहाल आइए चलते हैं और एंजॉय करते हैं सॉन्ग नंबर 18, कर ले बेबी डांस। जी हाँ, सुनते रहिए मुस्कुराते।

और ये है आवाज आपकी अपने पसंदीदा दलेर मेहंदी साहब की सुनिधि चौहान के साथ। आपने एंजॉय किया कर ले बेबी डांस मैस, मूवी का नाम है हेलो, और ऑफ कोर्स साजिद वाजिद का म्यूजिक, जलेश शेरवानी के गाने, और इतना मतलब खूबसूरत सा बोल उन्होंने लिखा था, और जिस आवाज में जिस फनकार के साथ दलेर जी ने गाया, ओ माय गुडनेस, इसको कहते हैं आफ्टरनून ऑन हिट, है कि नहीं। जब भी हम हिट वाली प्लेलिस्ट सुनते हैं ना, तो कई बार रोमांटिक गाने सुनते सुनते सुनते सुनते सुनते सुनते कानों में दर्द हो जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है यार कि अब कुछ नया होना चाहिए, नया होना चाहिए, समथिंग न्यू, समथिंग अलग। और उसके बाद सामने से निकल आते हैं कुछ ऐसे सिंगर्स जिनको हम कभी कभी सुनते हैं, लाजमी है हम उन्हें जब भी सुनते हैं हमारे हाथ पाँव थिरकना

0: शुरू कर देते हैं। उसमें से हमारे दलेर साहब हैं, मिका पाजी हैं, ये वो पंजाबी सुपरस्टार्स हैं जिनकी आवाज सुनते ही स्टेज पे आग लग जाती है। शादियों की आन बान शान, पार्टी की जान, और ये आवाज जो आपने एंजॉय करी है इंडिया टॉप 20 में, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। पंजाबी बीट से हिंदी प्ले लिस्ट थी और इतने खूबसूरत गाने का इतना बढ़िया कॉम्बो मैंने आपके लिए पेश किया था। अगर मजा आया तो रेटिंग जरूर चैट बॉक्स में दीजिए और आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। सॉन्ग नंबर 17 आपका इंतजार कर रहा है हमारी इंडिया टॉप 20 की प्ले लिस्ट में। तो सॉन्ग नंबर 17 आपसे कहते हैं मूव योर बॉडी। ना, वो वाला नहीं जो आपने सुना था नया नवेला, ये थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि आज मैं आपको याद दिलाने वाली हूँ आप ही की कुछ भूली बिसरी यादें। तो आइए एंजॉय करते हैं, मिलते हैं अगले गाने को लेकर के। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना शो इंडिया टॉप 20 विद राजयुनि 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन पर।
1: रेडियो गोंडा 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 17।

0: हां जी, तो भैया डिस्को वाले खिसक चुके हैं क्योंकि देसी बीट आप सुन रहे हैं आपके अपने टॉप 20 पर। जयदीप सहानी की बोल है, प्रीतम का म्यूजिक, के सुंदी चौहान और राणा मजुमदार की आवाज में आपने इस बेहतरीन से नगमे को एंजॉय कर लिया। वैसे नगमे से ज्यादा अगर मैं ये कहूँ कि आपने एक हाई एनर्जेटिक हाई बीट वाले गाने को एंजॉय किया है तो ज्यादा फिट बैठेगा, है ना। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और अब आपको सुनाते हैं अक्षय कुमार पर फिल्माया गया गाना हे बेबी से मस्त कलंदर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर के बॉलीवुड की कुछ एक अक्षय बॉलीवुड की कुछ बातें, बिकॉज क्योंकि बॉलीवुड की बातों के बिना हमारा इंटर टॉप 20 कहीं ना कहीं अधूरा लगता है ना बॉस। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं इंटर टॉप 20 विद राज चुनौती 89.6 FM ये गोंडा शहर की धड़कन पर।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 15.

0: हाँ जी, तो अगर आपका मूड भी एकदम मस्त हो चुका हो और आपने भी इंजॉय कर लिया है अगर मस्त कलंदर, तो आइए चलते हैं बॉलीवुड न्यूज की तरफ। एज यूजुअल हमने आपसे प्रॉमिस किया था, और बॉलीवुड न्यूज आते ही पता नहीं मेरी आवाज को क्या हो जाता है, बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं। फिलहाल के लिए आपको हम बता दें कि राजेश खन्ना नजर आने वाले हैं वापस से। ना, राजेश खन्ना ऊपर से नहीं आने वाले हैं, बात इतनी है कि राजेश खन्ना के जो फैंस हैं उनके लिए राहत की बात है। राजेश खन्ना का रोल करने वाले हैं उन्हीं के दामाद जी, यानी कि अक्षय कुमार जी। जी हाँ, सुनने में आया भैया अक्षय कुमार आरडी बर्मन की बायोपिक के अंदर सुपरस्टार राजेश खन्ना के अवतार में आपको नजर आने वाले हैं। अब आरडी बर्मन को देखने के लिए तो भैया बहुत लोग एक्साइटेड हैं, आफ्टर ऑल वो एक ऐसे आर्टिस्ट थे, एक ऐसे म्यूजिक कंपोजर थे, तो हर एक जगह पर म्यूजिक की तलाश करते थे। म्यूजिक के इतने बड़े दीवाने इंसान वो थे कि आपने जितने भी गाने सुने हैं किसी को आइडिया भी नहीं था कि किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बिना भी कोई गाना बनाया जा सकता है। तो आरडी बर्मन ने हमेशा कहा है कि म्यूजिक हर एक जगह पे मौजूद है, इसीलिए उनके साथ काम करने वाले लोग भी कहते थे कि अगर आरडी बर्मन है यानी कि पंचमदा है तो आप कहीं भी बैठ के गाना बना सकते हो, भले ही वो रेलवे ट्रैक हो, भले ही वो सड़क हो, भले ही वो खाली चाय की टपरी हो, क्योंकि उन्हें हर एक जगह पर संगीत नजर आया करता था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट लैब और म्यूजिक को एक साथ कंबाइन किया था, और आपको भी पता है कि जब स्टार्टिंग होती है शोले फिल्म में महबूबा महबूबा गाने की, तो वो जो आपने साउंड सुना था वो जाकर बना था खाली बियर की बोतलों से, वहीं पर चुरा लिया है तुमने जो दिल को वो बना था एक ग्लास से और चम्मच से। क्या कोई यकीन कर सकता है कि ग्लास और चम्मच भी किसी म्यूजिक का काम कर सकते हैं, या एक बहुत बड़े म्यूजिक इंडस्ट्री में वो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की तरह आ सकते हैं, उनका म्यूजिक लिया जा सकता है? नहीं, कोई भी कंपोजर ऐसा नहीं सोचता है, ऐसा दिमाग का सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान लगाया करता था, और वो थे हमारे पंचमदा, जिनके गाने आज भी बड़े ही खूबसूरत हैं। पंचमदा के एक्सपेरिमेंट इस हद तक पावरफुल हैं कि उन्होंने ना झाड़ू छोड़ी है ना छोड़ा है आपके बाल काटने वाला, बाल झाड़ने वाला कंघा, उन्होंने उससे भी गाना बना डाला है। उन्होंने खाली बियर की बॉटलों से गाना बना दिया, उन्होंने चलते फिरते मटके से गाना बना दिया, इवन उन्होंने एक ऐसा भी गाना बनाया है जिसमें इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, बल्कि इस्तेमाल हुआ है एक असल इंसान की पीठ, वो किसी की पीठ पर थपथपा रहे थे और उससे उन्होंने रिथम निकाल के पूरा का पूरा म्यूजिक सेट कर दिया है। फिल्म के अंदर हीरोइन ने भी दिखाया है डांस करते हुए कि वो लोगों को थपथपा कर म्यूजिक निकाल रही हैं, और वो आइडिया किसी और का नहीं, वो आइडिया सिर्फ और सिर्फ हमारे पंचमदा का था। तो उनकी बायोपिक देखने के लिए ऑफकोर्स सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और जब से खबर ये सामने आई है कि उनकी बायोपिक के अंदर जो राजेश खन्ना का रोल होने वाला है वो उनके दामाद अक्षय कुमार करेंगे, तो एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा हो चुकी है। तो भाई, अगर आप तैयार हैं पंचमदा को देखने के लिए वापस से, क्योंकि पंचमदा एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको हम आज भी उतनी ही मोहब्बत से देखते हैं, उनके गाने आज भी बॉलीवुड में उतने ही पॉपुलर हैं, और अगर गाना उनका बज भी जाता है ना तो वो इकलौते ऐसे म्यूजिक कंपोजर होंगे जिनके गाने आज भी सुनकर आप झूम उठते हैं। इवन उन्होंने अपनी आवाज़ इतने गानों में दी हुई है, हमें लगता है म्यूजिक कंपोजर आवाज़ नहीं देते हैं, म्यूजिक कंपोजर सिर्फ म्यूजिक ही कंपोज करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर्स ने आवाज़ दी भी है, और पंचमदा ही थे वो इंसान जिन्होंने इजिप्ट से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उठाया था जो कभी भारत ने देखा भी नहीं था, और वहाँ से ले करके भारत लाने के बाद उसे थोड़ा सा बदल करके, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के साथ चेंज कर करके अपना खुद का एक इंस्ट्रूमेंट बना भी दिया था। अगर आपको उसका नाम पता है तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं तो फिलहाल कोई बात नहीं, आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। और आप सुनने जा रहे हैं बॉलीवुड का हिप हॉप यानी कि हिप हॉप अम्मी। जी हाँ, इन्जॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 14.

0: मोनिका बाची और मोनालू ठाकुर की आवाज में आप एंजॉय कर रहे हैं कर लेना हिप-हॉप मम्मी। और प्रिया पंचल ने इस गाने को लिखा है, सचिन जगर का म्यूजिक और ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने एंजॉय कर लिया है। और हमारे चैट बॉक्स में जुड़ गए हैं दो और लोग, धर्मेंद्र मोहन जी जो मैं सुन रहे हैं आवाज विकास से लिख रहे हैं, उन्नति जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा जो लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आप दोनों लोगों का इंटर टॉप 20 में। और आज की प्लेलिस्ट जो कि इतनी कमाल की हो रही है, आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा, स्पेशली हमारे हाई बीट सॉन्ग्स को एंजॉय करते करते। तो क्या ख्याल है, अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए अगर हाँ, तो आइए चलते हैं और आपको सुनाते हैं हम आपका पसंदीदा सॉन्ग एक ऊंचा लंबा कद। हालांकि इसका रीमेक वर्जन भी आ चुका है, बट मेरा जो फेवरेट है वो है ओरिजिनल वाला, और मुझे लगता है कि आपका भी ओजी वन जिसमें कैटरीना कैफ नजर आई थी वही पसंदीदा होगा। अगर हाँ तो चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा क्या हमारे थॉट सेम सेम है, और अगर है तो मुबारक हो, आइए एंजॉय करते हैं, साथ में मिलकर डांस करते हैं, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 13।

0: और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, क्योंकि अगला सॉन्ग आपका इंतजार कर रहा है. और अगला सॉन्ग है आपके और आफ्टर ऑल गुरु रंधावा की आवाज़ में पटोला. तो आइए एंजॉय करिए. और बस दो गाने और उसके बाद हम चलेंगे अपने सूथिंग रोमांटिक गानों की तरफ, क्योंकि अभी तक आप एंजॉय कर रहे थे आपका अपना हाई बीट सॉन्ग लाइक इट. लेकिन जैसे ही ये गाने कंप्लीट होते हैं हम चलेंगे अपने दूसरे गानों की तरफ, जो कि स्पेशली आपके लिए होने वाले हैं रोमांटिक से, सूथिंग से, प्यारे से और ऑफकोर्स आपकी कुछ यादों के साथ जुड़े हुए. तो बस थोड़ा सा इंतजार और एंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 11. मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 11.
2: गुरु जब तो निकले हाय जब तो निकले बोहिमिया.

0: हाँ जी, तो आपने एंजॉय किया ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना, और इस गाने में आपको कौन नजर आया था, आपको पता है? नहीं पता है? चलिए हम ही बता देते हैं भैया कि इसके अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी वही अदाकारा नजर आई थी जिनकी एनर्जी को आज भी कोई बीट नहीं कर सकता है। अगर आपने गेस कर लिया है तो मुझे बताइएगा जरूर, और अगर नहीं तो इस गाने के बाद हम आपको बता देंगे। फिलहाल वक्त हो गया है अब आपके रोमांटिक सॉन्ग्स को प्ले करने का, तो क्या ख्याल है, आप तैयार हैं रोमांटिक गानों को सुनने के लिए? अगर हाँ तो अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि यहाँ से शुरू होता है आपका अपना रोमांटिक गानों का सफर। शुरुआत करेंगे हम पहले गाने से जो कि ऑफकोर्स अवार्ड विनिंग है एंड आवाज है शान प्लस कैलाश खेर की, सॉन्ग है चांद सिफारिश। स्टे ट्यून्ड। क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260-981-976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 9।

तरह अब होना जुदा, हाँ ये वादा रहा। और इतना खूबसूरत वादा करने के बाद ऑफ कोर्स हम वापस आ चुके हैं। आप सुन रहे हैं सॉन्ग नंबर 8, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। वैशाली की आवाज़ थी एंड हमारे साथ लवली सिंह जी जुड़ गए हैं और महेंद्र जी ने लिखा था, हाँ जी मेरा और उनका थॉट सेम था। उन्नति जी नमस्ते, पब्लिक सोचती है कि कुमार सानू का एक गाना हो जाए, गाना है।

और हम कंप्लीट करते ही रहते हैं, और पब्लिक डिमांड हम आपको बता दें कि पब्लिक सोचती है अगर कुमार सानू के गाने होने चाहिए तो कुमार सानू का गाना हमारी प्लेलिस्ट में जरूर से रहता है बॉस। और इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं इम्तियाज अहमद जी, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आज मती आप फरमाइश वाला शो करा करो। जी हाँ बेशक, कल मंडे से मैं आपको फरमाइशी शो में मिलने वाली हूँ, तो एक्साइटेड रहिएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए कल कॉल ट्यून गोना में। तो फिलहाल आइए चलते हमारे सॉन्ग नंबर 7 एंजॉय करते हैं बरसात से कुमार सानू की आवाज़ में, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। सुनते रहिए आपका अपना शो इंटर टॉप 20 विद राजनीति 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर।

हाँ जी भैया, तो कुमार सानू और अलका की आवाज में आप सुन रहे हैं, यानी कि हमारी अलका जी की आवाज में आप सुन रहे हैं हमको तो सिर्फ तुमसे प्यार है। बरसात तुमसे बहुत ही बढ़िया सा गाना आपने एंजॉय कर लिया। रोमांटिक सॉन्ग्स में अगर कोई चार चांद लगा सकता है तो हमारी अलका जी हैं, कुमार सानू, अद्वित नारायण हैं और ऑफकोर्स आपके 90s के सिंगर हैं। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं एक और आपके 90s वाली यादों को तरोताज़ा करते हुए, कितनी बेचैन होकर मैं तुमसे मिली हूँ। कसूर फिल्म से आप इंजॉय करते रहिए इंटर टॉप 20 का सुपर डुपर हिट सॉन्ग, सॉन्ग नंबर 6। मिलते हैं अगले गाने को लेकर के और ये है आपका अपना रेडियो 11.6 FM, यही गोना शहर की धड़कन पर आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी रेडियो क्यों नदीम मौजूद हैं आप सभी के साथ आज के संडे वाले स्पेशल प्रोग्राम में। स्टे ट्यून्ड।

और इसको कहते हैं भाई कनेक्शन। इससे पहले कि हम सवाल करते हैं कि इस गाने में कितनी बार हाँ हाँ हुआ है, हमारे मिश्रा ऑप्टिकल जी आकर कह रहे हैं कितनी बेचैन होकर मिली इस गाने में। क्वेश्चन है कि इस गाने में हाँ हाँ कितनी बार कहा गया, क्या बात है भाई। इसको कहते हैं कनेक्शन, क्योंकि जो सवाल मैं करने वाली थी मुझसे पहले मेरे लिसनर ने ही कर लिया है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा अलका जी ने कितनी बार इसमें हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ किया है। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और नाइस सॉन्ग लिखा है इम्तियाज अहमद जी ने, थैंक यू सो मच। महेंद्र जी ने हमें एक उल्टा एक सीधा और एक बढ़िया वाला इमोजी भेज दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये उल्टी होकर दुनिया ज़्यादा सीधी दिखती है कि सीधी होकर दुनिया ज़्यादा उल्टी दिखती है, मुझे बताइएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और बढ़ते हुए अब हम आपको सुनाएंगे दो बैक टू बैक बहुत ही खूबसूरत लेकिन नए नवेले गाने। पहला जो आपको सीधे लेकर जाएगा कुछ लम्हे पहले, कुछ साल पहले, और आप एंजॉय करेंगे एक मुलाकात फ्रॉम सोनाली केवल। और दूसरा किल दिल से सजदे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम मिलते हैं इन दोनों गानों के उस पार लेकर के और भी बहुत खूबसूरत बहुत ही प्यारे 90s के रोमांटिक गाने। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए टॉप 20 आपके अपने FM रेडियो कैनस 89.6 FM पर।

0: सॉन्ग नंबर 4।
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मूड आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: की दीवानगी। जी हाँ, आप सुन रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में किल दिल से सजदे। और हमारे साथ हमारी एक और लिस्टनर जुड़ गई हैं जिन्होंने आते ही हमें जूस पकड़ा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। उल्टी होने पर सीधी दिखती है आजकल दुनिया। ओके, तो आज के बाद हम भी चमगादड़ की तरह लटक के देखेंगे, क्या पता हमको भी सीधी दिख जाए। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। राजफम से आपको सुनाना चाहेंगे हम अलका जी की आवाज़ में जो भी कस्में खाई थी हमने, और उसके बाद हम चलेंगे उदित नारायण की आवाज़ की तरफ। और हमारा पहला गाना कौन सा होने वाला है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 2 एंड सॉन्ग नंबर 3। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं द टॉप 20 विद राजवंती, और ये है आपका अपना FM रेडियो 89.6 FM।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। Song number 3.

दिल पे। हां जी, तो भैया उदित नारायण के पास में आप एंजॉय कर रहे थे आपका सॉन्ग नंबर 2 चेहरा तुम्हारा, और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे आखिरी के गाने की तरफ, यानी कि हमारे शो का लास्ट सॉन्ग। और लास्ट सॉन्ग जैसे कि मैंने कहा था, बहुत सरप्राइजफुल होने वाला है। हमने हाइब्रिड एंजॉय किया है, हमने एंजॉय कर लिया रोमांटिक, हमने एंजॉय कर लिया 90s के, तो अब ऐसा क्या बचा है जो आपके लिए सरप्राइज है? भाई अगला गाना जो है ना वो थोड़ा सा अलग है, गाने का नाम ही है घनचक्कर बाबू। तो आइए एंजॉय ये सॉन्ग नंबर 1, और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा, आज की प्लेलिस्ट आपने एंजॉय की होगी। अपना फीडबैक, अपने ओपिनियंस और अपना थॉट जरूर बताइएगा आज के शो के बारे में चैट बॉक्स के अंदर। एंड धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं, नतीश जी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेलकम टू यू एंड थैंक यू सो मच। और फिलहाल के लिए घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो फिर मुलाकात होगी बस कुछ ही पल। और ऑफकोर्स कल मेरी मुलाकात होने वाली है आपसे आपके शो कॉल ऑफ गुना में, तो सुनना मत भूलिएगा, तैयार रहिएगा, बिकॉज मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हो रही हूँ आपसे मिलने के लिए कल 3 बजे। फिलहाल एंजॉय करें, आप सुन रहे हैं सॉन्ग नंबर 1 इन द टॉप 20 का सुपर डुपर हिट प्लेलिस्ट पे सॉन्ग नंबर 1 आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
4: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
3: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
4: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
3: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9816 9817 981 9766। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी, और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
7: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूं और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहां बुलाया।
6: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
7: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
6: जी,
7: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
6: जी बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
7: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
6: जी,
7: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
6: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीवी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
7: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
6: जी,
7: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
6: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखती हैं।
7: जी आरजी दीदी,
6: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
7: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
6: जी।
7: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
6: जी,
7: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ।
6: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
7: जी दीदी
6: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
7: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
6: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।

0: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्ले 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
0: भैया बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
1: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो, या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए, या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
0: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
1: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है, और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
0: अच्छा।
1: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
0: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
1: बहुत सारी,
0: जैसे?
1: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक के करके बताता हूँ।
0: जी।
1: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
0: और बाकी?
1: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते, तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है, और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों KMC कर सकते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। और इसके अलावा भी कुछ है?
1: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। NBSU में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है। और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो, NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर SNCU को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
0: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए।
1: देखिए आकांक्षा जी,
0: जी
1: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
0: जी
1: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है, या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे, तो सीधा NBSU। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो RJ दीदी
0: जी।
1: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
0: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
1: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है। और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे, KMC यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल, ना घी, ना हल्दी, बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं। और डॉक्टर जो तारीख दे, फॉलो अप जरूर कराएं, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े, तो तुरंत वापस NBSU।
0: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है?
1: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें, साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
0: और भैया हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्यों?
1: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं, और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
0: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
1: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
0: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी आशुनती मौजूद हैं आप सभी के साथ लेकर के संडे का हेल्थ का स्पेशल शो क्लिनिक ज्ञानसली, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ के बैनर के तले स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञानसली की एक बहुत ही खूबसूरत पहल जिसमें बात है आपके सेहत की, क्योंकि भाई हेल्थ इज वेल्थ। बचपन से आपने ये लाइन सुनी है और हम इस बात को मानते भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त हमारे हेल्थ एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी, जिनका मैं स्वागत करती हूं। कैसे हैं सर आप?
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम बिल्कुल अच्छे हैं। आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और हमारे लिसनर्स भी अच्छे होंगे।
2: जी, और क्योंकि बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन आ चुका है आई थिंक।
3: जी मुझे भी लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं दस्तखत तो दे ही दी है मॉनसून ने, और धीरे धीरे अभी जितना चाहिए उतना पानी तो नहीं बरस रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एंट्री तो उसने कर ही दी है।
2: और कल रात तो काफी ज्यादा पानी बरस भी रहा था और उसकी वजह से रात भर मेरे घर पे लाइट भी नहीं आई।
3: जी ये बरसात आने के साथ साथ जो बारिश की जो समस्याएं होती हैं, लाइट का ना रहना, पानी का भर जाना, कीचड़ होना, ये सारी समस्याएं भी आ चुकी होंगी
2: और इनके साथ जुड़ती हैं बीमारियां। अब आप सोच रहे होंगे लाइट ना आने से कौन सी बीमारी होती है? लाइट ना आने से मच्छर बहुत ज्यादा काटना शुरू कर देते हैं।
3: हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसी समस्या है। और जो और दूसरे

0: से सुरक्षित रहने के तौर तरीकों के बारे में और ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में अवेयर करने के लिए हम आते हैं हर संडे, और इस बार फिर आ गए हैं। जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठा लीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके या हमें डायरेक्ट कॉल करके भी आप अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं।
1: हमारा कॉलिंग नंबर है 6393316429। आई रिपीट, 6393316429। और चैट बॉक्स आपको मिलता है एप्लीकेशन पर, जो आपको मिलेगी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर। फिलहाल क्योंकि मॉनसून आ चुका है, बारिश हो रही है और हर जगह पर नमी बनी हुई है। आसपास चावल के खेत भी तैयार हो चुके हैं, उनमें कहीं ना कहीं बीज लगा दिया गया है, वो जो पेड़ लगाए जाते हैं लगा दिए गए हैं। और अब वहां से कुछ जापानी बुखार जैसे मच्छर भी निकल के सामने आने वाले हैं, बस कुछ दिनों का इंतजार है।
0: जी बिल्कुल, और इसी के साथ और भी तमाम बीमारियां, मच्छरों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, कई बार जो है फंगल इन्फेक्शन जैसी भी चीज़ें बढ़ती हैं, स्किन के दूसरे इन्फेक्शंस और वायरल इन्फेक्शन भी कहीं ना कहीं ऐसे सीज़न में देखने को मिलता है।
1: और हमने हाल फिलहाल में एक और इन्फेक्शन या फिर कहें एक और बीमारी के बारे में सुना है, जिसके लिए वार्निंग जारी कर दी गई है, स्पेशली इन मुंबई।
0: जी बिल्कुल, ऐसी नई नई बीमारियां भी आती रहती हैं जिनके लिए हमारे सरकार को और दूसरी संस्थाओं को अवेयरनेस के लिए और चीज़ों को जागरूकता के लिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है।
1: और उस बीमारी का नाम है लेप्टोपोरोसिस। आपने नाम सुना होगा आई थिंक।
0: जी बिल्कुल, लैक्टोपोरोसिस ये एक नई बीमारी, खैर मतलब इतनी भी नई नहीं है, लेकिन अब चूंकि कई बार उनके स्प्रेड होने के और उनकी महामारी फैलने के बाद उन बीमारियों, जैसे अब हमारा जो कोविड था ये भी इतना नया नहीं था हमारे लिए, ये इसके पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुका था, बट उसके बाद जब ये समस्याएं आती हैं कि कोई मतलब महामारी स्प्रेड हो जाती है और कोई बड़ा पैंडेमिक क्रिएट होता है, तब हमें उसके बारे में पता चलता है।
1: तब जाकर हम सोचते हैं कि अरे इस बीमारी से बचना भी तो है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो ऐसी ही बीमारी फिलहाल मानसून में आ गई है। इस बीमारी की तरफ जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये आजकल जो पानी भर रहा है सड़कों पर और इससे लोग गुजर रहे हैं, इन पानी में कहीं पैर डाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बच्चे कूदते रहते हैं, क्या इनसे भी किसी तरह की कोई बीमारी फैल सकती है या फैल रही है?
0: जी देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पानी का जमाव होता है जिनमें बच्चे आते जाते हैं या खेलते कूदते हैं, तो जाहिर सी बात है वो पानी का जो जमाव होता है उसमें तमाम तरह के बैक्टीरिया और दूसरी गंदगियां, टॉक्सिसिटीज़ रहती हैं, कूड़ा कचरा। देखिए जो पानी बरसता है वो मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसमें बीमारियां हैं, लेकिन वो पानी ज़मीन पर गिरने के बाद ज़मीन पर उपस्थित जो प्रदूषण है, कूड़ा कचरा है, इनसे मिलता है और उसके बाद हमारे लिए ये घातक बनता है।
1: जी, और हम आपको बता दें कई लोगों को दिक्कत होती है कि वो गंदे पानी में जाते हैं तो उनके पैरों में कहीं ना कहीं, वो कहते हैं कि पैर पक गया है, बहुत खुजली हो रही है, बहुत पेन हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। इसमें फंगल इन्फेक्शन भी होता है और ऐसी पानी के दौरान आपको अब लेप्टोपोरोसिस नाम की बीमारी के भी दर्शन हो जाएंगे अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो।
0: जी बिल्कुल,
1: तो पहले हम आपसे जान लेते हैं कि ये क्या है, उसे फ्लड फीवर क्यों कहते हैं?
0: देखिए ये जो समस्या है जिसको लेक्टोस्पायरोसिस या लेक्टोपोरोसिस ऐसे वर्ड से प्रोनाउंसिएट करते हैं, ये स्पेशली एक तरह का बैक्टीरिया होता है लेक्टोस्पायरा, और इस बैक्टीरिया के वजह से ये बीमारी होती है। अब समस्या ये है कि जो फ्लड डिसीज़ मतलब बारिश वगैरह के मौसम में क्यों, तो यूजुअली क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये यूजुअली कम रहते हैं, लेकिन जब पानी, बाढ़ और ऐसी कंडीशन बनती है, जल भराव जैसी कंडीशन बनती है, तो इनका स्प्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में पानी से इनका कंटामिनेशन, जैसे अब जब जल भराव होने लगता है और वो जल जमाव भी हो जाता है, तो कई बार जो हमारे पानी के पीने के जो स्रोत होते हैं, जैसे जो भी हम नल लगा कर के रखते हैं अपने घरों में या मोटर लगा हुआ होता है वो टंकी में पानी भरता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो फिल्टर में आता है। फिल्टर में भी कई बार, देखिए फिल्टर क्या होता है, उसमें बेशक रिवर्स ऑस्मोसिस और जो ब्लू लाइट ट्रीटमेंट होता है ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इसके बाद भी वो 100% बैक्टीरिया फ्री सेफ नहीं हो पाता है, और भी कंटामिनेशन की चीज़ें होती हैं। बर्तन जैसे जिस पानी से हम धुलते हैं, अब फिल्टर के पानी से तो हम बर्तन धुल नहीं सकते हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो कंटामिनेशन के चांसेस बारिश के मौसम में, स्पेशली जब भारी जल भराव या जल जमाव जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो इन बैक्टीरियाज का ज़्यादा होता है, और इसलिए ये

0: मतलब फ्लड डिसीज या ऐसी नामों से जाना जाता है।
1: अच्छा सर, ये कहते हैं कि जो ये बीमारी है स्पेशली जानवरों के या फिर जो संक्रमित जानवर होते हैं उनके मलमूत्र में पाई जाती है,
0: जी
1: कहाँ जहाँ पर वो रहते हैं, और इस वक्त क्योंकि स्पेशली गांव में मवेशी, चूहे और ये सारी चीज़ें हैं, पाली जाती हैं जानवर्स, और स्पेशली उस एरिया में जब पानी भरता है तो कहीं ना कहीं ये बीमारी और भी तेज़ी से स्प्रेड होती नज़र आती है, आई थिंक।
0: बिल्कुल। अब जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी का अरेंजमेंट है, वाटर अरेंजमेंट सिस्टम है, वो कुछ ऐसा होता है कि सभी घरों में नल लगे होते हैं। यूजुअली उन नलों से लोग पानी पीते हैं। जैसे शहरों में अगर ऐसी भारी बारिश जैसी समस्या बनती है तो थोड़ा सा उसके लिए और भी लोग प्रिकॉशंस लेते हैं। गाँव में चूंकि उतनी सुविधाएँ उपलब्ध हो नहीं पाती हैं, तो वहाँ पर मवेशी भी होते हैं, उनके मलमूत्र भी होते हैं, और उसमें जो पाए जाने वाले तमाम बैक्टीरिया हैं, उनका स्प्रेड बारिश के मौसम में स्पेशली पानी के थ्रू ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो वहां पर आपको यह समस्या शहरों की अपेक्षा हो सकता है ज्यादा देखने को मिले।
1: बिल्कुल। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो पानी के भराव में लोग निकल रहे हैं, वो निकलते ही सबसे पहले क्या करें? क्योंकि एक तो होता है कि हम सादे पानी से पैर धो लेते हैं ये सोचकर कि चलो सफाई हो गई, गंदगी से निकल के आए थे,
0: जी
1: बट मुझे नहीं लगता कि इससे जो हमारे बैक्टीरिया, जो वायरस हम लेकर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रीट हुए होंगे।
0: जी
1: वो सादे पानी से 1-2% भले ही हिल गए हो अपनी जगह से, लेकिन क्योंकि वो छोटे होते हैं, दिखते नहीं है, सेल्स के अंदर भी जा सकते हैं,
0: जी
1: कट लगा है तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली जाएंगे ही जाएंगे।
0: जी जी
1: तो इसके लिए कोई भी इंसान क्या करे? अब हर वक्त जूते पहन के भी उसमें जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि लोग जूते निकाल के जाते हैं, पानी भरा हुआ जूते कौन
0: जी
1: पहनेगा? चप्पल पहन के जा रहे हैं, सिर्फ नल के पानी से पैर धो लेते हैं और भूल जाते हैं कि मुझे पैर दोबारा ढंग से साफ भी करना है।
0: बिल्कुल।
1: तो आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि अगर पानी का भराव है और आप उसमें से गुजर रहे हैं और आपके पैरों से वो पानी टच हो रहा है, तो उस वक्त उसको निकलने के बाद क्या कुछ करना चाहिए?
0: ज़रूर बताना चाहेंगे। और देखिए, चूंकि जैसे मान लीजिए हम शहरों में ही ले लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब भारी बारिश होती है तो गलियों में पानी भर जाता है। अब गलियों में चूंकि सड़कें तो होती हैं, सड़कों के साथ साथ नालियाँ भी होती हैं,
1: जी
0: और अगर वो पानी भरता है तो कहीं ना कहीं नालियों में भी वो पानी पहुंचता है, और नाली के पानी में वो मिक्स होता है। क्योंकि अब नाली का जो पानी होता है उसमें तमाम घरों के, सभी घरों के जो लेटरिन का टॉयलेट सिस्टम होता है उसका भी पानी जाता है, जो लोग कंज्यूम करते हैं उसका भी पानी जाता है। मतलब तरह तरह के घरों से, और तरह तरह के इन्फेक्शंस और बैक्टीरियाज जो है उसमें आते हैं। जब वो पानी सड़कों पे भरे पानी के साथ मिल जाता है तो वो उसको भी कंटामिनेट करता है। जब आप ऐसी किसी जगहों से, अगर आपको मान लीजिए उन पानी में से होके आना ही पड़ रहा है, तो एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। पहले तो वो आप कपड़े चेंज करें जिन कपड़ों को आप पहन करके आए हैं। इसके अलावा अपने पैरों को, हाथों को अच्छी तरीके से और किसी साबुन से या हैंड वॉश से, इन सभी चीज़ों से साफ़ करें, और पैरों को भी मतलब साबुन या हैंड वॉश से, जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे साफ़ करें। अगर इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उस पे जो बैक्टीरिया, अच्छा एक एक समस्या और समझिए। जैसे हम जब भी कभी आते हैं तो चूंकि जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, वो इतने समझदार होते हैं कि उन्होंने पैर धो लिया, और पैर धो करके सोफे पे या कुर्सी पे कहीं पर भी वो बैठ गए, पैर ऊपर करके भी, जब थोड़ी देर में पैर सूख गया तो पैर ऊपर करके भी बैठ गए, वो वहां पर हाथ नहीं रखते, या हाथ रखते हैं तो वो हाथ अपने मुंह पे नहीं लगाते। बट
1: जी
0: जो घर में छोटे बच्चे होते हैं, ये क्या होता है कि उस सोफे पर अपने हाथ से भी रखते हैं, खाने की चीजें सोफे पर रखते हैं, फिर सोफे से उठा करके खा भी लेते हैं। अच्छा, इसीलिए बच्चों में ये मतलब केसेस, जो डायरिया है, पेट दर्द है, वॉमिटिंग फीवर और ऐसे तमाम तरह की चीजें बच्चों में ज्यादा इसीलिए देखने को मिलती हैं क्योंकि वो कंटामिनेशन एडल्ट्स बाहर से लेकर के आते हैं। लेकिन अब चूंकि एडल्ट होने के नाते, उनकी इम्यूनिटी भी मजबूत होने के नाते, और जो थोड़े मोटे वो प्रिकॉशंस लेते हैं उनके नाते, वो कंटामिनेशन उनको नहीं होता है, बट वो बच्चों को जो है डिलीवर कर देते हैं।
1: जी
0: तो आप अपने हाथों पैरों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करें, यानी साबुन वगैरह से धोएं, या फिर उस पर कुछ भी सैनिटाइजर वगैरह स्प्रे करें, उससे भी बैक्टीरिया वगैरह सब डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इन चीज़ों का, और जो पर्सनल हाइजीन है, इन चीज़ों का ख्याल रख करके आप थोड़े उसके चांसेस को कम कर सकते हैं।
1: ऑल राइट। और जैसे आपने बच्चों का नाम लिया स्पेशली इस वक्त, तो मुझे कुछ याद आया,
0: जी
1: क्योंकि जो जो बच्चे छोटे हैं, 6 महीने के हैं, या जिन्होंने घुटने पर चलना स्टार्ट कर दिया है, वो
0: जी
1: पूरे दिन कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं, उनको मम्मी पकड़ पकड़ के घसीटती हैं कि यहाँ आराम से बैठ जाओ, और उनसे बैठा नहीं जाता।
0: जी
1: इस वक्त क्योंकि बारिश हो रही है, लोग अंदर से बाहर, बाहर से अंदर।

0: करते रहते हैं और वो हर वक्त एक चिप चिप चिप चिप बनी रहती है घर के अंदर
1: जी.
0: मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ इस मौसम में इसी चीज से
1: जी.
0: और स्पेशली बाहर से कोई भी चीज आ रही है, बैक्टीरियाज अंदर आ रहे हैं, या फिर अगर चलो उन्होंने चप्पल बाहर भी निकाल दी है तो भी फर्श पर बहुत सारे बैक्टीरिया पहले से मौजूद होते हैं. अब कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम पोछे में फिनाइल डाल के लगा दे तो इससे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, बट उसकी एक स्ट्रांग स्मेल होती है. और मैंने देखा है जो बच्चे फर्श पे चलते हैं वो अपने अंगूठों को मुंह में डाल रहे हैं, इवन पैर के अंगूठे भी मुंह में ले जाते हैं
1: जी.
0: तो आपको क्या लगता है ये फिनाइल से जो फर्श साफ हो रहा है क्या ये उनके लिए सेफ है?
1: बिल्कुल. और मैं इस पर एक और नई चीज़ भी आपको आज बताने वाला हूँ और मैं आशा करता हूँ कि वो हमारे लिसनर्स को भी चीज़ें अच्छी लगें और समझ में आए. देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो फिनाइल हम लोग यूज़ करते हैं वो बच्चों के लिए तो सेफ नहीं होता है, और ऐसे तमाम जो ब्रांड्स होते हैं वो इसको प्रमोट भी करते हैं कि बच्चे खेलते हैं उनको प्रॉब्लम होती है और हमारा ब्रांड आप यूज़ करिए फर्श क्लीन करने के लिए, फ्लोर क्लीनर्स हैं उससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी. तो देखिए ये पूरी 100% तो ये बात बिल्कुल सही नहीं हो सकती है, क्योंकि वो केमिकल्स से बने होते हैं और केमिकल्स स्पेशली जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं एंड क्लीनर्स होते हैं ये सेफ तो बिल्कुल नहीं हो सकते. जब कभी भी आप, अब चूंकि हमारे पास और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो हम हल्दी का लेप बना करके उसको फर्श पर लगाएं और वो फिर डिसइंफेक्टेंट भी करे.
0: और वो तो बहुत बेकार लगेगा एंड बहुत मैसी लगेगा
1: जी. बिल्कुल. तो ऐसा करने के लिए जैसे आप जो भी यूज़ करते हैं, आप फिनाइल यूज़ करते हैं या आप दूसरा कोई फ्लोर क्लीनर यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, उसको क्लीनिंग करने के बाद आप जो है किसी दूसरे कपड़े से 1 से 2 बार और अच्छे से पानी से भिगो करके पोछा लगाएं, जिससे क्या होगा कि आपका फर्श डिसइंफेक्टेंट तो हो चुका है, बैक्टीरियाज वगैरह तो अभी आपने बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर दिया है, बट उसके बाद जब आप साफ पानी से और सादे पानी से 1-2 बार पोछा लगाते हैं तो आप उस केमिकल को और डाइल्यूट कर देते हैं. मतलब उसका मैक्सिमम पार्ट हो सकता है आपके पोछे के साथ और पानी के साथ वहां से हट जाए. तो ये करने के साथ साथ आप थोड़ा सा अपने इस सेफ्टी को भी बढ़ा सकते हैं कि जो आपका केमिकल्स हैं फॉर डिसइंफेक्शन वो बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्म ना करें.
0: ऑल राइट. और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कुछ फर्श पर लगी चीज़ों की वजह से ही बच्चों के अंदर कुछ बीमारियां डेवलप होती हैं.
1: बिल्कुल.
0: स्किन इन्फेक्शन हो जाता है.
1: और मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अगर किसी तरह का बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन हमारे बच्चे में आया है तो वो तो चलिए उसके सिम्टम्स आपको 2-4 दिन में आ जाते हैं
0: जी.
1: फीवर आएगा, वॉमिटिंग आएगी, पेट में दर्द होगा, मतलब जो तमाम तरह के सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स आपको दिख जाएंगे. बट ये जो केमिकल्स से होने वाले हार्म हैं, मतलब जो फिनाइल वगैरह इन सारी चीज़ों से होने वाले हार्म हैं, पहली बात तो ये बहुत मेजर नहीं होते, छोटे हार्म्स होते हैं और ये धीरे धीरे मतलब स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं और हमारे बच्चों के बॉडी में उनके डेवलपमेंट में तमाम तरह की डिफर्मिटीज क्रिएट करते हैं.
0: और इसी कारण आजकल कुछ ऐसे भी हेल्थ वाइज काम कर रहे हैं लोग जो कहते हैं कि जो आप खाना खा रहे हो उसमें भी देखो कि कौन सा कलर इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो एडिबल है या फिर ऐसे ही चल रहा है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और देखिए ऐसी तमाम नई रिसर्चेस सामने आ रही हैं कि मतलब यूजुअली एक एवरेज अगर फीमेल को देखा जाए तो वो जितने अपने कॉस्मेटिक और पर्सनल यूज के जो प्रोडक्ट्स यूज करती है उसमें लगभग 160 से 170 प्रकार के केमिकल्स वो अपने बॉडी पे अप्लाई करती है. और ये सारी चीज़ें मतलब उनके हार्मोन बैलेंस पे, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे और उनके तमाम तरह के मतलब समस्याओं का वो कारण बन रही हैं. लेकिन ये अभी तक तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी पॉपुलर हो रही हैं लोगों में.
0: बिल्कुल. कॉस्मेटिक की ही बात नहीं, अगर आप बच्चों की चीज़ों की बात करें जो स्पेशली खाना पसंद करते हैं, जिसमें रंग बिरंगी टॉफीज आती हैं, इसमें भी केमिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और आजकल लोग इसको भी लेकर अवेयर कर रहे हैं कि आप खा तो रहे हो बट नोटिस करो आप खा क्या रहे हो.
1: बिल्कुल.
0: चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं लेप्टोपोरोसिस पर. अगर किसी के घर में आसपास बहुत चूहे रहते हैं तो उन्हें सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चूहों से होने वाली बीमारी है.
1: जी बिल्कुल. मतलब जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन बैक्टीरियाज को स्प्रेड करने के, चूहे, गाय, भैंस, दूसरे जानवर, कुत्ते, बिल्लियाँ. तो क्या होता है कि जैसे कुत्ते बिल्लियाँ सबके घर में नहीं रहते हैं, गाय भैंस हमारे शहरों में आपको सबके घरों में देखने को नहीं मिलेंगे, बट चूहे एक ऐसा मतलब वो हैं, एक रोडेंट्स हैं, एक ऐसे जानवर हैं जो ऑलमोस्ट सभी घरों में आ ही जाते हैं।

0: हैं, कहीं ना कहीं बाहर से आ जाते हैं और अपने साथ वो तमाम तरह के ऐसे बैक्टीरियाज और बीमारियां लेकर के आते हैं।
1: और क्योंकि चूहों से तो हर कोई परेशान है, क्या कोई मेडिकल में ऐसा सोल्यूशन है कि हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चूहों को मारना भी नहीं चाह रहे हैं, जाल में वो फंस नहीं रहे हैं? और आपको भी पता होगा आजकल किचन में जो भी चीज़ रखी होती है उसको वो खा जाते हैं, भले
0: जी
1: आपने कितनी महंगी सामान क्यों ना मंगाया हो, उसे काट देंगे। बड़े चूहे तो होते हैं, वो तो खा ही जाते हैं, सब कुछ खत्म
0: बिल्कुल।
1: कर देते हैं।
0: इनफैक्ट हम हमारे डिपार्टमेंट में कई बार ऐसा होता है जब कुछ चूहे आ जाते हैं तो जो ड्रग स्टोर्स होते हैं उनमें वो दवाइयां तक काट डालते हैं और दवाइयां भी खा जाते हैं। तो कई बार हम लोग ये आपस में बात भी करते हैं कि क्या इनको खाने के बाद ये मरते नहीं है या फिर
1: उनका
0: जिस
1: डीएनए एक्चुअली मॉडिफाई हो जाता
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: और इसीलिए मुझे लगता है उन्हें कुछ नहीं होता। और बाकी जब उन्हें लोग जहर वहर देते भी हैं खाने के लिए कि चलो
0: जी
1: चूहे मारने वाली दवा दे दो,
0: जी
1: मुझे लगता है उन दवाइयों की वजह से उन पर असर भी नहीं करता।
0: बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखिए वो भी आज जैसे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वायरस है जो सारे जीव हैं इस धरती पे वो म्यूटेट करते हैं अपने आप को, मतलब जो परिवर्तन होता है, जो भौतिक या सामाजिक रासायनिक परिवर्तन होता है संसार में, उसके हिसाब से वो खुद को जो है वो म्यूटेट करते हैं और उस अकॉर्डिंग धीरे धीरे उन पीढ़ी दर पीढ़ी उनके हाव भाव, बिहेवियर, बॉडी की बनावट, इम्यूनिटी सिस्टम और ऐसी चीज़ों में भी परिवर्तन आता है।
1: तो मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि कोई मेडिकल में सोल्यूशन है इन चूहों को घर से बाहर कैसे निकाला जाए?
0: देखिए वैसे तो मतलब जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे सभी को पता है, इसमें ऐसा कोई सॉल्यूशन नया नहीं है जो किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट ही बता सके। जो रोडेंट कंट्रोल होता है, मतलब ऐसी दवाइयों का छिड़काव करना, कुछ ऐसी दवाइयां भी आती हैं जिनका छिड़काव करने से चूहे वगैरह नहीं आते हैं, तो स्पेशली उन जगहों में जिन जगहों पे चूहे ज़्यादा जा कर के बैठते हों, उन जगहों पे जो कोने किनारे की जगह हों उन पे अगर आप छिड़काव करते हैं तो उससे बचते हैं। और दूसरे तमाम तरह की दवाइयाँ भी होती हैं और यही सारे आप जो है चीज़ें अपना सकते हैं। और इसके पीछे विज्ञान ने भी तमाम तरह की रिसर्चेस की कि ऐसा कुछ करके उनका प्रजनन ही कम किया जा सके, लेकिन ये बहुत एक बड़ा टास्क है। मुझे लगता है इंसानों का इलाज करने से कहीं ज़्यादा बड़ा टास्क है ये।
1: बिल्कुल। फिलहाल अब बात करते हैं लेप्टोपोरोसिस और डेंगू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसका,
0: जी
1: क्योंकि दोनों बीमारियां आई थिंक वो बीमारी है जिनमें बुखार सबसे पहले ही आता होगा,
0: जी बिल्कुल
1: कहीं ना कहीं आपको स्किन पे रैशेस दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस होंगे जो इन दोनों को अलग करता हो, जिससे एक इंसान पहचान सके। और इन दोनों में जो सबसे ज्यादा डेंजरस वाली है वो कौन सी है, जिससे आपकी जान की रिस्क होती है?
0: देखिए वैसे दोनों अपनी जगह रिस्की हैं क्योंकि लैक्टोस्पायरोसिस में भी मतलब ऐसा एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन बनता है जिसमें हमारे बॉडी के ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, हैमरेजिक कंडीशन बन जाती है।
1: मतलब पानी में रहने से या फिर किसी से हम कंटेमिनेट हो जाते हैं तो हमारा अंदर के ऑर्गन फेल हो सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, चूंकि क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक बीमारियां ऐसी होती हैं और स्पेशली जो ऐसी स्प्रेड होने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे ये COVID-19 में भी ऐसा देखने को मिला था कि बहुत से लोग ऑर्गन फेलियर के वजह से या हार्ट स्ट्रोक के वजह से मारे जा रहे थे। तो उसमें तमाम तरह की रिसर्चेस हुई तो जिसमें पता चला कि हमारे बॉडी का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है।
1: जी
0: ये हमारे बॉडी का ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, तो बिल्कुल ये भी घातक बन जाता है। और कहीं ना कहीं जो डेंगू है वो भी एक तरह की घातक कंडीशन क्रिएट कर सकता है। बट हाँ ये है कि ये लैक्टोस्पायरोसिस जो है ये आपको थोड़ा सा मुझे लगता है 5-7 दिन या 10 दिन आपको एक्स्ट्रा दे सकता है कंपेरेटिवली डेंगू के। और डेंगू जो है वो थोड़ा सा आपको कम टाइम देता है। थोड़ा सा मैकेनिज्म में भी अंतर है, जैसे जो डेंगू में क्रॉनिक कंडीशन बनने पे जो डेथ होती है वो ब्लीडिंग के वजह से होती है, इंटरनल ब्लीडिंग के वजह से होती है। हमारा ब्लड अंदर ही अंदर ब्लीड कर जाता है, GI ब्लीड हो जाता है, प्लेटलेट्स बिल्कुल लो हो जाते हैं, लास्ट में स्ट्रोक हो जाता है। और जो इसमें लैक्टोस्पायरोसिस में जो कंडीशन बनती है वो ब्लीडिंग के वजह से नहीं, हैमरेज के वजह से, क्लॉट की वजह से ऐसी ऑर्गन फेलियर या हार्ट स्ट्रोक जैसी कंडीशन बनती है।
1: मतलब एक में खून का थक्का जम रहा है
0: और
1: और
0: एक में
1: दूसरे में खून बह रहा
0: बह रहा है,
1: है।
0: बहुत पतला हो गया है, तो ऐसा कंडीशन थोड़ा सा विरोधाभास आपको दोनों में कंडीशन में दिख सकता है। अब अगर बात करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करें
1: बाय सिम्टम्स।
0: बाई सिम्टम्स, तो देखिए इसका कुछ बेसिक चीज़ें समझिए। जैसे अगर आपको लैक्टोस्पायरोसिस का कोई कंटामिनेशन है तो इसके कंटामिनेशन में आपको नौजिया, वॉमिटिंग भी आपको हो सकती है, फीवर तो आपको आएगा ही आएगा, जी आई डी

0: जैसी कंडीशन बनेगी, पेट में दर्द भी हो सकता है। और डेंगू में यूजुअली ये सिम्टम्स नहीं आते हैं, डेंगू में बॉडी पेन और घुटनों के आसपास मसल्स में रिजिडिटी और पेन फील होता है। और इसी के साथ साथ जो है मतलब डेंगू में क्या होता है कि आपको जो कंडीशन होती है वो धीरे धीरे वीकनेस की वजह से और बहुत ज़्यादा बॉडी में ऐसा लगता है कि एकदम से दम ही नहीं लग रहा है, पेशेंट चलने में सक्षम नहीं होता है, चेहरे वगैरह पे हल्का सूजन और थोड़ी सी भवरन जैसी दिखती है। तो इन सभी मतलब सिम्टम से आप थोड़ा सा इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
1: लेप्टोपोरोसिस में आंखों में खुजली क्यों होने लग जाती है?
0: देखिए जितने भी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बारिश या फिर फ्लड बाढ़ और ऐसी चीज़ों से स्प्रेड होती हैं, ऐसी बीमारियों में हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत तेज़ी से ट्रिगर होता है। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर होते हैं, जब हमारे WBCs बढ़ते हैं हमारे बॉडी में, तो आँख से पानी आना, आँख में मिचलाहट होना, नाक से पानी आना, ये सारे सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं जिनको हम मतलब फ्लू और कोल्ड के सिम्टम्स कहते हैं।
1: और हमें लगता रहता है कि हमें सिर्फ जुकाम हुआ है
0: जी
1: और वो कहीं ना कहीं सीरियस बीमारी में
0: जी
1: कन्वर्ट हो
0: एक गंभीर
1: जाता है।
0: बीमारी होती है, जबकि हमें जो मतलब इनिशियल सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, चूंकि हमारे जो नाक और मुंह का जो एक मैकेनिज्म है, मतलब कभी भी देखिए जब भी ऐसा मौसम चेंज होता है या जो भी होता है, गले में खराश वगैरह होती है, हमको सर्दी होती है, खांसी होने वाली होती है, तो हमारे नाक से आँख से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। हमारे बॉडी को ये पता होता है कि ये जो रूट होते हैं, स्पेशली नेजल रूट, ओरल रूट, इन्हीं रूट से ज़्यादातर बीमारियाँ एंटर करती हैं। हमारे बॉडी को ये चीज़ें पता होती हैं, तो जब कभी भी ऐसा होता है तो ये हमारे बॉडी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है और हमारे नाक से आँख से पानी आना स्टार्ट करता है, ताकि मैक्सिमम बैक्टीरिया जो हैं वो यहीं पर ट्रैप हो सकें या फिर बॉडी से डिस्कार्ड हो सकें। ये एक मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का।
1: तो ये हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है आपने ये समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कि क्या लेप्टोपोरोसिस की मेडिसिन है, और है तो कितने दिन का कोर्स है?
0: जी बिल्कुल, देखिए जो लैक्टोस्पायरोसिस होती है ये एक तरह का बैक्टीरियल डिसीज़ है, और इसके इलाज के लिए तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग डॉक्सीसाइक्लिन और पेनिसिलिन्स जो होती हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन या क्लैवम जैसी दवाइयों का नाम आपने सुना होगा, तमाम हमारे लिसनर्स ने भी। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की या पेनिसिलिन ग्रुप्स की हैं, इन एंटीबायोटिक्स से हम इनका इलाज करते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट पीरियड होता है ये एक एटलीस्ट 15 से 21 दिनों का ये सबसे मिनिमम होता है। कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने पर, TLC लेवल्स ज़्यादा हाई होने पर, अब चूंकि क्या होता है कि ऐसे जो पेशेंट्स आते हैं उनका हम एक बार पहले कंडीशन देख करके इलाज स्टार्ट करते हैं, उनके कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें इंक्लूडिंग उनका ब्लड काउंट, प्लेटलेट्स काउंट और ये सारी चीज़ें, तो उनको हम इलाज के दौरान भी बीच में उनके दरमियान चेक करके पेशेंट की कंडीशन को देखते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना तेज़ रिकवर हो रहा है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम कितना काम कर रहा है, या फिर उसकी जो दूसरी कंडीशंस हैं, मतलब वो शुगर का पेशेंट है, नहीं है BP, या फिर ऐसा कोई मरीज़ ना हो, तो ये डिपेंड करता है। इलाज लगभग आपका 15 से लेकर के 45 दिनों के बीच में रहता है।
1: ऑल राइट, और अब बात कर लेते हैं हमारे किसान भाइयों की, क्योंकि इस वक्त
0: जी
1: मौसम है धान उगाने का, चावल लगाने का, और इसमें हर कोई लगा हुआ है,
0: जी
1: और मानसून के सीजन में ही सबसे ज़्यादा बीमारियां भी फैलती हैं। जो खेत में काम करने जाते हैं वो चप्पल जूते हर एक चीज़ निकाल देते हैं, उनका पैर जो होता है वो ऑलमोस्ट मिट्टी में होता है।
0: जी
1: आप मतलब मैं जानना चाहूंगी कि किसानों में ज्यादातर बीमारियां इस दौरान होती हैं वो कौन सी होती हैं? स्पेशली बच्चों में तो जापानी बुखार देखने को मिलता है
0: जी
1: बिकॉज ऑफ सीजन, और इस वक्त आपके धान के खेतों से कुछ मच्छर निकलते हैं जो उन्हें काटते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पूरी आस्तीन के कपड़े पहनो, गर्मी लग रही है इसके बाद भी पहनो।
0: जी
1: तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों को जो लोग खेत में काम कर रहे हैं, पहले तो उन्हें कौन कौन सी बीमारियां इस मौसम में हो सकती हैं, और फिर उन पर बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है, इसका बचाव क्या है।
0: जी ज़रूर। और कहीं ना कहीं मुझे वो याद आ रहा है कि मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, और ऐसे तमाम शोज़ जो रेडियो पे चलते हैं मैंने अपने बचपन में भी सुने हैं, और आज वो दिन भी आ गया कि मैं किसान भाइयों से चीज़ों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, अपने जो मेरा व्यक्तिगत इस चिकित्सा क्षेत्र का अनुभव है, मैंने एक चीज देखी है, जैसे कुछ कॉमन समस्याएं जो किसान हर बार लेकर के आते हैं,
1: जिनमें कौन क्या है?
0: जैसे एक तो जो उनके फंगल फीट इन्फेक्शन होते हैं, मतलब पानी में रहने की वजह से और तरह के बैक्टीरियल भी इन्फेक्शंस लेकर के वो आते हैं, तो जो ये चमड़ी की और ये फंगल वगैरह बीमारियां होती हैं, ये यूजुअली किसान ऐसे मौसम में बहुत लेकर के आते हैं, जो कि साधारण इलाज करने से ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके वजह से उनको कोई बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है, बट ठीक हो जाते हैं वो। इसके अलावा जो डेंगू मलेरिया ऐसी बीमारियां तो होती ही हैं, इसके अलावा कई बार पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन मतलब जैसे जो एक हम लोग कैंपेन भी चला रहे हैं फाइलेरिया के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रचार भी हमारे रेडियो पे चल रहा था
1: जी।
0: ऐसी बीमारियां जो हमारे बॉडी में पैरासाइट्स की वजह से एंटर करती हैं और कॉम्प्लिकेट करती हैं, डेवलप होती हैं, जिनके वजह से हमारे लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आती है, मतलब जो फाइलेरिया जैसी कंडीशन है वैसी कंडीशन बनती है, वो तरह की बीमारियां हो गई। और इसके अलावा मतलब जो ये ऐसी भी गंभीर बीमारियां हैं जिन पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, लैक्टोस्पायरोसिस, इसके अलावा और दूसरी कंटामिनेशन जिनके वजह से डायरिया और टाइफॉइड ऐसी बीमारियां होती हैं, तो देखिए जो ऐसे कंटामिनेशंस हैं जो बॉडी के अंदर जा कर के और डायरिया फीवर ऐसी चीज़ें पैदा करते हैं, उनका तो चलिए और भी तरह के बचाव हैं और भी उपाय हैं, बट जो हमारे पैरों के, जब जैसे पैरों में कट लगे हैं तो उनको कवर करना होता है क्योंकि वहाँ से वो इन्फेक्शन एंटर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं अपने किसान भाइयों से एक अनुरोध ये करूँगा कि जो भी किसान भाई खेतों में काम करते हैं, बराबर जाते हैं, वो अपने लिए वो एक विशेष प्रकार के जो ऊंचे जूते होते हैं, रबड़ के बूट्स जिनको कहते हैं, जो रबड़ के होते हैं और घुटनों तक लगभग होते हैं, तो उनको ज़रूर वो परचेज करें और इसका प्रचार भी करें और भी लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को, मतलब मुझे लगता है कि खेतों में काम करने वाले एक 20-30% लोगों के नाखून में मैंने देखा है कि वो नाखून बहुत मोटा हो जाता है, मतलब एक जो फंगल नेल इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन, मतलब मुझे हर 10 में से 3-4 लोगों को दिख ही जाता है खेतों में काम करने,
1: थोड़ा सा मोटा
0: सा। मोटा हो जाना, उसका येलोइश हो जाना, फिर वो धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाना, धीरे धीरे दूसरी तरह से बढ़ना, फिर वो पैरों में दर्द पैदा करना, फिर वो लंबे समय तक ऐसे ही रहता, वो ठीक नहीं होता है, फंगल नेल इन्फेक्शन। तो इन सभी बीमारियों से कई बार ऐसे लोगों को देखा है जिनको पेपिलोमा वायरस के जो वार्ट्स होते हैं वो भी ऐसे पेशेंट्स में देखे हैं, तो इनसे बचाव करने के लिए मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि खेतों में काम करते वक्त वो जो बूट्स होते हैं, जूते जो कि मुझे लगता है 500-700 रुपए तक आ जाने चाहिए, तो उनका ज़रूर प्रयोग करें, और उनका प्रयोग करने से वो पैरों में होने वाली बहुत तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। हाथों में जब वो खेतों से बाहर आए काम करके, तो अपने हाथों को पैरों को अच्छी तरीके से साबुन लगा करके या फिर हैंड वॉश लगा करके अच्छे से धोएं, और धोने के बाद ही फिर कुछ भी खाएं पिएं या ऐसी चीज़ें करें, खाने पीने की वस्तुओं को छुएं, और ऐसा करके मुझे लगता है कि वो भी ऐसे कंटामिनेशन से बच सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बस छोटी छोटी आदतों में बदलाव और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आप अपने सेहत को सही रख सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं, और ऑफकोर्स आप अपने आप के अलावा दूसरों को भी बचा सकते हैं, क्योंकि कई बार जो बीमारियां हमें होती हैं वो हमसे दूसरों तक भी पहुंच जाती हैं, कम्युनिकेबल होती हैं, और हमको पता भी ये बात नहीं चलता है।
0: और सबसे ज़्यादा इसके प्रभावी बनते हैं हमारे घरों के बच्चे, क्योंकि हम वही कंटामिनेशन ले जाकर बैठते हैं, चीज़ों को छूते हैं, बच्चों को भी उठाते हैं, बच्चों को हाथ में गोद में लेते हैं, तो वो कंटामिनेशन कहीं ना कहीं हमसे ही बच्चों तक जाता है।
1: चलिए, हमारे एक लिसनर हैं जो चैट बॉक्स में आपसे सवाल कर रहे हैं, धर्मेंद्र मोहन जी हमें सुनते हैं आवाज विकास से, और उन्होंने लिखा है, उन्नति नमस्ते, डॉक्टर साहब जी नमस्ते।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: एंड पैर की उंगली की जो स्किन होती है वो उजड़ रही है मेरी भाभी का, इसके लिए कौन सा मलहम है, क्या कोई क्रीम है तो बता दीजिए।
0: जी बिल्कुल, ये एक वैसे नॉर्मल फिनोमेना है, ऐसे जो सीजन होते हैं इसमें होता है। नॉर्मल जो क्रीम्स बेटनोवेट सी वगैरह आपको आती हैं, एंटीफंगल क्रीम्स, वो आप लगाएंगे और इससे वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगी। जब इससे अगर नहीं रिकवर होता है बेटनोवेट सी से, तो आप हमें दोबारा संपर्क करेंगे और हम कुछ आपको और भी बेहतर बता देंगे।
1: आई थिंक ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसमें अगर पेन नहीं होता है
0: जी, तो पेन पेन इचिंग रेडनेस और रैशेज अगर नहीं होते हैं, सिर्फ स्किन ही शेड हो रही है, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है।
1: बिल्कुल सर।

0: से बाल शेड होते हैं उस तरह से स्किन भी शेड होती है, और हर दिन होती है, बस अलग बात है कि कभी कभी कम मात्रा में होती है और किसी सीजन में वो ज्यादा दिखती है
1: जी।
0: तो भाई ये तो हमने बात कर ली आपसे इस बीमारी के बारे में, और अब हम बात करेंगे कि मॉनसून में आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। मैं हर मौसम इस बात को रखती हूँ कि यार डाइट क्या होगी, डाइट क्या होगी, क्योंकि मॉनसून आ रहा है, चिप चिप का मौसम है, हम पानी पी रहे हैं, पानी भी पी लेते हैं कई बार बाहर से और बीमार पड़ जाते हैं,
1: जी
0: कुछ भी खा लेते हैं, और स्पेशली जब बाहर हम लोग होते हैं तो कहा जाता है कि बाहर का ज़्यादा नहीं खाना चाहिए
1: जी
0: इस वक्त, क्योंकि बाहर का खाओगे पता नहीं कैसा पानी है, कौन कौन से बैक्टीरियाज उड़ रहे हैं, कहाँ से क्या आकर आपको नुकसान कर जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, जिसकी बात मैंने शुरुआत में ही की थी।
1: जी
0: तो मैं आपसे जानना चाहूंगी मॉनसून के वक्त में हमारे डाइजेशन को ध्यान में रखते हुए एक इंसान, एक कॉमन इंसान जो दिन में कहीं ना कहीं एक्टिव भी रह रहा है या फिर जो ऑफिस में है ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, दोनों की डाइट में क्या डिफरेंस रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि मॉनसून के सीज़न में हम जो भी खा रहे होते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ करके, स्पेशली जो मतलब हम अनप्रोसेस्ड खाते हैं सैलड वगैरह, उनको गर्म पानी वगैरह से धो करके जो हम डिसइंफेक्टेंट करते हैं बैक्टीरिया वगैरह से उनका बचाव करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ बारिश जैसे मौसम में वैसे लोगों का मन तो पकौड़े और चाय ऐसी चीज़ों खाने का मन करता है, बट ऐसी चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए।
0: क्या बात है, अगर आपने किसी की पसंदीदा चीज को रोक लगा दी हो।
1: जी बिल्कुल, ऐसी चीज़ें तो नहीं खानी चाहिए, या फिर कभी कभी थोड़ा सा अगर खा भी ले रहे हैं तो कम खाना चाहिए। बाहर की चीज़ें स्पेशली इसलिए मना की जाती हैं ताकि, क्योंकि उनमें कंटामिनेशन और बाहर के वातावरण का जो जो भी प्रदूषण है वो लगता है और उसके वजह से बीमारियां पनपती हैं, तो इनसे हमारा बचाव मतलब करने के लिए हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए बाहर की चीज़ें। और घर में भी हमें बहुत ज़्यादा तेल मिर्चा मसाला ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मतलब जो सादा खाना है जो हेल्दी भोजन है हमें ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। और अगर किसी को कोई ऐसा इंसान है जो बार बार बीमार पड़ता है, जो ज़रा सा भी बारिश में सर्दी जुकाम छींके आना ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो उन लोगों को स्पेशली जो फ्रूट्स होते हैं साइट्रस फ्रूट होते हैं खट्टे फल जो होते हैं इन फलों का सेवन करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो काढ़ा वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका, उनसे अदरक मुलेठी अश्वगंधा तुलसी ये सारी चीज़ें डाल करके उनको काढ़ा वगैरह बना करके पीना चाहिए, हल्का भोजन लेना चाहिए और थोड़े थोड़े समय पर मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा हेल्दी आहार लेते रहना चाहिए।
0: ऑल राइट, और हमारे साथ एक अविनाश शुक्ला हमारे कॉल इसमें जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर। सर इस मौसम में बच्चों के शरीर में छोटे छोटे रेड कलर के दाने क्यों निकल आते हैं?
1: जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा एक पॉइंट हम लोगों से छूट रहा था और हमारे बहुत ही शुभचिंतक इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं अविनाश शुक्ला जी का। इन्होंने प्रश्न भी बहुत अच्छा रखा है जो हम लोगों से छूट रहा था कि इस कंडीशन में बच्चों को दाने और कुछ बच्चों को मतलब वो फोड़े टाइप के जिनमें से पस और मवाद भी आने लगता है ऐसी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, पानी जो बरसता है या पानी जो भी लगता है वो हमारे शरीर के आउटर सरफेस पे ही लगता है, तो वहाँ से बैक्टीरियाज़ का आवागमन बढ़ जाता है नमी बढ़ने की वजह से। और काफ़ी देर तक जैसे जो लोग भीग जाते हैं, काफ़ी देर तक भीगे हुए जो लोग होते हैं वो अगर इस बात को नोटिस करेंगे तो उनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी फूली हुई लगेगी, मतलब लगेगा कि थोड़ी स्किन फूल गई है। ऐसे कंडीशन में बैक्टीरियाज़ के लिए और वायरसेस के लिए हमारे बॉडी के मतलब इनर डर्मा पोर्शन में जो त्वचा की आंतरिक परत होती है इंडोडर्मिस, उसमें अप्रोच करना और उसमें पहुंचना उनके लिए सरल हो जाता है, और इसलिए वहां पहुंच के वो ऐसे छोटे छोटे दाने और फोड़े हमारे शरीरों पे ये उत्पन्न कर देते हैं।
0: जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वक्त है आपसे विदा लेने का। आई होप आपको हमारा शो पसंद आया होगा, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बारिश में खास ख्याल रखिए अपनों का और आपका खुद का भी। अगर बाहर कहीं जाते हैं तो घर पर आकर हाथ पैर ज़रूर धुलें, खुद को साबुन से या हैंड वॉश से क्लीन करें, डिटॉल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। बच्चों के लिए स्पेशली हमने जो बात की वो आई थिंक आपको पसंद आई होगी, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं स्पेशली उन्हें। और इसी मैसेज के साथ अब लेंगे आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी। रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो कैरसली 89.6 FM की एक खास पेशकश जिसका नाम है क्लिनिक कैरसली। बाय बाय, टेक केयर।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं,

0: लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम

0: टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे रेडियो 11.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शाम का टाइम है और आपका अपना फेवरेट वाला शो गोधुली स्टार्ट हो गया है। आप सभी को पता है कि हर बार हर रोज गोधुली में हम गोंडा की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज को लेकर के आते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानते हैं। लेकिन आज दरअसल जो हमारे साथ मेहमान है वो बेहद खास है। कई बच्चों का, इवन कई हजार कई लाखों बच्चों का सपना होता है वो बनने का। जी हाँ, हम दरअसल आज एक स्पेशल गेस्ट को लेकर के आए हैं अपने रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM में। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आज हमारे साथ हमारी को होस्ट भी मौजूद है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है मिसेस डॉक्टर हरप्रीत कौर मैम। सबसे पहले तो आपका हम वेलकम करते हैं।
2: थैंक यू अदनान, आज का जो शो है वो बहुत ही खास है। जैसे अभी तुमने इंट्रोड्यूस किया कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं, तो आज के हमारे मेहमान हैं SP गोंडा मिस्टर विनीत जायसवाल, और पूरे स्टूडियो की तरफ से और ज्ञानस्थली कॉलेज की तरफ से मैं डॉक्टर हरप्रीत कौर उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस शो गोधुली में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अदनान।
1: थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि अभी आपको जस्ट पता चल गया है कि हमारे साथ में फाइनली SP गोंडा मौजूद हैं, मिस्टर विनीत जायसवाल। सो आइए उनके बारे में आज हम जानेंगे। आखिर बहुत बड़ा सफर होता है, यानी एक सफरनामा होता है यहाँ तक पहुँचने का। बहुत कुछ आता है लाइफ में, बहुत सारी हर्डल्स होती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, सब कुछ बात करेंगे। आखिर कितना मुश्किल होता है एक जिले की सुरक्षा व्यवस्था को चलाना, कितना मुश्किल होता है किसी भी क्रिटिकल केस को सॉल्व करना, और कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी के लिए बेहतर करना, ये सारी बातें आज होंगी। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज अपने बारे में बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी एजुकेशन जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वो कहाँ की हुई, और सर आप कहाँ के रहने वाले हैं?
3: हाँ देखिए, मेरा नाम विनीत जायसवाल है, मैं 2014 बैच का IPS ऑफिसर हूँ, और पैदाइश की अगर बात करें तो आजमगढ़ जिले में मेरी पैदाइश हुई थी। एक्चुअली मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं क्या बनस्पत, वो अभी रिटायर हो चुके हैं जेल डिपार्टमेंट में, एज जेल सुपरिटेंडेंट ही रिटायर्ड। तो क्योंकि वो भी एक ट्रांसफरेबल जॉब है स्टेट गवर्नमेंट की, तो जैसे जैसे उनका ट्रांसफर होता था साथ ही हमारा भी ट्रांसफर होता था, तो कई जिलों में मेरी पढ़ाई हुई है, गोरखपुर, बनारस, कानपुर, तो जहां जहां ट्रांसफर होते रहे मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद मैंने BTech की पढ़ाई की और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी की, और मूल रूप से मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। और बस उसके बाद तैयारी की मैंने, और थर्ड अटेम्प्ट में आई क्लियर्ड IPS एंड आई गॉट UP कैडर।
2: सर एक चीज जो अभी अभी मेरे दिमाग में आई कि आपने कहा कि आपने तैयारी की और थर्ड अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पास आउट हो गए हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ही मुश्किल होता है इसको क्रैक करने के लिए। तो कोई ऐसा एक कुछ चीज है जो मंत्र जिसको हम कहेंगे कि आप उनको बताएं कि जिसको फॉलो करके उनकी ये जो मुश्किल रास्ता है वो आसान हो जाए?
3: नहीं देखिए, कहने को तो एक बहुत बड़ा सागर है ये, अब इसको गागर में भरना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। फिर भी दो तीन चीजें जो मुझे तैयारी के दिनों में जिन्होंने प्रभावित किया था, फॉर एग्जाम्पल

0: ने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो हमारे एक जो टीचर थे, मेन जो गुरु थे इस तैयारी के दौरान, उन्होंने पहले ही क्लास में बोर्ड पर आकर एक चीज लिखी थी, सिंपल आप सभी ने सुना होगा, लाइफ इज ब्यूटीफुल। और उसके बाद उन्होंने छोटा सा एक एस्ट्रिक बना दिया था। हम सभी जानते हैं उस एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है। हम अखबारों में देखते हैं बड़े बड़े विज्ञापन, सेल 100%, 50%, लेकिन एक छोटा सा एस्ट्रिक नीचे रहता है, उसकी ओर ध्यान कम जाता है। लेकिन वही मेन की होता है, नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। डेफिनेटली लाइफ इज ब्यूटीफुल बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगर आप हार्डवर्क करेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए लाइफ इज ब्यूटीफुल का वो स्कोप है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो भी किसी ने बताई ही थी मुझे, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश।
1: वेरी ट्रू।
0: लोगों के पास गोल है, हमें ये करना है लाइफ में, वो बनना है, बट कोई प्लान नहीं है। जब हम छोटे रहते हैं, एग्जाम्पल मैं भी जब स्कूल में था तो जब कोई पूछता था सेकंड क्लास में क्या बनना है तो पायलट बोल दिया, कभी डॉक्टर से प्रभावित हुए तो डॉक्टर्स बोल दिया। बट लाइफ के एक स्टेज पे जब आप पढ़ाई करते हैं तब डेफिनेटली आपका जो भी गोल है उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, वरना वो सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग होके रह जाएगा। रास्ता अपने आप तलाश लेंगे। आज के युवा में बहुत पोटेंशियल, स्टूडेंट्स में बहुत काबिलियत है, लेकिन सही समय पर अगर इस चीज को वो जान ले, एहसास कर ले कि हमें एक ठोस प्लान चाहिए, एक कार्य योजना चाहिए, इस पे हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ें और रिजल्ट पे ध्यान ना दें, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दें। प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब उस एज में रहते हैं, मैं भी जब था, तो तैयारी के दौरान हमेशा हम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, बट प्रोसेस को कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं। अगर प्रोसेस हमारा सही है तो नतीजे की हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों नतीजा हमारे फेवर में आएगा। ये बस मुझे एक बात अपने नए जो उम्र के साथी हैं उनसे कहना है।
2: वाह क्या बात है सर। अभी स्टार्टिंग में ही आपने मेंशन किया कि जाहिर सी बात है आपकी पैदाइश आजमगढ़ में हुई और कहीं ना कहीं गोरखपुर में भी आपका अच्छा खासा वक्त बीता है, लेकिन कहते हैं कि माहौल बहुत बड़ी चीज होती है, तो मैं सबसे पहले तो आपकी फैमिली से स्टार्ट करना चाहूंगा कि आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं और कैसा माहौल रहा बचपने में, आप कैसे थे, मतलब जैसे बाकी बच्चे होते हैं कुछ शरारती होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो काफी रिजर्व्ड होते हैं, तो आप कैसे थे, किस तरह की प्रवृत्ति थी आपकी?
0: देखिए जैसा कि मैंने बताया, हमारे पिताजी भी सरकारी सेवा में थे और जेल डिपार्टमेंट एक बहुत ही अनुशासित डिपार्टमेंट है, और जेलर की पोस्ट आप समझ ही रहे हैं, हमने पिक्चरों में भी देखा, एक परसेप्शन है कि एक बहुत ही कड़ा रुख रहता है, काफी अनुशासित माहौल रहता है
2: जी।
0: तो डेफिनेटली बहुत ही अनुशासित माहौल में हमारी परवरिश हुई है। हम कुल 5 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए वो अनुशासन मुझ पर ज्यादा लागू नहीं हो पाया किन्हीं कारणवश। तो बचपन से स्वभाव में जैसा बच्चों का रहता है कि नटखटपना, ना सुनना, इवन स्कूल में भी अगर मुझे ध्यान है कि मैं बहुत पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता था। दो चीजें हैं, एक तो आपका कैलिबर कितना है, दूसरा आपका इंटरेस्ट कितना है। तो कैलिबर पोर्शन में तो आई वॉज ऑलवेज ओके, अबव एवरेज, लेकिन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो पढ़ाई ना करना, खेल पे ज्यादा ध्यान देना, हालांकि ये बातें आज के जमाने में नए स्टूडेंट्स के लिए कोई बहुत इंस्पिरेशन नहीं है, क्योंकि वो क्या करेंगे कि मेरी बात के मेहनत वाले पॉइंट्स को ना लेकर, शुरू में जो ना पढ़ना है उस पॉइंट को लेकर उसका एग्जांपल दे सकते हैं। इवन आई रिमेम्बर 8th क्लास में आई गॉट 16 मार्क्स इन मैथ्स, तो माय प्रिंसिपल कॉल्ड माय फादर कि इनको हम मैथ्स नहीं दे सकते हैं 9th में, 9th में हमको सब्जेक्ट लेना था।
2: ओके
0: तो उस दिन जब पिताजी को ये बोला गया प्रिंसिपल के द्वारा कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और इस तरह से उन्हें एक निराशा भाव से बताया गया, उस दिन मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मेरी वजह से मेरे फादर को कोई ये कह रहा है कि वो ये कर नहीं पाएगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तब मैंने ये फील किया कि मैं लड़कपन में खेल कूद में इग्नोर कर रहा था, प्रिंसिपल मैम ने तो सीरियसली ले लिया। उस दिन के बाद से फिर मैं स्कूल में भी हमेशा फर्स्ट आता था
2: जी।
0: बस थोड़ा सा ध्यान देकर
2: जी।
0: मतलब लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करने वाला ही मैं भी हूँ, साल भर खेला, लास्ट में सिंसियर हो गए। ये भी एक सीख है नई पीढ़ी के लिए, सबको अपना कैलिबर पहचानना होगा, दूसरों को देखकर अपने पढ़ाई का वो जो घंटे हैं वो ना तय करें आप। हो सकता है कोई 4 घंटे पढ़ के कर ले, हो सकता है किसी का कैलिबर 8 घंटे का है, लेकिन तमाम लोगों को देखा है मैंने ग्रुप में दूसरे से प्रभावित होकर, वो लास्ट तक खेल रहा है तो हम भी लास्ट तक खेले, हो सकता है वो लास्ट में कवर कर पाए, हम ना कवर कर पाए। सबको अपना अपना कैलिबर, अपना अपना असेसमेंट रहना चाहिए, उसके हिसाब से ही आगे वो तैयारी करे।
2: ओके तो सर आपने बताया कि काफी अनुशासन में बीता, और जाहिर सी बात है जैसा कि हम जानते हैं घर के जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें आते आते बड़ा कम हो जाता है, सबसे बड़े पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं पेरेंट्स, ऐसा कहा जाता है, मुझे लगता है कि शायद सही भी है। इसके अलावा आपने चूंकि कहा कि जैसे बाकी बच्चे होते थे खेलने कूदने पे ज्यादा ध्यान होता था और लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ते थे, लेकिन कैलिबर के मामले आपने कहा कि एवरेज बच्चों से आप हमेशा

0: ज्यादा ही रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने कहा, ये सच होता है कि बचपन में हमने मूवी देखा तो लगा अमिताभ बच्चन बन सकते हैं, सचिन को मारते हुए देखा स्टेडियम, उनको अप्रिशिएट कर रहा तो हमें लगा हम क्रिकेटर बन सकते हैं। तो ये कब लगा कि नहीं मेरे लिए ये प्रशासनिक सेवा में आना जरूरी है, और फिर वहां से आपका हो गया कि नहीं यही एक मेरा एकमात्र एम्बिशन है?
1: देखिए, मेरे फादर भी एक यूनिफॉर्म सर्विसेज से बिलोंग करते हैं। उन्होंने जो हमारी तीन दीदियां हैं और दो भाई हैं, हम मैं सबसे छोटा हूं, उन्होंने सभी को प्रेरित करने का प्रयास छोटे से ही किया, तो उन पांचों में से मेरा नंबर लग गया और मेरी फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर गई
0: जी।
1: अपना अपना टेम्परामेंट होता है। अगर मैं अपनी सिस्टर्स की बात करूं तो मेरी छोटी सिस्टर है, मतलब मुझसे बड़ी है, छोटी दीदी, वो कैलिबर में और काबिलियत में मुझसे बहुत आगे है।
0: ओके।
1: उन्होंने IIT से भी पढ़ाई की है, बाद में उन्होंने एमरी यूनिवर्सिटी से रिसर्च किया है फाइनेंस में, नाउ शी इज वर्किंग इन अ गुड कॉलेज अब्रॉड ऑस्ट्रेलिया में। उनका कैलिबर बहुत था बट इस तरफ उनका रुझान नहीं था, तो रुझान होना भी बहुत जरूरी है। तो हम पांचों बच्चों में मेरी फ्रीक्वेंसी इस तरफ थी, मेरा टेम्परामेंट था, मेरा एप्टीट्यूड था, मेरा एटीट्यूड था, तो पिताजी को भी लगा और मुझे भी लगा कि मुझे इस तरफ जाना है। और कॉलेज टाइम से ही मैंने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में तैयारी शुरू कर दी। और जैसा कि मैंने कहा, सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर कोई कर रहा हो, भले ही उसे सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट ना भी देना हो, तो भी मेरा यह सबसे निवेदन रहता कि कुछ न कुछ तैयारी जरूर करे। इस एग्जाम की जो डिमांड है वो सिर्फ इतनी है, एक एवरेज एजुकेटेड इंडियन उसको जितना अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी राजनीति के बारे में, भूगोल के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उतना ही एग्जाम डिमांड करता है। और वो जानना हम सभी भारतीयों के लिए जरूरी है, भले ही हम टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, डॉक्टर हैं, लेक्चरर हैं, या किसी भी फील्ड में हैं। तो इसलिए वो तैयारी भी अपने आप में, जैसा कि मैंने कहा प्रोसेस, वो प्रोसेस भी मेरे लिए बहुत इंजॉयबल था। मैंने बहुत इंजॉय किया वो पूरा पढ़ना, उसको सीखना, देश के बारे में इतना जानना, तो वो पूरी जर्नी भी मेरी बहुत अच्छी रही। अगर मैं ये कहूं कि नहीं बहुत संघर्षों भरा मेरा वो समय था, तो बिल्कुल नहीं था। मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत इसमें दूसरों को भी इंक्लूड करने का प्रयास करता था कि वो भी इसमें इंटरेस्ट लें, तो बहुत अच्छी जर्नी रही और इस प्रकार इस तरफ मेरा आना हुआ।
2: सर, अभी आपने कहा कि घर में ही एक यूनिफॉर्म में आपने हमेशा अपने फादर को देखा है और वो कहीं वाइफ्स आपकी उनके साथ मिल गई, तो आपने जब पहली बार यूनिफॉर्म पहनी होगी तो दैट वुड बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, दे नो दैट ईच टाइम दे पुट ऑन देयर यूनिफॉर्म्स दे आर टेकिंग ऑन रिस्क टू प्रोटेक्ट अदर्स। तो डू यू रियली थिंक कि यू आर टेकिंग रिस्क टू प्रोटेक्ट अदर पीपल?
1: नहीं, डेफिनेटली देखिए, जब हम वर्दी पहनते हैं तो निश्चित तौर पे हम भीड़ से अलग हो जाते हैं। और रही बात यूनिफॉर्म, जैसा कि आपने बताया कि बहुत खास रहा होगा, मुझे आज भी डेट याद है, 1 जनवरी 2015, जब हमने पहली बार ट्रेनिंग में यूनिफॉर्म जब हमारी सिली थी और हमने पहनी थी, तो उसकी फोटो खींच के भी मैंने घर पे भेजी थी। और रही बात जब वर्दी हम पहनते हैं तो वो एक बहुत ही, आपको ये कह सकता हूँ कि काफी बड़ी जिम्मेदारी वो कंधों पे होती है, वो वर्दी उसका एहसास दिलाती है। जब हम वर्दी पहनते हैं और हमारे कंधे पे अशोक स्तंभ रहता है या IPS लिखा रहता है जिसमें इंडियन शब्द है, अशोक स्तंभ रहता है, तो हमें उस चीज की जिम्मेदारी का एहसास होता है कि एक संवैधानिक शपथ के तहत हम काम कर रहे हैं और जनता की हमसे अपेक्षाएं हैं। आज भी भीड़ में कभी किसी को समस्याएं आती हैं, लोग पुलिस की ओर देखते हैं। एक सामान्य आपराधिक गतिविधि हो, यहाँ तक कि अगर कोई, कई जगह आप इवन गोंडा में भी देखोगे, कई बार वन जो जंगली इलाके हैं उसके पास के गांव में तेंदुआ आ जाता है
2: जी,
1: वो पकड़ना या वो हटाना पुलिस का ना काम है ना हमारे कार्य क्षेत्र में आता है, लेकिन पब्लिक पुलिस को फोन करेगी और पुलिस से अपेक्षा करेगी। और मैंने देखा है हमारे जवान कभी ना नहीं कहते। तमाम आपको इस तरह की खबरें सुनने को मिल जाएंगी, इस तरह के वीडियोस पड़े होंगे, यूट्यूब पे पड़े होंगे, जिसमें जो लोकल पुलिस है वो जान की बाजी लगाकर उसको भगाने का या पकड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग से ताकत है या अलग से उसकी कोई उस संबंध में ट्रेनिंग है, लेकिन क्योंकि उसने वो वर्दी पहनी है, उसको इस चीज का एहसास है कि पब्लिक उसे देख रही है उम्मीदों से। उससे ज्यादा ताकतवर लोग हैं लेकिन वो खड़े हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं उस वर्दीधारी से कि वो जाकर उस तेंदुए को पकड़े। ऐसे तमाम हमारे सामने लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती आती है। देखिए, पुलिस इज द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ द सिस्टम। जो पूरा गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसका सबसे जो विजिबल अंग है वो पुलिस है, यूनिफॉर्म है। तो आए दिन होता है कि पब्लिक को किसी भी चीज को लेकर अगर ग्रीवियांस है, समस्या है, और वो लॉ एंड ऑर्डर में तब्दील होता है, तो मौके पर सामने पुलिस रहती है। अगर वो पत्थर फेंक रहे हैं, डेफिनेटली वो पुलिस को कोई व्यक्तिगत टारगेट करके नहीं फेंक रहे, वो सिस्टम से नाराज है और सिस्टम का जो विजिबल चेहरा सामने खड़ा है वो पुलिस खड़ी है।

0: तो मैं भी अपने साथियों को भी बार बार इस संबंध में सेंसिटाइज करता हूँ कि जब भी हम ऐसे मौकों पे जाएं, अपना टेम्परामेंट बना के रखें, क्योंकि ये वर्दी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए हमने ये वर्दी पहनी है। कुछ तो अलग है हम में, तो हम भी अगर वैसे ही बिहेव करें तो फिर हम में और उनमें फर्क नहीं रह जाएगा। तो ये डेफिनेटली है, वर्दी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसका एहसास हम सभी को है और होना भी चाहिए डेफिनेटली।
1: बेशक सर, तो वापस से वही चलते हैं जहां पे आपने कहा था कि आपने तीसरे अटेम्प्ट में फाइनली क्वालिफाइड कर लिया था। तो एक बहुत अहम ये चूंकि सवाल है, इस वक्त हमारे कई सारे ऐसे स्टूडेंट सुन रहे हैं जो एस्पिरेंट हैं आईपीएस के लिए, आईएएस के लिए, आपको सुन रहे हैं। तो अब हम ये जर्नी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपने कहां से शुरुआत की थी, कैसे सब्जेक्ट्स पे आपने कमांड की। होता क्या है सर कि कुछ वीक सब्जेक्ट्स भी आपके होते हैं और कुछ होते हैं स्ट्रांग। तो स्ट्रांग तो आपके अच्छे से कवर हो जाते हैं, उस पे अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन वीक के लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है? टाइमिंग पे आप बिलीव करते थे या कितना क्वालिटी स्टडी पे करते थे, और उस दौरान किस तरह से खुद को कूल रखते थे? क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो प्लीज इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं।
0: नहीं बिल्कुल, ये भी देखिए एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट फिर भी मैं प्रयास करूंगा संक्षेप में इसमें बताने का। कोई भी सब्जेक्ट यदि आपको चुनना है या कोई भी एग्जाम क्रैक करना, नॉट ओनली यूपीएससी, क्वेश्चन पेपर्स आर दी की। आप कोई भी एग्जाम देना है, मैं कह रहा हूँ एक्स वाई जेड यूपीएससी कोई भी, आप उनके पिछले 5 या 10 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उनको स्टडी करिए, स्टडी देम, नॉट टू टेस्ट योर नॉलेज कि हमें कितना आता है, क्योंकि ये भी एक आर्ट है। बच्चे उसी में उलझ जाते हैं कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, ये है ही नहीं उसका उद्देश्य। आप बस क्वेश्चन पेपर को पढ़िए कि क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं और किस तरह से पूछ रहे हैं। सेम किताब पूरा इंडिया पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में किताब है लक्ष्मीकांत, पूरा इंडिया स्टूडेंट सब वही पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, बट उसी में से आए हुए सवाल कुछ बच्चे कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने क्वेश्चंस पढ़े होंगे उनका वो अप्रोच डेवलप होगा कि वो किताब हमें किस अप्रोच से पढ़नी है। हम सेम पेज पढ़ रहे हैं बट जब हमारे दिमाग में वो फ्रेमवर्क रहे, इस फ्रेम में क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आए थे पहले, इसको इस एंगल से पढ़े, तब आप ज्यादा क्लैरिटी के साथ पढ़ते हैं, तब आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि इस किताब से कोई क्वेश्चन आएगा मैं सॉल्व कर लूंगा। कोई किताबें बाहर से नहीं आ रही, सेम किताब स्टैंडर्ड सभी पढ़ते हैं। इसी तरह से जब हमको अपना सब्जेक्ट चुनना है, सिलेबस ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसके साथ कुछ समय गुजारिए, कुछ दिन गुजारिए, आप बस सिलेबस देखते रहिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए। अपना टेम्परामेंट होता है, कुछ लोग आर्ट्स में अच्छे होते हैं, ह्यूमैनिटीज में अच्छे होते हैं, कुछ लोग का साइंटिफिक बैकग्राउंड होता है वो उसमें अच्छे होते हैं, लेकिन जो भी करें बहुत ही वाइजली करें, सोच समझ के, और दूसरों को देख के तो बिल्कुल ना करें कि इन्होंने, मेरे दोस्त ने ये ले लिया तो मैं भी ये सब्जेक्ट ले लूं। ये एक लंबा सफर है सीखने का, गलती करने का और उससे सीखने का, क्योंकि मेरा थर्ड अटेम्प्ट में हुआ है तो मेरे पास तमाम ऐसी जानकारियां, ऐसे अनुभव हैं जो मैं यंगस्टर्स के साथ केस टू केस बेसिस पे साझा करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि किन किन पॉइंट्स पे मुझे सफलता नहीं मिली। कई लोग जो बहुत अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं, तो वो दूसरों को वो गाइडेंस नहीं दे पाते हैं कि क्या कमियां रह गई और उन कमियों से हम कैसे उभरे। तो मैं इस मामले में बहुत लकी मानता हूं, मेरे कॉलेज के और तमाम जूनियर्स अभी भी मुझसे इसीलिए जुड़े हैं कि अनुभव थोड़ा मेरे पास ज्यादा है तैयारी का, कि क्या क्या कमियां हम कर देते हैं। तो मेरे पास जैसे कोई डॉक्टर है, उसको अनुभव बहुत ज्यादा होता है, आप उसे हल्की सी समस्या बताएंगे वो तुरंत बता देगा अच्छा ये हो रहा है, आप भी खुश हो जाएंगे, अरे डॉक्टर साहब ने तो पकड़ लिया। सेम यही कुछ मेरे साथ भी हो गया था, मुझसे कोई यंगस्टर बताया कि सर ये हो रहा है, मैं उसको कहता था कि तुम ये कर रहे हो, तो वो खुश हो जाता था, हाँ सर मैं तो ये कर रहा हूँ।
1: right.
0: तब मैं उसे क्या करेक्ट करना है वो बताता था। तो लंबी जर्नी है इस समय, अलग से इस संबंध में कभी भी हम बात करेंगे, काफी ये बहुत वाइड टॉपिक है।
1: बेशक, आपने कहा कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी लगी कि अभी तक जो हमने भी सुना था, ये लोग कहते थे कि पहले अपने को टेस्ट करो, आपने पहले इस चीज को डिनाय कर दिया कि नहीं पहले देखो सिलेबस क्या है, क्योंकि जब हम टेस्ट में आते हैं खुद को करके और उसके बाद जब हम एक निराशा वाली एक फेज में चले जाते हैं तो उस चीज को करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपने सही कहा, अगर जो सिलेबस है अगर हमारा उस पे ध्यान होगा तो शायद वो ज्यादा बेस्ट होगा। दूसरी बात आपने कहा कि दूसरे को देख करके कोई भी स्ट्रेटेजी उस तरह से या इस तरह से पढ़ाई का टाइमिंग हम फिक्स नहीं कर सकते, ये हमारी एबिलिटी पे होता है, ये हम कितना ज्यादा चीजों को कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं वो हम ज्यादा बेस्ट जानते हैं। बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत ही अच्छी बातें ऐसे बता दी जो हमारे इस वक्त स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके बहुत ज्यादा काम किए। चूंकि आपने थर्ड अटेम्प्ट में आईपीएस क्लियर कर लिया और ऑफ कोर्स आप सेवा में आ गए, प्रशासनिक सेवा में, और अभी तो आपके ऊपर पूरी जिले की जिम्मेदारी है सुरक्षा व्यवस्था की। पहली जॉब कैसी रही, पहली जॉब कहाँ लगी, क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि जो ग्लैमर मुझे लगता है बाहर से दिखता है, सब कुछ तो वैसा ही नहीं होता होगा, और ये सिर्फ इसी जॉब की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। इस बात को जानेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उससे पहले

कि वक्त हो गया एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का। सो ब्रेक के उस पार वापस से हम आपसे मिलते हैं। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में मौजूद हैं एसपी गोंडा मिस्टर विनीत जायसवाल सर।

0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। आप सुन रहे हैं रेडियो 11.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में गोधुली प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट मौजूद है डायनेमिक पर्सनैलिटी गोंडा SP मिस्टर विनीत जायसवाल। सर जाने से पहले चूंकि हमने ये कहा था कि आपने अटेम्प्ट कर लिया, बात ही बात में अभी हम आपके सफर को जान रहे हैं और कहते हैं कि जो देखने में चीजें नजर आती हैं जब आप करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो उस तरह बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हाँ ये कि बहुत ज्यादा फर्क होता है और अच्छी भी लग सकती है चीजें, या शायद जो चैलेंजेस आपको आगे से देखने पे पता नहीं चल रहे थे वहां पे जाने के बाद पता चलते हैं। तो मैं स्पेशली आपसे कहना चाहूंगा कि ज्वाइनिंग के बाद का एक्सपीरियंस सर बताइए, और फर्स्ट ज्वाइनिंग आपकी कहाँ हुई और वो जो ड्यूरेशन आपने वहां पे दिया वो कैसा रहा?
1: देखिए, फर्स्ट ज्वाइनिंग जब हमारा जिले की पुलिस से वास्ता पड़ता है वो एक ट्रेनिंग फेज रहता है।

0: होती हैं। संसाधन हमारे पास उतने नहीं हैं, जिस रफ्तार से क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर और लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, और टाइम की बहुत कमी है। एक वर्क लाइफ बैलेंस स्पेशली यूनिफॉर्म सर्विस में बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि 24/7 जॉब है। आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप ऑफ ड्यूटी हैं, कभी भी नहीं। रात को 2 बजे, रात को 3 बजे, कब कौन सी कॉल आ जाए, बेसिकली आपका आज का दिन कैसा रहेगा जब हम सुबह निकलते हैं तो हमें खुद नहीं पता, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आज सोसाइटी कैसे बिहेव करने वाली है, आज कौन सा हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कोई क्राइम करने वाला है, आज कौन सा लुटेरा पैसों के लालच में कोई क्राइम करने वाला है, कौन सा कोई बड़ा एक्सीडेंट मेजर हो जाए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो डेफिनेटली हमारे उस वर्क लाइफ बैलेंस में इन सभी चीजों का लगातार इंटरफेरेंस रहता है। उससे एक सामंजस्य बिठाना, पुलिसिंग का अपना एक कल्चर है, अपना एक तौर तरीका है, क्योंकि ये जो भी पुलिस के हमारे जवान हैं, हमारे साथी हैं, सब समाज से ही आए हैं। तो जो समाज में कुछ हमें कई बार कमियां देखने को मिलती हैं, डेफिनेटली वो साथ में विभाग में भी आएंगी। इनको समय समय पर कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, पिन पॉइंट करना, करेक्शन करना, काउंसलिंग करना, इसमें सुधार करना, ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो डेफिनेटली जब पहला चार्ज रहता है, जब हम आए तो बहुत से लॉ एंड ऑर्डर देखे, समाज की देखिए कोई नेगेटिव बात नहीं है। जैसे एक डॉक्टर है, मैंने शुरू में भी एग्जांपल दिया, एक डॉक्टर के पास क्या आएगा एज ए क्लाइंट, कुछ न कुछ बीमारियां आएंगी, शारीरिक जो कमियां हैं वो आएंगी, मतलब एक तरह से शारीरिक जो भी डिजीजेस हैं वो सामने आएंगे
1: जी।
0: पुलिस के पास भी वैसा ही समझ लीजिए, एक समाज के डॉक्टर की तरह हमारे पास भी वही सारी चीजें आएंगी। हम ये सोचे थाने में बैठकर कि कोई प्लेजेंट चीज आएगी, प्लेजेंट चीज कभी नहीं आएगी।
1: बेशक बेशक,
0: कोई विभत्स क्राइम हुआ हो
1: जी,
0: समाज में जो तरह तरह की ये विसंगतियां देखने को मिलती हैं, वही सारी चीजें हमारे सामने आती। इस माहौल में अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना, टेम्परामेंट को बनाए रखना, अपने उस मानवीयता को ना भूलना, क्योंकि ये रोजमर्रा की ये सब चीजें जिनसे हम डील करते हैं उनके बीच में रहते रहते ऐसा ना हो कि हम अपने इमोशंस को भूल जाएं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हम वो बैलेंस बनाते हैं। तो निश्चित तौर पे काफी अच्छा अनुभव रहा, कई मेजर क्राइम्स हुए जिनको हमने वर्कआउट किया, बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर देखे हमने, समाज कैसे बिहेव करता है जब अलग हम किसी इंसान से बात करते हैं, और वही इंसान जब एक भीड़ का हिस्सा हो तो मॉब कैसे बिहेव करता है, मॉब मेंटालिटी, क्रिमिनल्स किस हद तक डेयरिंग हो सकते हैं। हमने फायरिंग भी देखी, इनकाउंटर भी देखा, लॉ एंड ऑर्डर में पथराव देखा, फायरिंग देखी, कई क्रूसम मर्डर्स देखे, उसको वर्कआउट किए, तमाम इलिसिट रिलेशनशिप्स, तमाम ऐसी चीजें जो समाज की पहले जिनसे मैं कभी मेरा वास्ता नहीं पड़ा था, डेफिनेटली पड़ा, वो सीखने के लिए भी एक चीज थी। अब यही है हमारा काम, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा, जो ग्लैमर पोर्शन के अलावा जो एक बिल्कुल क्रूड काम है, वो इवन जैसे एक्सीडेंट्स सीन पे भी जाना एक बहुत बड़ी अपने आप में एक चुनौती है। जब कोई सूचना मिलती है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, यू नेवर नो कि वहां क्या देखने को मिल जाए, बॉडी किस हालत में हो। जिस आदमी ने कभी पूरे लाइफ में कोई डेड बॉडी ना देखी हो, वो एक्सीडेंट सीन पे जब जाएगा उसे कुछ नहीं पता कि क्या पता उसमें सर ही ना हो। कई बार तो ऐसा हुआ कि सड़क से उसको उठाना मुश्किल पड़ जाता है, उसके जो बॉडी के जो भी पार्ट्स रहते हैं। तमाम तरीके की चीजें हैं जो मौके पे जाकर ही आपको समझ में आ पाएगा, उसको आप अनुभव कर पाएंगे। तो बिल्कुल अच्छा रहा मेरा वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। आगरा में मैं अंडर ट्रेनिंग था और वहाँ पे एक मलपुरा थाना है, वहाँ के एसएचओ के रूप में मैंने काम किया, तो बहुत ग्राउंड लेवल पे आपको लोगों को देखने का मौका मिलता है और सीखने को भी बहुत कुछ मिला। उसी दौरान हमारे एक सीनियर अधिकारी ने मुझे एक बात बताई थी जो मैं लाइफ लॉन्ग उसे याद रखता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, जब भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कोई अच्छी बात बताता है
1: जी,
0: तो उसे मैं लाइफ लॉन्ग याद रखता हूँ। ही वॉज वेरी जूनियर टू मी, जिसने मुझे ये बात बताई, रैंक और ओहदे में वो मुझसे जूनियर था
1: जी,
0: लेकिन उसने मुझे ये बात बताई, मुझे अच्छी लगी, मैं अपने आप आत्मसात करता हूँ और अपने अधीनस्थों को भी बताता हूँ। उन्होंने कहा शुरू में ही कि सर्विस में अभी आपको आगे लंबा अनुभव होगा, बहुत से लोग आपसे मिलेंगे, कई बड़े बड़े लोग आपसे मिलेंगे, ऊंची ऊंचे लोग आपको सिफारिशें करेंगे, पैरवी करेंगे, उनकी तो एनीवेज आपको सुनना ही होगा क्योंकि वो अच्छे पदों पे हैं, सिफारिश करेंगे, आप उनको सुनेंगे, करेंगे जो मेरिट पे है वो अलग बात है, लेकिन सुनेंगे। ऐसे लोग की पैरवी अपने आप बड़े लोग करते हैं, लेकिन जब हम थाने पे जाते हैं या ऑफिस में बैठते हैं तो कई ऐसे लोग आते हैं जो अकेले होंगे, निरीह होंगे, गरीब होंगे, उनके पास कोई बहुत क्षमता नहीं होगी। हमें एज अ सर्विस जो हम आईपीएस हमें मिला है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोग की पैरवी हम बने, ऐसे लोग की सिफारिश हम करें। ये चीज मैंने उसी दिन से अपने अंदर रखी है और हमेशा मैं ये प्रयास करता हूँ कि जो व्यक्ति अकेला लग रहा हो, निरीह लग रहा हो, उसकी पैरवी एज अ पार्टी बन के मैं करता हूँ। कई बार आगे मुझे करियर में कई समस्याएं भी आई, लोगों को लगता है कि ये पार्टी क्यों बन रहे हैं।

0: मेरा ऐसा मानना है, अगर समाज में, क्योंकि समाज में काफी इम्बैलेंस है, आप देखोगे एक फ्यूडल टाइप का सेमी फ्यूडल सोसाइटी है, कुछ लोग बहुत ताकतवर है
1: बेशक,
0: कुछ लोग बहुत कमजोर है, अगर हम न्यूट्रल अंपायर बन के देखते रहे फिर वही होगा जो कि बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाएगी
1: जी।
0: हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तमाम लोग इस तरह की बातें करते हैं कि पुलिस को पार्टी नहीं बननी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है बिल्कुल बनना चाहिए। कमजोर के पक्ष में जब तक सिस्टम खड़ा नहीं होगा बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। तो ये जो हमारे उस गुरु ने मुझे ये बात बताई कि ऐसे लोग की पैरवी मैं खुद बनता हूँ। कई बार हमारे थाना प्रभारी या अधिकारियों को ये लगता है कि ये जो फोन सर ने किया है लग रहा है उनका जानने वाला है। मैं उस कंफ्यूजन को दूर भी नहीं करता हूँ, अच्छा हो उसे लगे कि ये मेरा जानने वाला है। ये थ्रू आउट मैं अपने करियर की आपको बात बता रहा हूँ हर डिस्ट्रिक्ट की, तो उनको यही लगता है कि सरकार जानने वाला, इसलिए सर इतनी प्रभावी पैरवी कर रहे हैं कि इसकी मदद होनी होनी है। मैंने कभी ये कंफ्यूजन आज तक दूर नहीं किया, उसे लगे कि मेरा जानने वाला है लेकिन उसका काम हो, उसकी मदद हो। जो त्वरित न्याय देने का हम लोगों के पास कानून ने हमें शक्ति दी है, इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो वो एक गुरु मंत्र है जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, जिसका मुझे गर्व है कि मैं ये कुछ न कुछ ऐसा करता हूँ जिससे उसका पालन हो और लोगों को भी यही सीख देता हूँ।
2: तो सर ये जो अभी आपने बताया कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ये तो आपके एक पर्सनल ट्रेट्स में हो गए। और ये सारी चीजें जो है आम आदमी, क्योंकि हम लोग भी लेमैन की तरह पुलिस में अगर हम जाते हैं तो हम लोग 10 बार सोचते हैं कि हम वहां पर जाएं या ना जाएं, पता नहीं हमारी बात समझी जाएगी कि नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली सफर कर रहे हैं लेकिन वो पुलिस के पास नहीं जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो एक इमेज बनी हुई है पुलिस की, वो सबसे ज्यादा इस रास्ते में रोड़ा बनती है। अभी आपने बात की कि आप अपने लेवल से उसको कवर करते हैं, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर यही चीज आम आदमी के मन से निकल जाए कि पुलिस जो है अगर हमको कोई प्रॉब्लम है हम जाएंगे तो वो हमको जेन्युइनली सुनेंगे, तो इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़े और प्रयास पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कॉमन आदमी के लिए होने चाहिए।
0: नहीं देखिए, निश्चित तौर पे आपने जो कहा ये समाज की एक कड़वी सच्चाई है और ये परसेप्शन बना हुआ है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये परसेप्शन पूरी तरह से सही है लेकिन पूरी तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि कई बार अपने व्यक्तिगत अनुभव ना होने के बावजूद हम दूसरों की सुनी सुनाई बातों से, क्योंकि मैं बहुत स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों से भी इंटरेक्ट करता हूँ, मूवीज देखकर दूसरों की बातों को सुनकर एक आम धारणा बनी हुई है, उससे भी लोग हिचकते हैं। अब धीरे धीरे जो डिपार्टमेंट है, जो सीनियर्स हैं, बहुत इस संबंध में संवेदनशील हैं, इस चीज की ओर ध्यान देते हैं। लगातार हम लोगों के द्वारा भी वर्कशॉप की जाती है, बिहेवियरल काउंसलिंग की जाती है। इवन मैंने कई डिस्ट्रिक्ट्स में किया है कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पे सभी पुलिस कर्मियों को बैठाकर जितने भी इस तरह के कभी जो प्रकरण संज्ञान में आते हैं कि पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, उसका कोई वीडियो वायरल हुआ, मैं उन्हें खुद बैठा के दिखाता हूँ बार बार कि खुद देखो, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब अगर मानिए कई बगल का जनपद है और वो पुलिस वाला है, वो मुझसे अलग नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म, हम सब एक रूपता है, हम ही वो हैं, वही हम हैं। तो अगर वो कर रहा है तो एक तरह से हम ही कर रहे हैं, तो सोचो क्या ये हमारा व्यवहार उचित है। तो इस तरह से बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी बात, धीरे धीरे बहुत से ऐसे सर्विसेज हैं, ऐसे काउंटर चेक मेजर्स आ रहे हैं, इसे डायल 112 की एक सुविधा है। पहले जब ये सेंट्रलाइज नहीं हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम लोग इसको डिस्क्रिप्शन पे रखते थे कि हमें मौके पर जाना है या नहीं जाना। आज 112 पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, हर लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। आप कहीं भी अगर अभी भी आप 112 पे कॉल करेंगी, कोई समस्या बताएंगी, 100% 112 की गाड़ी यहाँ आएगी ही आएगी, उसे आना पड़ेगा, ये सब ऑटोमेटिक है
2: जी।
0: उसके बाद आपकी जो शिकायत है उस पे उन्होंने क्या कार्रवाई की, वो उनको लिख के, ऐसा नहीं कि मौखिक, उन्हें अपने जो डिवाइस मिला हुआ है उसमें लिख के वो इवेंट क्लोज करना होगा। तो धीरे से एक तरह से उसकी भी इसमें जवाबदेही तय हो गई। ऐसे ही थाने लेवल पे आप जाओगे कभी भी तो सभी ऑफिसर्स के नंबर लिखे होंगे, हर थाने पे वो नंबर डिस्प्ले होते हैं सभी सीनियर ऑफिसर्स पे, स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्टी SP टू DGP। ये इसीलिए है कि अगर आपको लगे कि थाने पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप सीधे सीनियर ऑफिसर को मिलाइए। और एज सीनियर ऑफिसर इस पूरे डिपार्टमेंट में हमारा सिर्फ यही रोल है कि हम थाने को मॉनिटर करें। हमसे लेकर मुझसे जस्ट नीचे के अधिकारी, हमसे ऊपर के अधिकारी, सबको यही देखना है कि थाने लेवल पे कार्य ठीक से हो। लेकिन कई बार ये होता है कि हमें सही समय पर सही फीडबैक नहीं मिलता। और देखिए, अदरवाइज लेने की बात नहीं है, मैंने देखा है कि जो हमारे ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं वो इन चीजों के प्रति ज्यादा जागरूक है,
2: ये सही,
0: शहरी लोग कम जागरूक है। मैंने कई बार, कई मैं इवन RWA की मीटिंग्स में गया, अब एक बहुत ही फ्रीक्वेंट शिकायत मिलती है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन में पैसे ले लिए। मैं आपको बताऊं, मैं SP City था नोएडा में, एक सोसाइटी में मैं वहां गया, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने चौपाल लगाई ऐसे ही पब्लिक से इंटरेक्शन के लिए, कि करीब एक साल पहले मैं एक बार पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया और उस मुंशी ने मुझसे 1000 रुपए ले लिए। मैंने उनसे यही कहा कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े पद पे रहे, इतने अच्छे ओहदे पे रहे, अगर सब कुछ अच्छा था, सब कुछ आपके रिकॉर्ड में क्लीन था, आपने क्यों उसे पैसे दिए? और आप तो पढ़े लिखे हैं, आप जान रहे हैं कि सिस्टम क्या होता है, एक डिप्टी एसपी है, एक एसएसपी है यहाँ के, आपको उन्हें कॉल करना चाहिए था, उसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए थी, उसको दंड मिलता तो मैसेज सब में जाता और हमें भी इस बात का सुकून रहता कि हमें समय पर फीडबैक मिल गया और हमने कार्रवाई कर दी। लेकिन आपने उस बात को अपने अंदर रखा, इंतजार करते रहे कि कभी कोई एसपी सिटी आएगा तो मैं उसको ये बात बताऊंगा। अब उस फीडबैक का मैं कर भी नहीं सकता कुछ। और वही नोएडा में ही तमाम ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, जेवर है, दादरी है, वहां के लोग, बूढ़ी महिलाएं 70 साल की, थाने पे खड़े होकर फोन करती हैं सीधे एसपी सिटी को कि साहब हम तहरीर दे रहे हैं, हमारा 2 घंटे से मुकदमा नहीं लिख रहे हैं और मेडिकल नहीं करा रहे। वो मैं बहुत नमन करता हूं उन माता जी को, बिल्कुल रियल टाइम फीडबैक। दूसरे फोन पे एसएचओ, अगर कोई अड़चन है विधिक तो वो भी मुझसे तुरंत पूछे, मैं निस्तारण कराऊं, तत्काल कार्रवाई होगी और यदि उसकी कमी पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये सही समय पर सही निर्णय और सही कार्रवाई का सही प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैंने जो ये एक चीज फील की है, और डेफिनेटली धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं, तमाम कम्युनिटी पुलिसिंग के भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, सरकार भी कई सेवाएं दे रही है और ये काउंसलिंग की जो ये प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहेगी और आप लोगों के माध्यम से भी जो फीडबैक आएगा डेफिनेटली इसका भी बहुत अच्छे से संज्ञान लेकर इस पे भी आगे हम कार्रवाई करेंगे।
1: यस सर, एक बहुत अहम सवाल अभी मैम ने किया था कि पुलिसिंग की जो इमेज है उसको लेकर के आपने बताया किस तरह से पूरे सिस्टम में काम हो रहा है और किस तरह से आपका खुद का भी इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन एक ऐसा सवाल जिसके बिना मुझे लगता है ये बात अधूरी रह जाएगी, एक और पक्ष है जो कि आपका यानी पुलिसिंग का पक्ष है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि लोगों की तरफ से आप किन चीजों को देखते हैं और बताना चाहेंगे कि ये कमियां लोगों में कहाँ आती है, क्योंकि सिर्फ हमको आपको ही नहीं समझना है कि हमें प्रॉब्लम क्या है सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, लोगों को भी समझना होगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपके क्या दायरे हैं या कहाँ पे वो लैकिंग हो रही है, प्लीज इस बारे में आप जरूर बताएं।
0: देखिए, जैसा कि मैंने कहा, सोसाइटी बहुत तेजी से बदल रही है, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, लोग अपने राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में बहुत जागरूक हैं, लेकिन कहीं न कहीं दुर्भाग्य ये है कि अपने कर्तव्यों के प्रति उनका ज्ञान थोड़ा कम है। और उसका सबसे बिल्कुल जो स्वतः स्पष्ट है वो उदाहरण आपको ट्रैफिक में देखने को मिल जाएगा। आप अभी रोड पर जाइए और आप देखिए कि शायद 99% लोग कोई ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कर रहा, उनके द्वारा हेलमेट नहीं लगाया जा रहा, सीट बेल्ट नहीं लगाया जा रहा, गलत जगह गाड़ी पार्क की जा रही है, तमाम मतलब ये सारे नियम हैं, ये सारे उनके कर्तव्य हैं। और उसके बाद यदि ट्रैफिक पुलिस ने या सिविल पुलिस ने चेकिंग लगाई
1: जी
0: और उनका चालान काटा, अब जैसा कि नेगेटिव परसेप्शन वाली बात होती है, डेफिनेटली पुलिस का काम नेगेटिव है, चालान काटेंगे, आपके जेब पे चोट लगेगी, आप बिना गाड़ी के कागजों के जा रहे हैं सिनेमा देखने, पुलिस ने रोका, गाड़ी के कागज नहीं है, गाड़ी सीज होगी, नियम है, एमवी एक्ट में नियम है, आप पुलिस को अच्छी अच्छी बातें तो कहेंगे नहीं, मन में कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हुए आप चले जाएंगे बुदबुदाते हुए। पुलिस का काम ही ऐसा है, जब सोसाइटी जागरूक नहीं है तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा, अधिकारों के बारे में तो सब जागरूक है कि ये हमारा अधिकार है, कर्तव्यों के बारे में कहीं ना कहीं लैकिंग है अभी, उसके संबंध में भी हम प्रयास करते हैं। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता है ट्रैफिक नियम क्या है? ट्रैफिक अवेयरनेस को तो मैं बिल्कुल एक शैम मानता हूँ, कुछ ऐसा चीज नहीं, सबको पता है कि हमें हेलमेट लगाना है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, बहाने कई हैं। मैं स्कूलों में जाता हूं तो खासकर यंगस्टर्स को प्रयास करता हूं समझाने का, कैसे कैसे एक्सीडेंट सीन देखने को मिलते हैं जिसमें हेलमेट ना लगाने की वजह से कैसे कितनी कीमती जाने चली जाती हैं। उसके अलावा भी तमाम मामले जो हमारे पास आते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि पुलिस तो उल्टा हमसे पूछने लगती है, जैसे थाने पर हम गए कोई शिकायत लेकर, पुलिस तो उल्टा हमसे 50 सवाल करने लगती है। अगर उसी पुलिस की जगह आप बैठें और आप देखें कि सुबह से शाम तक कैसे कैसे लोग कैसी कैसी शिकायतें लेकर आ रहे हैं, तब आप समझेंगे कि क्यों ये पुलिस 50 सवाल पूछती है। अगर किसी गिल्टी को जो कसूरवार है हम कुछ समय ना पकड़े, हो सकता है कार्रवाई में समय लगे, ये एक सिनेरियो है, और कोई जो बिल्कुल इनोसेंट है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर दें, इन दोनों में से कौन सा सिनेरियो हम प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली वो सिनेरियो प्रेफर करेंगे कि जो गिल्टी है भले थोड़े देर में उस पर कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में किसी इनोसेंट के ऊपर हम कार्रवाई कर दें।
1: जी,
0: हमारा कानून भी इसी सिद्धांत पे काम करता है कि भले ही 100 कसूरवार छूट जाएं, लेकिन एक बेकसूर को सजा ना हो, इसी सिद्धांत पे काम करता है। इसलिए पुलिस को कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं, लेकिन डेफिनेटली लोगों का इतना वास्ता उन चीजों से नहीं है तो वो यही फील करेंगे कि आप हमें ही कसूरवार समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ सवाल हमें जानकारी के लिए जरूरी होता है ताकि हम पूरे फैक्ट को समझ पाएं।
1: राइट,
0: कई बार मैटर कुछ होता है, लोग उसे कुछ और बना के लाते हैं, उन्हें लगता है कि इतना लिख के देंगे तो इतने पे कार्रवाई नहीं होगी, हम इसको इतना लिख के देते हैं तभी हमें प्रॉब्लम होती है
1: जी।
0: वो उनसे पूछिए जो वो आपको पुलिस की तारीफ करके बताएंगे जो गलत फंस रहे थे और पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके समय लेकर और अपनी नेगेटिविटी झेलकर उनको बचाया है। तो ये सारी चीजें हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं, और डेफिनेटली मैं क्योंकि लोगों का पाला नहीं पड़ता है, अच्छा भी है कि अपना अपना काम चलता रहे, किसी को उस तरह की प्रॉब्लम में ना फंसे की जरूरत पड़े, हम यही मनाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, धीरे धीरे सब समझेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा लोग अपने अधिकारों के प्रति तो हैं, कर्तव्यों के प्रति भी होंगे जागरूक, प्रयास हमारा है, आपका भी प्रयास इस दिशा में रहेगा।
2: आज के इस प्रोग्राम से एक बात तो सर क्लियर हो गई कि जितने भी लोग आज ये सुनेंगे इस प्रोग्राम को, तो उनके दिमाग में ये आएगा कि खाली पुलिस का ही काम नहीं है, उनका भी कुछ काम है। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, दोनों हाथ वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं आवाज निकलने के लिए। तो आप अपनी तरफ से आवाज उठाइए और पुलिस आपके साथ है, इस इमेज को खत्म करने के लिए कि पुलिस हमारा साथ नहीं देती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सारी सेमिनार्स को कंडक्ट किया जा रहा है, लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है, और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे लोगों के दिमाग से भी ये बात निकल गई होगी कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो हमको ही वो कल्प्रिट बना के कटघरे में खड़ा कर देगी।
1: बेशक, और कहते भी हैं कि भाई एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, सिर्फ एक पहलू पे अगर निगाह डाली जाएगी तो शायद वो सच्चाई नहीं सामने लाएगा। और ही अच्छी बात मुझे लगी कि जैसे कि आपने एग्जांपल दिया उनके चाचा का, ऑफ कोर्स ये एंगल्स हम लगा के देखते ही नहीं है, हम सीधा सीधा जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ भी मिलता है उसके अकॉर्डिंग अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये सच है कि कोऑपरेशन से ही होगा। अगर पुलिस हमको कोऑपरेट कर रही है तो हमारा फर्ज बनता है कोऑपरेट करना, क्योंकि वो भी हमारे बीच के ही हैं, जाहिर सी बात है नॉर्मल ह्यूमन लोग होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। सर ये बात हुई किस तरह से आप डील करते हैं, किस तरह से केसेस आ जाते हैं और पुलिसिंग की इमेज को लेकर के, अब एक जो बहुत अहम बात है जन सुनवाई, जहां पे हर छोटी मोटी समस्या को सुना जाता है, बहुत सारे केसेस आते हैं, और कहते ही हैं कि जैसे आपने पहले ही बताया था कि कोई अकेला भी आया है तो वो भी अपनी बात कह पाता और डायरेक्ट आप तक वो बातें आती हैं, नहीं हो रहा है हो रहा है, सारी चीजें सामने आ जाती है। इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि अभी वक्त हो गया एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आने वाले और बहुत अहम सवाल है जन सुनवाई, क्योंकि अक्सर हम पेपर में भी सुनते हैं जन सुनवाई हुई और इसमें इतने में से इतनी समस्याओं का निस्तारण किया गया। सो हमारे श्रोताओं से मेरी गुजारिश है कि इस सवाल का जवाब जरूर सुनिए, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। मिलेंगे ब्रेक के उस पार, सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: प्रभु, बहुत गरम है दादा, जान परत है कि परनवाई निकल जाई। इतना गर्मी, एक तो हमार जून चटपटो ही ना, ये ठंडवा जलाई के और चुप्पे वल्ली रहा थी दोपहरिया में, और हम दोपहरिया में आई थे। वो चाची
1: बढ़िया नींद, माँ बताओ के चिल्ला दे, हमें लगा दुलारी
0: है। सोते ही चाची हो
1: का है दुलारी, आ जाओ करो, हम दरवाजा कब्बो बंद नहीं करी थी। यह
0: कचवाई दी तू हमें चाची, पल्ला बंद कर ले तू।
1: पल्ला कहाँ बंद, कुंडिया नहीं दिए रहा।
0: अब ये तू ठंडवा चलाए के आराम से सूती रहती हूँ,
1: अब का करे, इतने दोपहरी है, इतना धूप है, घाम है।
0: तब देखो हमने दोपहरी में टाइम मिला था, हम वही टाइम आई।
1: तो चलो तू चाहे जब आओ, तुहार घर है, हम कब कही थे कि तू जो संझिया का हो या दतिया का हो।
0: हाँ तभी जो है पल्लवा का है बंद कर रहा, तू दूजो कुकुर पाले हु।
1: तब कुकुर है तो कहाँ जाए, वो तो ठंड पाए के यहाँ बैठे रहा थे, कहाँ जाए।
0: अब जैसे हम पल्लवा गुटकाए थे कुल भाव भाव हो वो शुरू कर दी।
1: हाँ तो भाई देखो, कोई घर में घुसी हो तो जब ये सब पहरेदार हो ना घर के, हाँ तो घुसे नहीं देते। यही सब पाला है कि चलो भाई कुड्डी उंडी नाई लगाई थे, सब रखवाली कर रहे, ज्यादा नहीं हो तू।
0: हाँ
1: हाँ
0: तो वल्ली रहू का सूती रहू।
1: हाँ तनिक आँख लग गई रहा है, तो थका लगा है ना कल रहा है।
0: अच्छा कल वहाँ पूजा उजा रहा, भंडारा ठाने रही।
1: हाँ तो है भंडारा का, हर बार भंडारा हो रहा, मंगल मंगल भंडारा होता है।
0: हाँ हाँ मंगलवार जो बड़का मंगलवार पड़ा है।
1: हाँ तो तनिक थका लाग जाते है, दो दिन हुई गए।
0: हाँ
1: वहाँ तो ले गए तनिक, और का घर में काम है, काम है का करी।
0: तो पल्लवा हम बंद कर दिया है, और हम तनी वल्ली जाई।
1: अब तू काहे उल्ली हो भाई,
0: हम वाली जाए तनी ठंडवा तेज कह दो, और तेज नहीं होता
1: पीछे तो अबे सब लाइन लगाए कि बिटिया आई हैं।
0: हाँ बिटिया तो आई सकत थी, आई जा।
2: ए चाची
1: देखो आपका कह रहा है।
2: ए चाची जल्दी आ, पानी बहुत तेज प्यास लागे, बहुत तेज धूप है, साइन है।
0: घमावा से आई ही कुल, देखो मरी जाती।
1: देखो अब आई है, अबे पानी दही ना दियो, इन्हें सब बीमार पड़ जाई हैं।
2: बहुत तेज प्यास लागे
1: जाती। नहीं बहनी धूप से आई, तनी ठंडाई लो, देखो इससे चलत है ना, बैठो एकदम से आई के धूप से पानी नहीं पिया जाते है।
0: हाँ बहनी पूरा कही थे।
1: हाँ अब देत है भाई, ऐसे नहीं पानी बनिए ना पियो, बैठो अबे गुड़ दे थे, भेली दे
0: बैठो, मुंगा बना हुई
2: ठीक है। ठंडवा चलाए तो तनी से ठंडाई जाए।
0: हे चाची ठंडवा
1: तनी चलत है
0: भाई, तनी ठंडवा तेज कह दो। और
1: अच्छा अच्छा तो
0: एक बेनवा तेज कह दो, बेनवा।
1: हाँ ठीक है कह दिया,
0: पंखवा तनी तेज कह दो। हाँ देखो बहनी हमारे कपड़वा झुरा ला।
1: अब देखो इनकी सहेली बहेली आवत हुई है।
0: हाँ और ये क्या ए चाची, वो पतरका आए गई आज।
1: वहा तो कही थे कि तोहरे पीछे तो बस लाइन लगी रही है।
2: हाँ
1: तो
2: राम राम चाची।
0: राम राम बहनी, राम राम। कहा हाल बहनी?
2: सब ठीक है चाची, अपन बताओ।
0: हम तो मजे महान।
2: अच्छा वही आए रन दीदिया के साथ है।
0: हाँ बहनी तू कैसे सन की मटकी कर रहा, तू ये क्या हुई?
2: तब से कही था चाची इनसे राम राम कह लियो तो ये जान ही नहीं पावा थी।
1: शर्मा थी
0: बहनी, तुम्हारा का नाम है?
2: हमारा दीदी हो चाची।
0: ये तुम्हारा दीदी हो ये?
2: हाँ
0: तो ये जो है क्रिश्चियानी का तू?
2: ना ना चाची पहली बार आए ही ना, तो तनी संकोचा थी।
0: का है बहनी से कुछ आ थू?
2: कुछ नहीं चाची, बस ऐसे ही मैं आपसे पहली बार मिल रही ना इसलिए।
1: ये कहाँ से आई बहनी?
2: अरे चाची बहरे पढ़े गई रहा।
0: दिल्ली तो आई गई रहा?
2: ना ना चाची।
0: हाँ
2: दिल्ली ना,
0: मैनीताल
2: ना ना, लखनऊआ गई रहा।
0: अच्छा नखलऊआ,
1: नखलऊ।
2: दिल्लिया दूर पड़ जाते है ना, तो पापा तनी कहीं तनी पास में पढ़ो
1: तो दिल्ली दिल्ली महिया जो है बड़ी गर्मी पड़ी जाते कि बड़ा गर्म हो दिल्ली।
0: और ये चाची जानी एक बतिया?
1: हाँ
0: ना जानी सब
1: कोरोना फैल गया,
0: कोरोना फिर आएगा कोरोना।
2: बस सही चाची।
0: हाँ
2: न्यूज कहाँ पायो?
1: रेडुआ माँ सुनाई दिया रहा, समाचार में सुना रहा कि दिल्ली फिर से कोरोना आएगा है, बड़ी चिंता लाग गई। अब देखो हमारे गाँव तक पहुँच जाए
0: बहनी, अब फिर से मुँह बांध लो सभी।
1: अब मुहा
2: हुआ का इतनी गर्मी है चाची, वैसे गर्मी सांस फूला करते हैं, चलो मास्क लगाओ।
0: अरे तो कौन चीज बहनी?
2: मास्क लगाओ चाची।
1: मास्क कहा जाता है, मुहा मसक्का लगाए लो, मसक्का।
2: अरे जो कहा तो मुहा बांध लियो तो। हाँ। अरे रुबट्टा उबट्टा सब बांध देते है।
0: हाँ।
2: लेकिन ये बढ़िया है, इसे दुई और पट्टी लगाते, काने मजा लो, बस सिंपल।
1: पहले गांव गांव में बटा रहा अस्पतालिया वाले आए
0: हमारे लगे धरा है दूठो
1: हाँ तो
0: मुंह बंधना
1: तो इतना कुछ नहीं है लेकिन भाई अब अगर ज्यादा फैली
0: हाँ
1: तो एहतियात से हमें रहे पड़ी हाँ
0: पूरे कहूँ चाची पूरे कहूँ ए पतरका
3: का चाची
0: आज कहे चुपान बैठी हूँ तेरे को बेरामी ओरामी है
3: अरे चाची हमारा मुड़िया पिरात
0: लियो इनके मुड़िया पिरा इलाक
1: यही कहे बहनी
3: पता नहीं का
0: धमावा में जाए जाए आम तुरंत हुई
3: ना चाची दुई चार तोड़ी था लेकिन पता नहीं काहे पिरात
0: ये बहनी तू त्योराइन खे गये आम चोरावे
3: नहीं नहीं उनके यहाँ ना दूसरे के यहाँ गए
1: चोराई
2: चाची कत्ती ईमानदार बतावा थी कि गन नहा चोरावे लेकिन चाची हिया ना गए
0: यही तेवरनिया तुहार करनी बनावत
3: आज लिए तो आई नहीं
0: आज वह नहीं आई आज उनके यहाँ कहूँ ब्याह में गई ही वह
2: चाची पूछी ना आज शिवानी अर्चना अर्चना कहे
0: कहे नहीं आई
2: चाची उनके सबके इतना गर्मी में तहारत ही
0: और शिवनिया कहाँ गए
2: वही बताई थे चाची उनका फुर्सत ना है टहरे से और रह ही गई अब बेड पर
0: हाँ
1: विराम हो गई है
2: अब उठे दम ना ही है उनके
0: लाग गए घाम
2: लू लाग गए चाची
0: लाग गए
1: ऐसे तो हम सबसे कहे थे कि देखो अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर निकल जाए
0: लू का होते लू
1: लू गर्म हवा जो चला था लपट
0: लपटिया घमास घमास
1: गर्म हवा
0: हाँ तो यहाँ तोहरे लाग गवा तब तू कहे हम सबके चोराओ थू बहनी
3: अरे वो चटनिया खाते रहो झर्रवा खाते
1: और सुनो अब जब तुके सरा पिरात है दर्द करत है तुके उपचार कही लो इसे नहीं घूमो है आज जो है घरे जायो
3: हाँ चाची
1: तो खूब मतलब पना वना बना के पियो
3: चाची पिए दवाइयों खाए
1: पियजिया बहुत फायदा करे
0: हाँ यही स्थिति में पियजवा खूब खाओ
1: हाँ पियजिया खाए लो हाँ सिरका विरका हो घर में की
3: नहीं है चाची
1: ना हो तो हम दे
3: नहीं नहीं चाची है
1: सिरकवा प्याज खाए रहो फायदा करत है लोग
0: ये बहनी पियजिया जो होती लू का नहीं लागे देती
2: लेकिन चाची वो हम सिरकवा पिए थे ना तो हमने दतों में लागत है
0: तो हाथ दतवा बेकार है
2: नहीं चाची बेकार नहीं है
0: तब
1: दातुन किया करो नीमे की निबिया की
0: ये बहनी अगर
2: तो बहुत दीद लागत है चाची
1: तो दीद लागत
0: ये बहनी देर के लिए चाची चाची सुनी लो
1: हाँ
0: देखो जेके दांत के पीरा हुए बहुत पीरा थोए दांत ते एक काम करे थोड़े एक फिटकरी पनिया में घोर लो
1: हाँ
0: और वहीं से कह लो घरारा
1: हाँ।
0: बस दर्दिया जुड़ता है गायब हो जाए
2: तो हमारे दर्द ना होते खाली पानी और मतलब बहुत ठंडा या बहुत गर्म ही लागत
0: तू ये बहनी ही हुए का फेम्फोडिटी हाँ
2: ये बतावा
0: है वही हमारे बगलियन कहा रही कि दतवा में यहाँ होएगा है
2: अरे मतलब सेंसोरिटी प्रॉब्लम होती
0: हाँ वही वही यही पूरे कहती
2: बिछी बात
0: वही फेम्फोडिटी होएगा तू है
2: फेम्फोडिटी
1: यही
2: तो हम कहते हैं कौन नई बीमारी
0: यहाँ करो बहनी यहाँ पनिया लेके मुहा में लिहा रहो तो आज चिकाई जाई
1: हाँ तो चलो ये फिट करी तो दतवा के लिए बहुत बढ़िया मुफीद दवा हो
0: हाँ
1: अब का करो पीस लो महीन महीन भूख लो सिला पर और उसमें तनिक हल्दी मिलाई लो और तनिक तेल मिलाई लो तनिक नून मिलाई लो और ऐसे ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे दांतन पे मला करो और सब ये जो ठंडा गरम लागत है ना ये सब ठिकाई जाये
2: ठीक चाची अब यही करबे तब ओकरे बाद फिर आइसक्रीम खाइबे
1: घरेलू दवा है खरपतवार वाली दवा ही है सब करे
0: जूते डॉक्टर के यहाँ भागे ना
1: चाहिए कि डॉक्टर
0: हाँ
1: पैसा ले और तो हाथ दूर
0: अब बहनी तुरंत भलवे भोंक दिया था
1: हाँ सुइया
0: सुइया आसान है
1: सुइया
0: वो है बहनी भोंक दी अब जाओ तू छटपटाओ
1: नहीं अब ज्यादा डॉक्टर डॉक्टर के चक्कर में ना पड़ो घर
0: तो पता का
3: चाची
0: कहूँ झराए ले तू बहनी
3: कोई मिलता ना चाची ये
0: जबरनियों झारत थी
3: बाबा झारी ना पता कुछ और लगाई दे
0: लियो
3: उनके डर लागत है
2: जाओ इतना विश्वास ना है चाची इतना ना है
3: उनके ऊपर विश्वास हमका ना ही है
0: सुना तू चाची
1: हाँ
0: का कहा थी कि पतरकवा कहो आओ नजरिया ना मार दे
1: पतरकक नजरिया लागी कोई का
0: पतरकक दूसरे नजर मार दे अब ये कहती तेवराइन हमें आओ नजर मार दे तेवरनिया झारत थी वो
1: अरे वैसे है झारत
0: हाँ
1: मुझे पता नहीं कहा पकड़ किया गलत फिर फोक दे थे
0: हाँ।
1: हमें तो लागत है वो सबका ऐसे बहलावत
3: है यही लिए डर लागत है उनसे ना करेंगे
1: कोई ना कराओ ये झाड़ फूक कुछ नहीं है और जो दवा होत है गांव के घर की वो वैद्यगी करो तनिक सब ठिकाए जा।
0: बहनी तुम्हार का नाव है?
2: संजना शर्मा।
0: संजना शर्मा तो कौन एक अच्छा पढ़ा तू बहनी?
2: मेरा इस बार एमए प्रीवियस है, एमए फर्स्ट ईयर।
0: ई का बहनी होत है?
2: अरे चाची
1: एमए हाँ जानो 15-16।
0: हे चाची अब देख लो हम मैं ना कहे, अब कहा तू कि पहले ए बी होत है और कहा तू एम और ये
1: अब ऐसे चला
2: ना। ना चाची ए बी के मतलब वो अलग होते ए बी सी डी जो याद किन जाते
0: हाँ।
2: और ई एम ए के मतलब है मास्टर ऑफ आर्ट।
1: हाँ देखो बहनी बताए कि ना ही बताए
0: मास्टर पटकी है तू है आज।
2: अरे चाची
0: हाँ
2: कैसे तो सुन लेती चाची महान महान।
1: जानो 14-15 या 15-16 कहा जाता है।
0: बहनी कौन है कच्छा में हूँ 15 में पढ़ा थी।
2: अरे हाँ चाची आपकी समझ में वही समझ लीजिए कि 15 में ही पढ़ रहे हैं।
1: हाँ 15-16
0: अच्छा 15 में पढ़ा थी।
1: चाहे 15 समझ लो चाहे
0: सो कतना पढ़ी बिटी बा
1: बस 16 तक होता है हम सुना जाते हैं।
2: चाची पढ़ाई कभो अंत नहीं है
0: तो ये अतना पढ़ ले ही
2: जान तो
0: पगलाए जाई।
2: ना ना चाची ज्ञान बढ़ाते पगलाए के जाते पढ़ाई से जब बोर होते ही पगलाए हो जाए।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना?
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब?
5: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: डाउनलोड फ्रॉम apnafm.com।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
1: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
0: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
1: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल, आप सभी को, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला, और मैं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपका रविवार हो सके थोड़ा सा और खास। हिंदुस्तान, भारत, भा अर्थात ज्ञान, रत अर्थात लगा रहना, भारत जो ज्ञान की खोज में लगा हुआ है वही भारत है, यही भारत शब्द का अर्थ है। तो अत्यंत हर्ष का विषय है कि कल हमने भाई स्वतंत्रता दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया, आज भी हम उन्हीं की बात करते हैं। हिंदुस्तान है क्या? मोहब्बत इब्तदा मेरी, मतलब शुरुआत, मोहब्बत इब्तदा मेरी, मोहब्बत इम्तिहा मेरी, मैं हिंदुस्तान हूँ सबसे निराली है अदा मेरी, सुनी जाती है सदियों से सुनी जाएगी सदियों तक, हजारों बोलियों से मिलके बनती है सदा मेरी, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। भारतवर्ष है, ये जमीन है, और शायद हम इकलौते ऐसे देशवासी हैं जो अपने देश को माँ का दर्जा देते हैं, और देना भी चाहिए। हमारे साथ सबलू सावन जी जुड़ चुके हैं। भाई जी शुभ संध्या आपको भी, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मेघा रे मेघा क्या बात है, क्या गीत है, और मेरा मुल्क मेरा वे, मेरा देश मेरा ये वतन, मुझे बहुत ही गर्व होता है, मेरा वतन भारतवर्ष है। जी हाँ, और सभी को होता है निसंदेह, जो भारतवर्ष के रहने वाले लोग हैं उनको गर्व होता है कि वो भारतीय है। और हम बात करते हैं भारत के इतिहास की, हम बात करते हैं कि हमने इतने वर्षों की गुलामी झेली, हम बात करते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, हम ये भी कहते हैं कि हमारी कुछ कमियों के कारण हम गुलाम भी हुए, हमने गुलामी भी झेली। लेकिन अब जो जिंदगी है ना दोस्तों, वो मेरा ख्याल है, ये मेरी तमन्ना है कि अब शायद मोहब्बत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

ये आखिरी वो शस्त्र है जिसके दम पर हम दुनिया को जीत सकते हैं। ये सोच लो कि आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दर न मिलेगा। अगर आप यहां से उठेंगे तो शायद कोई दर नहीं मिलेगा। भारतवर्ष प्यार की जमीन, मोहब्बत की जमीन, और हम इस देश के रखवाले, हम ही इस देश के पहरेदार। फ्लैग होस्टिंग भाई, न सिर झुका है कभी न हम झुकने देंगे, इस देश की मिट्टी को हम मिटने न देंगे। जान से प्यारी हमको ये पावन जमीन, इसकी आन बान पर आँच न आने देंगे। जो हंसते हंसते अपनी जान लुटा गए, सरहद पर वे वीर अमर कहानी लिख गए, उनकी शहादत का ये कर्ज है हम पर। इस चमन को आबाद हम सदा रखेंगे, गूंजेगा सदा गगन में ये गान हमारा, सबसे प्यारा है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है भाई सबलू सावंत जी, आपके लिए तो खैर तालियां बनती हैं और मैंने तो हाथ से ताली बजा भी दी है। अनिल शास्त्री जी हमारे साथ चरण स्पर्श करते हैं आपको, उम्मीद करते हैं कि आपने स्वतंत्रता दिवस भी कायदे से मनाया होगा। हम बात कर रहे थे दोपहर को तो ओपन माइक में, तो भिन्न भिन्न हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने अपना अपना ओपिनियन रखा, अपना अपना व्यू रखा, और सबने मिलकर एक बात बोली कि वास्तव में जो दौर बीता है वहाँ पर सैनिकों के नमन की बात ज़्यादा आती है, जिन्होंने शहीद हो गए जो। और हमारे यहाँ की एक प्यारी सी बच्ची ने गीत भी गाया कि ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। और अच्छी बात है, अब चाहिए आपको लेकर चलते हैं और सैनिकों की ओर से ही शुरुआत करते हैं। तो आइए संदेश से आते हैं, जो सरहद पर जवान खड़े हैं उनके लिए संदेश का बड़ा महत्व है। चलिए पहले उन तक संदेश पहुंचाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे हिंदुस्तान की सरजमी भारतवर्ष पर एक बार पुनः बात करने के लिए। सुनते रहिए और रेडियो गणसलीट 9.6 FM, यह है गुंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

जी हाँ, संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे। बाजर टू फिल्म का ये गीत लिखा मनोज मुंतशिर ने, और इसके बाद हमने आपको गीत सुनाया तेरी मिट्टी में मिल जावा, और ये गीत भी लिखा है मनोज मुंतशिर शुक्ला, एक ऐसा नाम जिसने बहुत कम समय में बहुत ऊंचा सफर तय किया। ये दोनों गीत उन्हीं के लिखे हुए हैं, एक को भी प्रांक ने गाया है और दूसरे को रूप कुमार राठौड़ भी हैं, उसमें विशाल जी भी हैं, सोनू निगम भी हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं भाई, लेकिन लिखा मनोज मुंतशिर ने। मनोज मुंतशिर ही कहते हैं कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे, हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और हम भी वही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी, हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी, हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन भी बनाई। हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पर गंगा, हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो कभी सत्यमम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, और कभी पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। ये देश है अलबेलो का, मतवाले यहां रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पर जो वो जियाले यहां रहते हैं, दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं, दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है, और सात समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है। सभी को याद होगा वो भाषण स्वामी विवेकानंद का, गए थे शिकागो में तो उनका अपमान करने के लिए उनको सबसे अंत में बुलाया गया, और जो विषय दिया गया उसका नियम यह था कि जो हम विषय देंगे आपको उसी पर बोलना है, और जो विषय दिया गया उनको वो विषय था शून्य, जीरो। सोचिए जरा, जीरो पर अगर हमको और आपको बोलना हो तो कितनी देर बोल सकते हैं, लेकिन वो विवेकानंद, एक तो विवेक और दूसरा आनंद। इस दुनिया में आनंद इकलौता शब्द है जिसका विलोम नहीं होता, सुख का विलोम दुख होता है, क्योंकि सुख अपने साथ दुख की इच्छा लेकर आता है, लेकिन आनंद शब्द का विलोम नहीं है। हमारे साथ हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी को जानने वाले बहुत से लोग होंगे, तो सुख का विलोम तो दुख है लेकिन आनंद का कोई विलोम ही नहीं है। हम अपने शरीर की संतुष्टि के लिए जो कुछ करते हैं वो सुख है, और अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए जो कार्य किया जाए वो आनंद है, तो आनंद का विलोम नहीं होता, आनंद बस आनंद ही होता है। और जब जीरो पर बोले वो तो सब लोग आते थे, बोलते थे लेडीज एंड जेंटलमैन। भारत का एक संत गया और उसने कहा माय डियर अमेरिकन्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे अमेरिका वासियों भाइयों एवं बहनों, सात समंदर पार, ये हमारी परंपरा है।
मैं गौतम के भारत से आता हूँ, जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ, जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। तो ये वास्तव में महान व्यक्तियों की भूमि है।

और भारत पर पैदा होने के लिए, इस धरती पर आने के लिए देवता भी ललचाते हैं, उनकी भी इच्छा होती है जरा धरती को देखें। सब लोग देखते हैं जीवन में सुख दुख सफलता और अच्छे अवसरों का समय कभी टिकता नहीं है। समय के अनुसार फूल भी मुरझा जाते हैं, फिर भी इंसान को घमंड किस बात से होता है। क्या बात है, बात मुझे याद आ गई कि फासला जितना है दो सांसों के बीच, फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। जलजला गुजरा है अभी ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है। सही कहा आपने, जब इंसान को सबसे ज़्यादा मदद या सहारे की आवश्यकता होती है तब दोस्त या अपने भी दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात कहा आपने, लिखा मुश्किल समय में इंसान को खुद ही अपना कदम संभल कर चलना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आजकल इंसान के अंदर जहर क्यों पड़ रहा है, दुनिया में आए थे रोते हुए जाना है, एक कफन में आओ हम सब साथ मिलके किसी के दुख में शामिल हो। बिल्कुल क्या बात कही आपने सुब्रह्मण्य सावंत जी। और अनिल जी बिल्कुल स्पर्श है आपको। और जुगल किशोर वर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं भाई एमपी से, शुभ संध्या मनुष्य जी, शुभ संध्या आपको भी। और आइए एक गीत और देश के नाम, और उसके बाद फिर चलेंगे भाई कुछ सावन की भी तो बात करेंगे। फिलहाल ये प्यारा सा गीत वतन के नाम।

जी हाँ, तिरंगे को सलामी देने के बाद अब चाहिए चलते हैं भाई। मौसम भी बड़ा प्यारा है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें हैं और सावन दिखाई पड़ रहा है कि हाँ है। लोग कहते हैं मुझे प्यार सिखाना है, लोग कहते हैं मुझे प्यार सिखाना है, जो भी मैं गा दूं वही सारा जमाना गाए। फिर भी एक गीत है जो प्राणों में चुपचाप पड़ा, कई जन्मों से मेरे होठों पे आना चाहे। आखिरी गीत वही, बस एक गीत वही, हाँ हाँ एक गीत वही मुझसे गवा दे सावन। इश्क बुझता है इसे कुछ तो हवा दे सावन। जी हाँ, सावन प्यार करने का मौसम है, मोहब्बत प्रकृति करती है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। और इस सावन के मौसम में क्या बात है, स्वतंत्रता दिवस यानी सोने पर सुहागा। आइए अब आपको ले चलते हैं भाई सावन की तरफ। तिरंगे को हमने सलामी दी और अब दूसरा रुख करते हैं। अब तो त्योहारों का सिलसिला प्रारंभ है, कल नागपंचमी है, इसके कुछ दिनों के पश्चात 10 दिन के पश्चात 28 तारीख को भाई और बहन, इस दुनिया के सबसे अच्छे रिश्तों में से एक, उनका पवित्र त्यौहार है रक्षाबंधन। तो त्योहारों का महीना लेकर आता है ये सावन, और अपने साथ खूब ढेर सारी हरियाली, खुशहाली, मोहब्बत, इनायत, सब कुछ इस सावन में है। आइए अब आपको ले चलते हैं भाई सावन की तरफ और अब आप गीत सुनिए। जी हाँ, कल नागपंचमी है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे एक मित्र हैं, उनके लिए हमने आधा लीटर दूध भेज दिया है, तो उन्होंने पूछा क्यों, तुमने कहा कल नागपंचमी है पिलाना चाहिए, तो थोड़ा सा कच्चा दूध अभी ले जाएंगे, अपने घर में भी रखेंगे, कल नाग और नागिन दोनों को पिलाना होता है। तो नागिन तो बड़ी आसानी से मिल जाती है लेकिन नाग नहीं मिल पाते, तो थोड़ा सा अगर आप में से कोई नाग अगर कहीं पता कीजिएगा होगा तो ज़रा बताइएगा, क्योंकि नागिन तो हमको लगता है हम सभी के पास सही है, नाग की आवश्यकता है। और अगर आप नागिन से पूछेंगे तो बताइए कि नहीं, नाग तो हर जगह हैं, नागिन कहीं नहीं मिल रही है। तो चलिए नाग और नागिन इन दोनों की पूजा करते हुए कल हम बहुत प्यारा सा पर्व मनाएंगे। गुड़िया इसे कहा जाता है, गुड़िया कहने के बाद गुड़िया पीटी भी जाती है, इसके पीछे भी एक लोक कथा है। आसपास वाले ने चाहा तो ये लोक कथा कल आपको ज़रूर सुनाएंगे। फिलहाल आइए अब आपको ले चलते हैं सावन के मौसम की तरफ। आया सावन झूम के, लेकिन उसके पहले कुछ और है, क्या है? जी हाँ, ये है

फिल्मी गाने के नए वीडियो

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन

मूल्यांकन है, चित्रांकन है। और वास्तव में कुछ स्थिति ही ऐसी होती है सावन में। हाँ, महीना अच्छा है भाई, और हमारे साथ सविता जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगी। सब लोग समझ लिखते हैं लावा भी भेज दिया जाए मनु जी को दूध के साथ, नागिन दूध पीती है, नाग राजा लावा खाएंगे। देखिए क्या आपने विश्लेषण किया सबलू सावन जी ने अपना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस नज़रिए के लिए। और महेंद्र दीपेन जी राजस्थान से मेरे साथ, शुभ संध्या मनु सर जी, आपको भी शुभ संध्या। दीपेन जी कैसे हैं आप? धर्मेंद्र मोहन जी हैं और विकास से, मनु सर नमस्ते और शुभ संध्या, गुड इवनिंग माई सांग, आह क्या बात है। अनिल वर्मा जी हैं सौदापुर से, भाई शुभ संध्या सभी सुनने और सुनाने वालों को, आपको प्रणाम करते हैं अनिल वर्मा जी और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे साथ माता जी भी जुड़ चुकी हैं, श्याम नाम की पगली, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। और जी गली के मोड़ पर लड़कों के एक जमघट से, ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया, हमें किसी से मोहब्बत नहीं मगर है दोस्त, न जाने क्या हुआ दिले बेकरार भर आया। तो ये मोहब्बत की कहानी है जो तकदीर लिखती है कहीं कहीं। और प्रीति शुक्ला जी हमको दिखाई पड़ रही हैं, सर जी शुभ संध्या, अरे कहाँ रहती हैं आप बहन जी, मतलब देव दर्शन सुना था कि दुर्लभ है, लेकिन अब तो देवी दर्शन भी दुर्लभ हो चुका है। हमारी बड़ी बहन जी ने बताई, और इतने दिन के बाद रक्षाबंधन करीब आने को है तब याद आ गई, चलिए कोई बात नहीं। और अब चलते हैं जी, हाँ बात सावन की होती है और सावन की बात आई, और अगर जिक्र जो है वो सविता जी का आ चुका है, तो सविता जी ने सावन पर एक बहुत प्यारा गीत सुनाया था और मुझको बहुत पसंद भी आया था, फिल्म भी मुझको काफ़ी पसंद है, वो गीत भी बहुत पसंद है। आइए अब सविता जी ने एक गीत सुनाया था, जो ये गीत अच्छा है भाई, और इस गीत को हम फिर सुन लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। फिलहाल सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा सावन का गीत आप सभी के लिए।

और शफर माईशी विद योर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। तो संडे का ये बहुत ही बड़ा वाला सरप्राइज आप सभी को आपकी आर जस्ट सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से कैसा लगा मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अनु की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना स्टेज।

बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। सो ये गाना आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और ये फरमाइश थी हमारी अनु की जो की है बेलसर से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तो बहुत खुश हूँ आज संडे के दिन आप सभी के बीच में आके। आप सभी को कैसा लग रहा है मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना, लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, ओ माय गॉड अब किसका है इंतजार, आ गई है आज सिंपल इज नॉट सो सिंपल। सो फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोली, जिसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन सा संडे के मूड के हिसाब से गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ना दोस्तों। सो महेंद्र का कहना है राजस्थान से कि रेत पर नाम कभी लिखते नहीं, रेत पर नाम कभी टिकते नहीं, रेत पर नाम कभी लिखते नहीं, रेत पर नाम कभी टिकते नहीं। लोग कहते हैं कि हम पत्थर दिल हैं, लेकिन पत्थरों पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं। ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत सी लाइंस थी। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सबलू सावन जी मुंबई से, महेंद्र राजस्थान से, मुस्तफा सऊदी से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, जग्गू दादा जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, मालवे नगर से राजेश सिंह जी, राजू सीतापुर से, शशि सिंह गोंडा से, निधि सीतापुर से, उषा कश्यप गोंडा से, और कार्तिक कश्यप गोंडा से, रितेश साहू गोंडा से, अनूप मिश्रा जी गोंडा से, और इसी के साथ में आलोक छेदीलाल गोंडा से, रौनक तिवारी गोंडा से, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से आपका भी स्वागत है, सुरेश कुमार जी चौक से, नहीं बजरानी बाजार सुनारगली गोंडा से, मुमताज अंसारी गोंडा से, अनु बेलसर से, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, क्या आप सभी तैयार हैं? सो चलिए चलते हैं फरमाइशी की महफिल में, फरमाइशों के जज्बात के साथ में एक और गाना एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं हम सभी दोस्तों। पहली फरमाइश, अगली फरमाइश है महेंद्र की राजस्थान से, और राजस्थान से महेंद्र को सुनना है गाना हारे हारे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना, जोश पिक्चर का हाउ रोमांटिक वाला नगमा हमारे हाउ रोमांटिक महेंद्र की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

बिना जागे ना सोता है, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही रोमांटिक सा गाना हमारे बहुत ही रोमांटिक से महेंद्र की फरमाइश पर, जो कि है राजस्थान से। नाउ लेट्स गो टू अगले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा की सऊदी से, उनको सुनना है गाना डफली वाले डफली बजा और मेरे घुंघरू बुलाते हैं। ओ माय गॉड, ये गाना लता मंगेशकर जी की आवाज में और मोहम्मद रफी जी की बहुत ही सुरीली सी आवाज में है, और ये गाना बचपन से मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। इस गाने पे मैंने अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में डांस भी किया था, इसीलिए ये गाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है मुझे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला सुनहरा नगमा हमारे मुस्तफा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

डफली वाले डफली बजा। हमने एंजॉय किया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सनम्मा। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी के लखनऊ से। आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना खोया खोया चांद खुला आसमान। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा एक बार फिर ओल्ड इज गोल्ड नगमा, लेकिन इस बार हमारी आशु जी की फरमाइश पर जो कि है लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सबलू सावंत जी मुंबई से, आवाज विकास गोंडा से रवि, अजीत मिश्रा और शिवेंद्र शर्मा। स्टे ट्यून्ड।

खोया चांद खुला आसमान। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों हमारे जग्गू दादा की। और हमारे जग्गू दादा को जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है उनका पसंदीदा नगमा। क्या आप जानते हैं कि उनका कौन सा पसंदीदा नगमा है? जी हाँ दोस्तों, फिल्म है सावन को आने दो और एंजॉय करना है उनको इसका टाइटल सॉन्ग। सो एंजॉय करते हैं सावन को आने दो मूवी का ये टाइटल ट्रैक सिर्फ और सिर्फ हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो इम्तियाज अहमद जी गोंडा से, धर्मेंद्र मोहन आवाज विकास गोंडा से, शिवा शर्मा गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

सबने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, ये बहुत ही प्यारा सा नगमा जग्गू दादा की फरमाइश पर, हमारे जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर, जो की है एमपी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और उनको सुनना है किशोर कुमार जी की आवाज में एक बार फिर से ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। सो ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा एंजॉय करते हैं, लेकिन इस बार मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। पंडित आशीष शुक्ला जी आपका स्वागत है। नमस्कार।

वाह दोस्तों, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू की सीतापुर से। राजू को सीतापुर से सुनना है गाना सोनी सोनी अखियों में जुगनू चमक उठे। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही अतरंगी सा और बहुत ही यूनिक सा लेकिन बहुत ही प्यारे शब्दों वाला गाना लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस गाने को मैंने आज तक अभी तक तो नहीं सुना है, लेकिन आज शायद वो पावन अवसर आ ही चुका है जब मैं इस गाने को सुनूंगी। सो एंजॉय करते हैं लाल दुपट्टा मलमल का मूवी का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, शायद सुरेश जी और अनुराधा जी की आवाज़ में, हमारे राजू की फरमाइश पर जो की है सीतापुर से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

साथियों, मैं अनुराधा जी की और सुरेश जी की आवाज में लाल दुपट्टा मलमल का ये गाना हमने एंजॉय किया है। दोस्तों, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़, आपका स्वागत है, स्टे ट्यून्ड। और इसी के साथ में सुशील शर्मा, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। किसी का कहना है कि नाजुक लगते थे जो लोग, वास्ता पड़ा तो वो पत्थर के निकले। और इसी के साथ में इनका ये भी कहना है कि जीवन है, गलतियां होती रहती हैं, बस इरादा गलत नहीं होना चाहिए। और मैडम जी नमस्कार, सुना है कि कल 15 अगस्त पर लड्डू नहीं मिले आपको, तो आप रो रही थी। अरे हाँ हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे हिस्से वाला लड्डू तो आप लेके चुरा लेके चले गए थे, इसीलिए कल आप चैट बॉक्स में दिखाई नहीं दे रहे थे। कि मैं सारे लिसनर्स से बता दूंगी कि नागेश्वर धाकड़ हमारे जो सबसे प्रिय श्रोता हैं, वो हमारे हिस्से का 15 अगस्त वाला, स्वतंत्रता दिवस वाला, इंडिपेंडेंस डे वाला लड्डू लेके चले गए हैं, हमारे हाथ से छीन के लेके चले गए हैं। उन्होंने कहा कि मैडम जी एक दो ना। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे लड्डू बहुत पसंद है। तो फिर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको लड्डू बहुत पसंद है तो और आराम से खाओ और स्वाद लेके खाओ। फिर जो दोनों लड्डू मैंने लेके रखे थे, वो दोनों लड्डू उन्होंने मेरे हाथ से छीने और रफ्तार में भागते हुए, शायद राजस्थान रहते ना, राजस्थान भाग गए। देखा कितना गलत किया मेरे साथ। अब फिर उसके बाद में आ जाके मजे ले रहे हो, हाँ, शर्म नहीं आ रही मेरे हिस्से का लड्डू खा के। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है निधि की, सीतापुर से। उनको सुनना है गाना गले में लाल टाई। सो एंजॉय करते हैं हम तुम्हारे हैं सनम का ये बहुत ही खूबसूरत सनम, बेला और कुमार सानू की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

कॉफी पिला दूंगा। अरे गले से भी लगाने की जरूरत नहीं है, कॉफी पिलाने की भी जरूरत नहीं है, सस्ते में निपट जाओगे। 10 रुपए की कटिंग चाय पिला दो, काम हो जाएगा, है ना। चाय लवर्स के साथ में तो यही होता है, सारी दुनिया है एक तरफ, सारे इमोशन है एक तरफ, सारी फीलिंग्स एक तरफ, लेकिन चाय एक तरफ। क्यों, सही कहा ना मैंने। सो हमने इंजॉय किया बहुत ही खूबसूरत सनंग। में बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है उषा कश्यप की गोंडा से, उनको सुनना है गाना जिठ की दोपहरी में पाँव जले है दैया पाँव जले है। सो इंजॉय करते हैं ये वाला गाना, सिर्फ और सिर्फ दोपहरी वाला गाना रात में, सिर्फ और सिर्फ उषा कश्यप जी की फरमाइश पर। स्टेडियम इतना ठंडा मौसम है गोंडा में, हाँ मैं फुल स्लीव के कपड़े पहन के आई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ही ज़्यादा ठंडी लगती है।

संगम चले जाओ, क्या पता संगम की घटा भी आ जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने। वैसे दोस्तों आज शायद मैंने पूर्णिमा जी की आवाज को बहुत ध्यान से सुना है। हाँ, बहुत अलग आवाज है ना, बहुत अलग सच में। अब मैं इनके गानों को भी सुनना शुरू करने वाली हूँ क्योंकि आज इनकी आवाज मेरे दिल में जाके बस चुकी है। जैसे अलका याग्निक जी के गाने, आशा जी के गाने, लता जी के गाने, श्रेया के गाने, वैसे ही पूर्णिमा जी के भी गाने आज से मेरे लिए वही जगह रखते हैं, वही स्पेस रखते हैं, क्योंकि इनकी आवाज आए हाय। कितनी बढ़िया आवाज है ना दोस्तों, सो हम एंजॉय किया। जेठ की दोपहरी में पांव जले है सैया, पांव जले है। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है, कार्तिक कश्यप की है, गोंडा से। और कार्तिक कश्यप को सुनना है मेरा फेवरेट वाला गाना, मेरे महबूब कयामत होगी और आज सुबह तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला किशोर कुमार जी की आवाज में नगमा, सिर्फ और सिर्फ कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर। थैंक यू। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये गाना दिन भर में 24 घंटे में मुझे 24 बार सुनाया जाए तब भी मैं बोर नहीं होने वाली, बिकॉज़ आई लव दिस सॉन्ग।

0: से शिकायत,
1: मेरी नसरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी मेरे महबूब, कयामत होगी। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट मीन्स रियली अ लॉट। मैं ये गाना सुन लेती हूँ तो मेरा दिल हो जाता है एकदम गार्डन गार्डन गार्डन। और हमने एंजॉय किया ये वाला गाना कार्तिक कश्यप की फरमाइश पे, जो कि है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है फिर से OMG वाले नगमे की। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है रितेश साहू की, और उनको सुनना है ये क्या बात है आज की चांदनी में, अच्छा कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ओ माय गॉड, एंजॉय करते हैं फिर से एक बार और सुपर डुपर डुपर हिट गाना। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ओहो बस इसी का तो इंतजार था। आए हाय, अगर संडे की महफिल ऐसे होती है ना तो मैं हर संडे आना चाहूंगी।
2: .com से
1: क्या आप सभी तैयार हैं?

चंचल हवा, चंचल हवा, कहा दो दिलों ने के मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। एक बार फिर से सुने क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, नहीं नहीं जाना मत, जाना मत, थमो थमो थमो। एंजॉय करते हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है रौनक तिवारी की गोंडा से। रौनक तिवारी को गोंडा से सुनना है गाना, हमने दिल वहां लगाया जहां दिल लगाना मना था। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना सिर्फ और सिर्फ रौनक तिवारी की फरमाइश पर। और इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आज सिंपल नॉट सिंपल के साथ में। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की फटाफट से जाके पेट पूजा करके आना, क्योंकि 9 बजे के बाद तो मैं सोच रही हूँ एवरीवन विल रॉक द फ्लोर ना। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, मिलते हैं सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून, आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ। स्टे ट्यून।

0: राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूँ, MSP पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM's growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economies and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
3: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकर और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
5: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपी चंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपने शुपरमाइशी में आपके अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में और हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। कैसे हैं आप सब? हाँ, सो एंजॉय कर लेते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है आलोक पुट्टीलाल की गोंडा से, और आलोक पुट्टीलाल को गोंडा से सुनना है गाना खई के पान बनारस वाला। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा।
1: अरे तुम का बताई
0: खई के पान बनारस वाला आलोक पुट्टीलाल की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। वैसे दोस्तों आप सभी के लिए अभी आपकी अर्जी सिंपल नॉट सो सिंपल के पास में एक सरप्राइज और है। स्टे ट्यून्ड।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे फिर तुमने दिया ये फान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी

छोरा हो छोरा किनारे वाला हो छोरा।

वाला, हम एंजॉय किया खई के पान, बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी आलोक की गोंडा से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, जानते हैं किसकी? अजीत मिश्रा की। अजीत मिश्रा को सुनना है गाना लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। सो एंजॉय करते हैं ये चांदनी पिक्चर का ओल्ड इज गोल्ड वाला सावन स्पेशल नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

साथ सावन की फिर वो झड़ी है हमने एंजॉय की, ये बहुत ही बेहतरीन सा गाना। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों जानते हैं अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश हमारे पास में है आवाज विकास गोंडा से रवि की, और उनको सुनना है एक अजीब सा बहुत ही अतरंगी सा नगमा। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

आवाज विकास गोंडा से रवि की अभी फरमाइश हमारे पास में है सबल सावंत की बोरीवली मुंबई से एंजॉय करते हैं छेड़ मिलन के गीत रिमितवा अनुराधा जी की आवाज में है ये नगमा सिर्फ और सिर्फ फरमाइश है सबल सावंत की बोरीवली मुंबई से स्टे ट्यून्ड।

दो ढाई मिनट तो आपके गाने ने म्यूजिक में ही ले लिया और अभी बहुत सारे लोगों की फरमाइशें हैं और समय बहुत कम है, सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है पंडित आशीष शुक्ला की। पंडित आशीष शुक्ला को सुनना है गाना मैंने तुझको देखा, सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा गोलमाल अगेन का सिर्फ और सिर्फ हमारे पंडित आशीष शुक्ला जी की फरमाइश पर, जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

चैन तो कोई नहीं चुराने वाला है, मुझे पता है कि फिर वो चाहे सोने की चैन हो, चांदी की चैन हो, फिर चाहे लोहे की चैन हो, फिर चाहे वो दिल का चैन करार क्यों ना हो, भाई चोरी करने का मेरे पास में कोई मामला जमता ही नहीं है, तो चोरी वाला हिसाब कोई है ही नहीं। तो ये गाना आप सभी के लिए था पंडित आशीष शुक्ला जी की तरफ से, और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। सो दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में इम्तियाज अहमद की बहुत दिनों बाद गोंडा से, उनको सुनना है गाना बम बम भोले। एंजॉय करते हैं सिकंदर का ये गाना, इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को थोड़ा सा मिस कर लेना क्योंकि कल मैं नहीं मिलूंगी, कल मैं रहूंगी छुट्टी पे, कल है मेरा हॉलीडे, हॉलीडे मीन्स फनडे, फनडे मीन्स मजे। सो दोस्तों मिलते हैं परसों, लेकिन उसके पहले एक सरप्राइज है मेरे पास आप सभी के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं कि वाला गाना, और मिलते हैं बाहर एक दूसरे में।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहार गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100%

0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ओआरएस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

शहर की तमाम रोशनियां बुझने लगी। तब ख्यालों के चिराग चला करते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपकी अपनी आरजे सिंपल। आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल, और ये है बहारी गजल की मखमली सी महफिल। इस मखमली सी शब में आप तमाम शब जिंदादारों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, आज की रात कोई आम गुफ्तगु नहीं होगी। आज हम डूबेंगे उस कलम की गहराई में जिसने आज के दौर की बिखरी हुई रूहों को शायरी से दोबारा इश्क करना सिखाया है, जिनका नाम है मोहतरमा हिमांशी बाबरा। हिमांशी जी का ये बेहद मकबूल और पाकीजा मुलाहिजा है जो मैं आप सभी के सामने पेश करना चाहूंगी कि लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं। लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं। एक हम हैं जो उसे बच्चों की तरह देखते हैं। हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है, हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है। हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं। इन लाइनों की तासीर देखिए। जमाना जब हर रिश्ते में नफा और नुकसान तलाशता है, तब एक मासूम दिल बिना किसी शर्त के बेपनाह मोहब्बत करता है। दुनिया जिसके वजूद को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है, वो शफकत हर किसी को अपनी आगोश में पनाह देता है। ये शायरी उस पाकीजा निगाह का मर्सिया है जो आज के दौर में नायाब हो चुकी है, और इसी मासूमियत और रूहानी एहसास के नाम सुनिए हमारी आज की पहली शाहकार गजल। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो धर्मेंद्र मोहन जी आवाज विकास गोंडा से नागेश्वर धाकड़, महेंद्र पंडित आशीष शुक्ला, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, स्टे ट्यून्ड। इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सी गजल। मिलते हैं इस छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

बहारे गजल का सफर अपनी पूरी रफ्तार में है। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी महफिल बहारे गजल में, आज आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज बातें होंगी लेकिन खामोशी वाली, और खामोशी की आवाज होगी हिमांशी बाबरा की। कभी कभी इंसान बिछड़ता नहीं है पर साथ होकर भी कितना दूर हो जाता है ना दोस्तों, जब बातें सिर्फ प्रायोरिटी की हो, बातें सिर्फ फॉर्मेलिटी की हो, बातें सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाए तो दिल अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगता है। हिमांशी बाबरा ने इस तन्हाई को इन चार मिस्रों में क्या खूब तराशा है कि तुझसे मिलकर मुझे पहली सी खुशी नहीं मिलती, तुझसे मिलकर मुझे पहले सी खुशी नहीं मिलती, तू मुझे देख के हैरान नहीं होता है, खैरियत पूछता है सिर्फ दिखावे के लिए, खैरियत पूछता है सिर्फ दिखावे के लिए, वो मेरे हाल से अनजान नहीं होता है। इस कश्मकश की गहराई को महसूस कीजिए, जस्ट फील द लाइन। ये उस रिश्ते की दास्तान है जहां मोहब्बत खत्म तो नहीं हुई है मगर उसकी गर्माहट शायद ठंडी पड़ चुकी है। जब कोई आपका हाल सिर्फ जमाने को दिखाने के लिए पूछे तो वो औपचारिकता खामोशी से भी ज्यादा चुभती है। जहां अपनापन सिर्फ अल्फाज में रह जाए और एहसास मर जाए, वही तो सच्चा मलाल है ना दोस्तों। सो ये तो मानना है हिमांशी बाबरा, ये तो मानना है आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल का। आपका क्या मानना है आप चैट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि नाइस लाइन, वेरी हार्ड टचिंग, योर शायरी इज रियली बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच, इट मींस रियली अ लॉट धर्मेश त्रिपाठी। सविता शास्त्री जी नमस्कार, शुभ संध्या, आपका स्वागत है। महेंद्र का राजस्थान से कहना है कि खामोश रातों में भी तेरी आवाज सुनाई देती है, खामोश रातों में भी तेरी आवाज सुनाई देती है, जलते हुए चरागों में भी तन्हाई दिखाई देती है। जो कहते थे कि तेरी मुस्कान ही हमारी दुनिया है, आज उन्हीं की बेरुखी में एक दूरी दिखाई देती है। लफ्जों में ढाल कर दर्द तो बयां कर दिया मैंने, लफ्जों में ढाल कर दर्द तो बयां कर दिया मैंने, पर इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी नमी दिखाई देती है। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। चलिए एंजॉय करते हैं बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी गजल गुलाम अली की आवाज में। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। आप सुन रहे हैं आपका बहुत ही फेवरेट सा सेगमेंट बहारी गजल रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम का, गोंडा शहर की धड़कन का, और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे, आपकी अपनी हमनवा आरजे सिंपल, हु इज नॉट सो सिंपल। स्टे ट्यून्ड।

एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का आपके बहारी गजल की महफिल में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ। दोस्तों, रात का ये पहर इंसान को उसकी पुरानी यादों के उस गलियारे में ले जाता है जहां सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा बोलता है। सन्नाटा बोलता है, सन्नाटा सिर्फ बोलता ही नहीं है दोस्तों, सन्नाटा चीखता भी है और सुनाई देती है ये आवाज तो सिर्फ और सिर्फ चार दीवारों को, शायद उस बिस्तर को, उस जमी को, उस कमरे को, उस कमरे में रखी हर एक चीज को, उस घर को, लेकिन शायद इंसानों को नहीं। क्योंकि इंसान अगर शब्दों को नहीं सुनना चाहते हैं तो सन्नाटे की उनके पास क्या ही वैल्यू है। मैं ये नहीं कहती दुनिया बड़ी जालिम है, मैं बड़ी अच्छी हूं, मेरे पे आती है तब मैं भी ऐसा करती हूं, दूसरों को दुख देना होता है तो मैं भी बराबर मात्रा में देती हूं, लेकिन जब अपने पे आती है, खुद को कोई हर्ट करता है तो बहुत बुरा लगता है कि हाय, उसको तो मेरे साथ ऐसा नहीं करना था, उसको तो मैंने बहुत विश्वसनीय समझा था, उसके ऊपर तो मुझे गुरूर था। दोस्तों, हिमांशी जी की ये चार लाइनें तो जैसे हर उस रूह का आईना है जिसने बेपनाह चाहा, बेपनाह मोहब्बत दी और बदले में सिर्फ इंतजार पाया। जरा काफिया और रदीफ का कमाल देखिएगा। हिमांशी बाबरा जी का कहना है कि दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई।

आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। इतना गहरा दर्द और अल्फाज में इतनी नफासत, जब मोहब्बत में बिछड़ने का मलाल हद से गुजर जाए तो इंसान उम्र से पहले ही ढल जाता है। दर्द सिर्फ आंखों से आंसू बनकर नहीं बहता, वो इंसान की रंगत और उसकी जवानी को भी चुरा लेता है। ये मानना है हिमांशी बाबरी का। धर्मेंद्र मोहन जी जो हमारे लिसनर हैं आवाज विकास गोंडा से, उनका कहना है, सिंपल जी नमस्ते, दिल जीतना मुझे भी आता है, जब जीत जाते हैं तो वही बेवफाई दिखाता है। पहले प्यार से तो मिलता है, फिर प्यार को इल्जाम देके ही निकल जाता है। फैसला लेने से पहले ये नहीं सोचता है मुझे नाम कमा के जाना है। दिल से सोच लो तो नाम कमा के जाना है कि दौलत लेकर। बात कह रही है, बात बेवफाई की है, बात प्यार की है, बात भरोसे की है, बात विश्वास की है। लेकिन धर्मेंद्र मोहन जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि कोई भी रिश्ता आसानी से नहीं टूटता, एक झटके में नहीं टूटता। वो कहीं ना कहीं कमी, वो रिश्ते में टूटना, वो दरार कहीं ना कहीं से दिख रही होती है पहले से, लेकिन हम देखना ही नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम यही है ना कि हम उस दरार को तब तक देखते ही नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं जब तक वो दरार इतना ज्यादा ना हो जाए कि दीवार बन जाए, है ना। देर है, अंधेर नहीं है, सिर्फ भगवान के घर भी नहीं, इंसान के घर में भी, इंसान के दिल में भी, इंसान के जज्बात पे भी। इंसान रुकता है ना, सुनता है, सुनाता है, लेकिन जब उसके सब्र की सीमा खत्म हो जाती है तभी वो जाता है। कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता, हम ऐसे ही किसी को बेवफा नहीं कह सकते हैं। अरे अपनी स्टोरी में तो सब हीरो होते हैं, कौन अपनी स्टोरी में खुद को विलन बोलता है भाई। हमारे लिए तो सामने वाला बेवफा रहेगा, भले ही वो रिश्ता हमारी गलती की वजह से टूटा, लेकिन हमें तो ये है कि वो छोड़ के गया, हम थोड़ी गए हैं। अरे छोड़ने के पहले ये तो देखो आपने कितना मजबूर किया होगा उसको, ये भी तो सोच लो ना। कोई रिश्ता बनाना बहुत अच्छी बात है, वाह वाह, वेरी गुड, वेल एंड डन, लेकिन उस रिश्ते को निभाना उतना ही मुश्किल है। ये लोग नहीं समझ पाते हैं, स्टार्टिंग में समझते तब हैं जब बहुत देर हो जाती है। यही कहना है हिमांशी बाबरा का भी, यही कहना है मेरा भी, और यही कहना है आज की महफिल का भी। सो चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, मिलेंगे इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में, और अपने दिल की दास्तां, आपके दिल की दास्तां, एक दूसरे की दिल की दास्तां जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये रात, ये महफिल, ये जज्बात नहीं रुकनी चाहिए, बातें नहीं रुकनी चाहिए। जो दिल से जुबां तक आ रही हैं उनको फिर जुबां से बाहर निकाल ही देना चाहिए, फिर चाहे चैट बॉक्स से, चाहे फोन कॉल से, आप कॉल भी कर सकते हैं। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सी गजल, मेरे बहुत ही फेवरेट से जगजीत सिंह जी की आवाज़। स्टे ट्यून्ड।

चौधरी की याद। जगजीत सिंह जी की आवाज ने हमें एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सी गजल, और आप हैं अपनी बहारी गजल की महफिल में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और ये है रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की तरफ। दोस्तों, वक्त बीत रहा है पर हिमांशी बाबरा का असर इस महफिल में एक अलग ही ठहराव पैदा कर रहा है। मुझे तो आप सबके साथ में इनकी नज़मों को पढ़ने में, इनकी शायरियों को पढ़ने में और इनके व्यक्तित्व को जानने में बहुत ही मजा आ रहा है। पता नहीं क्यों ये जो नए दौर के शेरों वाले शायर हैं, ये शायर बहुत बेबाक हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे हिमांशी बाबरा बहुत अच्छी लगती हैं। इनकी एक एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनका एक एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनकी अंदाज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, आशा मिश्रा जी लखनऊ से। आज के इस दौर में दोस्तों, अगर सबसे कठिन काम है कुछ तो वो है मुस्कुराना, वो भी तब जब अंदर सब कुछ टूटकर बिखर रहा हो, जब कुछ भी ना बचा हो, टूटकर बिखर ही क्या रहा हो, चूर चूर हो रहा हो, तब मुस्कुराना बहुत कठिन है ना। लेकिन हिमांशी बाबरा इसी जहनी जंग और बेबसी पर कुछ बहुत प्यारा लिखती हैं। उनका कहना है कि उसने दो चार कर दिया मुझको, उसने दो चार कर दिया मुझको, जहनी बीमार कर दिया मुझको, मेरी बेचारगी को ऐसे समझो, मेरी बेचारगी को ऐसे समझो, मुझे रोना है लेकिन हंस रही हूँ। इनका कहना है कि ये आजकल की नस्ल की सबसे बड़ी त्रासदी है, अंदर आंसुओं का सैलाब होता है पर जमाने की नजरों से बचने के लिए चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली जाती है, और ये झूठी मुस्कान ओढ़ना भी महज एक मजबूरी बन जाती है। दोस्तों, जब इंसान चीख कर अपना दर्द बयां करना चाहता है पर दुनिया के डर से मुस्कुरा देता है, तब समझ लीजिए कि दर्द का सैलाब कितना होगा और बर्दाश्त की हद कितनी होगी। इसी खामोशी और बेबसी को हमारी हिमांशी बाबरा अपने अंदाज में अलग अलग तरीके से अलग अलग नज़मों के जरिए रखती हैं। कभी खुददारी पे आवाज़ उठाती हैं, कभी झूठे वादों पर, कभी झूठी मोहब्बत पर, कभी पुरानी मोहब्बत पर, कभी मिटती मोहब्बत पर। आप लोग को हिमांशी बाबरा कैसी लगती हैं, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने उनकी शेर व शायरी को नहीं पढ़ा है तो कहाँ हैं, किस दौर में हैं? इस दौर में हैं तो जाइए एक बार देखिए, उठाइए, पढ़िए, दिल ना खुश हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। हिमांशी बाबरा सिर्फ दर्द नहीं लिखती हैं, उनकी शायरी में एक बुलंद खुददारी और आत्मसम्मान भी होता है। वो जानती हैं कि खोखले वादों और झूठी तसल्लियों से दिल को बहलाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। अगर हम कह लें कि हाँ अरे ये प्रॉमिस उसने किया है, अरे नहीं वो तो दिल का अच्छा है, कोई मजबूरी नहीं होगी, कर दिया होगा उसने, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अब सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है ना, क्यों बहलाना है खुद को, क्यों देनी है झूठी तसल्लियां, क्यों करने हैं खोखले वादे। वादों में थोड़ी तो अगर उत्तम होनी चाहिए ना, ऐसे कैसे कर लेते हैं लोग। यही कहना है हिमांशी बाबरा का उनकी इन खूबसूरत लाइनों के जरिए। सितारों से तुम्हारी मांग भरना चाहता था मैं, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता था मैं, मगर तुमने तो मेरी सादगी का फायदा उठाया मगर तुमने तो मेरी सादगी का फायदा उठाया, तुम्हें क्या पता तुम्हें कितना चाहते। इन लाइन्स का थोड़ा सा मर्म देखिए,
ये उस सच्चे प्रेमी का जवाब है जिसकी सादगी को उसकी कमजोरी समझ लिया गया। जब कोई आपकी निश्चल मोहब्बत की कद्र ना करे, आपके लव की, आपके मोहब्बत की, आपके प्यार की, आपके इश्क की कहीं वैल्यू ना रहे, तो वहां से चुपचाप हट जाना चाहिए। यही होता है सच्चा आत्मसम्मान। इश्क में झुकना अच्छी बात है, मैं नहीं कहती हूँ कि कभी किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए, हट लगा के रखनी चाहिए, झुकना चाहिए भाई, हर एक रिश्ते में झुकना चाहिए, सिर्फ इश्क में क्यों, दोस्ती में झुकना चाहिए, इश्क में झुकना चाहिए, भगवान के दिए हुए हर एक रिश्ते में झुकना चाहिए, अपने बनाए हुए हर एक रिश्ते में झुकना चाहिए, पर खुद को मिटा देना, ये कहाँ की इंसाफी है और ये कहाँ की ना इंसाफी है। हाँ, झुकना अच्छी बात है हर चीज के सामने, हर रिश्ते के सामने, लेकिन खुद की मौजूदगी को मिटा देना ये कहीं नहीं लिखा है, ये हमें कहीं नहीं पढ़ाया गया है। सो आइए इसे खुददार एहसास को एक बहुत ही खूबसूरत से नगमे के साथ में हम लोग समझते हैं और आनंद लेते हैं। मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में नई रोशनी का है ये नगमा और इसकी फरमाइश आई हुई है हमारे पास में धर्मेंद्र मोहन जी की तरफ से, जो कि हैं आवास विकास गोंडा से। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ। स्टे ट्यून्ड, जो भी गलती हो उसके लिए माफी चाहूंगा।

0: बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का आपकी अपनी बाहरी गजल की महफिल में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। धर्मेंद्र मोहन का आवाज विकास से कहना है कि दिल से बात निकालो तो अहंकार नहीं होता है उस बात में, और अहंकार से वो बातें निकालो तो लोगों को सस्पेंस और अंधकार में पहुंचा देती है। आपके वर्डिंग्स थोड़े गलत हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी शायरी को सही से राइमिंग में नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक रहती है। तो कृपया करके रीचेक करके प्लीज़ स्पेलिंग मिस्टेक को सही करके फिर आप मुझे दीजिएगा, तो मैं एकदम दिल के साथ में आपकी शायरी को पढ़ूंगी। सो दोस्तों, हम लोग 9:30 बजे से एक साथ हैं बाहरी गजल की महफिल में। रात तो गहरी हो चुकी है ना, और सन्नाटे की परतें और गाढ़ी हो गई हैं, और इसके साथ ही बाहरी गजल का ये रूहानी सफर अब खामोशी के आगोश में समाने जा रहा है। हिमांशी बाबरा जी की लिखावट में जो सादगी और दर्द का सुरीलापन है, उसने आज की इस खामोश रात को और भी हसीन बना दिया मेरे हिसाब से। उनकी पंक्तियां सीधे दिल की गहराइयों में उतरकर ठहर सी जाती हैं। चलते चलते हिमांशी जी की ये बेहद खास और आखिरी नज्म आपकी रूह के सुपुर्द करने जा रही हूँ मैं। ये मुझे बहुत प्यारी सी लाइंस लगती हैं इनकी। क्या खूब कहना है इनका कि तुम्हें इतनी गैरत तो रखनी थी प्यारे, तुम्हें इतनी गैरत तो रखनी थी प्यारे, सताना नहीं था सताए हुए को। इश्क सच्चा हो तो आसान नहीं होता है, इश्क सच्चा हो तो आसान नहीं होता है, अपनी हालत का मुझे ध्यान नहीं होता है। और इसी खूबसूरत सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हिमांशी जी का एक और शाहकार नज्म आप सभी के सामने मैं पेश करना चाहूंगी, जो आज की इस रात में, इस रात की खामोशी में और गहरा असर छोड़ता है। बहुत ही खूबसूरत सी लाइन्स हैं, आप सब रिलेट करेंगे इस लाइन से, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो हिमांशी बाबरा की राइटिंग्स से रिलेट नहीं कर सके। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में, दिल के किसी ना किसी कोने में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो छिपी होगी जो शायद हमने अभी तक किसी से नहीं कही होगी। हिमांशी जी का कहना है कि शहर में ढूंढने निकलो तो किसे पाओगे, शहर में ढूंढने निकलो तो किसे पाओगे, आंसुओं से भरे दामन तो कहां जाओगे। शहर में ढूंढने निकलो तो किसे पाओगे, आंसुओं से भरे दामन तो कहां जाओगे, दर्द की अपनी एक जुबां होती है साहब, दर्द की अपनी एक जुबां होती है साहब, गर समझ सको तो सन्नाटे में भी आवाज पाओगे। इंसानियत और मोहब्बत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। किसी के टूटते हुए दिल का सबब मत बनिएगा दोस्तों, किसी की बेबसी पर हंसने के बजाय किसी के बिखरे हुए ख्वाबों को समेटने का जरिया बनिएगा प्लीज। दूसरों से उम्मीदें लगाने से पहले खुद से बेपनाह और बेगर्ज मोहब्बत कीजिएगा, ये भी कहना चाहूंगा। हाँ, दूसरे की परवाह करो लेकिन पहले अपने आप से बेपनाह मोहब्बत करो, और इसी ढलती हुई रात को सुकून के साथ अपनी आगोश में समाने दीजिएगा दोस्तों। तो सांसों का ये कारवा कल फिर नए तरानों के साथ जुड़ेगा। आपके अपने आरजे मनु के साथ। तब तक के लिए अपनी इस दोस्त को दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर से कल आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में। इस मखमली मंच पर आके आपकी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल को दिल से जितना डर लगता है, जितनी असहजता होती है, उतना ही आप लोग के बीच में रहकर बहुत सुकून मिलता है दोस्तों, पता नहीं क्यों। अपने ख्वाबों को सलामत रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो ज्ञानस्थली 89.67 गोंडा शहर की धड़कन, अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ। स्टे ट्यून्ड है, मिलते हैं कल। अभी एंजॉय करते हैं मेरी एक बहुत ही फेवरेट सी गजल फीमेल वॉइस में, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता। और सच में अगर चले तो सफर कट जाएगा, लेकिन चलना है अपने भरोसे पे।
1: मैं
0: सहारा दूसरे का ले सकते
1: हैं,
0: तो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सी गजल। लेती हूँ अलविदा। धर्मेंद्र मोहन का कहना है कि
1: फन भी पानी के चश्मे,
0: दिल से बात निकालो तो अहंकार नहीं होता उस बात में, और अहंकार से वो बातें निकालो तो लोगों को सस्पेंड और अंधकार में पहुंचा देती है। ओहो, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका कहना है कि आपका बाहरी गजल का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी वेरी वेरी वेरी थैंक्स एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: हेलो एवरीवन, फिर हम सब आ चुके हैं आपके पास, हम और आपकी अपनी आरजे सिंपल। यस, आरजे सिंपल, और आज आप और हम फिर से एक साथ हैं। और साथ होना भी मतलब मुझे लगता है कि एक किस्मत का कनेक्शन होता है ना, यू नो, किस्मत ने हमें लाके यहाँ बिठा दिया है,
2: वो भी एक साथ एक ही पॉडकास्ट में। वाह।
1: यस, और मुझे लगता है कि मिलना तो रहता ही है, लेकिन मिलने के साथ साथ मैं ये बहुत पॉइंट आउट कर रही हूँ कि हर बार एक नए ब्लेजर में, हर बार एक नए लुक में आप दिखती हैं। और लुक से मुझे भी याद आ रहा है कि यार मैं आजकल बहुत शॉपिंग करने लगी हूँ, और शॉपिंग का मतलब मुझे ऐसा क्रेज हो गया कि हर वक्त कुछ ना कुछ खरीदते रहना, ऑनलाइन देखती रहती हूँ, अच्छा लाओ ये मंगा लेती हूँ, ये वाले ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग मंगा लेती हूँ, और पहनने का तो फुर्सत ही नहीं, उसको देखो पुराना लगने लगता है।
2: जैसे हमें फास्ट फूड की क्रेविंग्स होती है ना, पहले होती थी कि बर्गर खा लेते हैं, चॉकोलावा केक खा लेते हैं, लेकिन जब तक नहीं खाते हैं, जब तक ऑर्डर नहीं करते हैं, डिलीवर नहीं होता, तब तक ही जैसे ही ऑर्डर डिलीवर हो गया मन भर जाता है। ऐसी हो गई है हमारी आजकल की ऑनलाइन शॉपिंग, चाहे वो सनस्क्रीन की हो, चाहे आप जो ब्लेजर की बात कर रही हैं उस ब्लेजर की हो, चाहे शूज की हो।
1: लेकिन मुझे लगता है ऐसा आरजे सिंपल कि ये बात सिर्फ चीजों तक नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग तक नहीं है, ऐसा होता है क्या कि कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरा तुमसे मन भर गया है, क्या ऐसा सच में होता है क्या?
2: हाँ, ये मैंने रील भी देखा है, तो ऐसा बंदा बोलता है कि अच्छा जाना तेरा तो मेरे से मन भर गया होगा। भाई रिश्तों से भी मन भरता है क्या किसी का?
1: पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब लोग कहते हैं तो ऐसा होगा ही।
2: खैर, ऐसा होने से मुझे याद आया कि आपने कभी सोचा है कि जिस हाथ ने आपको सुबह की चाय दी हो, वही हाथ आपके कब्र खोद रहा हो, आपको दफन करने की पूरी प्रक्रिया कर रहा हो?
1: मुझे लगता है ये जिसका मन भर गया होगा। जैसे हमने अभी बात की ना कि मन भर जाता है, तो मन भरने के बाद इंसान किसी हद तक किसी से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कर लेता है।
2: और वैसे भी हम अक्सर अंधेरी गलियों और नकाब पोश अजनबियों से डरते हैं, लेकिन हकीकत में तो सबसे खौफनाक वही होते हैं जो हमारे बगल में सोफे पे बैठ के हमारे साथ में टीवी देख रहे होते हैं, और साथ में चाय की प्याली भी हाथ में होती है।
1: बगल में छोरा टाइप्स। और मुझे लग रहा है कि आज की जो आप कहानी लेके आई हैं, इसकी भी मुझे लगता है कि स्टोरी बैकग्राउंड कुछ ऐसी है, जिसकी जो स्माइल है वो काफी ज्यादा इनोसेंट है, और ऐसा लगता है कि मतलब कितनी प्यारी सी स्माइल है जिसकी आप कहानी बताने वाली हैं, लेकिन

0: इंसान की स्माइल में एक ऐसी खुशबू है जो आपको शायद मौत के कुएं तक ले जा सकती है।
1: बिल्कुल अर्जबीना, यही तो इस केस की सबसे डरावनी बात है।
0: आपने जब मुझे इसकी तस्वीर दिखाई, मतलब मैं तो दीवानी हो गई कि ये कौन सी लव स्टोरी की कौन सी अदाकारा है। बट जब बाद में बात होनी शुरू हुई, ओ माय गॉड।
1: हाँ, क्योंकि उनका चेहरा मींस नैनी डॉस का चेहरा देखकर कोई भी उसे अपनी पसंद का केक बनाने के लिए भी कह सकता है, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ बहुत ही बढ़िया शेफ थी और अपने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे केक्स के जरिए, डिनर के जरिए, लंच के जरिए और पता नहीं कौन कौन से डिशेस के जरिए वो लोगों को जहर का निवाला देती थी।
0: तो जी हाँ लिसनर्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नैनी डॉस की कहानी जो आपको अंदर से झकझोर के रख देगी। और बात है 1905 की अलबामा। नैनी का बचपन बहुत ही खुशहाल नहीं था। उसके पिता जेम्स हेजल एक सनकी और कंट्रोलिंग इंसान थे, मतलब अपने अकॉर्डिंग उन्हें हर चीज चाहिए होती थी। वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के बजाय खेत में काम करवाते थे। उन्हें लगता था कि बेटियां जो होती हैं वो काम करने के लिए या हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए
1: होती है।
0: और साथ ही साथ मेरा मानना है कि जब आप किसी बच्चे का बचपन छीन लेते हैं तो उसके अंदर एक गहरी नफरत पैदा हो जाती है, क्योंकि मतलब मुझे लगता है आरजे सिंपल कि बचपन वो टाइम होता है जो हर किसी की लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होता है।
1: सही कह रहे हो आप। जैसे मेरी एक नीस है, वो मेरे से बोलती है, बुआ आप इतना टेंशन क्यों लेते हो, मुझे देखो मैं एकदम टेंशन फ्री रहती हूँ, हमेशा मजे किया करती हूँ। तो बचपन होता ही है टेंशन फ्री रहने के लिए, मजे करने के लिए।
0: एंड अगर वही बचपन एकदम वर्स्ट, बेस्ट से वर्स्ट बन जाए तो उसके अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन सा आ जाएगा ना।
1: हाँ, और आपको पता है कि जब नैनी टॉस 7 साल की ही थी तब उसका एक ट्रेन हादसा हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था।
0: माय गॉड,
1: नैनी के सिर पर एक लोहे की रोड से चोट लगी थी। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह का टर्निंग पॉइंट था। डॉक्टरों का कहना है कि उस चोट ने उसके दिमाग के उस हिस्से को डैमेज कर दिया था जो पछतावा महसूस कराता है, मींस उसको रिग्रेट होना ही बंद हो गया था।
0: ये बात बिल्कुल सही है आरजे सिंपल कि हमारा जो दिमाग है वो हमारे हर अच्छी बुरी सोच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उस सोच का क्या जो बचपन से मुझे लगता है नैनी डॉस के मन में आ रही थी, जो उसके पेरेंट्स ने, उसके पिता ने उसके मन में डाली थी। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट था नैनी डॉस के लिए। पहला तो वो अंदर अंदर से टूटी थी,
1: वैसे ही ऑलरेडी वो एक इंसिडेंट से गुजर ही रही थी अपने घर के अंदर,
0: और इस बार जो हुआ था वो कहीं ना कहीं फिजिकली उसको डैमेज करने वाला था और मुझे लगता है अब उसकी जिंदगी में कुछ और होने वाला था। बस यही था टर्निंग पॉइंट नैनी का। नैनी ने अपनी जिंदगी को उस रोमांस मैगजीन की तरह बनाना शुरू कर दिया था जो वो छुप छुप कर पढ़ा करती थी। 16 साल की उम्र में उसकी शादी चार्ली ब्रेग्स से हुई थी, लेकिन असल जिंदगी मैगजीन जैसी तो नहीं होती है। बिल्कुल रियल लाइफ और रियल लाइफ में जो डिफरेंस है, वैसे ही मैगजीन लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। 1927 में उसकी दो बेटियों की अचानक मौत हो गई। उस वक्त किसी ने शक नहीं किया उस पर।
1: अर्जबीना, उस दौर में बच्चों की मृत्यु दर मींस इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी। लोगों को लगा कि ये पेट की कोई बीमारी है, लेकिन सच तो ये था कि नैनी को अपनी जिम्मेदारियां बोझ लग रही थी।
0: ओ माय गॉड,
1: मेरी राय में वो एक ऐसी महिला थी जिसे सिर्फ प्यार का नाटक पसंद था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैगजीन्स में होता है, सीरियल्स में हम देखते हैं, मूवीज में हम देखते हैं, रोमांस देखते हैं, टाइम स्पेंड करना देखते हैं, साथ में डेट पे जाना, मूवीज, एवरीथिंग, लेकिन हम काम करते हुए कभी नहीं देखते हैं ना।
0: ये बात तो सही है।
1: तो उसको जिम्मेदारियां नहीं चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए था।
0: और वो बस ऐसा सोचती थी कि जो चीज मेरे लिए जब तक सही है ठीक है, लेकिन जब मुझे उसके लिए कुछ करना होगा तो शायद वो उस चीज को बर्डन फील करने लगती,
1: पीछे हटने लगती थी।
0: चार्ली खुशकिस्मत था जो वहां से भाग निकला, लेकिन इसके बाद नैनी ने लोनली हार्ट्स विज्ञापनों का सहारा लिया। उसने फ्रैंक हैरल्स से शादी की। ये जो मैगजीन्स होती थी, ये जो विज्ञापन होते थे, इसमें जो लड़के होते थे वो अपने लिए प्रपोजल देते थे कि मेरे से कोई शादी करना चाहता है। फ्रैंक एक शराबी था। एक रात नैनी ने उसकी शराब में जहर मिला दिया। फ्रैंक की तड़प तड़प कर मौत हो गई और नैनी बस पास खड़ी उसे देखती रही।
1: ये उसका दूसरा हस्बैंड था।
0: यस,
1: पहला तो भाग निकला, उसकी खुशकिस्मती थी शायद, लेकिन दूसरे ने अपनी जिंदगी गवा दी। वो भी कौन से विज्ञापन का भी आपने नाम लिया है?
0: लोनली हार्ट्स।
1: ओह माय गॉड, लोनली हार्ट्स ने एकदम से लोनली कर दिया। खैर, और आपको पता है अर्जबीना, फ्रैंक के बाद उसकी अपनी माँ, लूसा और उसकी बहन डावी भी उसके रास्ते में आई। नैनी को अपने बीमार माँ की सेवा करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था। उसने अपनी माँ के खाने में आर्सेनिक मिला दिया। आर्सेनिक वही चूहे मारने की दवा। मुझे ये सोचकर भी घिन आती है कि कोई अपनी माँ को धीरे धीरे मरते हुए कैसे देख सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने आराम के लिए, ताकि उनको उनकी सेवा ना करनी पड़े। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कहाँ की सोच है और ये कौन सी साइकोलॉजी है?
0: मुझे लगता है आरजे सिंपल, ये साइकोलॉजी नहीं है, ये एक तरह की मानसिकता होगी जो इंसान मतलब अपने अनुभवों से बनाता है। उसने बचपन में देखा कि उसे सब परेशान करते थे, अब उसको लग रहा था कि अब वो सबको परेशान करेगी। अब बारी थी कुछ प्रेम पत्रों की। जी हाँ, उन प्रेम पत्रों की बात कर रही हूँ जिसे वो अपना अगला शिकार बनाने वाली थी। वो रिचर्ड मार्टन और अर्ली लैनिंग जैसे मर्दों को लिखती थी खत। मैं तुम्हारे लिए हर दिन मीठा हलवा बनाऊंगी, तुम्हारे घर को खुशियों से भर दूंगी। ये पढ़कर कोई भी अकेला आदमी उसके जाल में फंस जाता था। मतलब इनडायरेक्टली, जैसे फेसबुक पे हमने एंजल आकांक्षा, एंजल पल्लवी ऐसे करके नाम बहुत सुने होंगे, जो फेक नाम होते थे, लड़के होते थे और लड़कों को ही फंसाते थे। लेकिन यहाँ पे ये खुद ही लड़की बन के एक लेटर लिख लिख के लोगों को फंसा रही थी, वो भी अपनी मीठी मीठी बातों से। और मुझे लगता है कि ये एक तरह का छलावा था लोगों के लिए, और उस छलावे से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी।
1: बिल्कुल, रिचर्ड मार्टिन को लिखे खतों में वो खुद को एक ममतामयी और अकेली औरत, मींस लोनली, और पता नहीं लोनली वोल्फ की तरह बताती थी। लेकिन जैसे ही शादी होती और पति उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, वो अपनी रसोई से आर्सेनिक निकाल लेती, और मुझे लगता है कि वो एक एडिक्ट बन चुकी थी हत्या करने के लिए, और जो भी अपने रिश्ते पे खरा नहीं उतरता था वो उसको मौत के घाट उतार देती थी।
0: और मुझे लगता है कि इंसान को जब आदत पड़ जाती है तो वो आदत कभी सही नहीं होती। किसी इंसान की आदत है कुछ लिखने की, तो वो आदत उसकी बन जाएगी, उसको दीवार भी मिलेगी तो वो उस पे भी लिख देगा। अर्ली नोनिंग की मौत के बाद नैनी की सास भी उसके घर रहने आई। नैनी को अपनी सास का दखल देना पसंद नहीं था। कुछ ही दिनों में उसकी सास की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मेरा विचार है कि नैनी ने जहर देने की कला को इतनी महारती से यूज करना शुरू कर दिया था कि कोई समझ ही नहीं पाता था कि मौत कोई हत्या है या किसी तरह की प्राकृतिक। और मुझे लगता है कि अगर कोई किसी काम में प्रोफेशनल हो जाता है तो उसकी जो आदत है उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
1: लेकिन ये भी तो कहा गया है ना कि रोज का चोर एक दिन तो जरूर पकड़ा जाता है।
0: डेफिनेटली पकड़ा जाना भी चाहिए।
1: तो ऐसे ही हर अपराधी की तरह आता है नैनी डॉस का भी दिन। एक दिन नैनी डॉस भी पकड़ी जाती है। नैनी का आखिरी पति था सैमुअल डॉस। सैमुअल एक बहुत ही अच्छा आदमी था, एकदम मेरी तरह और आरजे बीना की तरह। नैनी का मैगजीन पढ़ना और बाहर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था, जैसे उसके फादर को नहीं पसंद था। नैनी ने उसे भी जहर दे दिया। उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया और मिरेकल ऐसा हुआ कि वो बच निकला।
0: मुझे लगता है जिसको भगवान बचाना चाहते हैं तो वो बच ही निकलता है। और यही थी नैनी की सबसे बड़ी गलती। उसने उसी रात उसे भारी मात्रा में जहर वाला प्रून्स खिला दिया। सुबह सैमुअल मृत मिला। डॉक्टर जेलिगमैन को शक हुआ क्योंकि सैमुअल पूरी तरह ठीक हो चुका था। उन्होंने पोस्टमार्टम किया और जो मिला उसने इतिहास ही बदल दिया।
1: बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सैमुअल के लीवर और किडनी में आर्सेनिक की इतनी मात्रा थी कि वो किसी भी साइंटिस्ट के पैमाने से बाहर थी। पर्सनली मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ साइंस ने उस मुस्कुराते हुए चेहरे को हरा दिया। पुलिस ने जब नैनी से पूछताछ की तो वो अपनी कहानियाँ सुनाते हुए छोटी बच्ची की तरह गिगल कर रही थी।
0: मतलब खिलखिला के हंस रही थी वो।
1: जी हाँ बिल्कुल। उसने अपने हर एक मौत के बाद में जितने भी रिश्तों को उसके दफनाया गया है, लास्ट अंतिम संस्कार वाले टाइम पे भी वो लोगों से मुस्कुराते हुए मिल रही थी।
0: और मुझे लगता है आरजे सिंपल, ये जो उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसने वाकई में लगता उसको पछतावा करने जैसा मतलब महसूस कराना ही बंद कर दिया था।
1: या हम लोग किसी से फालतू में नाराज भी हो जाते हैं तो 2 मिनट बाद हमें पछतावा होता है कि नहीं इतना भी नहीं बोलना चाहिए था।
0: हाँ बिल्कुल, किसी से रूडली बात करते तो तुरंत हमें रिग्रेट होता है, यार ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसकी जगह मैं ये भी कह सकता था या कह सकती थी। और मुझे लगता है अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका मुझे लगता है कि मुझे आपको और लिसनर्स को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा। कानून के हिस्से पर आते हैं। नैनी पर 11 हत्याओं का शक था। लेकिन मुकदमा सिर्फ सैमुअल डॉस की मौत पर चला। ये एक प्रोसिक्यूटोरियल स्ट्रेटजी थी। ओक्लाहोमा के अधिकारियों को पता था कि अगर वे सभी केस खोलेंगे तो पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। उन्हें बस उसे जेल के पीछे डालना था।
1: बिल्कुल। और एक और कानूनी पेश था, इंसेनिटी प्ली मींस पागलपन का बचाव। उसके वकीलों ने कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन कोर्ट ने देखा कि नैनी ने बहुत सफाई से सबूत मिटाए थे। इसका मतलब था वो पूरी तरह होश में थी।
0: और मेरी राय में उसे मौत की सजा ही मिलनी चाहिए थी। लेकिन उस समय की जूरी एक मुस्कुराती हुई दादी का इलेक्ट्रिक चेयर पर भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे उम्र कैद मिली। वो जेल में भी कैदियों के लिए खाना बनाना चाहती थी।
1: ओह माय गॉड।
0: लेकिन जेल प्रशासन इतना डरा हुआ था कि उन्होंने उसे रसोई के पास भटकने भी ना दिया।
1: तो ये थी नैनी डॉस, एक ऐसी औरत जिसने रोमांस की काल्पनिक दुनिया को पाने के लिए हकीकत के 11 जिंदगियों को लाशों में तब्दील कर दिया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक जहर शीशे में नहीं बल्कि उन मीठी बातों में होते हैं जो हम रोज सुनते हैं।
0: बिल्कुल आरजे सिंपल। और मुझे लगता है कि आसपास बोलने वाले लोग हमें लगता है कि बहुत ही शुगर कोटेड बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है ये हमें अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नैनी तो 1965 में कैंसर से मर गई, लेकिन उसका वो गिगल आज भी उन बंद कमरों में गूंजता है जहां लोग अपनों पर अंधा विश्वास करते हैं। नैनी के लिए मौत सिर्फ एक रेसिपी थी जिसे वो बार बार दोहराना चाहती थी।
1: ऐसे तो आरजे बिना हमें घर के अंदर भी अपने रिश्तों से भी डर लगने लगेगा ना, कि जैसे हमारी बुआ ही हमारे लिए हंसते हुए चाय लेके आ रही हैं, उन्होंने सालों में ऐसा ना किया हो लेकिन सालों भर बाद पहली बार वो हमारे लिए एकदम खिलखिलाती हुई हंसी के साथ में एक कप चाय लेके आ रही हैं, क्या मुझे पीना चाहिए कि नहीं, मुझे तो तुरंत नैनी डॉस याद आएंगी।
0: अब ये तो हमने कहानी सुन ली है, लेकिन देखिए ये हर बार ऐसा नहीं हो सकता। इस दिमाग से हम सोचेंगे तो हमें हर इंसान कल्प्रिट दिखेगा। हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होना है और ऐसी जगह हमें शक करना है जहाँ लगे कि कुछ गड़बड़ है। हर जगह हमें शक नहीं करना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अचानक से आपके लिए खाना बना के ले आएगा, और ऐसा नहीं कि कोई अचानक से कोई दवा लेके चला आएगा।
1: लेकिन नैनी डॉस तो ऐसा ही करती थी ना, वो पहले हल्का सा दवा देती थी, मींस हल्का सा जहर देती थी स्वादिष्ट खानों में, फिर उसके बाद में वो बीमार होने के बाद में उसी मरीज की सेवा भी करती थी, मालिश करती थी, नहलाती थी,
0: क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार भी थी। तो मानसिक रूप से बीमार इंसान कुछ भी कर सकता है, इवन वो चाकू लेके आपको भोंक भी सकता है। तो सिंपली हमें ये सोचना है कि आसपास जो भी जहरीली चीजें या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में विज्ञान भी जानता है, तो उनको तो आसानी से किसी को भी ना दिया जाए, क्योंकि ये मेडिसिन या कोई भी ऐसी जहरीली चीज, वैसे जहरीली कोई भी चीज हो सकती है जिसका कोई भी चीज का ओवर यूज किया जाए, जिसमें कोई केमिकल ऐसा टॉक्सिक हो, लेकिन मेरे हिसाब से इन सब चीजों को मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं कराना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो मानसिक रूप से विकलांग होगा उसी के साथ ऐसा होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम नैनी डॉस बनने का जो सफर है उसको शुरू से रोकें। हम बाद में जाने के बजाय, उसकी पर्सनैलिटी को स्टडी करने के बजाय, उसके साथ शुरू में क्या हुआ उस पे ध्यान दें। हमारे घर में कोई बच्चा है जिसके साथ हो सकता है, कभी कभी क्या होता है सिंपल, के घर में कोई बच्चा है जो पढ़ नहीं रहा, तो उसके साथ हम बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं, भाई तुम पढ़ते नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तो वो कहीं ना कहीं हीन भावना में चला जाएगा। उसके किसी भी क्वालिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए।
1: लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जैसे हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम है, वो हमें उसके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, हम उसका इलाज करा लेते हैं, हमारे लीवर में प्रॉब्लम है, हमारे किसी भी बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, हम उसका ट्रीटमेंट झट से करा लेते हैं, लेकिन ये जो मेंटल इश्यूज होते हैं, ये जो मानसिक स्थितियां होती हैं, इनके सिम्टम्स क्यों नहीं दिखते लोगों को, क्यों नहीं समझ में आते? और आज के टाइम पे भी जब मुझे ऐसा लगता है 80% ऑफ द पॉपुलेशन डिप्रेशन में जूझ रहा होगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे, तब भी हम इन सब चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जिससे हमें पता चल जाना चाहिए कि ये इंसान मेंटली स्टेबल है कि नहीं है?
0: आरजे सिंपल, अगर हम WHO की बात करें तो WHO ने एक हेल्दी पर्सन की एक बड़ी सी डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन में उन्होंने कहा है कि मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इंसान अगर तीनों रूप से फिट है तो ही वो हेल्दी है। अब इमोशनली और सोशली ये कौन सा टर्म है? इमोशनली मतलब कि उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं। कोई इंसान बहुत जल्दी रोने लग रहा है तब भी उसके साथ यानी कि कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, ओवर हंस रहा है। जैसा आपने बताया था कि जब वो किसी को मतलब अंतिम संस्कार करने जाती थी या उसके मतलब दफनाने के लिए अपने पेरेंट्स या जिनके भी साथ जाती थी तो वो हंसती थी, वो एक साइन था हमें पहचान जानने का कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है,
1: लेकिन लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया सिर्फ ये देखते हुए कि वो सेवा भी करती है, खाना भी खिलाती है। इसके बाद में ये ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकती है।
0: हर सेवा करने वाला, खाना खिलाने वाला इंसान बहुत नॉर्मल हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा तो उसके कुछ ना कुछ लक्षण दिखेंगे, जैसे कि हंसना, बहुत ज्यादा चुप रहना, बहुत ज्यादा बोलना, किसी के साथ इंटरैक्ट करना, कोई इंसान मतलब इंटेंशनली किसी को बहुत मैसेज कर रहा है, या किसी वर्क प्लेस पे कोई इंसान एक ऐसा है जो हर दिन हर किसी को रोज मैसेज कर रहा है, इसके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो सोशली और इमोशनली ये दो एस्पेक्ट पे हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस हमें भी थोड़ा सा अवेयर होने के, हर चीज को नॉर्मल नहीं समझना है, हर किसी को कोना नहीं बना देना है। अगर वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हो सकता है हमारे लिए यूजफुल ना हो इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान तो है ना।
1: ऑब्वियसली मैं भी यही हमेशा लोगों से कहती हूँ कि कमियां तो सब में होती है, परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन इंसान की अच्छाई को पहले देखना चाहिए, बुराई क्या पता उस अच्छाई के साथ ही चली जाए। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ और ना शायद समझ पाऊंगी।
0: बिल्कुल, और इसके लिए बस हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम किसी नैनी डॉस को बनने ही ना दे, हम उसकी किसी भी इंसान की जिंदगी में ऐसा मौका ही ना आने दे कि वो किसी के लिए इतना नफरत फील करे।
1: मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर आपको रोड पे चलते हुए कोई अकेला इंसान रोता हुआ जाता हुआ दिख रहा है, तो अगर आपके पास टाइम है और अगर वो जगह सही, एटमॉस्फेयर ठीक है, तो आपको से भी रुक के पूछना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, आप रो क्यों रही हो, क्योंकि इंसानियत तो इतना होना ही चाहिए आजकल के टाइम पे। आप इतना बिजी हो गए हो अपने वर्क कल्चर को लेके,
0: अपने मतलब स्केड्यूल को लेके हम बहुत स्टिफ हो चुके हैं, और साथ ही साथ जैसा कि हमने बचपन देखा नैनी डॉस का कि उसके फादर ने उसको एक बेसिक नीड जो कि पढ़ाई पे हर किसी का हक है, एजुकेशन उसको नहीं दी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। हाँ, ये बात और है कि हमारी फ्रस्ट्रेशन किसी की जान तो नहीं ले सकती, लेकिन वो तब घातक हो जाती है जब वो ओवर हो जाती है। तो बस हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे किसी के भी मन में किसी के लिए भी हीन भावना है। आज के एपिसोड को यहीं पे करते हैं क्लोज और मिलते हैं अगले अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: तेरा नाम लूं तो सुकून आ जाता है, जैसे भीड़ में कोई अपना मिल जाता है। सोचूं जब भी तेरे साथ की बातें, दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। तू साथ हो तो मुश्किल भी आसान लगे, तेरे बिना हर खुशी भी सुनसान लगे। ये दिल सिर्फ तुझसे जुड़ना चाहता है, बाकी दुनिया तो सब मेहमान लगे।
3: तेरी यादों का मौसम दिल पे छाया है, हर ख्वाब में बस तेरा ही साया है। कोई पूछे प्यार क्या होता है मुझसे, मैं कहूँ जो तूने मुझ में जगाया है। न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे, न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे, बात ना हो तो दिल नहीं लगता जरा। तू सामने हो तो वक्त रुक जाता है, और दूर हो तो हर पल लगे जैसे सजा।
2: जी हाँ दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत में आज हम लेकर के आए हैं वैलेंटाइन स्पेशल, यानी प्यार के नगमों को एक साथ लेकर के। आपकी आज ये गुमसुम एंड आपकी आज ये ख्वाहिश। तो आज जो सफर शुरू करने जा रहे हैं उसमें कई मुसीबतें, जी हाँ, इसलिए आ रही हैं क्योंकि प्यार एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसी कड़ी है जिसमें मुसीबतें ना हो तो प्यार को पाना आसान कहाँ लगता है। सबसे पहले हम उस सिंगर की बात करेंगे जो कि अपने आप में एक कहते हैं ना कि पूर्ण विराम हम नहीं कह सकते हैं, पूर्ण है। क्यों आरजे गुमसुम?
3: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश, वो जो अपने में पूरी है, वो जिनकी आवाज जो भी सुनता है वो उनकी आवाज का मुरीद हो जाता है,
2: और आवाज के मुरीद होने के साथ साथ में उनके व्यक्तित्व, उनके चलन, उनकी बोली, उनका व्यवहार, शायद ये प्यार में कम नहीं होता है, ये प्यार को और पूर्ण बनाता है। बहुत सारे नगमों के साथ में जब उन्होंने गीतों को सुना, गाया और उनको जिया, जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्यार की बेमिसाल मूरत हमारी लता जी। उनके नगमों में से एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ।
3: इकरार से याद आया, बहुत ही बेहतरीन गाना है प्यार हुआ इकरार हुआ। कहते हैं ना कि प्यार तो यूं ही हो जाता है, लेकिन जब इकरार करना होता है तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होती है। हम सोचते हैं ना, अच्छा चलो कह देते हैं, फिर रुक जाते हैं। सामने वाले को बुरा लग गया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, फिर रुक जाते हैं। लेकिन ये ऐसा एहसास है कि कहा भी नहीं जाता और रहा भी नहीं जाता।
2: तो भाई ये तो मुझे कुछ इस तरीके से लग रहा है कि अगर हमने कुछ मुंह में खाया हुआ है तो ना निगला जाए ना उगला जाए, कुछ ऐसा ही हो गया। पर मैं बताऊं कि वैलेंटाइन वीक जो ऐसा होता है जिसमें प्यार का इजहार करने से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, तो आइए इस प्यार के इजहार को हम करते हैं और सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

0: अगले सिंगर जिनकी आवाज में जादू तो था ही, शायद हम उनको ये भी कह सकते हैं कि उनकी आवाज इतनी वर्सटाइल थी कि हर कोई आवाज पहचान जाता था और हर एक हीरो की आवाज में फिट होने वाले हमारे मोहम्मद रफी जी। दिलीप कुमार का दर्द हो या फिर शम्मी कपूर की मस्ती, देवानंद का रोमांस हो, सब पर उनकी आवाज फिट हो जाती थी। लेकिन कहा जाता है मोहम्मद रफी की आवाज नगमे और उनके गीतों की जो एक प्यारी सी एक मिसाल हुआ करती थी वो लव सॉन्ग्स पर ज्यादा फिट हुआ करती थी।
1: बिल्कुल, मोहम्मद रफी जिनकी आवाज को कहा ही जाता है कि उनकी आवाज में एक रूहानियत थी। रूहानियत ऐसी कि जो भी उनके नगमे सुनता था वो खो जाया करता था। कोई भी गाना हो, कोई भी शैली हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दर्द हो, खुशी हो या फिर बहारों की खुशबू, हर किसी को, हर किसी एहसास को अपनी आवाज में बहुत ही बेहतरी से कैसे निखारा जाता है ये मोहम्मद रफी जी बहुत ही अच्छे से जानते थे।
0: बिल्कुल, और मोहम्मद रफी जी ने तो बहुत सारे ऐसे गानों को अपनी एक मिसाल दे दी, जैसे रोमांटिक हो, फिर दर्द भरे हो, कव्वाली हो, भजन हो, देशभक्ति, कॉमेडी सॉन्ग्स, ऐसा कोई भी अंदाज हो, जिन्होंने इन सारे सॉन्ग्स को छोड़ा ही नहीं था। बेहद विनम्र इंसान उनकी शोहरत के बावजूद बेहद सादगी भरी जिंदगी जीते थे। इंडस्ट्री में जो लोग उन्हें सबसे अच्छे और प्यारे व्यवहार के लिए जानते थे, इंडस्ट्री में लोग उन्हें उनके अच्छे व्यवहार के लिए भी याद करते थे और वो जाने जाते थे। दिल ढल गया ये दुनिया ये महफिल, तूने ये क्या कर दिया, सीधे दिल पर उतर जाने वाले सॉन्ग्स थे। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी आरजे गुमसुम से कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत, क्या आपने ये गाना सुना है?
1: जी आरजे ख्वाहिश, बिल्कुल सुना है, और इतना प्यारा गाना, इतना प्यारा गीत, जिसकी कहे है ना कि कोई सार ही नहीं, कोई मिसाल ही नहीं।
0: ओके, तो चलिए अब हम लिसनर्स को सुना देते हैं इस प्यारे से नगमे को, जो कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की

0: अगले जिस सिंगर की हम बात करने वाले हैं, उनकी आवाज में मस्ती है, कुछ नयापन है, पर इस नएपन के साथ साथ अपनी आवाज में सभी गीतों को बड़ी ही खूबसूरती से संवारते हैं वो। और उनका गाना आते जाते खूबसूरत, इन आवारा सड़कों पर, और ऐसे ही बहुत सारे गीत जो कि आपको याद दिलाते हैं मस्ती, याद दिलाते हैं खुशी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार जी। अपनी गानों के लिए तो वो जाने ही जाते हैं, पर साथ ही साथ में जाने जाते हैं अपने व्यक्तित्व के लिए। उनका व्यक्तित्व जो बहुत ही सादा और सौम्य है। कहते हैं कि हम जितने बड़े पद पर होते हैं उतना ही हमारा व्यक्तित्व सौम्य होता है। इसकी बहुत ही बेहतरीन मिसाल है किशोर कुमार जी।
1: मल्टी टैलेंटेड जीनियस, ये भी नाम उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मिला। किशोर कुमार गायक ही नहीं बल्कि एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। इतनी सारी प्रतिभाएं एक ही इंसान में कम मिलती हैं जब उनके अंदर प्यार कूट कूट के भरा होता है। दूसरों के प्रति सम्मान, एक प्यार भरा होने के कारण ये सारी खूबियाँ होती हैं। आवाज जो दिल से निकली थी, उनकी आवाज में एक नेचुरल खुशी और शरारत हुआ करती थी। रोमांटिक गाने हो या फिर मस्ती भरे, वो उन गानों को गाते नहीं थे, वो उन गानों को जीते थे। मस्ती के बादशाह, एक चतुर नार, पान खाए सैया हमार जैसे ये मस्ती वाले गाने जब उन्होंने रिकॉर्ड किए थे, जब उन्होंने गाए थे, तो सारे लोगों ने उनके लिए बस एक ही कहा था, अरे वाह, अब तो बात किशोर कुमार की है। तो आइए उनकी ही आवाज में एक प्यार भरे नगमों के साथ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है हमें तुमसे प्यार।

0: अरे ये कौन सा गीत है और किसके लिए गाया जा रहा है?
1: मैं गा तो नहीं रही थी, मैं गुनगुना रही थी और सिर्फ मैं सोच रही थी आंखें बंद करके कि काश ये गाना भी मैं किसी के लिए गाऊं। और इतना प्यारा गीत है ना, जो कि उनकी आवाज, और आप सभी को पता है कि जिसने इस गीत को गाया है वो हम सबकी प्यारी आशा भोसले जी। बिल्कुल, आशा भोसले के जो गीत होते हैं वो हमेशा से एक ना रोमांटिक सॉन्ग्स को लेकर के क्लासिकल, पॉप, गजल, और वो हर तरह के गानों को जीती हैं, हर गानों को गाती हैं। उनकी आवाज में वो हर मूड भी ढलसा जाता है, चाहे वो ओपी नैयर साहब जी हो, चाहे आजी बर्मन साहब जी के साथ हो। वो हर एक जादू को अपने साथ में इस तरीके से पिरो लेती हैं कि हर युग में उनके गानों को एक यादगार के रूप में ले ही लिया जाता है। मस्ती और अदा की पहचान, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, जिसके लिए मैं अभी कहने जा रही हूँ, पिया अब तो तू आजा। इतने बेहतरीन सारे सॉन्ग और जो कि रोमांटिक सॉन्ग्स को दिया है वो ही हमारी आशा भोसले जी हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने गीत सुना दीवाना हुआ बादल, तो देखा प्यार में क्या कुछ नहीं हो सकता। ये कल्पना देखिए प्यार के लिए कि बादल भी दीवाना हो सकता है, यानी वो भी दीवानगी कर सकता है, प्यार में पड़ सकता है। और दूसरा बहुत ही बेहतरीन गाना जो कि है पिया तू अब तो आजा, तो बिल्कुल इन दोनों ही गीतों में प्यार है बेशुमार। तो आज जैसा कि हम प्यार को ही बता रहे हैं, उसी को आपके सामने रख रहे हैं, तो आइए सुनते हैं प्यार भरे ये बहुत ही बेहतरीन गीत।

जिनकी आवाज में एक सच्चाई और टूटन थी। अब आप सोचेंगे टूटन का क्या मतलब होता है? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जब दिल टूटते हैं तो उस टूटन की कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन प्यार भरों को जोड़ना

प्यार भरे दिल को जोड़ना जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। उनके गाने सुनकर लगता है जैसे कोई अपना पुराना दर्द सुना रहा हो। उन्हें अक्सर राज कपूर की आवाज कहा जाता था। आवारा हूं और मेरा जूता है जापानी, जीना यहां मरना हुआ, ऐसे गानों की कई जोड़ियों को अपनी आवाज दिया और उन गानों को अमर बना दिया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जिनकी आवाज के लिए हम बात कर रहे हैं वो है हमारे मुकेश दाजी, जिनकी आवाज में दर्द तो था ही, इसी के कारण उन्हें आवाज के बेताज बादशाह भी कहा जाता है। और उनके गाने आज भी हम सभी बड़े ही शौक से और बड़े ही दिल से सुनते हैं। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो उनकी ही प्यार भरे गीतों को हम कैसे भुला सकते हैं। चाहे वो आज के जुगल जोड़ी क्यों ना हो, चाहे वो पुरानी ही जोड़ी क्यों ना हो, सभी के दिलों में आज के ये जो गीत हैं, ये पुराने मिक्स करके भी आज हम सभी लोगों को सुनने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं।

0: युगल जोड़ी।
1: महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग, जो कि मुकेश जी की आवाज में गाया गया। आप देखिए इस गीत में कि कितनी बेहतरी से बताया है कि महबूब मेरे, यानी ये गीत ये बताता है कि तुम हो तो पूरी दुनिया है, सब कुछ है, और तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। प्यार कुछ ऐसा ही होता है, अगर आपके पास आपका हमदर्द, कोई आपका हमराज है तो दुनिया बेहद खूबसूरत लगती है, और वो नहीं है तो मन करता है कि कुछ भी नहीं। ऐसा ही होता है प्यार, फिर चाहे वो आप उसे किसी भी रिश्ते में ले लीजिए, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो आपका माता पिता से आपका रिश्ता हो, या कोई भी रिश्ता हो, जब कोई हमारे दिल के बहुत करीब होता है तो हमें यही लगता है कि तुम हमेशा हमारे पास रहो, बस कहीं दूर मत जाओ। इसी एहसास को, इन्हीं बातों को, इन्हीं भावनाओं को बहुत बेहतरी से अपनी आवाज के साथ उन्होंने निखारा है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में उन्हीं का ये बेहतरीन गीत, महबूब मेरे तू है तो।

0: ट्रेनिंग अगर शास्त्रीय संगीत की थी तो उनके गानों की सुरों की गहराई में परफेक्शन साफ झलकती थी। बिल्कुल, जिनकी ट्रेनिंग अगर शास्त्रीय संगीत में की गई है तो उनकी नींव भी उतनी ही मजबूत होती है। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। जो कि हमारे अगले सिंगर हैं मन्ना डे, जिनकी आवाज को आज भी हम बड़े ही अच्छे वाले मूड में सुनते हैं। मुश्किल धुनों के बादशाह, ऐसे गाने जो दूसरे गायक मुश्किल समझते थे, वो मन्ना डे साहब ने बड़ी ही आसानी से गा लेते थे। जैसे लागा चुनरी में दाग, पूछो न कैसे मैंने, हर मूड में फिट और हर अदा में फिट, उनकी आवाज को बड़े ही शौक से और बड़े ही चाह से हम सुनते हैं। क्लासिकल ही नहीं, उन्होंने मस्ती भरे रोमांटिक और दार्शनिक गाने भी गाए। तो क्या आरजे गुमसुम, आप उनके गानों के बारे में कुछ जानती हैं?
1: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश, तो चलिए बताते हैं आपको उनके बहुत ही बेहतरीन गाने, जो कि है मस्ती भरा है समा। जब आप थोड़े दुखी हो, किसी से झगड़ा हुआ हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया हो और मन हो कि थोड़ा मस्ती करनी है, तो सुनिए मन्ना डे का ये गाना। क्योंकि मस्ती भरा है समा जब आप सुनेंगे ना, तो आपका मूड यूं बदल जाएगा। और साथ ही साथ इनका दूसरा गीत है तू प्यार का सागर है। बिल्कुल, तू प्यार का सागर है ये गीत आप जानते हैं कि मन्ना डे ने किसे संबोधित किया है? उनका कहना है कि तू प्यार का सागर है ये उन्होंने डेडिकेट किया है अपनी माँ, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके लिए उनकी माँ ही प्यार का सागर है, जिन्होंने बचपन से लेकर उन्हें हमेशा इतना प्यार दिया, इतना सराहा कि जो वो नहीं सोच रहे थे कि उन्हें नहीं मिल सकता है वो भी उन्हें मिला। तो इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं प्यार की, तो भाई कैसे भूल सकते हैं हम अपनी माँ को, जो हमेशा हमेशा हमें इतना प्यार करती है कि लगता है कि बस अब तो और किसी की जरूरत ही नहीं है, माँ ही अपने आप में संपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं उनके यही मस्ती भरे प्यारे से गीत और खो जाते हैं और करते हैं।

0: मखमली आवाज और आवाज में जादू, जिसमें हल्का सा कंपन, जिसको कहते हैं वाइब्रेटो। वाइब्रेटो उनकी खास पहचान थी। कहते हैं ना कि किसी की आवाज में वाइब्रेशन होता है, जिसमें माइक में बोलने पर एक कंपन सी आती है। तो आप खुद सोचिए कि जब उनकी आवाज में कंपन हुआ करती थी और उनके गानों में वो कंपन साफ साफ झलकता था, तो यानी ऐसे सिंगर्स की आवाज जो होती है ना, वो बड़ी ही मखमली मानी जाती है। उनके गानों में उदासी और नजाकत इतनी खूबसूरती से मिली हुई थी, मानो उसी में वो फिट की गई हो, जो सुनने वाले हमेशा उनकी आवाज को सुनकर खो जाया करते थे। जैसे जाए तो जाए कहां, इतना सा मुझ में तू प्यार बढ़ा। गजल के मामले में अगर बात की जाए तो सिर्फ फिल्मी गायकी नहीं, बल्कि बेहतरीन गायक और गजल गायकी के रूप में भी उनको सभी ने सुना। उनकी गायकी में उर्दू अदब की मिठास झलकती थी। एक्टर भी रह चुके हैं। कम लोग जानते हैं कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में अभिनय भी किया और आज उनकी अभिनेता को भी हम सराहते हैं। सादगी भरा स्वभाव तो हर किसी का होता है, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी थी कि आवाज की तरह नर्म और प्यारी सी आवाज। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वैलेंटाइन डे वीक में कई ऐसे सिंगर्स की आवाज में चुन चुन के गानों को लेकर के आए हैं। तो आज ये गुमसुम, क्या तलत महमूद जी के लिए कोई ऐसा गीत है आपके पास?
1: बिल्कुल है मेरे पास, जो कि है मेरी दुनिया में बस तुम ही तुम हो। बिल्कुल जैसा कि आपने गीत सुना, मेरी दुनिया में तुम ही तुम हो। तलत महमूद कहते हैं कि हमारे अंदर जब कोई खास चीज होती है, वही खासियत हमारी पहचान बन जाती है। उनकी पहचान बनी उनकी खास आवाज, जिसमें कि जो भी उनकी आवाज सुनता था ना, उनकी आवाज में वो जो एक खास चीज थी, वो थी उनकी आवाज में वो कंपन। जो भी सुनता था वो यही कहता था कि बहुत ही खूबसूरत है। उनकी इस बात को लेकर बहुत लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें ये भी कहा कि अरे इस आवाज के साथ कहाँ आप बड़े बन पाओगे, लेकिन फिर भी सबको पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपनी आत्मविश्वास के साथ, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ गाने गाए और जब वो गाने रिलीज हुए तो इतने हिट हुए कि वो सफलता के शिखर पहुंचते ही चले गए। इसीलिए कहते हैं कि हमारी हर एक कमी कभी कभी हमारी खासियत भी बन सकती है।
0: तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

0: जैसा कि आप सभी को पता है, हेमंत कुमार जो कि वाराणसी में जन्मे और पले, बनारस की मिठास एक पान से, पान खाए सैया हमार, ये इस गाने से बेहद उन्हें उपलब्धि मिली। हेमंत कुमार मुखोपाध्याय था, उनका नाम सबसे पहले मुखोपाध्याय था। वे मुख्य रूप से बंगाली थे और उन्होंने बंगाली तथा हिंदी दोनों भाषाओं में अपार लोकप्रियता पाई। अब आती है गायन शैली की बात, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बंगाली गीतों से की, लेकिन बाद में ही हिंदी फिल्म संगीत में अपनी अलग पहचान बना ली। उनकी आवाज बेहद मुलायम और गहरी थी। रोमांटिक गीतों की अगर बात करें तो क्या ही कहने, जैसा कि लव सीजन चल रहा है हमारा, वैलेंटाइन डे, तो उनके ऐसे कई गाने हैं जिनको सुनकर के आज भी दिल हमारा आवारा हो जाता है, यानी कि है अपना दिल तो आवारा। पर हम चलते हैं सीधे आरजे गुमसुम के पास।
1: तो उनका एक बेहद ही प्यारा गीत जो कि है हाल कैसा है जनाब का, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है जो कि आप सुन सकते हैं, और इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि देखिए कितने प्यार से, कितनी नजाकत से पूछा है।
0: मैं चाहती हूँ कि आरजे गुमसुम ने हाल पूछा है जनाब का गाया था कि पूछा था,
1: गा करके पूछा था।
0: ये तो वही वाली बात हो गई ना कि कुछ ऐसे खाने पीने की चीजें आती जिसमें हम लोग कहते हैं ना, इसे खा कर पियो या पी के खाओ।
1: दोनों ही चीजों में स्वाद आपको पता चल ही जाना है।
0: तो ये हेमंत कुमार का जो गाना था हाल कैसा है जनाब का, तो आइए अपना हाल भी बताइए आकर के इस खूबसूरत से नगमे को सुनने के बाद।

0: हिंदी फिल्म और संगीत के इतिहास में ये एक पहला सुपरस्टार माना जाता है। वे न केवल एक अद्भुत आवाज वाले गायक थे बल्कि जबरदस्त अभिनेता भी थे। उनकी आवाज और भावात्मक अभिव्यक्ति ने उस समय के संगीत को एक नई ऊंचाई दी। कहा जाता है कि लगभग 36 फिल्मों में अभिनय किया, उनमें से अधिकांश हिंदी और बंगाली भाषा की थी। उन्होंने लगभग 185 से ज्यादा गीत गाए जिसमें कई आवाज आज भी बेहद रूप से हम सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है, KL सहगल साहब। उनकी आवाज कलाकारों पर गहरा असर डालती थी। बाद के महान गायक लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफी एंड मुकेश जी ने भी उनकी कला को प्रेरणा का स्रोत बना दिया। और कहा जाता है कि पुराने सिंगर्स, चाहे हम कह देते हैं कि ये भाई पुराने जमाने के सिंगर्स थे, लेकिन उनकी ताजगी, उनकी मिठास, उनकी मासूमियत आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है मानो अभी कल ही की तो बात हो।
1: बिल्कुल, और वही ताजगी, वही मिठास, वही बातें उनके गीतों में साफ झलकती हैं। इतना ना मुझसे तू प्यार कर,
0: ना ना आज गुमसुम ऐसे नहीं, कुछ ऐसे इतने

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं